दोस्तों, उसकी बूंदें हमें एक सुंदर सीख देती हैं। उनका जीवन बहुत छोटा होता है, लेकिन जब तक वो रहती हैं, फूलों की सुंदरता को कई गुना बढ़ा देती हैं। इसी तरह हमारा जीवन भी तभी सुंदर बनता है जब हम किसी के चेहरे पर मुस्कान की वजह बने।

आज का हमारा संकल्प यही हो, किसी का दिल न दुखाएं, किसी की उम्मीद न तोड़ें और जहां तक हो सके अपने शब्दों से खुशियां बांटें। कहते भी हैं, यदि आपके पास धन्यवाद कहने की वजह है तो समझिए आपके पास मुस्कुराने की भी वजह है।

आज सुबह ईश्वर से मांगने से पहले उनका धन्यवाद कीजिए, उस सांसों के लिए जो चल रही हैं, उस परिवार के लिए जो आपके साथ है, और उन सपनों के लिए जो अभी पूरे होने बाकी हैं।

देखते ही देखते आज की ये सुहानी सुबह अपने पड़ाव पर आ गई है। उम्मीद है आज का दिन आपके लिए नई ऊर्जा, नई मुस्कान और नए सपने लेकर आए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अपने साथी अर्चना गोयल को दीजिए अनुमति। नमस्कार, आपका दिन मंगलमय हो।

नमस्कार, FM 102.5 MHz पर यह आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र है। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के श्रावण मास की 17वीं तिथि, तदनुसार 8 अगस्त सन 2026 सुबह के 5:55 और ठीक 38 सेकंड हुए हैं। अब हमारी आज की प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। समारोह में स्नातक, स्नातकोत्तर और 587 PhD शोधार्थियों सहित 3000 से अधिक विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की जाएंगी। प्रधानमंत्री मोदी IIT दिल्ली के सोनीपत परिसर में स्थापित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित उच्च प्रदर्शन सुपर कंप्यूटिंग सुविधा परम प्रज्ञा का भी उद्घाटन करेंगे। भारतीय भुगतान परिषद ने कहा है कि UPI के माध्यम से किए जाने वाला डिजिटल भुगतान उपभोक्ताओं के लिए मुफ्त बना रहेगा। व्यापारियों से डिजिटल भुगतान स्वीकार करने के लिए भी कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। परिषद ने बताया कि बैंक, फिनटेक कंपनियां, NPCI और भारतीय रिजर्व बैंक UPI को सुरक्षित और भरोसेमंद बनाए रखने के लिए तकनीक, साइबर सुरक्षा, धोखाधड़ी रोकने और नई सुविधाओं में लगातार निवेश कर रहे हैं। भारत ने महज 3 वर्षों में 1000 किलोमीटर से अधिक सुरक्षित क्वांटम संचार स्थापित किया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में 3रे भारत अंतर्राष्ट्रीय फिनटेक महोत्सव में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बैंकिंग क्षेत्र, वित्तीय संस्थानों, प्रौद्योगिकी कंपनियों और स्टार्टअप्स के बीच नजदीकी सहयोग से भारत का फिनटेक क्षेत्र देश के आर्थिक परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण चालक बनकर उभरा है। उन्होंने कहा कि देश के फिनटेक क्षेत्र में विकास के अगले चरण में AI, क्वांटम प्रौद्योगिकियों, साइबर सुरक्षा, ब्लॉकचेन और विश्वसनीय डिजिटल नवाचार की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। झारखंड में JPSC और JSSC परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर जारी छात्र आंदोलन के बीच सरकार और छात्र प्रतिनिधिमंडल के बीच कल पहली औपचारिक वार्ता हुई। करीब 1.5 घंटे तक चली बैठक में छात्रों ने भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता, कथित अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच और भर्ती प्रक्रिया में व्यापक सुधार की मांग दोहराई। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: सरकार की ओर से 4 मंत्रियों और विकास आयुक्त ने वार्ता में भाग लिया। मंत्रियों ने छात्रों की मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई का भरोसा दिलाते हुए कहा कि वार्ता में उठाए गए सभी मुद्दों से मुख्यमंत्री को अवगत कराया जाएगा। छात्र प्रतिनिधियों ने वार्ता को सकारात्मक बताया, लेकिन स्पष्ट किया कि लिखित निर्णय और मांगों पर ठोस कार्रवाई होने तक धरना और भूख हड़ताल जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि यदि 10 अगस्त तक संतोषजनक निर्णय नहीं लिया गया तो पूर्व निर्धारित विधानसभा घेराव कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सरकार छात्रों की समस्याओं के प्रति संवेदनशील है और संवाद के माध्यम से समाधान निकालना चाहती है। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन आज से 2 दिन के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के दौरे पर रहेंगे। यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति श्री विजयपुरम स्थित सेलुलर जेल राष्ट्रीय स्मारक का दौरा करेंगे। उपराष्ट्रपति कल विजयपुरम के फ्लैग पॉइंट पर राष्ट्रीय ध्वज फहराकर हर घर तिरंगा अभियान में भाग लेंगे। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज मुंबई में राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम लिमिटेड के नए कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर अमित शाह महाराष्ट्र के राज्य शहरी सहकारी बैंक महासंघों और जिला संघों के प्रतिनिधियों से भी बातचीत करेंगे। भारत ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक पर अमेरिका के सांसदों की आपत्तियों को खारिज कर दिया है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि ये देश का आंतरिक विधायी मामला है और इस निर्णय पर संसद निर्णय करती है। उन्होंने कहा कि अमेरिका सहित कई देशों में भी विदेशी धन के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए कानून लागू हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों की मौत के मामलों की निष्पक्ष जांच की मांग का समर्थन किया है। संयुक्त राष्ट्र के उप प्रवक्ता फरहान हक ने कहा कि अगर शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को नुकसान पहुंचा है तो इसके लिए जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही तय की जानी चाहिए। इससे पहले संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार प्रमुख वोल्कर टुर्क ने अशांति के दौरान हुई सभी मौतों की जल्द, निष्पक्ष और गहन जांच की मांग की थी। खबरों के मुताबिक ज्वाइंट आवामी एक्शन कमेटी के नेतृत्व में हुए हाल के प्रदर्शनों में करीब 50 लोगों की मौत की खबर है। मौसम विभाग ने आज ओडिशा और राजस्थान में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। इस बीच दिल्ली में कल रात से ही लगातार बारिश का सिलसिला जारी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम विविध भारती से बोल रहे हैं, ये है राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। सुबह के 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का हमारा दैनिक कार्यक्रम वंदनवार।
3: ये है विविध भारती।

पहले सुनिए चिंतन। आठ अगस्त यानी आज ही के दिन 1942 को बॉम्बे के अधिवेशन के दौरान महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान किया था। गांधी जी का विचार था कि उन्हें पूर्ण स्वतंत्रता से कम कुछ भी मंजूर नहीं। उन्होंने कहा, करो या मरो। ये था चिंतन। और आइए अब सुनते हैं कुछ भक्ति रचनाएं।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। जरूखा में सुनिए हमारे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। अब से थोड़ी ही देर बाद में यानी 6:35 पर आप सुनेंगे श्री रामचरित मानस गान, इसका 274वां भाग प्रसारित होगा। संगीत सरिता कार्यक्रम में सुबह 6:45 और संध्या 6:45 पर आप सुनेंगे श्रृंखला वर्षा चौमासा, कलाकार गायिका शुभा मुदगल, भाग 8, प्रस्तुत करता है कांचन प्रकाश संगीत। सुबह 7 आप सुनते हैं हमारा दैनिक कार्यक्रम भूले बिसरे गीत, 7:30 पर हम हैं राही प्यार के। त्रिवेणी का प्रसारण समय है सुबह 8:15 और दोपहर 2 आलेख और स्वर यूनुस खान का, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। सुबह 8:30 और रात्रि 8:15 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम चित्रलोक। आज के फनकार, ये कार्यक्रम होगा सुबह 9:30 पर। आज ये कार्यक्रम गीतकार गुलशन बावरा पर केंद्रित होगा, प्रस्तुतकर्ता है रमेश गोखले। इसी कार्यक्रम को आप दोबारा सुन सकते हैं रात 9:30 पर। सुबह 10 पिटारा में गीतों भरी कहानी होगी दिल की गिरह, लेखिका विनीता अस्थाना, प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी। दिन में 11 सुनिएगा मैटिनी शो, क्रिकेट कमेंटेटर पद्मश्री सुशील दोषी से यूनुस खान की बातचीत का भाग 2 प्रसारित होगा, संपादन और प्रस्तुति तेजश्री कांबले की। यादों की महफिल कार्यक्रम होगा दोपहर 12:05 पर और 1 आप सुनते हैं सुरीला सफर। दिन में 2:30 पर सदाबहार नगमे और 3 फरमाइशी फिल्मी गानों का कार्यक्रम होगा मन चाहे गीत। नाट्य तरंग में दोपहर 3:30 पर सुनिएगा नाटक किसी एक फूल का नाम लो, इसका भाग 1 प्रसारित होगा, मूल गुजराती लेखक मधु रॉय, हिंदी रूपांतर ज्योति व्यास और निर्देशक सुशील बनर्जी। दोपहर बाद 4 पिटारा में बॉम्बे टॉकीज के अंतर्गत कोरियोग्राफर शबीना खान से विधि जैन की बातचीत का 1 भाग प्रसारित होगा, संपादन सहायक रीमा जोशी, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। संध्या 5 आप सुनते हैं छाया गीत का पुनः प्रसारण और 5:30 पर हमारा दैनिक कार्यक्रम तराने नए पुराने। संध्या रंजन 6:35 पर और विशेष जयमाला कार्यक्रम संध्या 7 प्रसारित होगा। आज का ये कार्यक्रम पेश करेंगे अभिनेता निर्देशक निर्माता मनोज कुमार। जिज्ञासा का प्रसारण समय संध्या 7:45 और हवा महल में रात्रि 8 सुनो कहानी के अंतर्गत कहानी होगी पंच परमेश्वर, इसका भाग 1 प्रसारित होगा, कहानी है मुंशी प्रेमचंद की, वाचक स्वर अमरकांत दुबे का और प्रस्तुतकर्ता विजय दीपक छिब्बर। रात्रि 9 आप सुनते हैं कार्यक्रम आपके लिए और आज रात 10 छाया गीत सुनिएगा, आलेख और स्वर मंजरी वर्मा का, प्रस्तुतकर्ता है राघवेंद्र सिंह नेगी। रात्रि 10:30 पर ढलती जाए रात और 11 मैटिनी शो का पुनः प्रसारण। झरोखा में अभी आप सुन रहे थे हमारे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। ये विविध भारती है राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस गान, आज इसका भाग 274।

वानर सम्राट सुग्रीव की अपने चरणों में भक्ति और समर्पण देख श्रीराम ने उन्हें भरत की भांति अपना लिया और उनसे वे सभी उपाय करने का आग्रह किया जिससे सीता का समाचार प्राप्त किया जा सके। सुग्रीव के आदेश पर वानरों की विशाल सेना एकत्र हो गई। पार्वती को यह कथा सुनाते हुए भगवान शंकर कहते हैं, हे उमा, वानरों की वो सेना मैंने देखी थी। उनकी संख्या इतनी थी जिसकी गिनती करने वाले को मूर्ख ही कहा जा सकता है। सभी वानर श्रीराम के सम्मुख आकर सिर झुकाते हैं। प्रत्येक वानर से श्रीराम उसकी कुशल क्षेम पूछकर उसे कृतार्थ कर देते हैं। सुग्रीव ने असंख्य वानरों की विशाल सेना को सभी दिशाओं में जाकर सीता जी को ढूंढने का आदेश दिया और इस काम के लिए एक माह का समय दिया। अपने राजा के सामने एक बार फिर सिर नवाकर वानर श्रीराम का स्मरण करते हुए विभिन्न दिशाओं में चल दिए। सबके अंत में जब पवन सुत हनुमान ने सिर नवाया तो श्रीराम ने उन्हें अपने पास बुलाकर अपने कर कमलों से उनका सिर स्पर्श किया तथा अपना अनन्य सेवक जानकर उन्हें अपनी अंगूठी उतार कर दी। बोले, सभी प्रकार से सीता को समझा बुझाकर शीघ्र लौट आना।

0: गीता कार्यक्रम श्री रामचरित मानस गान आज आप सुन रहे थे भाग 274।
1: ये आकाशवाणी का प्रसारण है विविध भारती।

0: श्रोता मित्रों नमस्कार। संगीत सरिता कार्यक्रम में वर्षा चौमासा को लेकर आज हम पुनः उपस्थित हैं। शुभा जी, मैं आपका स्वागत करती हूं स्टूडियो में।
1: नमस्कार।
0: नमस्कार। और आप ही की ओर देखे जा रही हूं, सुनने के लिए उत्सुक हूं, आपने आज कौन सा राग चुना है, किस बंदिश के लिए आपका मन बना है?
1: वैसे तो हम पहले भी इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि राग मल्हार जो है उसके विभिन्न प्रकार हैं। आज सोच रही हूँ कि ऐसे दो मल्हार के प्रकार सुनाऊं, आम शायद सुनने को ना मिलते हों। वैसे तो इतने प्रकार हैं और अलग अलग गुणीजन वो सुनाते ही हैं, मीराबाई की मल्हार, धूलिया मल्हार इत्यादि,
0: चरजू की मल्हार, रामदासी मल्हार,
1: जी वो बहुत हैं रचनाएं। लेकिन दो मल्हार के प्रकार मैंने गुरुजी से सीखे भी और सुने भी, तो एक का नाम है चंद्र मल्हार। तो इस राग की थोड़ी सी विशेषता बता दूं कि ये बिलावल थाट का उन्होंने बताया है और पूर्वांग में इसमें केदार उसका उसके कुछ स्वर समुदाय मिलते हैं और जो उत्तरांग में बिलावल
0: जी,
1: तो और उसकी फिर एक विशेष स्वर संगति है जो कि इस राग में मिलती है केवल
0: जी।
1: तो वो आपको मैं जरा सा गा के सुनाती हूँ
0: जी।

0: ये तो केदार का जी
1: ये है।
0: और पनी धनी सारा पमा ये बिलावल का अंग हो गया। और इसकी जो अपनी विशेष एक स्वर संगति है वो मा प धनी धा प मा, ये चंद्रमल्हार की संगति मानी गई है। तो ये इन स्वर संगतियों को मिला के चंद्रमल्हार राग तैयार किया गया है।
1: जी, ये नाम भी बहुत ही सुंदर लग रहा है। और इसकी बंदिश जिसमें हम वर्षा ऋतु से जुड़ी हुई कुछ शब्दावली या जो गीत रचना है उसके बारे में भी तो बताएंगे ना आप।
0: जी, बंदिश के बोल इस तरह हैं, बरखा न भावे उन बिनरी, शीतल पवन लागे दहन। तो पवन तो
1: जला रही
0: चल
1: है।
0: रही है लेकिन वो हमें जला रही है विरह में, विरह व्यथा में जलती नायिका को, और भी उसको आग जैसा जैसी महसूस हो रही है। कारी कारी घटा देख डर लागे, वो उधर तो उत्सव मनता है लेकिन यहाँ काली घटा देख के एक दुख।
1: तो शीतल पवन जहाँ दाहक हो गई तो यहाँ तो काली घटा तो
0: डराएगी
1: ही।
0: कारी कारी घटा देख डर लागे, दामिनी दमक मुरला बोलन। ये इसका
1: मुरला मतलब मोर।
0: जी हाँ जी,
1: आप सुनाएंगी?
0: जी जरूर।

0: श्रोता मित्रों, अभी हमने ये सुना राग चंद्रमल्हार। चंद्रमल्हार की ये बंदिश बहुत ही खूबसूरत थी। शुभा जी, आप एक और दूसरे मल्हार का भी जिक्र कर रही थी, वो
1: जी ये भी एक अलग अलग रागों को जोड़ के एक ये राग बना है, अरुण मल्हार
0: मिश्रण।
1: जी हाँ जी, जी है, मिश्रण है। और इसमें कुछ स्वर संगतियां तो गौड़ की दिखती हैं, कुछ स्वर संगतियां दिखती हैं बिलावल की, और इसमें तिलंग का भी एक अंश आता है, एक टुकड़ा ऐसा है जो कि तिलंग की याद दिलाता है
0: जी।
1: तो ये अरुण मल्हार है, और इसकी मुख्य रूप से मैं बता देती हूँ कि क्या चलन बताया गया है मुझे।
2: रे गामा गामा सारे गामा गामा,
1: ये गौड़।
2: मारे पा,
1: विशेष मल्हार की स्वर संगति।

0: आज हमने दो मल्हार के दो प्रकार सुने, एक तो चंद्र मल्हार और अरुण मल्हार। प्रतीक्षा करते हैं कल की और आज लेते हैं आज्ञा। कल फिर भेंट होगी। नमस्कार।
1: संगीत चरिता में आप सुन रहे हैं श्रृंखला वर्षा चौमासा, प्रस्तुति प्रख्यात गायिका शुभा मुद्गल की। संगतकार हैं हारमोनियम पर सुधीर नायक, तबले पर संगत की अनीश प्रधान ने, ध्वन्यांकन चित्रलेखा जैन, तकनीकी सहयोग विनीता ढोलकिया। विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता कांचन प्रकाश।

नमस्कार, यह आकाशवाणी उज्जैन। समय हुआ है सुबह 7 बजे का और हम आपके लिए लेकर आए हैं राजाधिराज बाबा महाकाल के चरणों में समर्पित हमारी विशेष प्रस्तुति महाकाल वंदन।

जय श्री महाकाल। अवंतिका की इस पावन धरा पर आज की सुबह बहुत ही मंगलकारी है। आइए अपने दिन की शुरुआत उस परमपिता के चरणों में ध्यान लगाकर करें जो कालों के काल हैं और समस्त जगत के आधार हैं।

अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी उज्जैन केंद्र से प्रसारित हमारा विशेष कार्यक्रम महाकाल वंदन। बाबा आपकी हर मनोकामना पूर्ण करे और आपका दिन मंगलमय हो। जय श्री महाकाल।

FM 102.5 MHz पर यह आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र है। आइए हम आपको आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी देते हैं। सुबह 7:20 पर होगा प्रातःकालीन सूचना परक कार्यक्रम सुप्रभात उज्जैन। ₹8:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत का विशेष प्रोग्राम उज्जैनी आरजे। 9:00 फिल्मी संगीत का विशेष प्रोग्राम बॉलीवुड बीट्स आप सुनेंगे 9:30 पर।

10 बजे सुनिए आपकी फरमाइश। ग्यारह बजे आप सुनेंगे विविध भारती मुंबई के प्रोग्राम। मुंबई से रंग तरंग कार्यक्रम होता है सुबह 11 बजे। दिन में 12:05 पर सुनिए यादों की महफिल। दोपहर 1 बजे सुनिए सुरीला सफर। दो बजे सुनिए फिल्म संगीत। सदाबहार नगमे पेश किए जाते हैं दोपहर 2:30 पर। दोपहर 3:30 पर सुनिएगा नाट्य तरंग। 4 बजे आप सुनेंगे बॉम्बे टॉकीज। 5:00 से संध्याकालीन सभा में शाम 5 बजे सुनिए युवा श्रोताओं की अपनी पसंद का कार्यक्रम युववाणी। शाम 6 बजे भजन संध्या का कार्यक्रम होगा। 6:30 पर सुनिएगा किसान वाणी, आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति। दिल्ली से समाचार आप सुनेंगे शाम 7 बजे। भोपाल से 7:10 पर सुनिए प्रादेशिक समाचार। सात बजकर 21 पर अपने उज्जैन केंद्र से लेकर आएंगे आपके लिए मालवी की तारी गूंज। रात 8 बजे सुनिएगा इस सप्ताह संसद में। 8:15 पर सुनिए सुर्खियों में। 8:30 पर सुनिए फिल्म संगीत। उर्दू समाचार सुनिए रात 9:15 पर। रात को 9:30 पर प्रोग्राम होगा चित्र भारती, जबकि रात के 10 बजे सुनिए संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम।

अभी आप सुन रहे थे आज प्रसारित होने वाले विशेष कार्यक्रमों की जानकारी। यह आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र है। सुबह 7:10 होने को है। अब प्रादेशिक समाचार का अनुप्रसारण हम भोपाल केंद्र से करेंगे।

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं शरद बाघेला। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आईआईटी दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने खरगोन जिले के कमलगोण को राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार से किया सम्मानित। भोपाल में आज होगी ब्रिक्स देशों के संस्कृति मंत्रियों की

0: बैठक, सांची का भी करेंगे भ्रमण। और प्रदेश के पन्ना, सतना और रीवा में आज भारी बारिश का अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में आईआईटी दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे। इस समारोह में 3000 से ज्यादा विद्यार्थी शामिल होंगे, जिसमें स्नातक और स्नातकोत्तर छात्र छात्राओं के साथ 587 पीएचडी शोधार्थी भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री समारोह में मेधावी विद्यार्थियों को प्रेसिडेंट गोल्ड मेडल, डायरेक्टर गोल्ड मेडल और अन्य प्रतिष्ठित पुरस्कार प्रदान करेंगे। वे आईआईटी दिल्ली के सोनीपत परिसर में स्थापित एआई आधारित हाई परफॉर्मेंस सुपर कंप्यूटिंग सुविधा परम प्रज्ञा का वर्चुअली उद्घाटन भी करेंगे। इस सुविधा से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस और उन्नत कंप्यूटिंग के क्षेत्र में संस्थान की शोध क्षमता बढ़ेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल 12वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर खरगोन जिले के बुनकर कमल गौड़ को राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार से सम्मानित किया। श्री गौड़ को महेश्वरी साड़ी बुनाई में उत्कृष्ट योगदान के लिए यह सम्मान दिया गया है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कमल गौड़ को प्रतिष्ठित पुरस्कार मिलने पर बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि यह सम्मान महेश्वरी साड़ी की विशिष्ट पहचान और प्रदेश की समृद्ध हथकरघा परंपरा का गौरव है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार महेश्वर को टेक्सटाइल टूरिज्म विलेज के रूप में विकसित करने के लिए काम कर रही है। भोपाल में आज ब्रिक्स देशों के संस्कृति मंत्रियों की बैठक होगी, जिसमें सांस्कृतिक विरासत, संग्रहालय, रचनात्मक अर्थव्यवस्था, सांस्कृतिक आदान प्रदान और लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। बैठक के अंत में ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की घोषणा को अपनाया जाएगा। इसके बाद मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ब्रिक्स देशों के संस्कृति मंत्रियों के लिए दोपहर के भोजन का आयोजन करेंगे। बैठक और भोजन के बाद विदेशी मंत्री और प्रतिनिधिमंडल सांची के लिए रवाना होंगे, जहां वे बुद्ध जम्बूद्वीप और विश्व प्रसिद्ध सांची स्तूप का भ्रमण करेंगे। वहीं कल केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने इंडोनेशिया और दक्षिण अफ्रीका के संस्कृति मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कल छिंदवाड़ा से जन विश्वास अभियान की शुरुआत की। यह अभियान जनवरी 2027 तक पूरे प्रदेश में चलाया जाएगा। अभियान के तहत हर शुक्रवार अधिकारी और प्रशासनिक अमला जनता के बीच पहुंचकर उनकी समस्याओं का मौके पर समाधान करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कल छिंदवाड़ा में अभियान के तहत आयोजित सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए ये अभियान चलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया को जनसंचार का प्रभावी माध्यम बताते हुए कंटेंट क्रिएटर्स से सकारात्मक और तथ्यपरक जानकारी लोगों तक पहुंचाने की अपील की।
1: छिंदवाड़ा में हमने इस जन विश्वास अभियान का शुभारंभ किया और अलग अलग प्रकार से एक जिले के अंदर सब प्रकार की चेतना जागृत करते हुए हमारी जन सुविधाएं, विकास की अवधारणाएं, जन भागीदारी और भविष्य का रोडमैप समान रूप से सरकार और केंद्र सरकार दोनों के साथ, राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों के साथ मिलकर चले। इस अवसर पर जब हमने अलग अलग इसके आयाम भी तय किए, एक तरफ हम पुरानी पेंडेंसी शिकायतों की खत्म कर रहे हैं, दूसरी तरफ हमारी शासन की योजनाओं के जो टारगेट है उस टारगेट की तरफ भी आगे बढ़ रहे हैं।
0: भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने कल देर शाम उज्जैन में करीब 18,66,00,000 रुपए की लागत से बनने वाले न्यायाधीश अतिथि गृह का भूमि पूजन और शिलान्यास किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव भी मौजूद रहे। करीब 2 एकड़ क्षेत्र में बनने वाला यह अतिथि गृह आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा और इसमें भूतल के साथ प्रथम तल भी होगा। अतिथि गृह के निर्माण से विभिन्न न्यायालयों और न्यायिक संस्थानों से उज्जैन आने वाले न्यायाधीशों को बेहतर आवासीय सुविधा मिल सकेगी। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कल रात उज्जैन प्रवास के दौरान श्री महाकालेश्वर मंदिर में भगवान महाकाल और नंदी जी की पूजा अर्चना की। श्रावण मास के दौरान डॉ यादव ने भगवान महाकाल की शयन आरती में भी हिस्सा लिया और भक्ति में लीन होकर झांझ बजाई। इस दौरान उन्होंने मंदिर में आए श्रद्धालुओं से बातचीत की और दर्शन व्यवस्था की जानकारी ली। मंदिर प्रबंध समिति के अध्यक्ष और उज्जैन कलेक्टर रोशन कुमार सिंह ने मुख्यमंत्री का दुपट्टा ओढ़ाकर सम्मान किया। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर

0: भी समाचार सुन सकते हैं।
1: ब्रेक के बाद समाचार में एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रदेश में कल से 17 अगस्त तक जन भागीदारी के साथ हर घर तिरंगा अभियान शुरू होगा। अभियान के तहत तिरंगा यात्रा, प्रदर्शनी, रंगोली, प्रश्नोत्तरी, साइकिल रैली और तिरंगा एंथम सहित कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। प्रदेशवासियों से तिरंगे के साथ सेल्फी लेकर हर घर तिरंगा पोर्टल पर अपलोड करने की अपील की गई है। सोशल मीडिया के जरिए अभियान को जन आंदोलन बनाने का भी आह्वान किया गया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बताया कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रदेश की जेलों में बंद 124 पात्र बंदियों को सजा में छूट और विशेष परिहार का लाभ दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अच्छे आचरण, अनुशासित व्यवहार और निर्धारित पात्रता के आधार पर 118 आजीवन कारावास की सजा पाए बंदियों को समय से पहले रिहा किया जाएगा। इसके अलावा 6 अन्य पात्र बंदियों को विशेष परिहार का लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि पात्र बंदियों की समय पूर्व रिहाई से दूसरे बंदियों को भी अच्छा आचरण करने की प्रेरणा मिलेगी। प्रदेश के वन विभाग ने शहीद अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार वर्ष 2023-24 के लिए नामांकन आमंत्रित किए हैं। वन रक्षा, वन संवर्धन और वन्य जीव सुरक्षा में उत्कृष्ट कार्य करने वाली संस्थाओं और व्यक्तियों के प्रस्ताव 21 सितंबर 2026 तक लिए जाएंगे। संस्थागत श्रेणी में 1,00,000 रुपये और प्रशस्ति पत्र, जबकि पात्र शासकीय और अशासकीय व्यक्तियों को 50,000 रुपये और प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। वन्य प्राणियों की सुरक्षा में साहस और सूझबूझ का प्रदर्शन करने वालों को भी 50,000 रुपये का पुरस्कार मिलेगा। उज्जैन में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने कल कार्रवाई करते हुए दो प्रतिष्ठानों से 8,00,000 रुपये से अधिक कीमत के 1,272 लीटर घी जब्त किया है। अधिकारियों ने दोनों जगहों से घी के नमूने लेकर जांच के लिए राज्य खाद्य प्रयोगशाला भेजे हैं। जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। अब बात मौसम की। प्रदेश के पन्ना, सतना और रीवा जिलों में आज भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार इन जिलों में अगले 24 घंटों के दौरान 4 इंच तक बारिश हो सकती है, जबकि भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर और जबलपुर समेत 52 जिलों में बूंदाबांदी के आसार हैं। प्रदेश में अब तक औसतन 16.8 इंच बारिश हुई है, जो सामान्य से करीब 20% कम है। ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में रजत पदक जीतने वाली सागर जिले की खिलाड़ी यामिनी मौर्य का कल अपने गृह नगर पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। यामिनी के रेलवे स्टेशन पहुंचते ही भारत माता की जय और उनके नाम के नारों से पूरा स्टेशन परिसर गूंज उठा। परिजनों, नरियावली विधायक प्रदीप लारिया और खेल प्रेमियों ने यामिनी का पुष्पगुच्छ, माला और शॉल पहनाकर स्वागत किया। अब कुछ समाचार संक्षेप में। दमोह के पथरिया विधानसभा क्षेत्र के 4 शासकीय स्कूलों में कृषि संकाय शुरू करने की स्वीकृति मिली है। इससे विद्यार्थियों को अपने ही क्षेत्र में कृषि शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। मंडला में विश्व स्तनपान सप्ताह का आंगनवाड़ी केंद्रों पर समापन हुआ। सप्ताह भर जागरूकता रैलियों, प्रभात फेरियों और सामुदायिक कार्यक्रमों के जरिए स्तनपान के महत्व की जानकारी दी गई। श्योपुर में कलेक्टर शीला दाहिमा ने औद्योगिक इकाइयों का निरीक्षण कर अधिकारियों को MSME प्रोत्साहन योजना का लाभ दिलाने के निर्देश दिए। इसके अलावा जिला स्तरीय पर्यटन क्विज प्रतियोगिता भी आयोजित की गई। छतरपुर में यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए आवारा मवेशियों को पकड़कर गौशालाओं में भेजने का अभियान चलाया जा रहा है। अशोकनगर में विद्युत वितरण कंपनी के संपर्क अभियान के तहत 7 स्थानों पर शिविर लगाए गए। शिविरों में मिली 387 शिकायतों में से 358 का मौके पर निराकरण किया गया। नर्मदापुरम में वार्षिक पर्यटन क्विज बूझो जानो फिर देखो अपना प्रदेश 2026 की जिला स्तरीय प्रतियोगिता आयोजित की गई। खंडवा के सिविल लाइन्स स्थित नमो वन में आज 25,000 पौधरोपण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने लोकसभा में सिंहस्थ 2028 को लेकर ओंकारेश्वर की रेल सुविधाओं का मुद्दा उठाया। उन्होंने नए ओंकारेश्वर रेलवे स्टेशन का निर्माण जल्द पूरा करने और नई रेल सेवाएं शुरू करने की मांग की। और इंदौर में कल 13वीं पश्चिम क्षेत्रीय पुलिस समन्वय समिति की बैठक हुई, जिसमें 7 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने हिस्सा लिया। इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर होगा। दीजिए अनुमति, नमस्कार।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: नमस्कार उज्जैन, FM 102.5 MHz पर मैं हूँ आपकी उद्घोषिका हिमानी और आप सुन रहे हैं आपका प्रिय कार्यक्रम सुप्रभात उज्जैन।

इस पावन मंगलमय और सुहानी सुबह में बाबा महाकाल की दिव्य नगरी उज्जैन से आप सभी प्रिय श्रोताओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। हर नई सुबह अपने साथ एक नई उमंग, नई ऊर्जा और इतिहास की सुनहरी यादें लेकर आती है। आज 8 अगस्त का दिन हमारे देश के इतिहास में बेहद खास और प्रेरणादायक है। आज का दिन हमें अपनी स्वतंत्रता की कीमत और हमारे वीर सेनानियों के त्याग का एहसास कराता है। जब सुबह की शुरुआत राष्ट्र प्रेम और सकारात्मक विचारों के साथ हो तो पूरा दिन ऊर्जा से भर जाता है। तो आइए बाबा महाकाल का स्मरण करते हुए मिलकर करते हैं आज के इस खूबसूरत सफर की शुरुआत इस मधुर और प्रेरणादायक गीत के साथ।

0: श्रोताओं, अब वक्त हो चला है हमारे विशेष सेगमेंट समाचार पत्रों से का। आइए उज्जैन की महत्वपूर्ण खबरों पर एक नजर डालते हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव शुक्रवार को उज्जैन पहुंचे। अपने उज्जैन प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री सबसे पहले प्रशांति धाम के समीप स्थित नगर निगम भवन पहुंचे। यहां हथकरघा दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने महिलाओं से मुलाकात की और उनसे संवाद किया। हथकरघा और हस्तशिल्प से जुड़ी महिलाओं के काम को प्रोत्साहित करने तथा उनके प्रयासों को सम्मान देने के उद्देश्य से ये आयोजन किया गया। अब बात दूसरी खबर की। उज्जैन के प्रसिद्ध रामघाट पर होने वाली शिप्रा नदी की दैनिक आरती की व्यवस्था में बदलाव किया गया है। अब शिप्रा नदी की आरती का आयोजन श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति द्वारा किया जाएगा। इसकी शुरुआत गुरुवार से कर दी गई है। इससे पहले शिप्रा आरती का आयोजन पंडा समिति द्वारा किया जाता था। रामघाट पर प्रतिदिन होने वाली यह आरती श्रद्धालुओं के लिए आस्था का प्रमुख केंद्र है। अब महाकाल मंदिर समिति द्वारा इसकी व्यवस्थाएं संभाले जाने से आरती के आयोजन को और व्यवस्थित रूप देने का प्रयास किया जा रहा है। अगली खबर श्रद्धालुओं की संख्या से जुड़ी है। श्रावण मास में बाबा महाकाल के दर्शन के लिए उज्जैन आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। श्रावण मास के शुरुआती 8 दिनों में ही करीब 29,28,000 श्रद्धालु बाबा महाकाल के दर्शन कर चुके हैं। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने मंदिर में दर्शन के साथ बाबा महाकाल का लड्डू प्रसाद भी ग्रहण किया। इन 8 दिनों में श्रद्धालु करीब 2,35,00,000 रुपये का लड्डू प्रसाद अपने साथ ले गए। श्रावण मास के दौरान उज्जैन में बढ़ती श्रद्धालुओं की संख्या से शहर में धार्मिक पर्यटन और धार्मिक गतिविधियों की व्यापकता का भी अंदाजा लगाया जा सकता है। अब बात कांवड़ यात्रियों की। श्रावण मास में भगवान शिव की भक्ति और आस्था के साथ बड़ी संख्या में कांवड़ यात्री भी उज्जैन पहुंच रहे हैं। कांवड़ यात्रियों के लिए बाबा महाकाल के जलाभिषेक की विशेष व्यवस्था की गई है। कांवड़ यात्रियों ने सभा मंडप में प्रवेश कर बाबा महाकाल को जल अर्पित किया। कांवड़ लेकर आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा और सुगम दर्शन के लिए निर्धारित व्यवस्था के तहत उन्हें मंदिर में प्रवेश दिया जा रहा है। अब एक धार्मिक और आध्यात्मिक आयोजन की खबर। महाकाल भक्त निवास में इन दिनों शिव की महिमा के साथ जीवन प्रबंधन के सूत्र भी श्रद्धालुओं तक पहुंचाए जा रहे हैं। यहां सुबह 10 बजे से दोपहर 1:30 तक शिव पुराण कथा का आयोजन किया जा रहा है। पंडित मेहता द्वारा शिव पुराण कथा के माध्यम से भगवान शिव से जुड़े प्रसंगों और उनकी महिमा का वर्णन किया जा रहा है। कथा के साथ जीवन को बेहतर बनाने और सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने से जुड़े जीवन प्रबंधन के सूत्र भी श्रोताओं को बताए जा रहे हैं। इससे श्रद्धालुओं को धार्मिक ज्ञान के साथ जीवन उपयोगी संदेश भी मिल रहे हैं। अब मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से जुड़ी एक और खबर। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने उज्जैन प्रवास के दौरान बाबा महाकाल के दर्शन किए। महाकाल मंदिर पहुंचकर उन्होंने विधि विधान से पूजा अर्चना की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने मंदिर में झांज भी बजाई। श्रावण मास के दौरान महाकाल मंदिर में चल रहे धार्मिक आयोजनों के बीच मुख्यमंत्री ने बाबा महाकाल का आशीर्वाद लिया। और अब शहर में निर्माण एवं विकास से जुड़ी खबर। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने उज्जैन में जजेस गेस्ट हाउस के निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया। इस अवसर पर संबंधित अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी रही। जजेस गेस्ट हाउस के निर्माण से न्यायिक अधिकारियों के लिए आवासीय एवं आवश्यक सुविधाओं की उपलब्धता को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। उज्जैन में लगातार बढ़ रही विकास गतिविधियों के बीच इस परियोजना को भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो ये थी आज के प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित उज्जैन की महत्वपूर्ण खबरें। इन्हीं खबरों के साथ समाचार पत्रों से मैं फिलहाल इतना ही।
1: चुचू चिड़िया बड़ी उदास, कैसे बुझाए अपनी प्यास, बहुत कम है कुएं की भी यही कहानी, धरती का है सूखा पेट, हैंड पंप भी उगले रेत। चूचू रोए नदी किनारे, इसका पानी कहाँ गया रे। बादल आते खाली हाथ और कह जाते पते की बात, हरे भरे मत काटो जंगल, जंगल ही तो लाता मंगल, पेड़ लगाओ तुम सब मिलकर, बरसेगा फिर पानी जमकर, नदी ताल में होगा पानी, फुर्र होगी चूचू की परेशानी। आओ मिलकर पेड़ लगाएं, धरती की खुशियां लौटाएं।
0: श्रोताओं, आज 8 अगस्त का दिन हमारे भारतीय इतिहास में अगस्त क्रांति दिवस के रूप में दर्ज है। आज ही के दिन यानी 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सत्र में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन क्वाइट इंडिया मूवमेंट का आह्वान किया था और देशवासियों को करो या मरो का ऐतिहासिक नारा दिया था। इस आंदोलन ने स्वतंत्रता संग्राम को एक ऐसी अंतिम और निर्णायक दिशा दी जिसने ब्रिटिश हुकूमत की जड़ों को हिलाकर रख दिया था। देश का हर वर्ग इस महायज्ञ में कूद पड़ा था। ऐसे महान क्रांतिकारियों और अमर शहीदों के बलिदान को नमन करते हुए आइए सुनते हैं ये सदाबहार और प्रेरणादायक गीत।

पावन अवंतिका नगरी उज्जैन में भी पूरी ओजस्विता के साथ पहुंचा था। 1942 के इस आंदोलन के दौरान उज्जैन के स्थानीय स्वतंत्रता सेनानियों, युवाओं और विद्यार्थियों ने राष्ट्रपिता के आह्वान पर जुलूस निकाले, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया और स्वाधीनता संग्राम में अपनी सक्रिय भागीदारी निभाई। अवंतिका का इतिहास गवाह है कि धर्म और आध्यात्म की ये नगरी हमेशा राष्ट्रीय चेतना और न्याय की लड़ाई में आगे रही है। बापू की अहिंसा, दृढ़ संकल्प और स्वराज की भावना को याद करते हुए आइए सुनते हैं महात्मा गांधी को समर्पित ये खास गीत।

साथियों, 1942 की अगस्त क्रांति में जिस तरह युवाओं ने आगे बढ़कर देश की दिशा तय की थी, ठीक वैसे ही आज के दौर में भी देश और समाज को प्रगति के पथ पर ले जाने की जिम्मेदारी हमारे युवाओं के कंधों पर है। आज की क्रांति सीमा पर लड़ने की नहीं, बल्कि अशिक्षा, सामाजिक

और अनुशासनहीनता के खिलाफ आवाज उठाने की है। जब आज का युवा अपने ज्ञान कौशल और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ता है तो राष्ट्र निर्माण का सपना साकार होता है। आइए युवा और जाओ राष्ट्र प्रेम के इसी जज्बे को सलाम करते हुए सुनते हैं अगला गीत।

श्रोताओं, स्वतंत्रता सेनानियों ने हमें एक आज़ाद देश सौंपा। अब इस देश और अपने शहर को सुंदर बनाना एक जागरूक नागरिक के रूप में हमारी जिम्मेदारी है। बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में हर रोज हजारों श्रद्धालु आते हैं। ऐसे में हमारा कर्तव्य है कि हम अपने शहर को साफ सुथरा, सुंदर और अनुशासित रखें। गीला और सूखा कचरा हमेशा अलग अलग डस्टबिन में डालें। सिंगल यूज प्लास्टिक से दूरी बनाएं और यातायात नियमों का पूरी निष्ठा के साथ पालन करें। जब हम अपने आचरण से उज्जैन की गरिमा बढ़ाएंगे, तभी सच्चे अर्थों में आप अपने देश और अपनी धरोहर का सम्मान कर पाएंगे। आइए इसी सकारात्मक सोच के साथ सुनते हैं अगला गीत।

अंधों को किताबों के बोझ ने झुकाया, रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया। 99% मार्क्स लाओगे तो खड़ी वरना छड़ी। लिख लिख कर पढ़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का छाला, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने पूरा पूरा बचपन जला डाला।

साथियों, समय का पहिया लगातार चलता रहता है और बातों ही बातों में आज का सुप्रभात उज्जैन अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच गया है। आज हमने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के वीरों को नमन किया, महात्मा गांधी के विचारों और उनके ऐतिहासिक योगदान को याद किया और राष्ट्र निर्माण में अपनी भागीदारी का संकल्प लिया। आइए इस शनिवार की शुरुआत में हम ये वादा करें कि हम अपने इतिहास से सीख लेकर एक बेहतर और जिम्मेदार नागरिक बनेंगे। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ सुनते हैं आज का अंतिम और मधुर गीत।

0: साथियों, इसी के साथ सुप्रभात उज्जैन का आज का ये अंक यहीं संपन्न होता है। उम्मीद है कि आज की ये प्रस्तुति आपकी सुबह को एक नई ऊर्जा और देशभक्ति के जज्बे से भर पाई होगी। अब मुझे दीजिए अनुमति, मैं आपकी उद्घोषिका हिमानी आपसे विदा लेती हूँ। कल सुबह फिर होगी मुलाकात आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम सुप्रभात उज्जैन में, सिर्फ आकाशवाणी उज्जैन FM 102.5 MHz पर। आप हमें न्यूज ऑन AIR एप्लीकेशन पर भी सुन सकते हैं। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार।
1: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखिए, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज IIT दिल्ली के दीक्षांत समारोह में मेधावी छात्रों को संस्थान का सर्वोच्च सम्मान प्रदान करेंगे। भारतीय भुगतान परिषद ने स्पष्ट किया, उपभोक्ताओं और छोटे व्यापारियों के लिए UPI लेन देन निःशुल्क रहेगा। भारत ने प्रस्तावित FCRA विधेयक पर एक अमरीकी सांसद की आपत्तियों को खारिज किया, विधेयक को देश का आंतरिक मामला बताया। झारखंड सरकार ने भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों से पहले औपचारिक बातचीत की। रूस से तेल खरीदने वाले 5 देशों पर 100% शुल्क लगाने का विधेयक अमेरिका के सेनेट में पारित, और पूर्वी राजस्थान तथा ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश की संभावना। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज IIT दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे। वे 3000 से अधिक विद्यार्थियों को संबोधित करेंगे, जिनमें स्नातक और स्नातकोत्तर छात्र छात्राओं के साथ 587 PhD शोधार्थी शामिल हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समारोह के दौरान संस्थान के सबसे प्रतिष्ठित सम्मान जैसे प्रेसिडेंट्स गोल्ड मेडल, डायरेक्टर्स गोल्ड मेडल, शंकर दयाल शर्मा गोल्ड मेडल और परफेक्ट 10 गोल्ड मेडल मेधावी छात्रों को प्रदान करेंगे। इसके अलावा श्री मोदी परम प्रज्ञा का भी उद्घाटन करेंगे, जो IIT दिल्ली के सोनीपत कैंपस में स्थापित AI संचालित हाई परफॉर्मेंस सुपर कंप्यूटिंग सुविधा है। यह आधुनिक सुविधा AI, डेटा साइंस, एडवांस कंप्यूटिंग और अंतर विषयक शोध के क्षेत्रों में संस्थान की क्षमता को मजबूत करेगी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि IIT दिल्ली ने हमेशा अनुसंधान और नवाचार के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। श्री मोदी ने कहा कि वह इस अग्रणी संस्थान के छात्रों और शिक्षकों के बीच जाने के लिए उत्सुक हैं। श्रीवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
4: कल नई दिल्ली में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में IIT दिल्ली के निदेशक रंजन बैनर्जी ने बताया कि प्रधानमंत्री संस्थान का सर्वोच्च सम्मान प्रदान करेंगे। श्री रंजन बैनर्जी ने नई सुपर कंप्यूटर परम प्रज्ञा के बारे में भी जानकारी दी।
6: इस कॉन्वोकेशन में 3000 से अधिक ग्रेजुएट्स डिग्रीज ले लेंगे। कॉन्वोकेशन में हमारी एक नई सुपर कंप्यूटर परम प्रज्ञा AI बेस्ड सुपर कंप्यूटर 250 पेटाफ्लॉप्स, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर्स इन एन एकेडमिक एनवायरनमेंट लॉन्च्ड बाय आवर प्राइम मिनिस्टर।
4: भारतीय भुगतान परिषद ने कहा है कि UPI के माध्यम से किया जाने वाला डिजिटल भुगतान उपभोक्ताओं के लिए निःशुल्क बना रहेगा। व्यापारियों से डिजिटल भुगतान स्वीकार करने के लिए कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा। परिषद ने स्पष्ट किया है कि व्यापारियों और भुगतान सेवा प्रदाताओं के बीच होने वाले व्यावसायिक शुल्क का भुगतान उपभोक्ताओं को नहीं करना होगा। एक रिपोर्ट। यूपीआई के जरिए लेन देन पर चार्ज लगने की खबरों ने आम उपभोक्ताओं और छोटे दुकानदारों के बीच चिंता पैदा कर दी थी। इस भ्रम को पूरी तरह दूर करते हुए पेमेंट्स काउंसिल ऑफ इंडिया पीसीआई ने साफ किया है कि ग्राहकों के लिए यूपीआई सेवाएं पूरी तरह मुफ्त बनी रहेंगी। डिजिटल इंडिया की रफ्तार को बनाए रखने और वित्तीय समावेशन को सुरक्षित रखने के लिहाज से ये स्पष्टीकरण एक बड़ा राहत देने वाला कदम है। पीसीआई ने कहा है कि यूपीआई देश की महत्वपूर्ण डिजिटल व्यवस्था बन चुका है, जिसका इस्तेमाल करोड़ों लोग रोजाना करते हैं। बढ़ते लेन देन को देखते हुए सुरक्षा, तकनीक और ढांचे को मजबूत बनाए रखना जरूरी है, ताकि भविष्य में भी यूपीआई उपभोक्ताओं और कारोबारियों के लिए सुचारू रूप से काम करता रहे। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
7: भारत ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक FCRA पर एक अमरीकी सांसद की आपत्तियों को खारिज कर दिया है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि यह देश का आंतरिक विधायी मामला है और इस पर निर्णय संसद करती है। उन्होंने कहा कि अमेरिका सहित कई देशों में भी विदेशी धन के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए कानून लागू हैं।
8: We have seen the comments.
9: हमने टिप्पणियां देखी हैं। ये देश का आंतरिक विधायी मामला है और इस पर निर्णय संसद करती है। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि अमेरिका सहित कई देशों में विदेशी धन के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए कानून लागू हैं।
8: Regulate the flow of foreign funds.
7: भारतीय जहाजों और नाविकों की सुरक्षा के संबंध में श्री जायसवाल ने कहा कि भारत इस मुद्दे को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। उन्होंने बताया कि खाड़ी क्षेत्र में स्थित भारतीय मिशन संबंधित देशों के नौवहन मंत्रालयों और समुद्री प्राधिकरणों के साथ लगातार संपर्क में है। उन्होंने कहा कि सहायता की आवश्यकता वाले लोगों के लिए 24 घंटे हेल्पलाइन संचालित की जा रही है।
8: While we are coordinated,
9: पश्चिम एशिया और खाड़ी क्षेत्र में हम स्थानीय नौवहन मंत्रालय और अधिकारियों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। हम अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों पर सुरक्षित और बिना किसी रुकावट के आवाजाही और व्यापार के निर्बाध संचालन की मांग दोहराते रहे हैं। हम सभी पक्षों से अपील करते हैं कि वे लोगों के बुनियादी ढांचे और नागरिकों, खासकर वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों को निशाना बनाने से बचें।
7: पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब के बीच हुए रक्षा समझौते पर श्री जायसवाल ने कहा कि भारत इस घटनाक्रम पर भी नजर बनाए हुए है। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर जारी छात्र आंदोलन के बीच सरकार और छात्र प्रतिनिधिमंडल के बीच कल पहली औपचारिक वार्ता हुई। करीब डेढ़ घंटे तक चली बैठक में छात्रों ने भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता, कथित अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच और भर्ती प्रक्रिया में व्यापक सुधार की मांग दोहराई। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
10: सरकार की ओर से चार मंत्रियों और विकास आयुक्त ने वार्ता में भाग लिया। मंत्रियों ने छात्रों की मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई का भरोसा दिलाते हुए कहा कि वार्ता में उठाए गए सभी मुद्दों से मुख्यमंत्री को अवगत कराया जाएगा। छात्र प्रतिनिधियों ने वार्ता को सकारात्मक बताया, लेकिन स्पष्ट किया कि लिखित निर्णय और मांगों पर ठोस कार्रवाई होने तक धरना और भूख हड़ताल जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि यदि 10 अगस्त तक संतोषजनक निर्णय नहीं लिया गया तो पूर्व निर्धारित विधानसभा घेराव कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सरकार छात्रों की समस्याओं के प्रति संवेदनशील है और संवाद के माध्यम से समाधान निकालना चाहती है। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
7: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज़ हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिकी सेनेट ने रूस से तेल खरीदने वाले चीन और अन्य देशों को दंडित करने संबंधी विधेयक को पारित कर दिया है। दावा किया जा रहा है कि चीन और अन्य देश रूस से पेट्रोलियम उत्पाद खरीद रहे हैं, जिससे रूस को यूक्रेन युद्ध में मदद मिल रही है। लिंडसे ग्राहम के नाम पर रखे गए इस विधेयक को समर्थन में 86 और विरोध में 11 वोट पड़े। ये विधेयक राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को रूस से तेल और गैस खरीदने वाले 5 बड़े देशों पर 100% शुल्क लगाने की अनुमति देगा। विधेयक में ईरान पर प्रतिबंध संबंधी 1996 के अधिनियम को बढ़ाकर 2031 तक करने का भी प्रावधान किया गया है। 1996 के इस अधिनियम में ईरान के ऊर्जा क्षेत्र में निवेश करने वाली कंपनियों पर जुर्माना लगाने का प्रावधान है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों की मौत के मामलों की निष्पक्ष जांच की मांग का समर्थन किया है। संयुक्त राष्ट्र के उप प्रवक्ता फरहान हक ने कहा कि अगर शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को नुकसान पहुंचा है तो इसके लिए जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही तय की जानी चाहिए। एक रिपोर्ट।
11: संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार प्रमुख वोल्कर टुर्क ने अशांति के दौरान हुई सभी मौतों की जल्द, निष्पक्ष और गहन जांच की मांग की थी। इनमें प्रदर्शनकारी और सुरक्षा बल दोनों शामिल हैं। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में चुनाव में कथित गड़बड़ियां और स्थानीय विधानसभा चुनाव में बाहरी लोगों के लिए सीटें आरक्षित किए जाने के विरोध में प्रदर्शन जारी है। खबरों के मुताबिक ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के नेतृत्व में हुए हाल के प्रदर्शन में करीब 50 लोगों की मौत हुई है। समाचार कक्ष से अमीशा।
4: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। मौसम विभाग ने आज पूर्वी राजस्थान और ओडिशा में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। ओडिशा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि बंगाल की खाड़ी में आज हवा के निम्न दबाव का क्षेत्र बनने के कारण ओडिशा में तेज बारिश की आशंका है। इसके चलते राज्य में व्यापक वर्षा होगी।
12: मौसम विज्ञान विभाग ने 6 जिलों के लिए ऑरेंज चेतावनी और 24 जिलों के लिए येलो चेतावनी जारी की है, जिसमें कई जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान है। ऑरेंज चेतावनी वाले जिले सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, बरगढ़, संबलपुर, केंदुझर और मयूरभंज है। भारी बारिश के अनुमान के देखते हुए एहतियात के तौर पर मयूरभंज में आज सभी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। इस बीच बालेश्वर के बस्ता में जड़का नदी का जलस्तर बढ़ने से जिले में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। अधिकारी स्थिति पर कड़ी नजर रखे हैं। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
4: केरलम से हमारे संवाददाता ने बताया है कि सभी जिलों में आज भी बारिश की चेतावनी दी गई है। राज्य के 7 जिलों में ऑरेंज अलर्ट है।
13: केरलम में पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश का सिलसिला जारी है। राज्य के सभी जिलों में बीते सप्ताह से ही बारिश संबंधी अलर्ट जारी किए गए हैं। कासरगोड, कुन्नूर, वायनाड, कोझिकोड, कोट्टायम, अलापुजा और पथनामथिट्टा जिले आज ऑरेंज अलर्ट पर, जबकि बाकी जिले येलो अलर्ट पर हैं। केरलम और लक्षद्वीप में आज तेज हवाएं चलने का भी अनुमान है। तिरुवनंतपुरम से स्मिथ एम पल्लुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
4: आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण की स्कैन एंड रजिस्टर सेवा ने 25 करोड़ ओपीडी पंजीकरण की महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा कि इस उपलब्धि से पता चलता है कि मिशन के तहत नागरिकों पर केंद्रित डिजिटल सेवाओं का तेजी से विस्तार हो रहा है। एक रिपोर्ट।
14: अक्टूबर 2022 में शुरू होने के बाद से स्कैन एंड रजिस्टर सेवा ने मरीजों के लिए आसान QR कोड स्कैन के जरिए अस्पताल में डिजिटल रूप से पंजीकरण कराने की सुविधा देकर OPD रजिस्ट्रेशन के अनुभव का कायाकल्प कर दिया है। यह सेवा अभी देश भर के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तथा 756 जिलों में 30,800 स्वास्थ्य केंद्रों में उपलब्ध है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बिहार स्कैन एंड रजिस्टर ट्रांजेक्शन के साथ देश में सबसे आगे है। इसके बाद उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और जम्मू कश्मीर है। सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में एम्स नई दिल्ली में सबसे ज्यादा मरीजों ने इस सेवा से पंजीकरण कराए हैं। इस उपलब्धि के बारे में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर सुनील कुमार बरनवाल ने कहा कि स्कैन एंड रजिस्टर के जरिए 25 करोड़ लोगों के OPD में पंजीकरण की उपलब्धि भारत के डिजिटल स्वास्थ्य पारितंत्र में नागरिकों और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के बढ़ते भरोसे को दर्शाती है। आनंद के रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से चिराग झा।
4: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
15: धन्यवाद कनक। आज अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी हेडलाइन बनाया है। नीट पेपर लीक को लेकर CBI द्वारा दाखिल आरोप पत्र के हवाले से दैनिक जागरण ने लिखा है, NTA के ही 3 विषय विशेषज्ञों ने किया नीट का पेपर लीक। अमर उजाला ने लिखा है, CBI का दावा, पेपर बनाते समय ही सवाल याद करते, टेलीग्राम व्हाट्सएप से बिचौलियों तक पहुंचाते, NTA के 3 विशेषज्ञ मास्टरमाइंड, कई महीने पहले रची साजिश। लोकसत्य लिखता है, CBI ने दाखिल की चार्जशीट, NTA के एक्सपर्ट निकले विभीषण। हिंदुस्तान ने अपने संपादकीय में लिखा है, जिस तेजी से CBI ने इस जांच को अंजाम दिया है उसी तेजी से आगे भी कार्रवाई करने की जरूरत है। देश में जो भी पेपर लीक के मामले हाल के महीनों में सामने आए हैं उनकी भी CBI जांच करनी चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। दिल्ली NCR में कल हुई घनघोर बारिश को जनसत्ता ने आफत की बरसात कहा है। अखबार लिखता है, राजधानी में अगस्त के पहले सप्ताह में 2011 के बाद सबसे अधिक बारिश दर्ज, सड़कों पर भारी जल भराव। राजस्थान पत्रिका ने बदल रहा मानसून का पैटर्न शीर्षक से लिखा है, देश भर में अभी तक 11% कम बरसे बादल, 14 राज्यों में कम बारिश, 10 दिन में नहीं मिली राहत तो सूखे जैसे हालात। विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियमन संशोधन विधेयक पर पंजाब केसरी के शब्द हैं, संसद में अब आर पार की तैयारी, FCRA पर शाह संभालेंगे मोर्चा, कांग्रेस ने जारी की व्हिप। मोदी और सुखबीर की मुलाकात से पंजाब में चुनावी हलचल तेज, जनसत्ता के पहले पन्ने पर है। दैनिक ट्रिब्यून लिखता है, पंजाब में श्रोमणी अकाली दल भाजपा गठबंधन की अटकलें तेज। स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान इस बार लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रगान के साथ गूंजेगा वंदे मातरम, राजस्थान पत्रिका में है।
7: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आईआईटी दिल्ली के दीक्षांत समारोह में मेधावी छात्रों को संस्थान का सर्वोच्च सम्मान प्रदान करेंगे। यूपीआई लेन देन उपभोक्ताओं और छोटे व्यापारियों के लिए निःशुल्क बना रहेगा, भारतीय भुगतान परिषद ने स्पष्ट किया। भारत ने प्रस्तावित एफसीआरए विधेयक पर एक अमरीकी सांसद की आपत्तियों को खारिज किया। झारखंड सरकार ने भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों से पहली औपचारिक बातचीत की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
16: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस। Prime Minister Narendra Modi to present IIT Delhi's highest honours to meritorious students during its convocation ceremony today. UPI transactions to remain free for consumers and small merchants clarifies Apex Digital Payments Body PCI. India rejects objections raised by a US lawmaker on proposed FCRA bill, says legislation is country's internal matter. Jharkhand government holds first formal talks with protesting students over alleged irregularities in recruitment examinations. US Senate passes Russia sanctions bill seeking 100% tariff over five countries. And heavy to very heavy rainfall likely over East Rajasthan and Odisha today. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi will address the 57th convocation ceremony of the Indian Institute of Technology, IIT Delhi, today. He will address over 3,000 graduating students, including 587 PhD scholars, who will be conferred their degrees during the ceremony. We have more from our correspondent.
17: Prime Minister Narendra Modi will present the institute's most prestigious honours, including the President's Gold Medal, Director's Gold Medal, Shankar Dayal Sharma Gold Medal and Perfect 10 Gold Medal to the meritorious students during the ceremony. Further, Mr. Modi will also inaugurate Param Pragya, an AI-powered high-performance supercomputing facility established at the Sonipat campus of IIT Delhi. The state-of-the-art facility is expected to significantly enhance the institute's capability.

वेलकम बैक दोस्तों, FM 102.5 MHz पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम उज्जैनी आरजे हिमानी के साथ। सच सच बताइएगा, शनिवार की सुबह आप में से कितने लोग चादर तान कर सो रहे हैं और कितने लोग तैयार होकर दुकान या काम पर जाने की तैयारी कर रहे हैं। दरअसल शनिवार का गणित भी बड़ा दिलचस्प होता है। कुछ लोगों के लिए आज वीकेंड की छुट्टी होती है, तो वहीं हमारे स्कूल कॉलेजेस के स्टूडेंट्स, शॉपकीपर्स और बिजनेसमैन के लिए आज भी एक नॉर्मल वर्किंग डे होता है। लेकिन सच कहूँ, माहौल में जो वीकेंड वाली हवा चलती है उसकी खुशी ही अलग होती है, चाहे काम पर जाना हो या घर पर आराम करना हो। तो चलिए इसी वीकेंड वाइब्स के साथ सुनते हैं ये ताजगी से भरा गाना।

0: बदलो बदलो आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी उज्जैन 102.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। दोस्तों, जो लोग आज दुकान खोल रहे हैं या ऑफिस कॉलेज जा रहे हैं, उनके लिए भी शनिवार खास होता है, क्योंकि मन में एक तसल्ली होती है कि चलो कल तो संडे है। और जिनकी छुट्टी है वो तो आराम से बालकनी में बैठकर चाय की चुस्कियाँ ले ही रहे होंगे। तो चाहे आप दुकान के गल्ले पर हों, ऑफिस की डेस्क पर हों या घर के सोफे पर, शनिवार की ये सुबह हम सब के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान तो ले ही आती है। आइए इसी मिठास को घोलते हैं इस बेहद सुरीले गीत के साथ।

FM 102.5 MHz पर हिमानी आपके साथ है। दोस्तों, चाहे छुट्टी हो या वर्किंग डे, शनिवार की शाम तो हर उज्जैन वाले के लिए फूडी मोड ऑन कर देती है। सुबह सुबह पोहा, जलेबी का नाश्ता और शाम होते ही दोस्तों के साथ टावर या चौपाटी पर जाकर खाने का आनंद लेना। पूरे हफ्ते जो डाइट प्लान हम सोचते हैं, शनिवार आते आते वो डाइट सीधे जायके में बदल जाती है। तो आज आप वीकेंड पर क्या खास खाने वाले हैं, सोचिए और तब तक लुत्फ़ उठाइए इस प्यारे से क्लासिक नगमे का।

0: प्रदूषित पानी पीने से हम हो सकते हैं बीमार,
1: फैल सकती है महामारी, खतरे में पड़ सकती है जिंदगी,
0: छीन सकती है खुशियाँ हमारी, इसलिए पानी के स्रोत को रखें हम साफ,
1: फैलाएं नहीं गंदगी उसके आसपास,
0: पानी को रखें हम हमेशा ढककर,
1: और उसको पिएं छानकर उबालकर,
0: पीने के पानी में हम हाथ नहीं डालें,
1: लंबी डंडी वाले बर्तन से पानी निकालें,
2: पानी रे पानी,
3: पानी पानी रे पानी,
0: आओ मिलकर करें प्रयास,
1: शुद्ध पानी हो सबके पास।
4: दोस्तों, वीकेंड का एक मज़ा ये भी है कि जब शनिवार आता है तो बचपन के दिन याद आने लगते हैं। वो स्कूल का हाफ डे, छुट्टी की घंटी बजते ही बैग टांग कर घर की तरफ भागना और रास्ते में दोस्तों के साथ गोलगप्पे खाना। आज भले ही हम बड़े हो गए हैं, ऑफिस बिजनेस और जिम्मेदारियां संभाल रहे हैं, लेकिन शनिवार का दिन दिल के किसी कोने में वही बचपन वाली बेफिक्री वापस ले आता है। तो चलिए सुनते हैं एक और सदाबहार नगमा।

FM 102.5 MHz पर बातों का सिलसिला जारी है। दोस्तों, पूरे हफ्ते जब भी किसी दोस्त का फोन आता है तो हम यही कहते हैं कि अभी थोड़ा बिजी हूँ, वीकेंड पर बात करता हूँ। और आज वही शनिवार आ गया है। काम से थोड़ा सा ब्रेक लीजिए और उन दोस्तों को एक कॉल जरूर मिलाइए जिनसे बात किए जमाना हो गया है। काम के बीच में भी 5 मिनट निकाल कर अपने किसी पुराने दोस्त से बात कर लीजिए, हफ्ते भर की सारी थकान मिट जाएगी। चलिए दोस्ती के नाम करते हैं ये खूबसूरत सा गाना।

0: आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट प्रोग्राम उज्जैनी आरजे। वैसे दोस्तों, हफ्ते भर लगातार काम, फोन कॉल्स और मैसेजेस से घिरे रहने के बाद आज के दिन थोड़ा सा मी टाइम निकालना तो बनता है। शाम को काम समेटने के बाद थोड़ी देर फोन को किनारे रखकर अपनी पसंद का कोई काम कीजिए, अच्छा म्यूजिक सुनिए, अपनों के साथ बैठिए। ये छोटा सा ब्रेक आपको अंदर से एकदम रिचार्ज कर देगा। चलिए इसी मस्ती और बेफिक्री के मूड में सुनते हैं अगला सुरीला गीत।
1: अरे अरे ए, ए, ए, ए, ए।

FM 102.5 MHz पर सुरों का कारवां लगातार आगे बढ़ रहा है। दोस्तों, शनिवार की ये सुहानी धूप, बाबा महाकाल की नगरी की पावन हवा और FM पर बजती ये धुनें दिन को कितना हसीन बना देती हैं। अगर शनिवार को काम करते करते आपको थोड़ी भी सुस्ती आ रही है तो हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसा जबरदस्त गाना जो आपकी थकान और आलस को एक सेकेंड में गायब कर देगा। सुनिए ये बेहद खूबसूरत गाना।

FM 102.5 MHz पर आप जुड़े हुए हैं प्रोग्राम उज्जैनी आरजे में। दोस्तों, जिंदगी में खुश रहने के लिए किसी बहुत बड़ी वजह की जरूरत नहीं होती। शनिवार की शाम परिवार के साथ बताया थोड़ा सा वक्त, दोस्तों के साथ मुस्कुराकर की गई तो बातें, या अपनों के साथ ठहाके, यही सब तो जिंदगी की असली कमाई है। अपनी सादगी और मुस्कान को हमेशा बनाए रखिए। आइए सुनते हैं ये बहुत ही प्यारा सा गीत।

FM 102.5 MHz पर गपशप और नगमों का ये संगम जारी है। दोस्तों, जब दिन भर के काम के बाद दिल थोड़ा आराम चाहता है तो संगीत सीधे आत्मा को सुकून पहुंचाता है। जब हम अपनी पसंद का कोई सुरीला गाना सुनते हैं तो मन की सारी उलझने अपने आप दूर हो जाती हैं। आज के इस हसीन शनिवार की सुबह को और भी रूमानी बनाने के लिए आइए सुनते हैं ये बेहद खूबसूरत नगमा।

0: की।
1: अब इतना पानी कहाँ कि पानी के साथ खेला जाए।
2: पानी के छींटे व्यर्थ में न उड़ाएं।
1: पानी का उपयोग सजगता के साथ करें।
2: ब्रश करते समय, दाढ़ी बनाते समय नल खुला न रखें।
1: सीधे नल के नीचे बर्तन न धोएं।
2: कपड़े धोते समय जमा पानी का ही उपयोग करें।
1: शावर के बजाय बाल्टी के पानी से नहाएं।
2: सब्जी फल धुले और पोछा लगे पानी को गमले में डालें।
1: जितनी प्यास हो ग्लास में उतना पानी ही लें।
2: अपने वाहन को पाइप से न धोएं।
1: शौचालय में फ्लश के बजाय बाल्टी के पानी का प्रयोग करें।
2: घर के टपकते नल को तुरंत ठीक करवाएं।
1: सार्वजनिक नल को बहता देख आगे न बढ़ जाएं।
2: उसे बंद कर अपना दायित्व निभाएं।
3: कभी कभी बातें तेरी अच्छी लगे।
2: कभी कभी नहीं, रोज ही रखें इन बातों का ध्यान।
1: समय है पानी बचाने का,
2: पानी का मोल समझने और समझाने का।
1: पानी बचाएं, भविष्य सजाएं।
4: FM 102.5 MHz पर आप साथ हैं हिमानी के। दोस्तों, आज के इस एक घंटे में हमने शनिवार के हर रंग को महसूस किया, चाहे वो छुट्टी का सुकून हो या काम की भाग दौड़ के बीच वीकेंड का इंतज़ार। शनिवार असल में एक रीसेट बटन की तरह होता है जो हमें याद दिलाता है कि काम के साथ साथ ज़िंदगी को एंजॉय करना भी कितना ज़रूरी है। तो आज के दिन को पूरे दिल से जिएं। आइए इसी पॉजिटिव वाइब्स के साथ सुनते हैं ये खूबसूरत गाना।

दोस्तों, वक्त का पहिया लगातार चलता रहता है और बातों ही बातों में हमारा आज का ये सुहाना सफर अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच गया है। वीकेंड की इस शुरुआत में बस यही कहूंगी, काम भी दिल लगाकर करिए और खुद के लिए भी थोड़ा वक्त जरूर निकालिए। चेहरे पर मुस्कान बनाए रखिए। आइए सुनते हैं हमारी आज की प्लेलिस्ट का ये आखिरी और बेहद सुकून देने वाला गाना।

दोस्तों, वीकेंड की बातें, ढेर सारी गपशप और सुरीले गानों के साथ ये एक घंटा कब पलक झपकते ही बीत गया पता ही नहीं चला। उम्मीद है कि आज का उज्जैनी आरजे प्रोग्राम आपके इस शनिवार को एकदम फ्रेश, पॉजिटिव और खुशनुमा बना पाया होगा। खुद भी मुस्कुराते रहिए, अपनों का ख्याल रखिए और अपनी बातों में मिठास बनाए रखिए। अब आपके दोस्त आरजे हिमानी को दीजिए इजाजत, फिर हाजिर होंगे आकाशवाणी उज्जैन 102.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। तब तक सुनते रहिए अपना पसंदीदा स्टेशन। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।

नमस्कार उज्जैन, FM 102.5 MHz पर मैं हूं आपकी दोस्त आरजे हिमानी और आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट प्रोग्राम बॉलीवुड बीट्स। आज 8 अगस्त है, शनिवार की एक खूबसूरत और सुहानी सुबह आप सभी के लिए ढेर सारी खुशियां लेकर आए। वीकेंड की शुरुआत हो चुकी है, उम्मीद है आपकी सैटरडे मॉर्निंग गर्मा गर्म चाय और एक प्यारी सी स्माइल के साथ शुरू हुई होगी। अगले आधे घंटे तक हम बॉलीवुड के ऐसे गानों का मजा लेंगे जो आपकी शनिवार की सुबह में एक ताज़ी और सुरीली एनर्जी भर देगी। तो बस अपने रेडियो का वॉल्यूम बढ़ाइए और इंजॉय कीजिए। शुरुआत करते हैं फिल्म तनु वेड्स मनु के इस बेहद मीठे और रोमांटिक गाने के साथ।

क्या बात है, मोहित चौहान की आवाज़ में ये गाना सुनकर दिल एकदम खुश हो गया। चलिए शनिवार की सुहानी सुबह को थोड़ा और खास बनाते हैं। जब बात अपनों से मिलने की खुशी की हो तो दिल में एक अलग ही हलचल शुरू हो जाती है। फिल्म प्रेम रतन धन पायो से सुनिए ये बेहद प्यारा और मुस्कुराने पर मजबूर कर देने वाला गाना।

दोस्तों, जब शनिवार का दिन हो तो थोड़ा सा मजाक, थोड़ी सी मस्ती और ढेर सारा प्यार तो बनता है। फिल्म मैंने प्यार क्यों किया का यह ट्रैक जब भी बजता है तो मन झूमने लगता है। आइए सुनते हैं ये तरोताजा कर देने वाला गाना।

0: सड़क पर पैदल चलते समय रखें हम कुछ बातों का ध्यान।
1: हमेशा सड़क के किनारे बनी पटरियों पर ही चलें।
0: सड़क पार करने के पूर्व दाएं और बाएं अवश्य देख लें।
1: तेज गति से आ रहे वाहन के सामने से निकलने की भूल ना करें।
0: सड़क पार करते समय मोबाइल पर बात ना करें।
1: चौराहे पर हमेशा ज़ेब्रा क्रॉस से ही सड़क पार करें।
0: हम रहेंगे अगर सावधान, राह हो जाएगी आसान।
2: ए भाई, जरा देख के

FM 102.5 MHz पर गानों का कारवां यूं ही लगातार आगे बढ़ रहा है। अब बारी है हमारी प्लेलिस्ट में थोड़ा सा नटखटपन और शरारती अंदाज जोड़ने की। फिल्म लकी नो टाइम फॉर लव का ये ट्रैक आपको पुराने दिनों की मासूमियत में ले जाएगा। इंजॉय कीजिए।

दोस्तों अब बारी है राजस्थान के लोक नृत्य और संस्कृति की झलक प्रस्तुत करता फिल्म पद्मावत का ये आइकॉनिक और भव्य गाना आपकी शनिवार की सुबह को यादगार बना देगा। श्रेया घोषाल की आवाज़ में सुनिए ये क्लासिक और धमाकेदार गीत।

दोस्तों शो अब अपने अंतिम पड़ाव पर आ गया है, लेकिन हमारा शनिवार का ये सफर एक धमाकेदार और एनर्जेटिक नोट पर संपन्न होना चाहिए, तो सुनिए ये सुपर हिट ट्रैक।

क्या जबरदस्त और धमाकेदार समापन था। आकाशवाणी उज्जैन 102.5 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आधा घंटा आपके साथ कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। उम्मीद है इन गानों ने आपके दिन को एक शानदार शुरुआत दी होगी। अब अपनी दोस्त आरजे हिमानी को दीजिए इजाजत, अपने वीकेंड को पूरी तरह एंजॉय कीजिए। हमेशा मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी उज्जैन। नमस्कार।

नमस्कार उज्जैन, FM 102.5 MHz पर मैं हूँ आपकी आरजे हिमानी और वक्त हो गया है आपके सबसे पसंदीदा और सदाबहार कार्यक्रम का, यानी आपकी फरमाइश। दोस्तों, आज 8 अगस्त है, शनिवार की इस खूबसूरत सुबह आपके खतों, संदेशों और फरमाइशों का पिटारा लेकर मैं हाजिर हो चुकी हूँ। आज की हमारी पहली फरमाइश हमें भेजी है भंडार सिवनी कोंडा गाँव छत्तीसगढ़ से सुभाष चक्रधारी, श्रीमती कविता चक्रधारी, मुस्कान चक्रधारी और अनुष्का चक्रधारी ने। और इनकी पसंद पर सुनते हैं किशोर कुमार साहब की आवाज़ में फिल्म मेरे जीवन साथी का ये बेहद एनर्जेटिक गाना।

सफर को आगे बढ़ाते हैं। अगली फरमाइश हमारे पास आई है शालार पहलगाम काश्मीर से पीरजादा मेहरजुद्दीन केशरदीन और नजमदीन की। साथ ही इस गाने को सुनना चाहते हैं भिलाई नगर छत्तीसगढ़ से अशोक श्याम कुंवर, दीपक श्याम कुंवर, श्रीमती प्रमिला और ज्योति श्याम कुंवर। आइए सुनते हैं इनकी पसंद का ये गाना।

FM 102.5 MHz पर फरमाइशों का सफर जारी है। अगली रिक्वेस्ट हमें भेजी है बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता देवांगन, डिंपल देवांगन की। साथ ही इस गाने को सुनना चाहते हैं डोंगरगांव जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से राजपाल गजभिये, तन्मय, बेबी अनिष्का और राधिका गजभिये। आइए सुनते हैं इनकी पसंद का ये गाना।

श्रोताओं, अब रुख करते हैं अगली फरमाइश की ओर, जो आई है ऊपर कोट बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शहनवाज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुहान अरजान और अदान अब्बासी की। साथ ही इस गाने को सुनना चाहते हैं गौतम नगर जिला नांदेड़ से प्रभाकर और आरती झोंडले। इन्होंने फरमाइश की है फिल्म मैंने प्यार किया के ऑल टाइम फेवरेट और मासूमियत से भरे गाने की। सुनिए और गुनगुनाइए।

श्रोताओं, अगली फरमाइश हमें मिली है ताज मंजिल लक्कड़ बाजार खंडवा से मोहम्मद रफीक पवार, मोहम्मद साकिब पवार, मोहम्मद हसनैन पवार। साथ ही इस गाने को सुनना चाहते हैं बाजार चौक ग्राम दीवार से शंकरलाल गंगराड़े, वनीता गंगराड़े, छोटू, पूजा, रोशनी, अजय और वामिका गंगराड़े। आइए सुनते हैं इनकी पसंद का ये गाना।

श्रोताओं, अगली फरमाइश हमें आई है ग्राम छेंगा व देवी जिला खंडवा से अशोक कुमार वागे, वंदना वागे, भूपेंद्र वागे, तनुश्री, आरोही और कान्हा वागे की। साथ ही इस गाने को सुनना चाहते हैं गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर बिरक, जयतेग बिरक और मीका बिरक। आइए सुनते हैं इनके पसंद का ये खूबसूरत गाना।

सुरु का यह एहसास वाकई बहुत प्यारा है। अगली फरमाइश आई है पटेल नगर मलोट पंजाब से डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया, बेबी आरजू जाजोरिया की। साथ ही इस गाने को सुनना चाहते हैं घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया। इनका कहना है कि फिल्म लक्ष्य का ये मेलोडी ट्रैक और जावेद अख्तर साहब के बोल दिल को छू जाते हैं। हरिहरन और साधना सरगम की आवाज़ में सुनिए इनकी फरमाइश।

वाकई संगीत पुरानी और मीठी यादों को ताज़ा कर देता है। अगली फरमाइश हमें भेजी है मलोट कैंप पंजाब से सतीश मिगलानी, सीमा अनमोल, गुरुचरण ग्रोवर, रमेश मिगलानी, धर्मपाल, वीर सिंह लाठी, लखविंदर संधू, महावीर संधू की। साथ ही इस गाने को सुनना चाहते हैं वसंत विहार कॉलोनी उज्जैन से सत्यनारायण तिवारी और श्रीमती राधा तिवारी। आइए सुनते हैं इनकी पसंद का ये नगमा।

FM 102.5 MHz पर सुरों की महफिल सजी है। अगली फरमाइश आई है शीतल रेडियो संघ ग्राम बहरामपुर टेमा जिला खरगोन मध्य प्रदेश से। तिलोक चंद्र वर्मा, श्रीमती भागवत वर्मा, अभिषेक, सीमा वर्मा, डॉक्टर अमित वर्मा, सचिन, समर, राज, आर्यन वर्मा, बेबी आरोही और इशिका वर्मा और अंजलि और श्वेता वर्मा की। आइए सुनते हैं इनकी पसंद का ये गाना।

सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। अगली फरमाइश आई है कनेरा मोहल्ला पटियाला से बत्ता परिवार। मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन, पलक, करण, गीतू, बिहारिका, हार्दिक और वंश बत्ता की। साथ ही इस गाने को सुनना चाहते हैं पुणे से पंकज वाड़ोदे, आर्या, प्रियंका, बीटी वाड़ोदे और चंद्रप्रभा वाड़ोदे। इनका कहना है कि जब बात पुरानी एवरग्रीन धुनों की हो तो लता मंगेशकर जी का ये क्लासिक गाना आज भी हर दिल अजीज है। सुनिए आपकी ये खास फरमाइश।

श्रोताओं, अब बढ़ते हैं आज की अगली फरमाइश की तरफ, जो आई है सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, रितिका मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, नवनीत राय, डॉक्टर अमनदीप, अनिल शर्मा। साथ ही इस गाने को सुनना चाहते हैं कालका से शुभचंद्र बजाज, बिट्टा बजाज और साहिल बजाज। आइए सुनते हैं इनकी पसंद का ये गाना।

श्रोताओं, वक्त का पता ही नहीं चला और अब आज की आखिरी फरमाइश का वक्त हो गया है, जो आई है कोटमा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से। ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, दुबीहा नेवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, रोशनी राय, प्रांजल राय की। साथ ही इस गाने को सुनना चाहते हैं शेरपुर कलां गाजीपुर से अवधेश राय, प्रीति राय और नवनीत राय। आइए सुनते हैं इनकी पसंद का ये गाना।

श्रोताओं, तो ये था आज का आपकी पसंद और आपकी यादों से सजा आपकी फरमाइश। उम्मीद है सुरीले गानों ने आपके शनिवार की सुबह को बेहद खास बना दिया होगा। जिन श्रोताओं की फरमाइशें आज समय की कमी की वजह से रह गई हैं उनसे माफ़ी चाहूंगी, अगली बार उन्हें ज़रूर शामिल किया जाएगा। अब विदा लेने का समय है। मैं थी आपकी उद्घोषिका हेमानी, आकाशवाणी उज्जैन 102.5 MHz पर। अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। नमस्कार।

0: दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान। मैटिनी शो कार्यक्रम में पिछले हफ्ते हमारे साथ थे जाने माने क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी। क्या शानदार दास्तान उनकी जिंदगी की और कितने अनमोल किस्से। सुशील जी से बातचीत को इस हफ्ते आगे बढ़ाते हैं। यह है दूसरा भाग। बातचीत कर रहा हूं मैं आपका दोस्त यूनुस खान। जब आप कमेंट्री करते रहे और बहुत तनाव भरे मैचेस थे, तो आपने कुछ जुमले गढ़े थे जो लेजेंडरी बन गए हैं, जो मिथक बन चुके हैं, ये किस तरह से आए थे उसकी बात करें।
1: देखिए, एक तो मुझे 1979 का एक सिलसिला याद है कि भारत को जीत के लिए 438 रन आखिरी दिन बनाने थे और भारत 360 रन तक पहुंच गया था एक विकेट पर, और वक्त काफी था, रन बन सकते थे। सुनील गावस्कर ने 221 रन बनाए थे, बड़ी जबरदस्त पारी खेली थी
0: जी।
1: और उस समय मैं कमेंट्री कर रहा था, ओवल टेस्ट मैच की बात है, सभी को याद होगा। और उस समय हमने देखा कि कुछ बूढ़े किस्म के लोग वापस जा रहे थे मैदान से, तो मैंने फिर अंग्रेजी कमेंटेटर को कहा कि मैं आता हूँ दो मिनट जरा पूछ के कि ये लोग छोड़ क्यों रहे हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि हाउ कैन यू लीव द मैच एट दिस स्टेज, इट इज एट सच एन एक्साइटिंग स्टेज। तो उन्होंने कहा भाई हमें दिल की बीमारी है और हमारे डॉक्टर्स ने कहा है कि जब भी इस तरह का कोई रोमांच आए तो मैच छोड़ दीजिए, यह आपके दिल के लिए भारी पड़ सकता है।
0: अरे बाप रे।
1: तो मैंने ये सोचा कि ये जो बात यहां मौजूद है, भारत में तो बहुत ज्यादा भावुक हैं लोग, करोड़ों की संख्या में सुन रहे हैं रेडियो से कान लगाए, तो मैंने तब अपनी आवाज में कंपन लाते हुए कहा था कि ये मैच अब कमजोर दिल के इंसानों के लिए नहीं रह गया है।
0: वाह।
1: क्योंकि जिन्हें दिल की बीमारी है शायद उनके डॉक्टर्स ये सलाह दे रहे होंगे कि ये आंखों देखा हाल सुनना बंद कर दें, क्योंकि इस मैच का रोमांच उनके दिल के लिए भारी पड़ सकता है।
0: तो क्या सुंदर बात।
1: तो उस समय जब ये कहा तो ये मुझे पता नहीं था कि ये कैसा रहा होगा, मैंने तो कह दिया। जब वापस आया उसी समय मेरी 3 घंटे बाद ही फ्लाइट थी बंबई की। बंबई आया तो लोगों ने गले लगा लिया मुझे, ये बोले क्या कमेंट्री की आपने, तो धड़कनें बढ़ा दी और लोगों ने इतनी प्रशंसा की। और आज भी लोग याद रखते हैं, देखो 1979 की बात है, तेज रफ्तार जमाना है
0: जी,
1: लोग कल की बात भूल जाते हैं। आज 46 साल पुरानी 47 साल पुरानी बातें हैं, और आजकल तो आज हर मैच में कमेंटेटर लोग जिन्हें दिल की बीमारी है बोलने लगे हैं
0: जी जी,
1: क्योंकि वो ना तो वो कंपन पैदा कर सकते हैं ना ही वैसा वातावरण पैदा कर सकते हैं, एक यंत्रवत एक कह देते हैं
0: जी।
1: लेकिन कोई बात नहीं, कोशिश तो कर रहे हैं, मुझे उसका बुरा नहीं लगता, क्योंकि अगर आपने कोई लकीर छोड़ी है, लोग उसके पीछे जा रहे हैं, अच्छी बात है, उस लकीर के ही लिए वो प्रशंसा कर रहे हैं
0: जी। सुशील जी, यहां पर मुझे लगता है कि ये गाना सुन लेते हैं।

0: अपने समय के साथी कमेंटेटर्स को याद कीजिए और उनसे जुड़े कुछ किस्से सुनाइए सर।
1: हाँ नहीं, देखिए पहली बार जब क्रिकेट कमेंट्री कर रहे थे ना, तो कई ऐसे कमेंटेटर होते थे जिनको तकनीकी ज्ञान नहीं था।
0: हाँ।
1: अब आकाशवाणी पे ये समझ में नहीं आ रहा था शुरू में कि आवाज देखें, भाषा देखें, क्रिकेट का ज्ञान देखें। तो शुरू में कई लोग जिनको केवल भाषा और आवाज थी लेकिन क्रिकेट का ज्ञान नहीं था, तो ऐसे लोगों को भी चुना। तो एक मैच का मुझे याद है, वो 1969 मैं कमेंट्री कर रहा था, मैं भी नया नया था और मेरे साथ वाले जो सज्जन थे वो भी नए थे, तो वो एक नक्शा लेकर आए थे।
0: हाँ हाँ।
1: कि वो देख रहे थे कि तीन स्लिप, एक गली, एक्स्ट्रा कवर ऐसा। तो अब उनको ये पता नहीं था कि अगला ओवर जो होगा वो दूसरी तरफ से होगा।
0: बिल्कुल।
1: तो वो नक्शा तो उन्होंने बदला नहीं। तो लाला अमरनाथ हमारे एक्सपर्ट थे।
0: जी जी।
1: तो जब ओवर कंप्लीट हो गया और दूसरी तरफ से बॉलिंग होने लगी, तो उन्होंने कहा, लाला जी ये क्या हो रहा है, ये तो थर्ड मैन से बॉलिंग क्यों कर रहा है। तो लाला अमरनाथ ने कहा, कुछ नहीं बेटा, ये इसको नक्शा वापस सीधा कर दिया उन्होंने, उल्टा कर दिया, अब बोलिए। तो ये कई इस तरह की घटनाएं भी होती थी।
0: जी जी।
1: लेकिन कोई बात नहीं, वो सीख के दिन थे, शुरुआती दिन थे। तो कई कमेंटेटर सीख रहे थे और आकाशवाणी ने भी समझा कि क्रिकेट का ज्ञान होना चाहिए, आवाज तो होनी ही चाहिए, भाषा होनी चाहिए, क्रिकेट का ज्ञान भी होना चाहिए। किसी भी एक चीज में कमी हो तो बात अधूरी रह जाती है।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल। उस जमाने में जब आपने क्रिकेट कमेंट्री शुरू की, तो मैंने एक चीज हमेशा जानी है कि पैसे कम मिलते थे और अपनी जेब के खर्च डाल के आप यात्राओं पर जाते रहे, लेकिन वो जुनून कायम रखा।
1: बिल्कुल। पहली कमेंट्री मैंने 15 रुपए दिन में की थी रणजी ट्रॉफी की।
0: ओहो।
1: और जब 1979 में मैं इंग्लैंड गया तो 100 रुपए प्रतिदिन।
0: हाँ।
1: और पाकिस्तान गया तो शायद 100 रुपए प्रतिदिन। पाकिस्तान 1978 और 82 दोनों बार पाकिस्तान गया मैं, और वो यात्रा भी अभूतपूर्व रही। मतलब पाकिस्तान का तो एक मैं कई बार किस्सा बताता भी हूँ।
0: जी जी।
1: 1982 की बात है, और हमारे जो मैनेजर थे फतेह सिंह राव गायकवाड़ थे, जो उनका काफ़ी वहाँ पर रुतबा था, सब लोग जानते थे उनको वहाँ पाकिस्तान में। और अब हमारी टीम ने एक पार्टी दी थी पाकिस्तान में, और फतेह सिंह राव गायकवाड़ खड़े हुए बाहर सबको रिसीव कर रहे थे, मैं भी था और सुनील गावस्कर साहब भी थे। और अचानक आवाज़ उठी कि वो आ गई, वो आ गई। सबने कहा, भाई कौन आ गई, मेरी भी आंखें बड़ी बड़ी हो गई, छोटा यंग था बिल्कुल आपकी तरह। मैंने कहा, भाई कौन आ गई, कौन स्टार आ गई। तब देखा एक मिडिल एजेड वुमन वहाँ पर आई, और गायकवाड़ साहब ने परिचय कराया कि ये सुनील गावस्कर हैं, भारत के सबसे बड़े ओपनिंग बैट्समैन हैं और दुनिया इनकी मुरीद है, भारत के कप्तान हैं, आप तो इनको जानते ही होंगे। तो उन्होंने कहा, जी नहीं, मैं तो इनको नहीं जानती, मैं तो जहीर अब्बास और इमरान खान को जानती हूँ।
0: ओ, ओ, ओ,
1: तो गावस्कर साहब को पूछा कि भाई कोई बात नहीं, आप तो इन्हें जानते ही होंगे ना, ये मल्लिका तरन्नुम नूर जहाँ हैं। तो गावस्कर साहब तो कद में भले ही छोटे हैं लेकिन स्वाभिमान के मामले में बड़े हैं। उन्होंने कहा, जी नहीं, मैं तो लता मंगेशकर को जानता हूँ।
0: अरे बाप रे।
1: तो ये मैं कभी भूलता नहीं कि
0: मौके पे चौका,
1: विरोधी मौके पे चौका, आप सही कह रहे हैं। तो आप विदेशी भूमि पर जब मार्शल लॉ लगा हुआ हो और वहाँ पर स्वाभिमान की बात, तो गावस्कर साहब के चरित्र में आज भी यही बात देखने को मिलती है कि वो अच्छे को अच्छा और बुरे को बुरा कहने में हिचकते नहीं है।
0: क्या बात है। यहाँ पर मुझे लगता है कि ये गाना सुन लेते हैं।

0: अच्छा मुझे ये बताएं कि जब कमेंट्री करते हुए बहुत तनाव भरे पल आते रहे और जब यूं लगा कि मैच जो है वो एक कच्चे धागे से लटका हुआ है, किसी भी तरफ जा सकता है, ऐसे समय में आपने कहा कि, और यह हमने देखा भी है, आप और पूरी टीम तटस्थ कमेंट्री करती रही, लेकिन अंदर से दिल को क्या महसूस होता रहता था और उसको कैसे बैलेंस करते थे आप?
1: नहीं, ये बहुत मुश्किल काम है क्योंकि दिल तो चाहता है कि भारत जीते
0: जी,
1: और चूंकि आप निष्पक्ष रहते हैं कि आपकी जिम्मेदारी कहती है कि नहीं, और फिर पब्लिक जैसी आवाज आती है ना,
0: हाँ।
1: आप तो रेडियो के खुद ही आवाज है एक मशहूर, तो ये जानते हैं कि पब्लिक की आवाज के ऊपर से आपकी आवाज जानी चाहिए, आपकी आवाज खोनी नहीं चाहिए
0: जी,
1: तो पब्लिक की आवाज के हिसाब से ही आपकी आवाज उतार चढ़ाव होते हैं और पता लग जाता है अनुभव से कि पब्लिक आवाज कैसी आ रही है, सुनाई भी देता है। तो ये एक बहुत ही कहते हैं ना कि ये संतुलन, कि आप सब चीजों के पार जाकर अपने आप को संतुलित करें और एक संतुलित प्रदर्शन करें, जैसे खिलाड़ी करता है ना मुसीबत में, वैसे ही आपकी कमेंट्री का भी ये एक तेजाबी परीक्षण है,
0: क्या
1: कि आप कैसी कमेंट्री कर रहे हैं। आप बहुत चिल्ला तो नहीं रहे, क्योंकि चिल्लाना भी नहीं चाहिए, आपकी आवाज फट तो नहीं रही, कई आवाज फट जाती है क्योंकि वो एक्साइटमेंट जो रोमांच है वो इतना बढ़ जाता है कि आप सनसनीखेज आवाज पैदा करना चाहते हैं, लेकिन वो भी ठीक नहीं है। आपको संतुलित ढंग से और उसी हिसाब से जितना रोमांच है बस उतना ही परोसे, उससे ज्यादा भी नहीं उससे कम भी नहीं। एक अच्छे कमेंटेटर की पहचान ऐसे ही क्षणों में होती है।
0: बिल्कुल सही है
2: सुशील जी, यहां पर मुझे लगता है कि ये गाना सुन लेते हैं।

0: बहुत संकोच से ये कहना पड़ रहा है और पूछना पड़ रहा है कि मैं आपसे एक कमेंट्री सुनना चाहता हूँ, इमेजिनरी कमेंट्री। देखिए, हमारे सुनने वालों में बहुत अलग अलग तरह के उम्र के लोग हैं। कुछ लोग वो हैं जो मेरी उम्र के हैं, जिन्होंने पूरा रेडियो कमेंट्री का दौर देखा है और फिर टेलीविजन आते और फिर रेडियो कमेंट्री को थोड़ा कम होते देखा है। कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने रेडियो कमेंट्री का सबसे सुनहरा दौर देखा है और ट्रांजिस्टर कान पे लगा के सुनते रहे हैं, जिसमें लोग पूछते थे भाई साहब स्कोर क्या है, है ना। और कुछ ऐसे लोग हैं जो इस पूरी जनरेशन के बाद के हैं, जिन्होंने ये नहीं सुना है, उनके लिए मैं चाहता हूं कि एक झलक हम सुन पाए तो अच्छा होगा।
1: नमस्कार, मैं सुशील दोषी आपका स्वागत करता हूं। आप तो जानते ही हैं कि आज भारत और पाकिस्तान के बीच में मुंबई के ब्रिबोन स्टेडियम पर मैच खेला जा रहा है और भारत ने टॉस जीता, पहले बैटिंग करने का निर्णय लिया और भारत के दोनों ओपनिंग बैट्समैन सुनील गावस्कर और चेतन चौहान पिच पर पहुंच चुके हैं। पूरा स्टेडियम खचा खच भरा हुआ है, 50,000 दर्शकों की मौजूदगी है और मैं जहां भी जा रहा हूं ना, आज होटल की रिसेप्शनिस्ट से लगाकर जो रिक्शा चालक है वो भी एक ही बात कर रहा है कि आज भारत और पाकिस्तान का यह मैच होगा, किस प्रकार, कौन जीतेगा, एक ही चर्चा का विषय है। क्योंकि क्रिकेट का खेल, भारत और पाकिस्तान का जब भी मुकाबला होता है ना, ये मुकाबला सभी दिलचस्पी के मामले में सभी मुकाबलों का बाप कहा जाता है। तो पहली गेंद करने के लिए तैयार हो रहे हैं इमरान खान पवेलियन की तरफ से और गावस्कर को वो गेंद करेंगे। जो फील्डिंग की जमावट है वो इस प्रकार है, तीन स्लिप है, एक गली है, एक एक्स्ट्रा कवर है, एक मिड ऑफ है या ऑफ साइड की फील्ड, और ऑन साइड में एक मिड ऑन, मिड विकेट और एक फाइन लेग बिल्कुल बाउंड्री लाइन के पास। छह फील्डर्स ऑफ साइड में, तीन फील्डर्स ऑन साइड में। इमरान तैयार पवेलियन की तरफ से गेंद कर रहे हैं गावस्कर को, ओवर पिच्ड ऑफ स्टंपर और गावस्कर आ गया है, हाफ वॉली पर लिया, ड्राइव किया ऑफ साइड में, एक्स्ट्रा कवर और मिड ऑफ के बीच में से चादर के लिए।
0: गजब गजब गजब, इतना शानदार है कि मेरा मन एकदम झूम उठा। जो सुनने वाले हैं वो भी ताली बजा रहे होंगे और मैं ये पूरा जो आपने ये जो समा बांधा, मैं आपको प्रणाम करता हूं कि आपने इतना शानदार दौर याद दिला दिया।
1: बहुत धन्यवाद। और रेडियो के श्रोताओं से बात करके तो मैं हमेशा भावुक रहता हूं, क्योंकि यहीं से मेरी शुरुआत हुई है, मेरी पहचान भी यहीं से स्थापित हुई और आपसे बात करके मुझे बहुत मजा आया।
0: जी, अभी तो और बातें करेंगे। यहां एक गाने की जगह बनाते हैं, रॉकी फिल्म का गाना सुनते हैं, आ देखे जरा किसमें कितना है दम।

0: सुशील जी, कमेंट्री का पूरा एक दौर देखा आपने और बहुत अलग अलग तरह के कमेंटेटर्स को सुना, हिंदी के और अंग्रेजी के। आपके बहुत फेवरेट कमेंटेटर्स कौन से रहे हैं?
1: नहीं, देखिए, मैं जॉन अर्नोट को सबसे ज्यादा पसंद करता हूँ क्योंकि वो एक कवि भी थे,
0: जी
1: तो उनका क्रिकेटिंग नॉलेज उतना नहीं था लेकिन उनकी भाषा अद्भुत रहती थी। तो एक ही बात मैंने उनसे सीखी कि कम शब्दों में ज्यादा व्यक्त करो। जो कहते हैं ना, शब्दों की किफायत, जैसे अंग्रेजी में इकोनॉमी ऑफ वर्ड्स कहते हैं, तो जब आप इस तरह की किफायत वापरते हैं तो असर ज्यादा पड़ता है। सही

0: सही जगह, तो असरदार शब्द, तो ये बहुत महत्व की बात मैंने उनसे सीखी। और मैं कमेंट्री बॉक्स में लेकर आया था 1979 में, जब इंग्लैंड गया तो
1: जी
0: उनको अपने कमेंट्री बॉक्स में लेकर आए थे, तब उन्होंने एक बात कही थी जो मैं कभी नहीं भूलता। उन्होंने कहा हर शब्द का एक चित्र होता है।
1: वाह,
0: जैसे आपने कहा कि ही ड्राइव थ्रू द कवर तो 4 रन्स, तो इसका मतलब कि उसने हल्के से खेला है। और जब आप कहते हैं कि ड्राइव थ्रू दी कवर 4 रन्स, तो इसका मतलब जोर से खेला है। तो शब्द का एक चित्र होता है,
1: क्या प्यारी
0: तो
1: बात।
0: ये शब्द का चित्र के रूप में जब आप खींचेंगे तब आपकी कमेंट्री ऐसा लगेगा सजीव चित्रण होगा। तो ये बात मैंने उनसे सीखी
1: जी,
0: और अपनी कमेंट्री में मैं लगातार सीखता, आज भी सीखता हूँ, कई चीज़ें सीखने को मिलती हैं। तो ये उसमें आप बेहतर होते हैं। और इंसान होने का सबूत क्या है, अच्छे इंसान होने का यही है कि आप निरंतर सीखते रहें, निरंतर आगे बढ़ते रहें, जिज्ञासु रहें, तभी तो आप भविष्य की तरफ देख रहे हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: तो ये अन्यथा उम्र आपको मार देगी। तो लेकिन उसको जीतना है तो यही करना है कि आप आगे बढ़ते रहें, बेहतर होते रहें, और जो आपको सुन रहे हैं उनको लगे कि भाई वो भी बेहतर अनुभव कर रहे हैं जब सुन रहे हैं आपको।
1: क्या प्यारी बात है। क्रिकेट कमेंट्री के अलावा जीवन में आप और क्या करते रहे हैं, आपका प्रोफेशन क्या रहा है?
0: नहीं, वैसे तो मैं इंजीनियर हूं, और मैं एक बात जानता हूं, भारत जैसे देश में अगर आप व्यावसायिक रूप से सफल नहीं हो तो लोग आपकी कला को भी ठीक से नहीं आंकते हैं। सच्चाई है, देखिए लाख लोग कहें कि नहीं ऐसा नहीं वैसा नहीं, लेकिन जीवन की सच्चाई ये है कि आपको व्यावसायिक रूप से भी जिम्मेदार होना पड़ेगा। और ये हर कलाकार को समझना चाहिए कि वो एक कलाकार ही नहीं है, एक परिवार का हिस्सा भी है, परिवार का एक व्यक्ति भी है, वो किसी का पति भी है, किसी का पिता भी है, किसी प्रेमिका का प्रेमी भी है। ये तमाम चीज़ें उसको ध्यान में रखनी चाहिए, और वो जिम्मेदारियां भी उसकी है। अगर पिता ने उसके प्रति कोई सपना देखा है व्यावसायिक रूप से सफल होने का, तो वो भी एक आपकी जिम्मेदारी है कि वो सफल सिद्ध हों
1: जी।
0: और साथ में आपकी कला को तो आगे बढ़ाइए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे क्षेत्रों को आप छोड़ दें, तो फिर जीवन असफल हो जाता है, लोग आपकी गणना या आपका अंकन ठीक से नहीं करते। तो ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि आपकी बहुतेरी भूमिका, तो मैं अब जैसे शोरूम है हमारा इंदौर में, 150 आदमी काम करते हैं
1: जी जी,
0: जहाँ एक 15 रुपये महीने के मकान में किराए से रहते थे, और आज 4 शोरूम्स हैं हमारे, कुल मिलाकर 150 आदमी काम करते हैं, यहाँ से वहाँ तक, और बेदाग, यानी कि बिल्कुल बेदाग जिंदगी, अभी तक किसी का चुकाना बाकी नहीं। तो ये तमाम चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं, तो ये आपके जीवन जीने के दृष्टिकोण को और जीवन की सफलताओं को नए पैमाने प्रदान करती है।
1: बिल्कुल। यहाँ एक और दिलचस्प सवाल मेरे जहन में था कि आपने तमाम देशों की यात्राएं की क्रिकेट कमेंट्री करते हुए, सबसे यादगार और दिलचस्प यात्रा कौन सी थी?
0: नहीं, दो बातें मैं जरूर यहाँ कहना चाहता हूँ। एक तो ऑस्ट्रेलिया
1: जी
0: मैं गया था, सबसे अच्छी जगह मुझे वही लगी ऑस्ट्रेलिया। 3 महीने का दौरा था 1977-78 में, और मैं भूलते नहीं कि वहाँ पर जो कीथ मिलर हैं वो ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के लिए कमेंट्री कर रहे थे अंग्रेजी में, उनके फोटो में एल्बम में बचपन में लगाया करता था। कीथ मिलर यानी क्रिकेट के ऐसे व्यक्ति जो अगर 10 ऑलराउंडर्स ऑल टाइम बेस्ट अगर गिने तो कीथ मिलर का नाम उसमें लेंगे। तो एक दिन मैं वहाँ ऑस्ट्रेलिया में हो क्या रहा था, कई यंगस्टर्स भी जो थे ना, जवान लड़के लड़कियाँ आते थे, कि एक लड़का पता नहीं किस भाषा में बहुत जोर से मुँह चला रहा, बहुत तेज़ी से मुँह चला रहा, ये बातें बड़ी फैल रही थी। और 20-20 लोग हमारे कमेंट्री, 20-30 लोग इकट्ठे हो जाते थे ऑस्ट्रेलिया के, कि अजीब, क्योंकि दुनिया में अंग्रेजी के अलावा कोई कमेंट्री होती नहीं थी उस समय।
1: जी जी।
0: तो एक दिन मैं कमेंट्री का सेशन करके जैसे ही मैं पीछे मुड़ा, देखा कीथ मिलर पीछे खड़े हैं,
1: और
0: मेरे तो होश उड़ गए, तो मतलब पसीना पसीना हो गया। मैं छोटा था तो उम्र
1: जी,
0: में 29 साल का था, तो उन्होंने कंधे पे हाथ रखा, मुझे एक तरफ ले गए और मुझे कहा कि बॉय आई हैव नॉट अंडरस्टूड ए सिंगल वर्ड of whatever you said, but whatever went into my ears was very sweet.
1: Wow,
0: ये जो मैं समझता हूँ जिंदगी में एक बहुत बड़ा ये कॉमेंट था कि भाई वो जो आदमी आपकी भाषा नहीं समझ रहा, वो आपको कह रहा है कि आप उनके कान में मिश्री जैसी आवाज़ आ रही। और एक और कॉमेंट जो मुश्ताक अली साहब ने, महान खिलाड़ी, इंदौर के मुश्ताक अली साहब और मेरे बड़े अच्छे संबंध रहे, 1936 में ऐसे व्यक्ति जो पहली बार इंग्लैंड में जिन्होंने शतक लगाया
1: जी,
0: पहले भारतीय, तो उन्होंने एक बार कही कि लता मंगेशकर ने गायकी में ईश्वर ने भेजा उनको, मुझे बैट

0: कर भेजा बल्लेबाजी करने के लिए, और सुशील दोषी तुमको भेजा है हिंदी की कमेंट्री करने के लिए।
1: वाह वाह वाह वाह,
0: ये बहुत बड़ा कमेंट। और तीसरा सबसे बड़ा कमेंट जो मुझे कहा आकाशवाणी के स्टेशन डायरेक्टर, जिन्होंने पूछ मुझे पहले भगाया था ना,
1: जी जी,
0: उन्होंने कहा था कि यार तुम्हारी आवाज एक ईमानदार आवाज है,
1: अद्भुत।
0: तो मैं ये समझा कि तरह तरह की आवाजें, मीठी आवाज, मोटी आवाज, बच्चन बैरिटोन, पतली आवाज, है ना, सुरीली आवाज, लेकिन ये ईमानदार आवाज आज भी सोचता हूं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो इससे बड़ा कमेंट मैंने अपनी जिंदगी में सुना नहीं। तो ये जो बातें मैं कभी भूलता नहीं, तो ये तमाम चीजें। और एक किस्सा मैं जरूर सुनाना चाहता हूं।
1: जी जी,
0: कि वो जो भाषा की बात कर रहा था, लालित्य की बात कर रहा था हिंदी भाषा की।
1: जी जी जी,
0: फिरोज शाह कोटला ग्राउंड पर सुनील गावस्कर 86 रन पर नॉट आउट थे, और शाम का वक्त था, तो मैंने, मेरे हाथ में माइक्रोफोन था, मैंने कहा शाम ढल रही है और मैदान पर खिलाड़ियों की परछाइयां लंबी हो रही हैं,
1: बिल्कुल,
0: लेकिन भारत का सूरज सनी गावस्कर अपनी पूरी चमक के साथ विद्यमान है।
1: आहा हा,
0: तो
1: सुंदर,
0: इतना अच्छा लगा, अखबारों में भी छपा के इतना बढ़िया वर्णन, एक तरफ डूबता हुआ सूरज, दूसरी तरफ भारत का सूरज जो अभी भी विद्यमान है चमक के साथ। तो ये कब हो सकता है, जब आप साहित्य पढ़ते हो।
1: जी जी जी,
0: अगर आप साहित्य नहीं पढ़ते हो, रोमन लिपि में आप समझते हो हिंदी, तो ये बातें आप जिंदगी में कभी नहीं कर सकते।
1: और उस लेवल पर मैच को महसूस करना, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण
0: सबसे बात बड़ी
1: है।
0: बात जो आपने कही ना अभी, कि जो आप महसूस करोगे तो महसूस कराओगे,
1: जी,
0: ये जिंदगी में अगर आपने रखा है तो आप सफल कमेंटेटर या जो भी क्षेत्र में आप काम कर रहे हो वो उसमें कामयाब होंगे।
1: बिल्कुल। सुशील जी, कितना सुंदर वर्णन शाम का आपने किया, और मुझे इस पर एक गाना याद आया जो मैं जानता हूं कि आपका पसंदीदा है, सुहानी शाम ढल चुकी न जाने तुम कब आओगे।

0: सुशील जी, सबसे पसंदीदा क्रिकेटर्स कौन से रहे हैं आपके?
1: नहीं, मैं सुनील गावस्कर को सबसे ज्यादा पसंद करता हूं, क्योंकि वो स्वाभिमानी भी है, तकनीक उनकी अद्भुत, ऐसी तकनीक मैंने किसी की नहीं देखी। बिना हेलमेट के आप वेस्ट इंडीज के तेज गेंदबाजों का सामना कर रहे हैं, और ऐसे पिचेस पर ढकी हुई नहीं है
0: बिल्कुल,
1: और बाउंसर्स की कोई सीमा नहीं है, आपके शरीर पर आक्रमण कर रहा है आदमी, और एक नहीं चार चार एक साथ। वो ऐसे वक्त पर उन्होंने क्रिकेट खेला जब दुनिया में सबसे खूंखार बॉलर्स दुनिया में थे।
0: yes.
1: आप वेस्ट इंडीज में देखे कि एंडी रॉबर्ट्स, माइकल होल्डिंग, मेलकम मार्शल, यू नो, कॉलिन क्राफ्ट, या पाकिस्तान में देखो तो इमरान खान और वसीम अकरम, इंग्लैंड में देखे तो जॉन स्नो, है ना, तो ये तमाम, या ऑस्ट्रेलिया में देखो तो टॉम्पसन और लिली, इतने खूंखार बॉलर एक समय दुनिया में कभी भी नहीं रहे।
0: जी जी जी,
1: उन सब बॉलर्स को अनढके विकेटों पर, पिचों पर, उन्होंने बिना हेलमेट के जिस तरह से खेला, दुनिया को कोई दूसरा को नहीं खेल पाता। तो मैं समझता हूं कि उनसे बड़ा कोई तकनीकी रूप से सक्षम बल्लेबाज, भारतीय क्रिकेट को स्वाभिमान जिसने दिलाया, ये तो तेज गेंदबाजी के खिलाफ भारतीय बैटर जरा घबराते थे,
0: जी जी,
1: वो स्वाभिमान उन्होंने दिलाया भारत को।
0: जी जी, और विश्व क्रिकेट में कौन पसंदीदा रहे हैं?
1: नहीं, विश्व क्रिकेट में जो, एक तो ये है कि डॉन ब्रैडमैन के बड़ा तो कोई रहा ही नहीं, ऐसा जैसा इयान चैपल ने भी कहा कि उनके साथ किसी की भी तुलना करना यानी कि क्रिकेट का ही अपमान है, ऐसा उनका कहना है। हालांकि उनको मैंने खेलते भी नहीं देखा, उनसे मुलाकात जरूर हुई
0: जी,
1: लेकिन उन्हें खेलते भी नहीं देखा
0: जी,
1: लेकिन उनके रिकॉर्ड से बता रहे हैं। और दूसरी तरफ जो अगर बैटर्स कहें तो सचिन तेंदुलकर
0: जी,
1: बहुत बड़े बल्लेबाज वो भी अपने आप में, और सबसे बड़ी बात कि दुश्मन की गली में खेल को ले जाकर खेलना,
0: वाह वाह,
1: अगर किसी व्यक्ति में था तो वो सचिन तेंदुलकर,
0: बिल्कुल,
1: कि वो खेल की धारा को मोड़ देते थे
0: जी। 1983 में जब भारत ने वर्ल्ड कप जीता, उस वक्त आप कहां थे और क्या?
1: नहीं, उस समय तो कमेंट्री हुई नहीं हिंदी में भी, क्योंकि उस समय क्या था कि किसी ने भी गंभीरता से लिया ही नहीं था कि जो वनडे क्रिकेट है ना, ये कोई महत्वपूर्ण क्रिकेट है, क्योंकि क्रिकेट खिलाड़ी खुद ही ने टिकटें कोई अमेरिका की ले ली थी सेमीफाइनल की, वक्त ही उनको लगा कि जीत ही नहीं पाएंगे
0: जी।
1: तो ये तो हम लोग तो कमेंटेटर थे, तो हिंदी की कमेंट्री नहीं हुई उस समय। क्या कहते थे भारत में कि भाई ये टेस्ट क्रिकेट है वो शास्त्रीय क्रिकेट है, और वनडे क्रिकेट जो है पायजामा क्रिकेट है।
0: जी जी,
1: बाद में T20 क्रिकेट को चड्डी क्रिकेट कहने शुरू कर दिया, और T10 क्रिकेट जो आया उसके बाद तो हमने सोचना ही बंद कर दिया
0: जी। बिल्कुल, कुल मिलाकर जो टेस्ट क्रिकेट है वो सही मायनों में क्रिकेट है,
1: रेड बॉल क्रिकेट जो होता है ना
0: जी,
1: सही, क्योंकि गेंद स्विंग और सीम होती है, और परिस्थितियां ऐसी रहती है जो बॉलर और बैटर को बराबरी का मौका देती है, इसी कारण वो जो बड़े खिलाड़ी रहते हैं वो टेस्ट क्रिकेट को असली क्रिकेट मानते हैं।
0: जी बिल्कुल, सुशील जी, बहुत सारी किताबें आपकी हैं, और उसमें जो सबसे मशहूर किताब है वो है आंखों दिखा हाल, जो आपकी एक तरह से बायोग्राफी है। उसके अलावा भी क्रिकेट पर बहुत सारी किताबें आपने लिखी हैं, अखबारों में आपके कॉलम्स लगातार हम पढ़ते हैं, ये जो लिखने वाला मामला है इस पर थोड़ी रोशनी डालिए।
1: नहीं, ये मैं 1966 से ही लेखन भी करता हूँ
0: जी,
1: मेरा पहला लेख 1966 में छपा था, कमेंट्री तो मैं 1968 में मैंने पहली की, लेकिन 1966 में मेरा पहला लेख छप चुका था। तो लेखन के प्रति और हिंदी साहित्य के प्रति मेरी आस्था और लगाव लगातार बना रहा, और इसी कारण मेरी भाषा हमेशा ठीक ही रही हिंदी के हिसाब से। तो ये मैंने बहुत सारी 15 किताबें, जैसे आपने जिक्र किया अभी, कुछ 15 किताबें, और सबसे मेरी इच्छा थी कि एक किताब ऐसी भी लिखूँ जो क्रिकेट कमेंट्री पर हो।
0: जी जी,
1: तो क्रिकेट कमेंट्री एक कला एक विज्ञान नाम से पुस्तक एक मैंने लिखी, शायद दुनिया की पहली पुस्तक है जो कमेंट्री पर, कमेंट्री कला के हिसाब से
0: जी
1: लिखी हुई। तो वो किताब का अंग्रेजी अनुवाद भी हो गया है, और वो किताब की 65,000 प्रतियां बिक चुकी हैं।
0: वाह,
1: तो जो बहुत बड़ा, क्योंकि आज के जमाने में लोग पढ़ते कम
0: जी,
1: फिर भी 65,000 कॉपियां उसकी बिक चुकी हैं। तो एक ये जो मुझे लगता था कि जो काम मुझे करना चाहिए वो काम मुझे कर देना है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, तो ये तमाम किताबें भी हैं और कॉलम्स भी लगातार अभी भी आप लिख रहे हैं।
1: हाँ, करीब 5,000 से ज़्यादा लेख और कॉलम्स, मतलब मुझे अच्छा लगता है कि ये मुझे पूर्ण बनाती है
0: जी।
1: ये कॉलम लिखना, उसमें पैसा तो कोई इतना रहता नहीं, पैसा तो रहता है मुफ्त में तो मैं लिखता नहीं
0: जी,
1: लेकिन ये भी है कि एक जो कला ईश्वर ने आपको दी है उसको बराबर पूरा करना चाहिए, और दूसरी बात ये कि लोगों तक आपके विचार बांटना चाहिए, इससे

0: यानी कि आप रचनात्मकता जब तक आप में हैं तब तक आप जवान हैं, और रचनात्मकता जिस दिन गई और जिस दिन आपको लगा कि आप समाज के लिए उपयोगी नहीं हैं तब आप वेजिटेबल हो जाते हैं। तो मैं सोचता हूँ कि रचनात्मकता आज भी मुझ में सीखने की वही इच्छा शक्ति, अच्छी चीज़ों के प्रति प्रशंसा का वही भाव, और सबसे बड़ी बात कि चुनौती को हर बार स्वीकार करने की इच्छा, ये आज भी बनी रहती है। और जब तक ये बनी है तब तक मैं अपने आप को काफ़ी स्फूर्तिवान और काफ़ी जोश मुझ में रहता है, कुछ भी नई चीज़ें करता ही रहता हूँ। अभी
1: जी
0: भी मेरे मस्तिष्क में 2-3 किताबें लिखने का है। तो जो भी साथ में है, एक बहुत लंबी योजना नहीं बनाता हूं, जो
1: जी
0: योजना बनाई उसे पूर्ण करो और कार्य रूप में बदलो।
1: यहां गाना सुनते हैं, हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम।

0: आपने आज इस बातचीत में एक बहुत सुंदर वाक्य कहा था कि जंगली सपने भी सच होते हैं, वाइल्ड ड्रीम्स। इस बातचीत को दुनिया के कोने कोने में हिंदी भाषी लोग सुन रहे हैं, देश के कोने में किसी छोटे कस्बे में आंखों में सपने लिए कोई नौजवान सुन रहा हो, उससे भारत के महान क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी क्या कहना चाहेंगे?
1: नहीं, बस ये कहता हूं कि अपने आप को एक तो कम मत आंको। देखिए, मेरी तरफ आप ध्यान दें, मेरी कहानी की तरफ ध्यान दो तो बचपन में मुर्गा बनने की कहानी, मास्टर से डंडे खाने की कहानी और सप्लीमेंट्री लाकर पास होने की कहानी। एक मामूली आदमी भी अगर इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कमेंटेटर बन सकता है। और

0: पद्मश्री की उपाधि तक भी पहुंच सकता है। तो आप लोग तो बहुत अच्छे स्कूलों में पढ़े हो भाई लोगों, आप लोग तो आगे बढ़ ही सकते हो और दिखा दो कि आप में दम है, क्योंकि हर व्यक्ति में संभावना अनंत रहती है, संभावनाओं को पहचानने की जरूरत है।
1: जी, जिस पल पद्मश्री की घोषणा हुई आप कहाँ थे और इस खबर के बाद किस तरह की कैफियत आपकी और आपके परिवार की थी?
0: नहीं देखिए, 2016 में मुझे पद्मश्री प्राप्त हुआ और मैं तो दिल्ली में कमेंट्री कर रहा था।
1: अच्छा,
0: मुझे पता नहीं था कि पद्मश्री मिल सकता है। तो मेरे बेटे का फोन आया कि कुछ लोग आए और पूछताछ कर रहे हैं, और पता नहीं कि क्यों पूछताछ कर रहे हैं। वो उनको लगा कि कोई छापा तो नहीं पड़ रहा तो वो घबराया, तो मुझे फोन किया। तो मैंने कहा मुझे बात कराइए। तो मैंने पूछा कि क्यों, क्या पूछताछ करना चाहते हैं। दिल्ली में था, मैं कमेंट्री कर रहा था
1: जी।
0: तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसे ही कुछ पूछना है, तो भारत सरकार की तरफ से कुछ बताया नहीं उन्होंने
1: जी।
0: और जब भोपाल आया, वहां से ट्रेन से आया
1: जी,
0: भोपाल उतरा मैं, तो भोपाल से फिर मुझे एक दिन पहले जब उतरा तो किसी का फोन आया दिल्ली से कि आपको पद्मश्री देने की घोषणा हुई और आपको स्वीकार है क्या। तो मैंने कहा भाई इतनी बड़ी अगर उपाधि और देश अगर इतना प्यार कर रहा है तो मैंने कहा बिल्कुल स्वीकार है। तो ये हुआ, फिर इंदौर आ गया, फिर घर पे मैंने फोन से बताया माता पिता। मेरी माँ के बारे में मैं जरूर कहना चाहूंगा, बड़ी महत्वाकांक्षा थी
1: जी, जी, जी।
0: महत्वाकांक्षी व्यक्ति, उनका मुझ पर बहुत प्रभाव
1: जी।
0: पिताजी बहुत सीधे साधे, महत्वाकांक्षी नहीं थे, बच्चे का सपना पूरा करना बस। और माँ बहुत महत्वाकांक्षी, बच्चे को आगे बहुत नाम कमाना है, गरीबी में नहीं रहना है, ये उनको बड़ा था और उनका सपना भी मुझे पूरा करना था। तो उन्होंने एक बात कही थी कि मुझे सबसे बड़ी खुशी है कि मेरी माँ तब जिंदा थी
1: जी, जी
0: उनके जीते जी पद्मश्री मिल गया। तो उन्होंने एक बात कही कि जिस माँ के बेटे को पद्मश्री मिल गया हो उसको अब जीवन में और क्या चाहिए।
1: वाह,
0: देखिए माँ होती है तो ऐसी बातें करते हैं तो कई बार आंसू भी आ जाते हैं, लेकिन ठीक है, जीवन है, बेहतर रहने का काम है
1: जी। आपको मिला पद्मश्री, हिंदी क्रिकेट कमेंट्री का सम्मान माना जाना चाहिए।
0: नहीं बिल्कुल, मैं तो ये मानता हूँ कि सम्मान जो था वो हिंदी को मिला है और मुझे खुशी है कि हिंदी भाषा को जो पहले दोयम दर्जे की बात मानते थे ना कमेंट्री के क्षेत्र में
1: जी,
0: उसमें इतनी पहचान मिलना, तो हिंदी कमेंट्री के प्रति लोगों की आस्था और लोगों की श्रद्धा और लोगों की दिलचस्पी काफ़ी बढ़ी है। तो अच्छा लगा कि हिंदी के लिए कोई कार्य मैं कर पाया
1: जी। सुशील दोषी जी, ये मेरा सौभाग्य रहा कि मैं आपसे ये लंबी बातचीत कर पाया। हमसे ये वादा कीजिए कि विविध भारती पर आप फिर आएंगे और हम फिर लंबी बात करेंगे।
0: क्यों नहीं, क्यों नहीं, निश्चित रूप से। और आपसे बात करके मुझे तो आपसे शिकायत भी रही कि आपने कमेंट्री क्यों नहीं की, आपकी आवाज़ इतनी बढ़िया है, लेकिन अच्छा ही किया। मैं नहीं चाहता था कि ऐसे ऐसी कॉम्पिटिशन मुझे ही मिले।
1: बहुत बहुत शुक्रिया,
0: धन्यवाद।

जाने माने क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी से लंबी बातचीत अभी आपने सुनी, आज दूसरा भाग था। बातचीत की आपके इस दोस्त यूनुस खान ने, संपादन और प्रस्तुति तेजश्री कांबले। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर जरूर लिखें, मैटिनी शो की पोस्ट पर, या फिर हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर आप अपनी राय दे सकते हैं, या फिर vbnsmumbai@gmail.com पर अपनी राय दीजिएगा।

0: समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पढ़ाई के बाद छात्र जीवन की नई शुरुआत होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय आईआईटी दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
1: प्रतिपल बदल रहा है और इसके पीछे सबसे बड़ी फोर्स है टेक्नोलॉजी की स्पीड। आज कोई भी निश्चित रूप से नहीं कह सकता कि अगले 20-30 वर्षों की दुनिया कैसी होगी, लेकिन साथियों, जब जब बदलाव का दौर आता है तब तब चुनौतियां भी आती है और नए अवसर भी पैदा होते हैं। दुनिया बदलेगी, टेक्नोलॉजी भी बदलेगी, इंडस्ट्रीज बदलेगी, प्रोफेशंस भी बदलेंगे, लेकिन इन सब के बीच मेरी बात याद रखिएगा, जो सीखेगा वो जीतेगा।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि आईआईटी दिल्ली कैंपस में आना उनके लिए सौभाग्य की बात है। उन्होंने कहा कि आप केवल डिग्री नहीं अपने सपने लेकर यहां से निकल रहे हैं। प्रधानमंत्री ने 587 पीएचडी शोधार्थियों को सम्मानित किया। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर जारी छात्र आंदोलन के बीच सरकार और विद्यार्थी प्रतिनिधिमंडल के बीच कल पहली औपचारिक वार्ता हुई। करीब 1.5 घंटे तक चली बैठक में विद्यार्थियों ने भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता, कथित अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच और भर्ती प्रक्रिया में व्यापक सुधार की मांग दोहराई। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में आज सुबह एक बस दुर्घटना में 7 लोगों की मौत हो गई और 11 अन्य घायल हो गए। राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र के अनुसार दुर्घटना सुबह करीब 7:15 बजे हुई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार बस बैरागढ़ से चंबा की ओर जा रही थी। इसी दौरान चलवांज मोड़ के पास चालक वाहन पर नियंत्रण खो बैठा और बस सड़क से उतरकर नीचे दूसरी सड़क पर गिर गई। चंबा के पुलिस अधीक्षक विजय सकलानी ने बताया कि दुर्घटना की सूचना मिलते ही पुलिस दल ने मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य शुरू किया। दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट पर श्री मोदी ने इस घटना में परिजनों को होने वाले लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। भारतीय भुगतान परिषद ने कहा है कि यूपीआई के माध्यम से किए जाने वाले डिजिटल भुगतान उपभोक्ताओं के लिए निःशुल्क रहेंगे। व्यापारियों से डिजिटल भुगतान स्वीकार करने के लिए भी कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। परिषद ने बताया कि बैंक, फिनटेक कंपनियां, एनपीसीआई, रिजर्व बैंक यूपीआई को सुरक्षित और भरोसेमंद बनाए रखने के लिए तकनीक, साइबर सुरक्षा, धोखाधड़ी रोकने और नई सुविधाओं में लगातार निवेश कर रहे हैं। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए ने सीमा पार आतंक की साजिश रचने में 2 आरोपियों के विरुद्ध अभियोग पत्र दाखिल किया है। दोनों आरोपी पंजाब और नई दिल्ली में सुनियोजित हमले के लिए आईईडी, विस्फोटक और हेरोइन की कथित तस्करी में संलिप्त हैं। एजेंसी की मोहाली विशेष अदालत में कल शुभम कुमार और फरार जसवीर चौधरी के विरुद्ध अभियोग पत्र दायर किया गया। रेलवे ने ओणम के अवसर पर केरलम के लिए विशेष ट्रेनों की संख्या बढ़ाकर 112 कर दी है। इन विशेष रेलगाड़ियों का मुख्य रूप से तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से आवागमन होगा। यूक्रेन की राजधानी कीव के निकट रूस द्वारा रात में किए गए मिसाइल हमलों में एक बच्चे सहित 3 लोगों की मौत हो गई। आज तड़के कीव के पूर्वोत्तर क्षेत्रों में ये हमले हुए। अमेरिका में विश्व एथलेटिक्स अंडर-20 चैंपियनशिप के 3रे दिन भारत को पहला पदक मिला। पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में आशीष यादव ने रजत पदक अपने नाम किया। 19 वर्षीय आशीष ने 74.09 मीटर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 2रा स्थान हासिल किया। दक्षिण अफ्रीका के जॉन हैंड्रिक हेबेंस ने स्वर्ण पदक जीता।

0: ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ध्वनि तरंगों की ताल पर आप विविध भारती के संग हैं। थोड़ी ही देर में सुनिए यादों की महफिल।

हम विविध भारती से बोल रहे हैं, आइए सुनिए यादों की महफिल। सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। इस गाने से शुरुआत करते हैं। आनंद बख्शी, राहुल देव बर्मन, शोले।

एक आवाज जिसमें है जोश, जुनून, नशा। एक आवाज जो आपको अपने साथ बहा कर ले जाती है। एक आवाज जिसके साथ जुड़ी है आपकी

0: जरा।
1: 12 अगस्त दिन में और रात में 11 बजे दिन के 12:11:35 और अगर आपके शहर में बारिश है तो ये गाना आपके लिए

0: झूठ फिल्म का ये गाना किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में था। एमजी हशमत के बोल थे।
1: रुपहले पर्दे की जगमगाती दुनिया के अभिनय की सादगी और संवेदना से सजी एक बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा।
2: यशपाल जी की एक बहुत अच्छी नेचर है कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों।
1: सुनिए उनके जीवन, संघर्ष, अभिनय और अनकहे किस्सों की दिलचस्प दास्तान।
3: मैं अगले दिन आशुतोष गोवारिकर से मिलने गया, उन्होंने घूम घूम करके 3.5-4 घंटे सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे। रोल जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा यार ये जो लाखा का रोल है ना, ये सबसे बढ़िया रोल, नेगेटिव है, प्यार करता है, जलता है, फिर चेंज हो जाता है, सुधर जाता है, फिर मैच जीतवाता है, तो मतलब काफी वेरिएशन थी।
1: सेल्यूलॉइड के सितारे 18 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: कि हम तुम चोरी से बंधे।

यादों की महफिल में अब गूंज रही है किशोर कुमार की आवाज। फिल्म का नाम है वारंट। आनंद बख्शी, राहुल देव बर्मन।

0: अब विविध भारती आपके एलेक्सा डिवाइस पर भी उपलब्ध। बस आपको इतना कहना है, एलेक्सा प्लीज प्ले विविध भारती।
1: प्लेइंग द लाइव ब्रॉडकास्ट ऑफ ऑल इंडिया रेडियो विविध भारती।
2: हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम।
0: इसके अलावा वेव्स ओटीटी, इंटरनेट स्ट्रीमिंग और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन के जरिए सारी दुनिया में उपलब्ध है।

0: हमारे शरीर का एक जरूरी हिस्सा हैं और जब इनका संतुलन बिगड़ता है तो मुश्किलें बढ़ जाती हैं। परेशान हूं मैं। विविध भारती पर हार्मोन विशेषज्ञ डॉक्टर संजय भदादा आपको बताएंगे हार्मोन्स के असंतुलन के बारे में और इसके बाद हुई हड्डियों से जुड़ी समस्याओं के बारे में।
1: हमारी जो डिसऑर्डर्स है, एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स है, वो महिलाओं में अगर मैं बोलूंगा तो 70% महिलाएं और 30% मेल इसमें अफेक्ट होते हैं। विविध भारती के पूरे हिंदुस्तान के सुनने वाले श्रोताओं को ये बताना चाहता हूँ कि बोन डिसऑर्डर्स हॉर्मोन्स के साथ बहुत क्लोजली एसोसिएटेड होते हैं।
0: 10 अगस्त शाम 4 बजे और 11 अगस्त सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सेहतनामा।

0: जब तक हाथ पैर सक्रिय रहते हैं हमें उनके महत्व का अंदाजा नहीं होता। जब होती हैं हड्डियों या मांसपेशियों की समस्याएं तो समझ नहीं आता कि क्या करें।
1: अब कहां जाएं हम?
2: फर्स्ट साइन इज पेन, वो बता देता आपको कि कुछ गलत हो रहा है।
0: सेहतनामा कार्यक्रम में फिजियोथेरेपिस्ट हर्षदा राजाध्यक्ष आ रही हैं।
2: एक्सरसाइज करते रहो, शुगर और सॉल्ट अवॉइड करो, जब भी पेन हो तो किसी को कंसल्ट करो।
0: 17 अगस्त शाम 4 बजे और 18 अगस्त सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: सेहतनामा,
0: किशोर कुमार की आवाज। फिल्म का नाम साहिब बहादुर। राजेंद्र कृष्ण की बोल मदन मोहन की तर्ज।

साहिबान, आपके शहर में आकर एक खास गाना बनाया है जो इस प्रोग्राम को रोककर आपके सामने पेश करता है।

लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजें थी। फिल्म का नाम जूली, आनंद बख्शी, राजेश रोशन। कार्यक्रम की आखिरी पेशकश आ रही

0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम यादों की महफिल। हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बद्दूर।
1: उन्होंने कहा कि देखो अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए हैं, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक और आ गया।
2: जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जेदार लग गया तेरे पीछे क्या?
3: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: सुनिए
0: ध्वनि तरंगों की ताल पर आप विविध भारती के संग हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम सुरीला सफर।

आइए सुने कार्यक्रम सुरीला सफर। सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। आज की इबारत विविध भारती के फेसबुक पेज पर पोस्ट हो चुकी है और आप सभी ने पढ़ी ही होगी। जिन श्रोताओं ने फेसबुक पोस्ट नहीं देखी है उनके लिए इबारत यहां पेश है। इतने दिन कहां थे, मौत ना आई तेरी याद क्यों आई, ये कैसी बातें कर रहे हो। घनी थी उलझन बैरी अपना मन, अरे खुलकर कहो ना, एक डोर खींचे दूजा दौड़ा चला आए, ओफो कहना क्या चाहते हो, मुझको अभी चुप रहने दो, पहेलियां बुझाना छोड़ो ना, हम क्यों शिकवा करें झूठा, अरे किससे शिकवा हुआ है, क्या बात है, इंसान मोहब्बत कर बैठा, पर ये तो अच्छी बात है ना, हकीकत की दुनिया में चाहत नहीं है, फिर वही, अरे खुलकर कहो ना, कहने से हो मलाल तो हम क्या जवाब दें, देखो ये ठीक बात नहीं है, इस तरह उलझी बातें कौन करता है, बातें हैं बातों का क्या, हाय इतना दुख मेरी तो आंख भर आई, कौन रोता है किसी और की खातिर है दोस्त, अब तुम हद कर रहे हो, अपनी तो यह आदत है कि हम कुछ नहीं कहते, चुप रहो, अब ऐसी बहकी बहकी बातें की तो बातें बंद हो जाएंगी हमारी, समझे भाई, यही है आज की इबारत। और इस इबारत में बहुत सारे गाने, बहुत सारे शब्द समाये हुए हैं, बहुत सारे श्रोताओं ने बाकायदा गानों को एक अच्छी तरीके से पहचान भी लिया है, लेकिन एक जो नहले पे दहला आया है उसे कार्यक्रम में सबसे पहले शामिल कर रहे हैं। उन्होंने अपनी तरफ से एक इबारत लिखी है, क्या बात है बड़े छाए हुए आजकल, क्यों आपको पसंद नहीं है, हमें क्यों पसंद नहीं होगा, आखिर आप हमारे लिए इतना कुछ करते हो, वही तो हमारे लिए आप श्रोतागण ही सब कुछ हो, बस इसी बात ने तो हमारा दिल छीना है। विविध भारती से एक संवाद, एक कमाल है भाई, कमाल है, यानी नहले पे दहला मार दिया, बहुत शुक्रिया। और बहुत सारी श्रोताओं की बातें, एक श्रोता है जिन्होंने कहा कि यादों की महफिल में बहुत ही बढ़िया गाने आपने सुनवाए, इस बात के लिए भी शुक्रिया अदा कर देते हैं आपका। और इसके अलावा बहुत सारे और भी श्रोता हैं, जरा देखें कि हमारे और श्रोता क्या कह रहे हैं। कुछ श्रोता हैं जिन्होंने बाकायदा पूरे गानों की लिस्ट प्रदान कर दी है और यहाँ भेजा है। इसके अलावा कई ऐसे श्रोता हैं जो अपनी अपनी बातें कह रहे हैं। एक तो ये कह रहे हैं कि इतने दिन तो हम कहीं नहीं थे, विविध भारती के संग थे और ऐसे ही विविध भारती हमारे साथ चलती रही, गुनगुनाते रहे, दिल पर राज करते रहे, सुकून देते रहे। एक और श्रोता कहते हैं, शिकवा नहीं, किसी से गिला नहीं, हम विविध भारती सुनते रहे तो दिन खुशनुमा रहे। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि अप्रत्याशित थीम है और बहुत ही मजेदार गाने सुनाई देने वाले हैं। इसके अलावा एक और श्रोता है जो कह रहे हैं कि यादों की महफिल में गाने अच्छे सुनाई दिए थे। एक श्रोता ऐसे हैं जो बाबा अमरनाथ कश्मीर के पवित्र स्थान के बेस कैंप बालटाल में हैं और वहां से आगे रवाना हो रहे हैं। शुभकामनाएं आपको हम सबकी तरफ से। और वहां भी आप अगर विविध भारती से जुड़े हुए हैं तो इसे कहते हैं सच्ची मोहब्बत। चलिए शुरू करते हैं आज के कार्यक्रम का सिलसिला इस गाने के साथ। और आपको सबसे पहले तो ये बताना है कि क्या आम बोलचाल की भाषा में आप भी गानों का इस्तेमाल करते हैं, और अगर करते हैं तो किस तरह से करते हैं।

योगेश का लिखा ये गाना मुकेश की आवाज सलील चौधरी की तर्ज आनंद फिल्म, और एक श्रोता ने ये कहा है कि ये गाना पूरी तरह से राजेश खन्ना के साथ जुड़ा हुआ। एक और श्रोता है जो कह रहे हैं कि आज जो पहला गाना आपने बजाया सुरीला सफर कार्यक्रम में वो मेरे दिल के बहुत करीब है, पतिदेव इस गाने को बहुत अच्छे से गाते थे, पहला गाना यही था जो उन्होंने मुझे गाकर सुनाया था। एक और श्रोता है जिन्होंने लिखा कि योगेश जी क्या बात है, बेहतरीन आगाज इस कार्यक्रम का हुआ है और हम तो अपनी बातचीत में अक्सर ही फिल्मी गीतों का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा एक और श्रोता है जो ये लिखते हैं कि हम भी बातें करते हैं तो गानों का और फिल्मी डायलॉग्स का इस्तेमाल हम बहुत ज्यादा करते हैं। और एक और श्रोता है जो कहते हैं कि हम तो पूरे दिन कोई ना कोई गाना गाते रहते हैं और आम बोलचाल की भाषा में भी गाने बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा एक और श्रोता है जो कहते हैं कि आम बोलचाल की भाषा हमारे अस्तित्व का आईना है, व्याकरण की दृष्टि से भले शुद्ध ना हो। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि बोलचाल की भाषा में गाने तो आजकल मुहावरे की भूमिका अदा करते हैं, जैसे अगर कोई देर से आया तो हम कहते हैं बड़ी देर भाई नंदलाला। इसके अलावा एक और श्रोता है जो कहते हैं हम अभी इसी गाने को सोच रहे थे और ये गाना प्रसारित हो गया। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि हम अभी से घोषित कर देते हैं कि आज का जो सबसे प्यारा गीत है वो यही है, कहीं दूर जब दिन ढल जाए। एक और श्रोता है जिन्होंने कहा कि आज जो है प्रश्न पत्र का स्वरूप कुछ बदला

हुआ लग रहा है, लेकिन ये बदलाव बहुत अच्छा है। इसके अलावा कुछ और श्रोताओं की बातें शामिल करते हैं। देखिए, कई श्रोता ये कहते हैं कि हमारे कमेंट्स शामिल नहीं होते। इतनी लंबी धारा कमेंट की है कि मैं एकदम नीचे स्क्रॉल करते हुए जाने की कोशिश कर रहा हूं। बहुत सारे गानों के बोल हमारे कई श्रोताओं ने लिखे हैं। अब सभी श्रोताओं के लिखे गाने के बोल बताना तो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी आप सभी के प्यार का शुक्रिया। इतना सारा टाइप करके आपने भेजा, अपने गानों को बिल्कुल ठीक पहचाना है। और एक श्रोता ये कह रहे हैं कि जैसे ही पेज खोलकर सुबह देखा, उस वक्त मैं नाश्ता कर रहा था, इबारत पढ़कर चाय और नाश्ते का स्वाद बहुत ज्यादा बढ़ गया और मुझे याद आया कि कैसे किशोर कुमार की याद के दिन आपने ये कार्यक्रम प्रस्तुत किया था। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि विविध भारती बड़े काम की चीज है, कहीं दूर से गम आ जाए, रेडियो से मेरा मन बहल जाए, या रेडियो बजाओ दुनिया वालों या मुझे अभी चुप रहने दो। क्या बात है, इन्होंने अपनी तरीके से इबारत लिख दी है। अब जो गाना आ रहा है वो आप सभी के दिल के बहुत ज्यादा करीब गाना है, और ये जो फिल्म है ये हम सभी को बहुत ही अपनी सी लगती है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री, एक दूजे के लिए। ये फिल्म आपने किस साल में, कहां, किसके साथ देखी थी, ये यादें हमारे साथ जरूर बांटिए। और इस फिल्म का सबसे अच्छा गाना आपको कौन सा लगता है? क्या आपके शहर में बारिश की फुहारें पड़ रही हैं, या अभी तक आप गर्मी से जूझ रही हैं? शनिवार की दोपहर 1:12 के, और आपके शहर के मौसम के,

एक श्रोता ये लिखती हैं कि एक दूजे के लिए जब रिलीज हुई थी तो मैं बहुत छोटी थी, थिएटर में देखी होगी पर याद नहीं है, लेकिन बाद में टेलीविजन पर देखा। जैसे जैसे बड़े हुए इस फिल्म के गानों का जादू सिर चढ़कर बोला, एसपी बालसुब्रमण्यम की आवाज से परिचित हुए और 16 बरस की बाली उम्र से खुद को कनेक्ट किया। एक और श्रोता है जिन्होंने लिखा, 16 बरस की बाली उम्र को सलाम, ये गाना दिल के बहुत करीब है। एक और श्रोता है जो कह रहे हैं कि मिर्जापुर शहर में जब से सावन का महीना लगा है दिन रात झमाझम बारिश हो रही है, इस समय थोड़े बादल और थोड़ी सी धूप है, खुशनुमा मौसम है हमारे शहर का। और इसके अलावा फिलीपींस के एक श्रोता कह रहे हैं कि हमारे यहाँ तो 3 दिन से बारिश हो रही है और रेड अलर्ट का सिग्नल आ चुका है। एक और श्रोता ने क्या सुंदर जुमला गाने में सुठाया है, दुनिया में प्यार की एक है बोली, सलाम आनंद बख्शी साहब, क्या बढ़िया लाइन लिखी है। इसके अलावा एक और श्रोता लखनऊ से लिख रही है कि सूर्य देव तीक्ष्ण ताप बरसा रहे हैं, भाई हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं कि आपके शहर में भीषण वृष्टि हो और तीक्ष्ण ताप की जगह शीतलता आप पर हावी हो जाए। इसके अलावा एक और श्रोता है जो कह रहे हैं कि दिल्ली में तो पानी पानी पानी हो गया है, भाई ये जो पानी पानी पानी है इससे मुझे ऐसा लगा जैसे आप गा रहे हैं गाना आज ब्लू है पानी पानी पानी। इसके अलावा एक और श्रोता है जो कह रही है कि ये गीत मन की गहराई में बसा हुआ है, प्रेम के कितने रंग हैं और सादगी भरे बोल इस गाने का आभूषण है। एक श्रोता अपने पूरे परिवार के साथ कहीं घूमने जा रहे हैं गाड़ी से और गाड़ी में सुरीला सफर कार्यक्रम सुनने को मिल रहा है, सभी लोगों को बड़ा मजा आ रहा है, उनके परिवार के बहुत ही अच्छा लग रहा है हमें ये जानकर। बहुत सारी श्रोताएं, एक श्रोता लिखते हैं कि भाई ये जो लिफ्ट वाला गाना है मेरे जीवन साथी प्यार किए जाए ये बड़ा ही अच्छा लगा था, 1981 में कॉलेज से भागकर दोस्तों के संग पहला शो मैटिनी शो देखा था। अब ये जो कॉलेज से भागकर फिल्म देखने की बात है ना, बस मुझे लगता है कि इसी बात की डोर पकड़ के आगे चलते हैं। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने कॉलेज से भागकर पिक्चर देखी थी, कॉलेज से भागकर कौन सी फिल्म देखी थी और क्या किसी को पता चल गया था। और हाँ, अब रेशमा की आवाज गूंज रही है, फिल्म का नाम हीरो, सुभाष घई की बेमिसाल फिल्म जिसमें आए थे जैकी दादा। ये फिल्म कहाँ, किस शहर में, कब, किसके साथ, चोरी से या शाम से देखी थी बताइएगा।

एक श्रोता है जिन्होंने बहुत ही मजेदार बात लिखी है। वो लिखते हैं कि भाई फिल्म हीरो हम लोगों ने कॉलेज से गोल मारकर देखी थी, अब साथ में कौन था ये बात प्लीज मत पूछिए वरना बहुत मार पड़ जाएगी। ठीक है भाई, ये मत बताइए कि साथ में कौन था, लेकिन कॉलेज से भाग कर देखी है, ये बड़ी मजेदार बात है। और बहुत सारे श्रोताओं ने इस तरह की यादें देखी साझा की हैं। एक श्रोता है जो लिखते हैं कि दोस्तों के साथ खुदा गवाह देखने गई थी कॉलेज से भागकर, बहुत मजा आया था और हम पकड़े नहीं गए थे। एक और श्रोता है जो कह रही है कि मिथुन दा की फिल्में तो नहीं देखी लेकिन कैसेट बहुत बजाया करते थे, ये एक बात इन्होंने लिखी है। उसके अलावा एक और श्रोता है जिन्होंने लंबी जदाई का की बड़ी तारीफ की है। और इसके अलावा एक श्रोता लिख रहे हैं कि क्या गजब कर रहे हैं, सुरीले सफर कार्यक्रम में आपके सारे राज खुलवा देंगे, यहां मेरे बेटी बेटे दामाद बैठे हुए हैं। अच्छा हुआ कि आप नाम नहीं लेते, वरना ये जो कॉलेज बंक करके फिल्में देखने की लिस्ट तो लंबी है। अच्छा हुआ कि इस कार्यक्रम में नाम नहीं आता, वरना सबको पता चल जाता कि हमने क्या किया था अपने जमाने में। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि शहर में थोड़ी सी बारिश भी बहुत अधिक हो जाती है, हम किसानों से पूछो अभी तक धरती में पानी ठीक से अंदर पहुंचा नहीं है और हम मजबूर हैं भूमिगत जल को बाहर निकालने के लिए। आप शहर वाले थोड़ी सी बारिश हुई तो हाथ जोड़ लेते हैं कि बहुत ज़्यादा बारिश गिरी, बिल्कुल नहीं, बल्कि हम तो चाहते हैं कि इतनी बारिश हो कि जो खेती है वो अच्छी तरीके से हो सके। एक और श्रोता लिखती है कि कभी कभी किसी गीत को हम केवल सुनते नहीं बल्कि वो हमारे भीतर घटित होता है। इस गीत को सुनकर लगता है कि हमारे भीतर एक अंतहीन बयाबान पसरा हुआ है। रेशमा की आवाज़, सबसे उदात्त पल।

0: में ले जाकर छोड़ देती है। एक और श्रोता जो लिख रहे हैं कि मैंने मंदसौर, रतलाम और उज्जैन में बहुत सारी फिल्में देखी हैं। एक और श्रोता हैं जिन्होंने ये राज उजागर कर दिया है कि कॉलेज से भागकर उन्होंने रफू चक्कर देखी थी सहेलियों के साथ कॉलेज बंक करके। इसके अलावा एक और श्रोता हैं जिन्होंने कहा कि कॉलेज से भागकर अगर फिल्म देखते तो कहीं फिल्म देखने के काबिल न रहते उस जमाने में, क्योंकि पापा आर्मी में थे और आर्मी थिएटर में 365 फिल्में जरूर देखी सिकंदराबाद में। इसके अलावा एक और श्रोता जलंधर से हैं, वो कहते हैं कि जलंधर के लाल रतन सिनेमा हॉल में हमने फिल्म हीरो देखी थी। एक और श्रोता हैं जो कहते हैं कि भाई बारिश तो हुई है और अभी और भी होगी, कहीं बाढ़ कहीं सूखे के साथ, और ये जो ग्लोबल वार्मिंग है इसका असर कहीं गर्मी और कहीं वर्षा ऋतु का प्यार। एक और श्रोता है जिन्हें जुबली टॉकीज याद आ रही है और वो कह रहे हैं कि एक दूजे के लिए उन्होंने 1982 में जुबली टॉकीज में देखी थी। किस शहर का की बात है ये आप अंदाजा लगा सकते होंगे, मैं तो समझ गया हूं। इसके अलावा एक और श्रोता है जिन्होंने बड़ा प्यारा कमेंट लिया कि हमारे शहर में बादल ऐसे घूम रहे हैं जैसे शादी में मुंह फुलाए फूफा घूमते हैं, नजर तो सबको आते हैं मगर काम के नहीं होते। भाई बहुत ही प्यारा कमेंट है। और अब एक ऐसे गाने की तरफ ले जा रहे हैं जो दिल के गुबार को उजागर करता है, जिसमें उदासी लिपटी हुई है। एक बेहतरीन फिल्म का एक शानदार गाना है ये।
1: दीवानों से ये मत पूछो।
0: क्या आप बता सकते हैं इस गाने के गीतकार कौन हैं? इस फिल्म में कई गीतकारों ने गाने लिखे थे, पर ये गाना किसका?

बहुत सारे श्रोताओं ने सही जवाब दिए हैं। कमर जलालाबादी ने यह गाना लिखा था, कुछ श्रोताओं ने गुलचन बावरा का नाम भी लिखा है, पर ज्यादातर श्रोताओं ने कमर जलालाबादी का नाम लिखा है। एक और श्रोता है जिन्होंने लिखा कि जब आपने ये ऐलान किया था कि गीतमाला कार्यक्रम बंद हो जाएगा तो अच्छा नहीं लगा था, लेकिन सुरीला सफर कार्यक्रम जब हमने सुना तो तब से बड़ा आनंद आ रहा है। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि मेरी उम्र 38 बरस है पर मैंने सिर्फ दो ही फिल्में सिनेमाघर में देखी हैं, एक बजरंगी भाईजान और दूसरी सुई धागा। ओ हो, सिर्फ दो ही फिल्में। एक और श्रोता है जिन्होंने गुलशन बावरा का नाम लिखा है जो कि गलत जवाब है। और इसके अलावा एक श्रोता लिख रहे हैं कि अब ये दौर कभी नहीं आएगा, पुराना माहौल कुछ और था जो कभी नहीं दोहराया जाएगा। जिन्होंने ये समय दिखा है उनसे भाग्यशाली कोई नहीं हो सकता। कमर जलालाबादी की बात बहुत सारे श्रोताओं ने लिखी। एक श्रोता है जिन्होंने कहा 11वीं कक्षा में कॉलेज से बंक मारकर सहेलियों के साथ कर्ज आंखियों के झरोखों से हम किसी से कम नहीं और ऐसी कितनी ही फिल्में टोपी वाला थिएटर में देखी हैं, गोरेगांव के टोपी वाला थिएटर में। और इसके अलावा एक और श्रोता जिन्होंने लिखा कि दीवानों से मत पूछो गाने में एक टीस है, मुकेश की दर्द भरी आवाज रूह तक उतर जाती है। और फिर और भी कई श्रोता हैं। एक श्रोता ये कह रहे हैं कि विविध भारती पर सावन से जुड़े जितने कार्यक्रम हुए हैं उतनी बारिश हमारे यहाँ हो जाती तो मजा आ जाता। इसके अलावा एक और श्रोता है कहते हैं कि भाई बड़ी ही अजीब बात हुई, कल रात आप मेरे सपने में आए, मैं आपको बीमे की किस्त के रुपए दे रहा हूं। भाई ये तो बहुत ही अजीब सपना है आपका। और इसके अलावा एक और श्रोता है कि जिस तरह से आप कमेंट पढ़ते हैं आपका फनी अंदाज हमें बहुत अच्छा लगता है। एक और श्रोता है जो कश्मीर में कहते कि मेरे आंखों के आगे कश्मीर, और उन्होंने ये भी कहा है कि भाई आंखों के आगे कश्मीर का नज़ारा है और मैं अपने सफर पर आगे बढ़ता चला जा रहा हूं और मैं आपकी आवाज़ सुन रहा हूं। ये कितनी प्यारी बात है कि वो अपने सफर में भी विविध भारती को लगातार सुनते चले जा रहे हैं। एक और श्रोता है जिन्होंने कहा है कि भाई आप कहें और हम ना आए, ऐसे तो हालात नहीं, आज कार्यक्रम छूटता हुआ लग रहा था पर हमने छोड़ा नहीं है। इसके अलावा एक और श्रोता है जिन्होंने लास्ट पीरियड कई बार बंक किया, प्रिंसिपल से डांट खाई और एक बार फिल्म देखी ठिकाना और पापा से भी डांट खाई। इसके अलावा एक और श्रोता है जिन्होंने कहा कि भागकर तो नहीं पर दोस्तों के साथ एक बार गई थी, मम्मी को फिल्मों का बहुत शौक है तो मम्मी और पड़ोस की चाची और बहनों और उनकी बेटियों, मतलब उन्होंने पूरी टोली का लिखा है कि इन सबके साथ उन्होंने बहुत सारी फिल्में देखी हैं। और एक श्रोता लिख रहे हैं कि छुट्टी के बाद मैं और मेरे दोस्त अपनी साइकिलें कॉलेज में छोड़कर पास के सिनेमा हॉल में नूरी फिल्म देखने चले गए थे, बाद में प्रिंसिपल ने हमें बहुत डांटा था। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिख रहे हैं कि ट्रेन से सफर करके कॉलेज जाते थे, एक दिन ट्रेन काफी लेट पहुंची, बारिश भी बहुत थी, तब चिच्चोर फिल्म का बोर्ड एक जगह देखा था, मैं और मेरी सहेली फिल्म देखने चले गए लेकिन अंदर जाकर देखा कि अपने पराए फिल्म लगी थी, हमने जो है वो पुराना पोस्टर देख लिया था। तो ये तमाम बातें हमारे श्रोताओं की हैं। और अब चूंकि माहौल उस तरह के गानों का है तो एक और गाना आ रहा है और हेमंत कुमार की ये आवाज पूरी दिल में उतर जाएगी। हेमंत कुमार की आवाज के बारे में अपनी राय अपनी बात कहिए।

हेमंत कुमार की आवाज में अनुपमा फिल्म का ये गाना है। एक श्रोता लिखती हैं कि हेमंत कुमार की आवाज बिल्कुल अलग है, वो अच्छे गायक ही नहीं बल्कि एक बहुत अच्छे संगीतकार भी थे। एक और श्रोता हैं जो ये कहते हैं कि कभी ये गाना शायद ही कभी मुझे भावनाओं से आंसुओं तक लाने में नाकाम रहता होगा, जब भी सुनते हैं आंखें भर आती हैं। एक और श्रोता हैं जो कहते हैं कि इस गाने में धर्मेंद्र कितने खूबसूरत लग रहे हैं। एक और श्रोता हैं जिन्होंने कहा कि हम स्कूल से भी सिनेमा घर ले जाए गए थे, बच्चों की फिल्म थी तो स्कूल ने हमें फिल्म दिखाने का फैसला किया था। इसके अलावा एक और श्रोता कह रहे हैं कि आज आप कमेंट पढ़ने में सेंचुरी मार रहे हो भैया, शुक्रिया। एक और श्रोता है अनुपमा फिल्म का ये जो भावुक कर देने वाला गाना है, ये एक बात, और मेरे पिताजी का पसंदीदा गाना था, ये एक श्रोता की कमेंट है हेमंत की। हेमंता की आवाज़ में जैसे विषाद का स्वर घुला है, ये भी एक श्रोता की बात है। और इसके अलावा एक और श्रोता लिख रहे हैं कि कॉलेज से भागकर फिल्में देखना, ये तो मैं उस जमाने में सपने में भी नहीं सोच सकता था, क्योंकि हायर एजुकेशन की पढ़ाई के लिए मुझे खुद बच्चों को ट्यूशंस पढ़ाकर खर्चा निकालना होता था, इसलिए मैं अपनी क्लासेस कभी मिस नहीं करता था। बहुत ही सुंदर प्यारी बात आपने कही है भाई। आज यानी इस शनिवार 8 अगस्त के दिन हम बातें कर रहे हैं और पूरा एक हफ्ता 15 अगस्त को बचा है, तो चलिए बचपन की यादों की तरफ जाते हैं। स्कूल के दिनों में 15 अगस्त की तैयारियां आप किस तरह से करते थे ये जरूर बताइएगा। कुछ लोग होंगे जो नाटक तैयार करते होंगे, कुछ लोग होंगे जो कविताएं और गाने तैयार करते होंगे। एक जमाना था स्कूलों में 15 अगस्त को जिस तरह से मनाया जाता था, स्वतंत्रता दिवस को मनाने का बचपन का जो उत्साह है वो बहुत ही कमाल का रहा करता था। तो हम चाहते हैं कि आप वो यादें हमारे साथ बांटें। ठीक है, एक हफ्ता बचाए 15 अगस्त के लिए और हम ये यादें बांट रहे हैं। तब तक चलते हैं त्रिशूल फिल्म के एक ऐसे गाने की तरफ जो बहस कर

लगता है कि मोहब्बत काम की चीज है या नहीं है। आप क्या कहते हैं, आपका मोहब्बत पर भरोसा है या नहीं है? या आप ये कहते हैं कि ये बेकार बेदाम की चीज है? या आप ये कहते हैं

एक श्रोता लिखती हैं कि मोहब्बत ईश्वर का खूबसूरत तोहफा है, मोहब्बत नहीं तो कुछ नहीं, बस नीरसता रहेगी। एक और श्रोता लिखती हैं कि मोहब्बत एक सुंदर एहसास है जो सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। मोहब्बत के बारे में बहुत सारे श्रोताओं के कमेंट्स हैं। और इसके अलावा एक श्रोता लिखती हैं कि मेरी तो माँ ही प्रिंसिपल थी, इसलिए 15 अगस्त से काफ़ी पहले गतिविधियाँ शुरू हो जाती थी, नाट्य गीत नृत्य कहानी सभी की प्रैक्टिस हुआ करती थी। एक श्रोता लिखते हैं कि साहिर लुधियानवी ने मोहब्बत के बारे में इस गाने में अच्छा भी लिखा है और बुरा भी लिखा है। और इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो लिखते हैं कि आज आपको आना था और हमें बिल्कुल मिस नहीं करना था, बच्चे आ गए और हम थोड़ा बिजी हो गए। एक और श्रोता हैं जो कहते हैं कि हम तो अमिताभ बच्चन के पक्ष में हैं, क्योंकि जब तक कोई चीज़ नहीं मिलती तब तक वो बड़ी अनमोल होती, मिल जाने पर वो बेमोल।

उल हो जाती है। बचपन के 15 अगस्त की तैयारियां क्या खूब हुआ करती थीं। कई दिनों पहले से ही मन में तिरंगा लहराने लगता था। स्कूल की सफाई, रंग बिरंगे कागजों से सजावट, प्रभात फेरी की तैयारी और हाथ में थामे छोटे से झंडे का गर्व, बिल्कुल अलग तरह का उत्साह होता था। एक और

0: शूज सभी को धोकर तैयार करके हैंगर पर टांग कर रख देते थे। कब सुबह हो और जल्दी से तैयार होकर जाएं। और बूंदी के जो लड्डू मिलते थे, यूं लगता था कि खजाना मिल गया है। और इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो कहती हैं कि 15 अगस्त को देशभक्ति गीत गायन प्रतियोगिता होती थी और हम बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। एक और श्रोता कह रही हैं कि सुबह से इस गाने को याद कर रही थी पर यह याद नहीं आ रहा था। एक और श्रोता का कहना है कि 15 अगस्त के दिन नृत्य की प्रैक्टिस किया करते थे और मोतीचूर के लड्डू आज भी उन्हें याद आते हैं। इसके अलावा साहिर लुधियानवी के बोलों की तारीफ हमारे कई श्रोताओं ने कही है और इस गाने में एक ऐसी तपिश है जो दिल को पिघला देती है। एक और श्रोता शिकायत करती है कि भाई हर रोज हमारे काम करने का जो वक्त है वो मुकर्रर होता है, लेकिन जिस दिन आप आते हैं सुरीला सफर कार्यक्रम में हमारा पूरा टाइम टेबल गड़बड़ हो जाता है। भाई माफी चाहते हैं लेकिन सुरीला सफर में आना छोड़ नहीं सकते हम। आप अपना टाइम टेबल पूरी तरह से बिगाड़ कर रखिएगा और हम आते रहेंगे। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखती है कि हेमंत कुमार की आवाज़ गंभीरता और मिठास लिए हुए हैं और 15 अगस्त की तैयारियों के बारे में तो बस श्रोताओं के कमेंट लगातार चले आ रहे हैं और बहुत ही उमंग और उत्साह की बात। एक श्रोता है जिन्होंने बिल्कुल अलग तरह का कमेंट लिखा है, वो कहते हैं कि बारिश और ठंडी ठंडी सुबह होती थी तो 15 अगस्त के दिन नहाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती थी। क्या बात है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जरा देखिए ये क्या हुआ,
1: क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ।
0: क्या आप आम जिंदगी में इस गाने का इस्तेमाल करते हैं, किस तरह से, कब, जरा हमें बताइए।

एक श्रोता कहते हैं कि मेरी लिस्ट का ये सातवां गाना भी बच गया है, यानी आज की इबारत में से उन्होंने बहुत सारा अंदाजा लगा रखा था। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि बहुत बार जब सोचते कुछ और होता कुछ और है तो हम कहते हैं ये क्या हुआ। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि जब कोई चीज गुम जाती है तो मैं अक्सर गाता हूं ये क्या हुआ। इसके अलावा एक और श्रोता है जो कहते हैं कि इस धरती के अनमोल रत्न से विभूषित किशोर कुमार, भाई किशोर कुमार की तारीफ करें। एक और श्रोता है जो लिख रहे हैं कि ये क्या हुआ गाना बज रहा है, बादल छाए बस बारिश होने वाली है। एक और श्रोता एनसीसी में थी और वो कह रही हैं कि जो खाने का पैकेट मिलता था वो बहुत ही शानदार होता था। और इसके अलावा एक और श्रोता लिखते हैं कि भाई ये तो हमारा तकिया कलाम है, ये क्या हुआ जब तब हमारी जबान से ये निकल जाता है। और इसके अलावा कुछ और श्रोताएं 15 अगस्त की यादें, वो समूह गान सब कुछ याद आ गया है। और एक श्रोता हैं जो लिखती हैं कि स्वतंत्रता दिवस पर हमारे स्कूल में परेड होती थी और हजरतगंज तक पैदल ही हम सब परेड में भाग लेते थे। इसके अलावा कुछ और श्रोता हैं जिन्होंने बहुत ही खूबसूरत यादें अपनी बांटी हैं। और एक श्रोता कहते हैं कि एक दिन पहले ही सुबह 3 बजे नींद खुल जाती थी कि कल बूंदी वाले लड्डू मिलेंगे।

0: ये भाई हाईलाइट है, ये बूंदी वाले लड्डू जो है ये सबके लिए एकदम कॉमन बात है। कितनी सारी यादें श्रोताओं ने साझा की हैं। और अब देखिए क्या प्यारा गाना साहिर लुधियानवी का।
1: खुद पे
0: क्या आपको लगता है कि आज के जमाने में एक दूसरे के प्रति सहानुभूति, सहृदयता, संवेदना कम होती जा रही है?

एक श्रोता ये लिखती हैं कि कौन रोता है किसी और की खातिर है दोस्त, ये गाना जमाने की हकीकत को दर्शाता है। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि आज अगर संवेदना कम होती चली जा रही है तो उसकी एक वजह मोबाइल फोन है। और इसका एक और श्रोता है जो ये कहते हैं कि भाई सचमुच आज संवेदनाएं बहुत कम होती चली जा रही हैं। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि सहानुभूति होती तो है पर आज के लोग उसे व्यक्त नहीं कर पाते, अपने आप में इतने गुम रहते हैं। इसके अलावा एक और श्रोता है जो ये लिखते हैं कि आज का वक्त ऐसा है कि किसी को किसी के पास वक्त नहीं है। एक और श्रोता लिखते हैं कि संवेदनाओं में 100% की कमी आई है। तो बहुत सारे श्रोता ये मानते हैं कि आज संवेदनाओं में लगातार कमी आती चली गई है। एक और श्रोता है जिन्होंने 15 अगस्त की सुहानी याद के बारे में अपनी बात ये लिखी है कि मैं कक्षा छठी में थी और मुझे भाषण देने की प्रतियोगिता में हिस्सा लेना था, लेकिन उस दिन मुझसे कुछ बोला ही नहीं गया और मैं तो रो पड़ी थी। भाई देखिए, ये भी एक याद जो है वो उभर कर सामने आ गई। एक बहुत ही जज्बाती गाना अब आपके लिए, आपको बताना है कि हमने ये किस फिल्म से लिया है।

लता मंगेशकर की आवाज, बहू बेगम फिल्म का ये गाना। बहुत सारे श्रोताओं ने ये बात पहचान ली है। और एक श्रोता लिखते हैं कि आज किसी की खुशी या परेशानी में रील बनाना लोगों को ज्यादा पसंद आता है। और इसके अलावा कई श्रोता ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि आज लगातार जज्बात की कमी होती चली जा रही है। आखिरी गाना ये रहा। मदन मोहन और लता मंगेशकर के कॉम्बिनेशन के बारे में क्या ख्याल है आपका, ये बताइए।

भई आज के कार्यक्रम का वक्त यहीं खत्म हो रहा है। आप सभी ने इस कार्यक्रम में साथ निभाया और सवालों के जवाब दिए, कमेंट्स किए, गाने सुने, बहुत बहुत शुक्रिया। दिन की इस भागदौड़ में जहां कहीं भी रहिए, विविध भारती के संग बने रहिए, क्योंकि विविध भारती देश की सुरीली धड़कन है। कार्यक्रम का सफर आपने अपने दोस्त यूनुस खान के संग तय किया। इजाजत दीजिए, नमस्कार।

कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं अगला गीत फिल्म मिशन कश्मीर से। शंकर महादेवन और जसविंदर नरूला का गाया ये गीत है, साथ दिया है सुनिधि चौहान और साथियों ने। राहत इंदौरी के बोल हैं और शंकर एहसान लॉय का संगीत।

मिशन कश्मीर के साथ इस फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं नवनीत चौबे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली के विद्यार्थियों से आग्रह किया कि वे अपने निर्णयों में राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखें और स्वयं से प्रश्न करें कि उनके कार्यों से देश को किस प्रकार लाभ हो सकता है और उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकती है। श्री मोदी ने ये बातें IIT दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रत्येक पीढ़ी अपने समय की विशिष्ट चुनौतियों का सामना करती है और अपनी राष्ट्रीय जिम्मेदारी निभाती है। उन्होंने कहा कि स्नातक विद्यार्थियों द्वारा अगले 30 से 35 वर्षों में किए जाने वाले कार्य का देश के विकसित भारत के मार्ग पर महत्वपूर्ण असर पड़ेगा।
1: आज आपके परिवार के लोग प्राउड फील कर रहे हैं, वैसे ही मुझे भी आप सब पर गर्व है, क्योंकि आप सब केवल एक डिग्री नहीं ले रहे हैं, आप देश के लिए बहुत कुछ करने का सपने लेकर के यहाँ से निकल रहे हैं।
0: इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने IIT दिल्ली में परम

0: प्रज्ञा नामक एक उच्च दक्षता की कंप्यूटिंग सुविधा का उद्घाटन भी किया। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत द्वारा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की उपस्थिति में इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में वेस्ट जोन रीजनल कॉन्फ्रेंस का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री ने यहां कहा कि न्याय केवल निर्णय नहीं है, न्याय समान अवसर है, न्याय समानता है, न्याय विश्वास है। उन्होंने कहा कि न्याय प्रत्येक नागरिक के भीतर यह भावना उत्पन्न करता है कि संविधान उसके साथ खड़ा है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण इसी संवैधानिक भावना को जन जन तक पहुंचाने का कार्य कर रहा है। श्री मेघवाल ने कहा कि मध्य प्रदेश की धरती हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, जनजाति परंपराओं और सामाजिक विविधताओं का अद्भुत संगम है। राजा भोज की सुशासन परंपरा और देवी अहिल्याबाई होलकर की न्यायप्रिय शासन व्यवस्था हमें प्रेरणा देती है कि सुशासन का वास्तविक आधार न्याय ही है। भोपाल में 5 अगस्त से चल रहे ब्रिक्स कल्चरल ट्रेक 2026 के तहत आज ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक हो रही है। आज के कार्यक्रम की जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता।
1: भोपाल में 5 अगस्त से चल रहे ब्रिक्स कल्चरल ट्रैक 2026 के तहत आज ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक हो रही है। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की मौजूदगी में हो रही इस बैठक में दक्षिण अफ्रीका, संयुक्त अरब अमीरात और इंडोनेशिया के संस्कृति मंत्री भी शामिल हैं। अन्य सदस्य देशों की ओर से वरिष्ठ अधिकारी और प्रतिनिधि बैठक में हिस्सा ले रहे हैं, जबकि मिस्र वर्चुअल माध्यम से इस बैठक में जुड़ा हुआ है। बैठक में ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की घोषणा, जिसे भोपाल देशन के नाम से जाना जाएगा, साथ ही सांची कल्चर कनेक्ट पर भी चर्चा होगी। बैठक के बाद मंत्री और प्रतिनिधि सांची के विश्व धरोहर स्थल का भ्रमण करेंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए भोपाल से मैं विपिन मिश्रा।
0: अब बात मौसम की। प्रदेश में मॉनसून की बेरुखी के बीच आज पन्ना, सतना और रीवा में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने इन तीनों जिलों में अगले 24 घंटे के दौरान 4 इंच तक बारिश का अनुमान जताया है। वहीं भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर और जबलपुर समेत प्रदेश के 52 जिलों में हल्की बारिश या बूंदाबांदी होने के आसार हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के अंतर्गत कल ग्वालियर में जिला स्तर से 60 अधिकारी मैदान में उतरे। घाटी गांव में अभियान के तहत पहला जिला स्तरीय जन विश्वास शिविर लगाया गया। प्रदेश के अनुसूचित जाति कल्याण विभाग मंत्री और आगर मालवा के प्रभारी नागर सिंह चौहान कल जिले के प्रवास पर रहेंगे। जबलपुर में 18 वर्ष तक के बच्चों और किशोरों के लिए निःशुल्क हृदय रोग जांच शिविर का आयोजन कल जिला अस्पताल में किया गया। शिविर राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित किया गया था। भोपाल के हमीदिया अस्पताल में चल रहे विश्व स्तनपान सप्ताह का समापन हो गया है। जन्म के बाद शिशु को स्तनपान कराने के लिए जागरूक प्रतियोगिताएं आयोजित की गई और प्रतिभागियों को पुरस्कार दिए गए। शिवपुरी जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कल जिला स्तरीय पर्यटन क्विज प्रतियोगिता 2026 का आयोजन किया गया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष और ड्रोन जैसे उभरते क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता विकसित भारत की मजबूत नींव रखेगी। उन्होंने आईआईटी के विद्यार्थियों से अपने निर्णयों में राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखने का आग्रह किया। झारखंड सरकार ने जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर प्रदर्शनकारी छात्रों के साथ दूसरे दौर की वार्ता की। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में आज सुबह एक निजी बस दुर्घटना में 7 लोगों की मौत और 11 घायल। राजस्थान और ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट। जम्मू से बालतल की ओर अमरनाथ यात्रा खराब मौसम के कारण स्थगित। और पुरुषों के भाला फेंक स्पर्धा में आशीष यादव ने विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप में रजत पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी दिल्ली के विद्यार्थियों से आग्रह किया कि वे अपने निर्णयों में राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखें। श्री मोदी ने आईआईटी दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि

0: प्रत्येक पीढ़ी अपने समय की विशिष्ट चुनौतियों का सामना करती है और अपनी राष्ट्रीय जिम्मेदारी निभाती है।
1: आप सब जानते हैं हर पीढ़ी के सामने उस टाइम पीरियड की अपनी चुनौतियां होती है और हर पीढ़ी का अपना एक राष्ट्रीय दायित्व भी होता है। साथियों, आज के इस दौर में हमारे सामने चुनौतियां भी अलग है और इसलिए हमारे दायित्व भी अलग है। अपने जीवन के अगले 30-35 साल में आप जो कुछ भी करेंगे वो विकसित भारत की हमारी यात्रा को प्रभावित करेगा।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में नए क्षेत्रों के विकास से युवाओं के लिए नए अवसर सृजित हो रहे हैं। उन्होंने सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष और ड्रोन जैसे क्षेत्रों का उदाहरण देते हुए कहा कि भारत सभी क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में कार्य कर रहा है। श्री मोदी ने कहा कि आत्मनिर्भरता की ये पहल विकसित भारत के निर्माण के लिए एक मजबूत आधार का काम करेगी।
1: सेमीकंडक्टर सेक्टर का उदाहरण भी हमारे सामने है। जब हमने इस दिशा में कदम बढ़ाया तो कुछ लोगों ने सवाल उठाए, कहा गया भारत ये नहीं कर पाएगा, लेकिन आज पहली सेमीकंडक्टर यूनिट्स में प्रोडक्शन शुरू हो चुका है और मैं साफ मानता हूं चिप से लेकर के शिप तक सब कुछ यहीं पर आप ही के हाथों से बनेगा। और कहीं कोई युवा पूरे आत्मविश्वास से कह रहा है फर्स्ट इन माय ब्लड लाइन टू मेक अ चिप इन इंडिया।
0: श्री मोदी ने सोशल मीडिया के युग में उत्पन्न होने वाले विकर्षणों के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को वेतन, नौकरी या कार्यक्षेत्र के आधार पर दूसरों से अपनी तुलना करने से बचना चाहिए।
1: जब हम बड़े गोल्स को अचीव करने के लिए प्रारंभ करते हैं तो एक बड़ा डिस्ट्रक्शन भी हमारे सामने आता है। ये डिस्ट्रक्शन होता है एक दूसरे से कंपेरिजन का। लेकिन याद रखिए, जिंदगी कोई लीडर बोर्ड नहीं है, आपकी असली दौड़ किसी और से नहीं खुद अपने आप से है। हर दिन कल से बेहतर बनने की कोशिश करते रहिएगा।
0: इस अवसर पर शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण ने भारत के शिक्षा तंत्र को शिक्षार्थी केंद्रित, अनुसंधान आधारित और भविष्योन्मुखी बनाया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने देश के संस्थानों में नया आत्मविश्वास जगाया है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने IIT दिल्ली में परम प्रज्ञा नामक एक उच्च दक्षता की कम्प्यूटिंग सुविधा का उद्घाटन भी किया। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में निजी विश्वविद्यालय की स्थापना और उन्हें कानूनी मान्यता देने से जुड़े मसौदा विधेयक को मंजूरी दे दी है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य दिल्ली में विश्व स्तरीय निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए आधुनिक, पारदर्शी और प्रभावशाली कानूनी ढांचा तैयार करना है। मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद इस विधेयक को मानसून सत्र के दौरान विचार और पारित करने के लिए दिल्ली विधानसभा में पेश किया जाएगा। झारखंड में आज JPSC और JSSC भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर जारी गतिरोध समाधान की ओर बढ़ता दिखाई दे रहा है। राज्य सरकार और विरोध प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों के बीच विभिन्न समूहों के बीच उच्च स्तरीय वार्ता का दूसरा दौर आज आयोजित किया गया। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: आज रांची के स्टेट गेस्ट हाउस में सरकार द्वारा गठित मंत्रियों की विशेष कमेटी और छात्र संगठनों के बीच दूसरे दौर की वार्ता सकारात्मक माहौल में संपन्न हुई। सरकार की ओर से मंत्रियों ने स्पष्ट किया कि वे व्यापक परीक्षा सुधारों के लिए प्रतिबद्ध हैं। पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने एक आधिकारिक फीडबैक ईमेल ID भी जारी की है, जिस पर छात्र और सभी हितधारक अपने सुझाव भेज सकते हैं। सरकार इन सभी सुझावों के आधार पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में अंतिम निर्णय लेगी। हालांकि छात्र प्रतिनिधियों ने वार्ता पर संतोष जताया है, लेकिन कहा है कि मांगों पर ठोस और लिखित आदेश आने तक उनका शांतिपूर्ण आंदोलन जारी रहेगा। इस बीच परीक्षा गड़बड़ी मामले की जांच कर रही CID ने भी अपनी कार्रवाई तेज कर दी है और आयोग के 3 वर्तमान सदस्यों को पूछताछ के लिए समन भेजा है। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: मध्य प्रदेश के भोपाल में ब्रिक्स देशों के संस्कृति मंत्रियों की बैठक आज से शुरू हुई। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की मौजूदगी में इस बैठक में सदस्य देशों की सांस्कृतिक विरासत, संग्रहालय, रचनात्मक अर्थव्यवस्था और सांस्कृतिक आदान प्रदान सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हो रही है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: भोपाल में 5 अगस्त से चल रहे ब्रिक्स कल्चरल ट्रैक 2026 के तहत आज ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक हो रही है।

0: केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की मौजूदगी में हो रही इस बैठक में दक्षिण अफ्रीका, संयुक्त अरब अमीरात और इंडोनेशिया के संस्कृति मंत्री भी शामिल हैं। बैठक में ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की घोषणा, जिसे भोपाल डिक्लेरेशन के नाम से जाना जाएगा, साथ ही सांची कल्चर कनेक्ट पर भी चर्चा होगी। बैठक के बाद मंत्री और प्रतिनिधि सांची के विश्व धरोहर स्थल का भ्रमण करेंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए भोपाल से विपिन मिश्रा।
1: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने विश्वास व्यक्त किया है कि अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन शहरी बैंकिंग क्षेत्र को आधुनिक, पारदर्शी और भरोसेमंद सेवाएं प्रदान करके उसमें क्रांतिकारी परिवर्तन लाएगा। सहकारी समितियों में अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन एक केंद्रीय शासी या सहायक निकाय होता है, जिसका गठन कई स्वतंत्र सहकारी संस्थाओं द्वारा किया जाता है। मुंबई के फोर्ट क्षेत्र में राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम के नए कार्यालय परिसर का उद्घाटन करते हुए श्री शाह ने ये बात कही। सहकारी क्षेत्र की शक्तियों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि छोटे छोटे निवेश को जोड़कर बड़े कारोबार के लिए बड़ी पूंजी जुटाई जा सकती है।
2: मेरा जो कोऑपरेटिव का समझ है, बड़ा व्यापार करने के लिए छोटे छोटे लोगों की कोऑपरेटिव बनाकर छोटी पूंजी से बहुत बड़ी पूंजी निर्मित कर बड़ा व्यापार किया जा सकता है। अमूल आज 1,25,000 करोड़ का व्यापार करता है। इप्को, क्रिप्को, एक जमाने में लिज्जत पापड़, ये किसी में भी पूंजी का निवेश 50 रुपया से ज्यादा नहीं है। और आज अमूल विश्व का खाद्य पदार्थों का सबसे ज्यादा लोकप्रिय ब्रांड बन व्यापार कर रहा है।
1: केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बताया है कि बिहार से पहली बार GI टैग वाले मिथिला मखाना की 18 मीट्रिक टन खेप ऑस्ट्रेलिया भेजी गई है। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि दरभंगा में किसानों से सीधे खरीदी गई इस खेप से उन्हें बाजार मूल्य की तुलना में लगभग 18% से अधिक लाभ मिला है। उन्होंने कहा कि ये उपलब्धि कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के सहयोग से हासिल की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा का एक लेख साझा किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ये लेख भारत के बढ़ते आत्मनिर्भर चिकित्सा प्रौद्योगिकी तंत्र को उजागर करता है, जो घरेलू विनिर्माण, आयात पर कम निर्भरता और प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना और मेडिकल डिवाइस पार्क जैसी पहलों से आगे बढ़ रहा है। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में आज सुबह एक बस दुर्घटना में 7 लोगों की मौत हो गई और 11 घायल हो गए। ये दुर्घटना सुबह करीब 7:15 हुई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार बस बैरागढ़ से चंबा जा रही थी। चलवांज मोड़ के पास चालक ने बस पर नियंत्रण खो दिया और बस सड़क से उतरकर नीचे दूसरी सड़क पर गिर गई। दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है। मृतकों की पहचान अभी नहीं हो पाई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। राष्ट्रपति ने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। प्रधानमंत्री मोदी ने मृतकों के परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम और जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग की खराब स्थिति को देखते हुए आज जम्मू से बालतल की ओर श्री अमरनाथ जी यात्रा रोक दी गई है। हालांकि बालतल से पवित्र गुफा की ओर यात्रा सामान्य रूप से जारी है। सुबह से 2,500 से अधिक श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। दर्शन के बाद श्रद्धालुओं को जम्मू की ओर जाने की अनुमति दी जा रही है। मौसम विभाग ने केरलम में मूसलाधार बारिश की आशंका को देखते हुए आज 7 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और शेष 7 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। कल के लिए 4 उत्तरी जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने आज राजस्थान और ओडिशा में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार आज लक्षद्वीप, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में बिजली और तेज हवाओं के साथ तूफान आने की संभावना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: मौसम विभाग ने अगले दो दिनों के दौरान बिहार, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, ओडिशा और राजस्थान में गरज चमक के साथ तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और सिक्किम में भी ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। इस बीच हिमाचल प्रदेश, झारखंड और उत्तर प्रदेश में इस महीने की 10 तारीख तक तेज से बहुत तेज बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में अगले तीन दिनों के दौरान तेज सतही हवाएं चलने की संभावना है। दिल्ली NCR में मौसम विभाग ने आज दिन भर बादल छाए रहने के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान जताया है। भानु प्रताप के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: रेलवे ने ओणम के अवसर पर केरलम के लिए विशेष ट्रेनों की संख्या बढ़ाकर 112 कर दी है। इन विशेष रेलगाड़ियों का मुख्य रूप से तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से आवागमन होगा। एक रिपोर्ट।
4: रेलवे ने ओणम के दौरान यात्रियों की सुविधा और अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए 14 अगस्त से 6 सितंबर के बीच अब तक 112 विशेष ट्रेन सेवाओं की घोषणा की है। इनमें से 38 विशेष ट्रेन दक्षिण रेलवे के अंतर्गत चलाई जाएंगी। दक्षिण रेलवे ने अन्य रेलवे जोन के लिए भी 16 अतिरिक्त विशेष ट्रेन की घोषणा की है। इसके अलावा अन्य रेलवे जोन भी इस दौरान 58 विशेष ट्रेन चलाएंगे। तिरुवनंतपुरम से स्मिति एम पलरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: जम्मू कश्मीर में स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां जोरों पर हैं। उधमपुर में महिलाओं का एक समूह हर घर तिरंगा अभियान के तहत हाथ से राष्ट्रीय ध्वज और तिरंगे से जुड़ी सजावटी वस्तुएं तैयार कर रहा है। हरियाणा में हर घर तिरंगा अभियान और वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में कल से 17 अगस्त तक विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। ये आकाशवाणी है। यूक्रेन की राजधानी कीव के पास रात में रूस द्वारा किए गए मिसाइल हमले में एक बच्चे सहित 3 लोगों की मौत हो गई। क्षेत्रीय सैन्य प्रशासन प्रमुख तिमूर तकाचेंको ने कहा कि बैलिस्टिक मिसाइल के हमलों में 3 लोग घायल भी हुए हैं। अमेरिका में विश्व एथलेटिक्स अंडर-20 चैंपियनशिप के तीसरे दिन भारत को पहला पदक मिला। पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में आशीष यादव ने रजत पदक अपने नाम किया। 19 वर्षीय आशीष ने 74.09 मीटर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए दूसरा स्थान हासिल किया। दक्षिण अफ्रीका के जॉन हैंड्रिक हैंसमैन ने स्वर्ण पदक जीता। अश्मिता चालिहा दक्षिण कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गई हैं। उन्होंने आज सेमीफाइनल में हमवतन रक्षिता रामराज को हराया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष और ड्रोन जैसे उभरते क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता विकसित भारत की मजबूत नींव रखेगी। उन्होंने IIT के विद्यार्थियों से अपने निर्णयों में राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखने का आग्रह किया। झारखंड सरकार ने JPSC और JSSC परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर प्रदर्शनकारी छात्रों के साथ दूसरे दौर की वार्ता की। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में आज सुबह एक निजी बस दुर्घटना में 7 लोगों की मौत और 11 घायल। राजस्थान और ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट। जम्मू से बालतल की ओर अमरनाथ यात्रा खराब मौसम के कारण स्थगित। और पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में आशीष यादव ने विश्व एथलेटिक्स अंडर-20 चैंपियनशिप में रजत पदक जीता। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: हम विविध भारती से बोल रहे हैं, सदाबहार नगमे। SH बिहारी के बोल ओपी ने

0: खुद से सुनी है, नहीं उदास नहीं बस ये।
1: गुलजार के बोल हेमंत कुमार की तर्ज, उन्हीं की आवाज, सन्नाटा फिल्म का ये गाना था। इससे पहले सावन की घटा फिल्म का गीत आपने सुना। मोहम्मद रफी की आवाज थी, एसएच बिहारी के बोल ओपी नैयर की तर्ज थी। एक आवाज जिसमें है जोश, जुनून, नशा।
2: कभी तो लिफ्ट करा दे, थोड़ी सी तो लिफ्ट करा दे।
1: एक आवाज जो आपको अपने साथ

0: फिल्म का नाम था दुल्हन एक रात की। ये गाना अभी आपने सुना और ये आज के सदाबहार नगमे कार्यक्रम की आखिरी पेशकश थी।
1: हार्मोन हमारे शरीर का एक जरूरी हिस्सा है और जब इनका संतुलन बिगड़ता है तो मुश्किलें बढ़ जाती हैं। विविध भारती पर हार्मोन विशेषज्ञ डॉक्टर संजय भदादा आपको बताएंगे हार्मोन्स के असंतुलन के बारे में और इसके बाद हुई हड्डियों से जुड़ी समस्याओं के बारे में।
2: हमारी जो डिसऑर्डर्स है, एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स है, वो महिलाओं में अगर मैं बोलूंगा तो 70% महिलाएं और 30% मेल इसमें अफेक्ट होते हैं। विविध भारती के पूरे हिंदुस्तान के सुनने वाले श्रोताओं को ये बताना चाहता हूँ कि बोन डिसऑर्डर्स हॉर्मोन्स के साथ बहुत क्लोजली एसोसिएटेड होते हैं।
1: 10 अगस्त शाम 4 बजे और 11 अगस्त सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: सेहतनामा।

0: मन चाहेगी।
1: मन चाहेगी,
2: मन चाहेगी।
3: आप सभी को नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान।
4: कार्यक्रम शुरू करने से पहले कुछ जरूरी बातें।
1: एक व्यक्ति या परिवार की चिट्ठियां एक महीने में एक बार ही शामिल की जाएंगी।
4: एक चिट्ठी में केवल अपने परिवार के नाम लिखें, दूसरे शहर के, दूसरे व्यक्तियों के, अपने दोस्तों के नाम नहीं लिखें, इन्हें शामिल नहीं किया जाएगा।
1: हम अपने हर श्रोता की चिट्ठियों को शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे, पर इसमें समय लग सकता है, कृपया धैर्य बनाए रखें।
2: और हाँ, हस्तलिखित चिट्ठियों को प्राथमिकता दी जाएगी, कृपया सील ठप्पे वाले और छपे हुए पोस्टकार्ड ना भेजें, अंतरदेशीय नहीं, केवल पोस्टकार्ड भेजें। और ये चिट्ठियां आपको भेजनी कहाँ है?
4: कार्यक्रम मन चाहेगी,
1: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
2: पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091।

आप सभी का बहुत बहुत स्वागत मनचाही गीत कार्यक्रम में। और आज के इस कार्यक्रम का आगाज हो रहा है मिस्टर नटवरलाल फिल्म के गाने से, लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजें और फरमाइश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। जिला कासगंज उत्तर प्रदेश से योगेंद्र नायक, गीता नायक, निहारिका नायक और सुशांत नायक। सेक्टर 18 जगाधरी हरियाणा से विनय मोहन, मीनाक्षी, पलोमा और डॉक्टर ईशानी। और ये चिट्ठी लखी श्रीवास्तव, दीशा, दिव्यांश और रूही की है, अमरपुर पेंड्रा छत्तीसगढ़ से। इसके अलावा ये खत है चेतन शामतकर और ज्योति शामतकर और पुरुषोत्तम शामतकर का, उल्हासनगर से। और इसी गाने की फरमाइश करने वाले ये श्रोता हैं गुजरात भावनगर से राहुल ओझा, दीपल और ये नाम कुछ प्राप्तक ओझा जैसा कुछ नाम लिखा हुआ है। और ये कर्नाटक से चिट्ठी है चिन्ना तिरुपति से श्यामला, प्रकाश, अश्विनी, रमेश, आनंद और मनवित की। आप सभी सुनिए ये गाना, लता मंगेशकर और किशोर कुमार। गीत आनंद बख्शी, संगीत राजेश रोशन।

कार्यक्रम का अगला गीत जमाने को दिखाना है फिल्म से है और इस गाने को शैलेंद्र सिंह ने गाया है। आपको बता दें कि मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा यह गीत आरडी बर्मन ने कंपोज किया और चिट्ठी लिखी घड़ी नांदूरा से श्री कृष्ण बाठे संदीप अमूल्य और वैशाली बाठे ने। इसी गाने के लिए राजकोट से मधुसूदन भट्ट आरती जासमीन और प्रयागराज का खत है और ये चिट्ठी है रवि भाई सिसोदिया, मुन्ना भाई सिसोदिया, गीताबा सिसोदिया, धर्मराज, करणराज और पूरे सिसोदिया परिवार की केदारनाथ सोसाइटी से। वामन मगरे मराठवाड़ा नांदेड़ से इन्होंने चिट्ठी लिखी है और वारंगा फाटा जिला हिंगोली से कुंडलीक मोरे, पांडुरंग मोरे, अश्विनी मोरे और वैष्णवी मोरे ने चिट्ठी लिखी है और दिलचस्प ये है कि केदारनाथ सोसाइटी वाले हमारे श्रोताओं ने अपना नाम नहीं लिखा, वो नाम अपने शहर का नाम लिखना भूल गए। आपके लिए ये गाना

विविध भारती पर आप मन चाहे गीत कार्यक्रम सुन रहे हैं और अब जो गाना आ रहा है उसके लिए आप सभी के खत मिले हैं। अल्लिया नगर केंड गांव से भाऊ साहेब नवथर अक्षय चंदन जय कुमार चंदन रुचिता चंदन और इनका परिवार। ये चिट्ठी है टाउनशिप सेक्टर 8 भिलाई नगर से अशोक कुमार श्याम कुमार प्रमिला चीनू आसमा दीपक अनुश्री और पूरे श्याम कुंवर परिवार की और बहुत ही रंग बिरंगी चिट्ठी राजेश वाघमारे प्रिया वाघमारे रोहन वाघमारे और नेहा वाघमारे की जूना तारफेल अकोला महाराष्ट्र से फैसल इमाम मोहम्मद अफजल मोहम्मद अकमल नफीसा और ये पूरा परिवार हयात कॉलोनी अररिया बिहार से इस गाने को सुनना चाहता है। उदयपुर से फरमाइश आई है अशरफ खान जब्बार मोहम्मद तजीब खान मंजू और निम्मी की। आप सभी की फरमाइश पर सौतन फिल्म का गाना लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजें गीत सावन कुमार संगीत उषा खन्ना।

0: बिल्कुल नहीं, तेरी कसम आऊंगा।
1: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं मनचाही गीत कार्यक्रम, और मनचाही गीत कार्यक्रम में देश भर से हमारे श्रोता लिखते हैं चिट्ठियां और इंतजार करते हैं अपनी चिट्ठियां शामिल होने का और अपने गानों का। संजय ढींगिया, नमन ढींगिया और अपार ढींगिया बागपत उत्तर प्रदेश के हमारे श्रोता, ग्राम खकल तहसील कौंच जिला जालौन उत्तर प्रदेश से दीपक सिंह गुर्जर, अंशराज गुर्जर और इनका पूरा परिवार, रमेश नाचानी, भारती नाचानी, विनीत नाचानी और बाबू भाई महाराणा प्रताप कॉलोनी उदयपुर के श्रोता हैं, और गणेश पेट पाथरडी से अंबादास शिंदे, संगीता शिंदे, कृष्णा शिंदे, आराध्या श्लोक और भैया, और ये श्रोता हैं सिंधी कैंप पक्की खोली अकोला महाराष्ट्र से श्याम संतानी, आशा संतानी, नैन्सी संतानी और सुमित संतानी, ये सभी सुनना चाहते हैं। जावेद अख्तर का लिखा गीत, हृदयनाथ मंगेशकर का संगीत है, फिल्म है

और अब मनचाही गीत कार्यक्रम की आखिरी पेशकश बहू बेगम फिल्म का गीत साहिर लुधियानवी के बोल रोशन की तर्ज और आप सभी की फरमाइशें चूड़ी लाइन भाटापारा से अब्दुल मजीद कुरैशी रेहाना बेगम और मोहम्मद साजिद पटेल नगर मलोट पंजाब से डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया गीता रानी जाजोरिया गगनदीप जाजोरिया और बीबी आरजू जाजोरिया वरुण जाउलका से महेंद्र सरकटे विजया सरकटे और मिलिंद सरकटे निखिल साखरकर रोहित सुनीता अरविंद साखरकर और पूरा परिवार मालेगांव जिला वाशी से और कबीर रेडियो श्रोत्रा संग बालोद छत्तीसगढ़ से डॉली बेबी पूजा तमूरिया राधिका प्रभा देवी अजय देव देव शंकर तुषार देव तमूरिया और इनका पूरा परिवार। ये गाना आप सभी की फरमाइश पर। फिल्म का नाम है बहू बेगम, आशा भोसले और मोहम्मद रफी।

0: विविध भारती।
1: नाट्य तरंग में आज हम आपको सुनवा रहे हैं नाटक किसी एक फूल का नाम लो का पहला भाग। मूल गुजराती लेखक मधु राय, हिंदी रूपांतरण ज्योति व्यास, संपादन चिरंजीत, निर्देशक सुशील बनर्जी। तो सुनिए नाटक किसी एक फूल का नाम लो का पहला भाग।
2: केशव कहाँ चला गया? केशव, केशव, तीसरी घंटी हो गई और केशव से कहोगी अनाउंस करे। हाँ है ये लेखक की तुम केशव ठाकर अभी आया पाटिल जी, जाके अनाउंस क्यों नहीं कर रहे?
3: जहाँ
2: केशव कहाँ जा रहे हो? माइक्रोफोन तो ये रहा।
3: सॉरी सॉरी डॉक्टर साहब, माइक जरा ऊंची करो। गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, आई मीन नमस्कार देवियों और सज्जनों। हाँ तो नाट्य मंच अपने नए नाटक के प्रथम प्रदर्शन के अवसर पर आप सबका सहर्ष स्वागत करता है और आपके सम्मुख प्रस्तुत करता है हास्य प्रधान नाटक किसी एक फूल का नाम लो। सज्जनों सज्जनों शांत, इसके लेखक हैं केशव ठाकर और निर्देशक जगन्नाथ पाठक। सज्जनों सज्जनों सुनिए सुनिए, कलाकारों का भूमिकाओं सहित परिचय इस प्रकार है। कांता कामनी देसाई, प्रमोद प्रमोद जगन्नाथ पाठक, भाभी स्वाति सोनी। सज्जनों शांत, और सुनिए नंदलाल प्रीतम सोनी, निरंजन सुंदर देसाई और देश पांडे केशव ठाकर। सज्जनों तो अब प्रस्तुत है नाट्य मंच का ये नाटक किसी एक फूल का नाम लो।

0: कांता, मान लो कि
1: रबोट, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है। तुम अपनी जिद छोड़ोगे नहीं और मैं सारी जिंदगी,
0: मुझे भी तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है। और हमारे बीच पति पत्नी की सारी बातें मुझे लगता है इसी के साथ खत्म होती है। ओह, कितनी देर हो गई।
1: दफ्तर जा रहे हो प्रमोद? जाओ।

0: हेलो, कौन? नंदलाल भाई? हाँ, मैं कांता बोल रही हूँ। सुनिए, प्रमोद आज फिर झगड़ा करके दफ्तर चला गया है। हाँ, आज रात अगर आप हमारे यहाँ आ सके ज्योत्सना भाभी को लेकर तो ठीक रहेगा। हाँ, प्रमोद को खुद फोन करके बता दे, निरंजन को मैं बता दूंगी। अच्छा, रात को जरूर आइएगा। बाय।
1: कहो मेरी जान।
0: ओह, तुम आ गए निरंजन। आज रात को फैसला हो जाएगा। मैंने नंदलाल भाई और भाभी को बुलाया है।
1: सच मेरी कांता?
2: करते रहोगे फिर सब आ गए।
0: आओ, सब आ जाओ। आज मेरी अर्थी उठ रही है, रोने वालों की जरूरत होगी। नंदलाल भाई आओ, ज्योत्सना भाभी आओ, निरंजन तुम भी आओ।
3: आखिर हुआ क्या कांता?
4: अरे नंदलाल, मैं बताती हूँ। असल में कांता और निरंजन।
5: नहीं नहीं नहीं, ये बात झूठ है। हम प्रेमी नहीं है।
3: प्रमोद, तुम ये क्या टाइप कर रहे हो?
6: आज जहाँ दंगा होने वाला है नंदलाल भाई, उसी को खत्म करने के लिए मैंने अपना यह घोषणा पत्र तैयार किया है। तो सुनो, आई प्रमोद पटेल, हस्बैंड ऑफ माय मोस्ट बिलवड वाइफ कांता पटेल, मैडम नेम कांता गोस्वामी, डू हियर बाय डिक्लेयर।
4: प्रमोद भाई सुनिए ना, मैं तुरंत अनुवाद कर सकती हूँ। लाइए अपना कागज, मुझे दीजिए, मैं पढ़ती हूँ।
6: ठीक है, मेरे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता।
4: अच्छा, तो प्रमोद भाई कहते हैं, मैं प्रमोद पटेल, कांता पटेल का स्वामी, घोषणा करता हूँ कि मेरी किसी समय प्यारी पत्नी कांता मेरे विश्वास पात्र दोस्त निरंजन को चाहती है, इसलिए आज फला साल के फला महीने की फला तारीख को अपनी मर्जी से, अपनी अक्ल से, मैंने अपनी जान देने की घोषणा की है।
6: मुझसे सुनो मेरी घोषणा। मैं प्रमोद पटेल अपनी सारी ताकत जुटाकर कांता के छिपाए हुए पिस्तौल से आत्महत्या करता हूँ। अलविदा। अलविदा।
0: मुझे विश्वास हो गया है कि।
6: कैसा विश्वास?
0: कि तुम मुझे प्यार करते हो।
6: फिर भी मैं अपनी घोषणा पर अटल हूँ।
0: प्रमोद रुक जाओ।
6: नो।
0: इस पिस्तौल से मैं ही मरूंगी। लाओ पिस्तौल मुझे दो।
6: कांता, ये पिस्तौल मुझे दो।
5: तुम्हारा संसार उजड़ने के पहले मैं ही इस पिस्तौल से।
0: खबरदार निरंजन, तुम मेरे जीवन में तो आए, पर अब मेरे और मेरे पति के बीच में मत आना, वरना अभी इस पिस्तौल से।
5: ठीक है, पहले मुझे मार डालो, मेरी दुखी आत्मा को शांति दो। कांता, कांता मुझे गोली मार दो, वरना मैं तुम्हारे हाथ से पिस्तौल लेकर आत्महत्या कर लूंगा।
0: सर, तुम मुझे इतना प्यार करते हो निरंजन।
6: कांता, कांता तुम मुझे ही मार डालो, मुझे ही मार डालो, या पिस्तौल मुझे दो, मैं अपने आप ही मर जाऊंगा। तुम दोनों प्रेमी जियो और खुश रहो।
3: सुनो प्रमोद, तुम्हारी पत्नी यदि दूसरे

0: को चाहती है तो इसमें मरने की कोई जरूरत नहीं। मुझसे शादी करने से पहले मेरी इस पत्नी ज्योत्सना को किसी दूसरे से प्यार था।
1: हैं? नंदलाल, इस रहस्य का तुम्हें पता था?
0: तुम्हारा प्रेमी देश पांडे थोड़े दिन हुए वो मेरे पास आया था पैसों के लिए।
2: कैसे पैसे?
0: ब्लैकमेल के पैसे।
1: लेकिन ब्लैकमेल किस लिए?
0: उसके पास तुम्हारी कुछ तस्वीरें हैं।
1: है?
2: कितने रुपए मांगता है वो?
0: सौदा आज पक्का होगा, वो आता ही होगा यहाँ।
2: यहाँ?
0: हाँ, मैंने देश पांडे को यही का पता दिया है और अब प्रमोद, कांता और निरंजन तीनों से मेरी प्रार्थना है, देश पांडे यही आ रहा है। तुम में से जो भी मरना चाहता है वो उसे मारने के बाद मरे तो मैं उसका एहसान मानूंगा।
3: प्रमोद, तुम्हारा इरादा मुझे मारने का हो तो रुक जाओ, मैं देश पांडे का खून करूंगा और इस तरह फांसी पर लटक कर तुम्हारी और नंदलाल की दुनिया आबाद कर जाऊंगा।
2: शायद देश पांडे आ गया, मैं दरवाजा खोलता हूं।
4: नहीं, तुम यहीं रुको प्रमोद, तुम्हारा शायद भागने का इरादा है, दरवाजा मैं ही खोलूंगी।
1: कांता, अपना पिस्तौल मुझे देती जाओ, उस चांडाल का मैं खून करूंगी।
5: ये मेरा घर, मैं ही उसका खून करूंगा। तुम्हें करना हो तो उसे अपने घर ले जाओ।
2: लो वो आ गया।
6: आप सबको नमस्कार, माफ कीजिए, गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन।
0: गुड इवनिंग मिस्टर देश पांडे। ये सब मेरे मित्र हैं। ज्योत्सना, तुम तो इन्हें मिस्टर देश पांडे को जानती हो।
1: हाँ हाँ।
0: और प्रमोद, कांता, निरंजन, ये हैं मिस्टर देश पांडे। जिनका खून कौन करे इस बारे में हम अभी चर्चा कर रहे थे। हैं? सब लोग एक पंक्ति में क्यों बैठ गए?
5: आखिर बात क्या है नंदलाल?
0: तुम्हें नहीं, मैं इस थिएटर हॉल में बैठे हुए दर्शकों को सब बताता हूं। देवियों और सज्जनों, अभी थोड़ी देर पहले प्रमोद, कांता और निरंजन एक दूसरे के लिए आत्महत्या करना चाहते थे, एक दूसरे से अपना खून कराने के लिए जोर दे रहे थे। और अब सवाल है मिस्टर देश पांडे के खून का। भाइयों और बहनों, आप जानते हैं कि ये रहस्य नाटक है, इस नाटक के सभी पात्र यहां मौजूद हैं। आप विद्वानों में से कोई भी ये बता दे कि किसका खून होगा और कौन खून करेगा तो उसकी अक्ल की मैं दाद दूंगा। आपको बस इतना बता दूं कि खून इनमें से ही किसी एक का होने वाला है और इनमें से ही कोई करेगा भी।
1: नंदलाल, मेरे हाथ में ये पिस्तौल देख रहे हो ना, मैं तुम्हारी तिकड़मों से तंग आ चुकी हूँ। अरे, हम सबको कठपुतली की तरह नचाने वाले, मैं तुम्हारा खून करती हूँ।
0: अरे ज्योत्सना, ये क्या कर रही हो?
1: भाभी,
0: ये पिस्तौल असल है,
1: मेरे पास रहने दो।
4: भाभी, ये पिस्तौल मुझे दो।
1: क्या कर रही हो तुम?
4: हट जाओ भाभी। शेखर खोसला, शेखर खोसला।
7: खून
8: जो कर रही थी
9: सच कहूंगा, पूरा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा।
10: आपका नाम? उम्र? काम?
9: जगन्नाथ महाशंकर पाठक, उम्र 33 साल, काम नाटकों में अभिनय करना।
10: सरकारी वकील अब दवा से गिरा कर सकते हैं।
11: थैंक यू मिलॉर्ड। मिस्टर पाठक, आप मुलजिमा कामिनी देसाई को जानते हैं?
9: जी हाँ, हमने कई नाटकों में एक साथ अभिनय किया है।
11: कुछ और?
9: मतलब?
11: कामिनी देसाई आपकी प्रेमिका है?

0: जी हाँ, कामनी देसाई मेरी प्रेमिका है।
1: जगन्नाथ महाशंकर पाठक, क्या ये भी सही है कि आप दोनों अगले महीने की 15 तारीख को शादी करने वाले थे?
0: जी हाँ।
1: 15 को ही क्यों?
0: वो हम लोग एक नया नाटक तैयार कर रहे थे और उम्मीद थी कि नाटक सफल होगा और उसकी आमदनी में से हम हनीमून के लिए कुछ पैसे बचा सकेंगे।
1: ये नाटक कब हुआ?
0: पिछले महीने की 1 तारीख को।
1: नाटक का नाम क्या था?
0: किसी एक फूल का नाम लो।
1: उस नाटक में आप दोनों के अलावा और किन किन लोगों ने काम किया था?
0: प्रीतम सोनी, स्वाति सोनी, सुंदर देसाई और केशव ठाकर का नाम लेते लेते रुक क्यों गए? उसके नाम को लेकर उस दिन कामनी से तुम्हारी जो बातचीत हुई थी वो क्या भूल गए हो?
2: हम दोनों, प्रीतम, स्वाति और सुंदर, ये तो नाटक के पात्र पक्के हो गए, लेकिन छठे पात्र के लिए कोई नहीं मिल रहा।
0: हाँ, छठे पात्र के लिए सुनो, छठे पात्र के लिए केशव ठाकर।
2: केशव ठाकर? वो लेखक।
0: इसमें हंसने की क्या बात है? छोटा सा रोल है, बहुत मजा आएगा। हाँ,
2: सुंदर से पूछ ले।
0: आता ही होगा सुंदर भी। जी, मेरा नाम सुंदर देसाई, उम्र 30 साल, काम नाटकों में अभिनय करना, मुलजमा कामनी देसाई, उसको मैं जन्म से जानता हूँ सर। हम सब नाटकों में काम करते हैं। किसी एक फूल का नाम लो नाटक में हम सब ने काम किया था। कामनी देसाई मेरी सगी बहन है सर, सगी बहन।
1: आप दोनों साथ रहते हैं?
0: जी हाँ, मैं, कामनी और मेरी माँ तीनों साथ रहते हैं।
1: तीनों साथ रहते हैं। कामिनी ने जिसका खून किया उसके बारे में आप क्या जानते हैं?
0: जी नहीं, उसके बारे में मैं पहले कुछ नहीं जानता था। उसके मरने के बाद जाना कि उसका नाम शेखर खोसला था और वो किसी बड़ी फर्म का मालिक था।
1: उस नाटक में हत्या की घटना थी और उसमें एक पिस्तौल की जरूरत थी, ठीक है?
0: जी हाँ, लेकिन पिस्तौल में गोली नकली भरनी थी।
1: जगन्नाथ पाठक और कामनी एक दूसरे से प्रेम करते हैं, ये आप जानते हैं?
0: जी हाँ, पाठक मेरा पुराना दोस्त है, हमने बहुत से नाटकों में एक साथ काम किया है। कामनी और पाठक ज्यादातर नायक नायिका का काम करते थे और जाहिर है। सच सच कह दूं ना कि तुम्हें अपनी बहन कामनी और पाठक की शादी की बात पसंद नहीं थी? जाहिर है, तुम दोनों में प्यार है और तुम शादी करोगे।
2: सुंदर, पाठक का कहना है कि मेरा इससे शादी करना तुम्हें पसंद ना होगा।
0: बिल्कुल पसंद नहीं होगा।
3: सुन लिया कामनी?
0: अरे, वो तुम्हारा प्रीतम लाल नहीं आया?
1: तुम उसे प्रीतम लाल क्यों कहते हो?
4: अरे, लगता है प्रीतम सोनी आ रहा है।
2: लेकिन वो तो अकेला ही आ रहा है।
1: प्रीतम, स्वाति सोनी कहाँ है?
4: आती होगी, वो सीधी आने वाली थी।
0: अच्छी, स्वाति जरूर आई ही ना।
1: सुंदर, अरे पाठक यार, डांटते क्यों हो? मान लिया तुम इस नाटक के डायरेक्टर हो, लेकिन रिहर्सल में अनुशासन जरूरी है। आई वॉन्ट डिसिप्लिन, आई सिक।
0: अरे यार, मैं स्वाति से शादी का प्रस्ताव नहीं करने वाला हूँ।
5: जी, मेरा नाम प्रीतम लाल कंचनलाल सोनी, उम्र 42 साल, काम अभिनय। जी, कामनी को मैं 7-8 साल से जानता हूँ, मुझे कुछ पता नहीं मरने वाला कौन था। मेरा ख्याल है कामनी पाठक के प्यार में।
1: आपने ये कैसे मान लिया?
5: कामनी ने मुझसे कहा था कि पाठक उससे शादी नहीं करेगा तो वो आत्महत्या कर लेगी।
1: अच्छा, पिस्तौल चलाने की बात नाटक में लिखी हुई है क्या?
5: जी हाँ, नाटक में नंदलाल ये कहता है कि
1: मिस्टर प्रीतम, अच्छा ये बतलाइए कि पिस्तौल में असली गोली कैसे आई?
5: जी नहीं, मुझे कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता। कामनी भोली होने के कारण कई बार उत्तेजित होती, पर किसी को

0: जरूर कोई धोखा है, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जानती।
1: रोने की जरूरत नहीं, सवालों के जवाब सिर्फ हाँ या ना में दीजिए। क्या ये सच है कि कामिनी और पाठक के बीच प्यार था?
0: जी हाँ।
1: कामिनी को किसी और से भी प्यार था?
0: जी हाँ।
1: हाँ
0: जी,
1: या ना?
0: जी, इस सवाल का जवाब मैं हाँ या ना में नहीं दे सकूंगी।
1: क्या मतलब?
0: कामिनी एक सफल अभिनेत्री है, उसके बहुत सारे प्रशंसक हैं, वो एक भावुक स्त्री है और स्त्री का हृदय।
1: बस बस, ठीक से सोचकर जवाब दीजिए। आप बता सकती हैं पाठक और कामिनी की शादी करने पर क्या किसी को एतराज था? पाठक की कामिनी के सिवाय कोई दूसरी प्रेमिका थी या नहीं, और कामिनी का पाठक के सिवाय कोई दूसरा प्रेमी था या नहीं?
0: मुझे माफ कीजिए, माफ कीजिए, मैं कुछ नहीं जानती हूँ।
1: याद रखिए, आपने हल्फ उठाया है।
0: हाँ जानती हूँ, मैंने हल्फ उठाया है, पर मुझे माफ कीजिए, मैं कुछ नहीं कह सकती।
1: एक सवाल, आप मृत शेखर खोसला के बारे में कुछ जानती हैं?
0: जी नहीं, मैं शेखर खोसला या किसी के बारे में कुछ नहीं जानती।
1: आप कुछ छुपा रहे हैं।
0: आप क्या कहना ना चाहते हैं, क्या पूछना चाहते हैं मुझसे, मुझसे क्या कबूल करवाना चाहते हैं आप? कामिनी जी भाई, सुंदर के साथ तुम्हारा जो संबंध है वो कबूल कर लो ना। अपने पति प्रीतम से छिप छिप कर उससे मिलती हो और कहती हो कि
2: सुंदर तुम बेकार इतनी कड़वाहट लाते हो, हमें कभी मुश्किल से तो ऐसा एकांत मिलता है।
3: ये तुम सोचती हो प्रीतम को पता नहीं चलेगा?
2: प्रीतम बहुत सीधा है, उसने मुझसे कभी कुछ भी नहीं पूछा।
0: लेकिन कोई और जानता है।
3: कोई और जानता है? कौन?
0: केशव ठाकर,
3: वो बुद्धू लेखक।
2: हाँ, वो बुद्धू लेखक, वो मूर्ख बना फिरता है, शायद है भी, लेकिन उसकी नजर बड़ी तेज है।
4: जी, मेरा नाम केशव ठाकर नहीं, मेरा मतलब है केशव लाल पुरुषोत्तम ठाकर, पेशा नाट्य लेखन।
1: तो आपने उस नाटक में देशपांडे का पाठ किया?
4: जी हाँ, मैंने देशपांडे का पाठ किया।
1: आप किस नाटक मंडली के लोगों से जान पहचान कैसे हुई?
4: वो बात यह है कि वो सुंदर देसाई है ना, उसके साथ एक बार अचानक मुलाकात हो गई थी। जी हाँ, वही मुझे अपनी मंडली में ले गया।
1: अच्छा, वो नाटक किसी एक फूल का नाम लो आपने लिखा था?
4: जी हाँ, मैंने लिखा था।
1: उसमें पिस्तौल की जरूरत थी?
4: जी हाँ।
1: आप कामिनी देसाई के बारे में कोई ऐसी बात जानते हैं जो इस खून के मसले पर रोशनी डाल सके?
4: वकील साहब, अजी आज सवाल पूछिए, मैं जवाब दूंगा।
1: कामिनी देसाई का पाठक के सिवा कोई दूसरा प्रेमी भी था?
4: जी,
1: मैं पूछ रहा हूँ, कामिनी का कोई दूसरा प्रेमी भी था?
4: जी हाँ, उसका एक दूसरा प्रेमी भी था।
3: तो अब ये भी बता दो कि कैसे तुमने कामनी के ही कारण नाटक लिखा, कैसे कामनी के निकट रहने के लिए तुमने उस नाटक में छोटा सा पार्ट करना स्वीकार किया, और कैसे नाटक के रिहर्सल में तुम हर तरह का अपमान सह लेते थे, और उस दिन रिहर्सल में कामनी को सम्मुख पाकर तुम इतने नर्वस हुए कि सिगरेट का जलता हुआ सिरा मुंह में डाल दिया और मुंह चला लिया।
0: कुछ नहीं।
5: तुम कामिनी को ये दीवानों की तरह दिखो रहे?
4: कुछ नहीं, वो जरा
6: आंशस हो गया था।
1: अच्छा ठीक है,
7: ये पाठक भी आज कुछ
1: बस आप रिहर्सल शुरू करें। कामिनी, तुम ठाकर के पास जाकर क्यों खड़ी हो गई? इसके कंधे पर हाथ रखकर क्या कह रही हो उससे?
8: कह रही हूँ आप पाठक क्यों बेकार ईर्ष्या करते हो?
1: Stop it.
8: रिहर्सल शुरू करो ना, तुम प्रमोद का डायलॉग बोलो तो मैं कांता का डायलॉग बोलूं।
1: कांता, मान लो
8: मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। प्रमोद, तुम अपनी सीट छोड़ोगे नहीं और मैं सारी जिंदगी।
1: मुझे भी तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है, और हमारे बीच पति

0: पत्नी की सारी बातें मुझे लगता है इसी के साथ खत्म होती है।
1: जी हाँ, कामनी का दूसरा प्रेमी था और वो मैं खुद था, यह केशवलाल पुरुषोत्तम ठाकर।
0: कामिनी भी आपसे प्रेम करती थी?
1: जी जी नहीं, वो तो मेरा मजाक उड़ाती थी, लेकिन मैं मनी मन उससे प्रेम करता था और अब भी करता हूँ। कामनी जी जमीन पर चले उसे मैं चूमने को तैयार हूँ और जो वो कहे।
0: मतलब आप मन ही मन कामिनी से प्रेम करते थे?
1: जी हाँ, और उसके सामने मैं नर्वस आ जाता, यानी कि घबरा जाता।
0: अच्छा, मरने वाले के बारे में आप कुछ बता सकते हैं?
1: जी उसका नाम शेखर खोसला।
0: सवाल यह है कि शेखर खोसला के बारे में आपके पास कोई खास जानकारी है?
1: आज देखिए ना वकील साहब, इस दुनिया में कौन किसी को जान सका है?
0: हाँ या ना में जवाब दीजिए।
1: किस बात का जवाब?
0: शेखर खोसला को आप उसकी मौत से पहले जानते थे?
1: अजी इंसान को देखिए ना, दो तरह से जाना जाता है, एक उसे प्यार करके और दूसरे उससे नफरत करके। भाई हमारी जानकारी हमारी समझ से बनती है। अजी मैं तो न तो शेखर खोसला से प्यार करता था न नफरत।
0: बेकार की बात मत कीजिए। अगर सीधा जवाब न दिया तो अदालत के अपमान के जुर्म में सजा होगी और झूठा जवाब दिया तो जेल।
1: अब देखिए वकील साहब, आप तो खामखा डरवा रहे हैं। अजी क्या सच क्या झूठ इसका फैसला कर सकूं? जी इतना विद्वान तो मैं नहीं।
0: आप शेखर खोसला को जानते थे? जी, हाँ या ना?
1: जी जी कुछ नहीं, याद नहीं।
0: याद कीजिए, आपने उसे 1,000 रुपए दिए थे, ये सच है?
1: जी क्या बात करते हैं वकील साहब, जी बहुत लोगों ने मुझे कई बार 1,000 रुपए दे दिए होंगे। अब देखिए ना, अब उस सब का हिसाब तो मुझे याद नहीं।
0: ठीक, दूसरा सवाल, नाटक में जिस पिस्तौल का इस्तेमाल हुआ और जिससे खून हुआ उसमें असली गोली किसने भरी थी, आप बता सकते हैं?
1: जी नहीं।
0: शेखर खोसला के बारे में आप क्या जानते हैं?
1: कुछ नहीं।
0: ठीक से याद कीजिए।
1: जी वो जी मेरी याददाश्त कुछ अच्छी नहीं।
0: ठीक से याद कीजिए, शेखर खोसला से आपने 1,000 रुपए लिए और ये नाटक लिखा जिसमें शेखर खोसला का खून हुआ। ठीक से याद कीजिए, शेखर खोसला कौन था? मिस्टर केशव ठाकर चुप क्यों है, बताइए शेखर खोसला कौन था?
2: छिपा क्यों रहे हो? बता दो ना। अच्छा तो तुम कामनी और पाठक की वो बात बता दो जो उस दिन तुमने ओट में छिपकर सुनी थी। किस दिन? मैं तो प्रायः रोज ही छिपकर कामनी को देखा करता था। अरे उस दिन रिहर्सल के बाद जब तुम कामनी से मिले थे और फिर ओट में छिप गए थे।
3: कामनी, रिहर्सल के बाद केशव ठाकर तुमसे क्या कह रहा था?
4: कुछ भी तो नहीं। कुछ भी तो नहीं, बेचारा सिर्फ बॉरम है, मेरी तारीफ कर रहा था।
3: सच बताओ कामनी।
4: पाठक, कितने शक्की हो तुम। तुम सोचते हो मैं उस फंटूश को प्यार करती हूँ।
3: नहीं, लेकिन ये जरूर सोचता हूँ कि तुम मुझसे कुछ छिपा रही हो।
4: मान लो छिपा रही हूँ, फिर?
3: तो फिर हमारे संबंध का कोई अर्थ ही नहीं रहेगा। हमारे रास्ते अलग अलग हो जाएंगे, सीधी सादी बात।
4: धमकी देते हो?
3: सफाई चाहता हूं।
4: कैसी सफाई? ओह, इतना भी तुम्हारी समझ में नहीं आता। शक्की अंधे फूंदू पति की तरह पूछे जा रहे हो। फिर भी मैं तुम्हारी कसम नहीं खाऊंगी, क्योंकि मैं तुम्हारी झूठी कसम खा ही नहीं सकती। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती।
3: यानी कि तुम कुछ छिपा रही हो?
4: हाँ, मैं कुछ छिपा रही हूँ, लेकिन तुम्हारी झूठी कसम नहीं खा सकती। विश्वास कर सको तो करो कि जो कुछ मैं छिपा रही हूँ वो तुम्हारी भलाई के लिए है, धोखा देने के इरादे से नहीं।
3: यह चरित्र की क्या जरूरत है? तुम्हें मुझ पर इतना भरोसा क्यों नहीं कि तुम जो छिपा रही हो वो चाहे जितना भी डरावना क्यों ना हो मैं उसे छेड़ लूंगा। ऐसा क्यों समझते हो कि मैं तुम्हारा प्रेमी नहीं रहूंगा?
0: प्रेमी

0: से केशव ठाकर
1: जी
0: क्या सोच रहे हैं? बताइए, ठीक से याद कीजिए, शेखर खोसला कौन था?
1: जी जी वो मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा वकील साहब। मेरा मतलब है, शेखर खोसला के बारे में मैं कुछ नहीं जानता।
2: सरदारी वकील अपनी जिरह बंद करें, अब अदालत खुद पांचों गवाहों से सवाल करेगी। केशव ठाकर
1: जी,
2: शेखर खोसला कौन था?
1: जी जी कहा ना हुजूर, उसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता।
2: स्वाति सोनी, शेखर खोसला कौन था?
3: जी जी कैसे समझाऊं आपको, मैं कैसे समझाऊं एक स्त्री के दिल की बात, मैं कैसे कहूं शेखर खोसला कौन था? मैं शेखर खोसला को जानती हूँ, या कि शेखर खोसला को नहीं जानती।
2: प्रीतम सोनी, शेखर खोसला कौन था?
4: जी नहीं, मैं शेखर खोसला को नहीं जानता। इसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं।
2: सुंदर देसाई, आपकी बहन कामनी जिसका खून किया, उसके बारे में आप कुछ जानते हैं?
1: जी वो उसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता। बात ये थी सर कि थिएटर हॉल में औरों की तरह वो भी निमंत्रित था, और निमंत्रण पत्र उसी संस्था ने भेजे थे जिसने हमें नाटक खेलने के लिए बुलाया था। मैं इसलिए उसके बारे में कुछ नहीं जानता।
2: जगन्नाथ पाठक, शेखर खोसला के बारे में क्या आप जानते हैं?
4: जी, मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता।
5: किसी एक फूल का नाम लो, इस नाटक का पहला भाग अभी आपने सुना। मूल गुजराती लेखक मधुराय, हिंदी रूपांतरण ज्योति व्यास, संपादन चिरंजीत, निर्देशक सुशील बनर्जी, प्रस्तुति आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र की थी। इस नाटक का दूसरा भाग आप सुनेंगे कल नाट्य तरंग में।

0: Servants, lights, sound, camera, action.
1: बॉम्बे टॉकीज कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं एक ऐसी कोरियोग्राफर जिनके कोरियोग्राफ किए गए गानों ने आपको जमकर थिरकाया है। उनके कई गाने ऐसे हैं जिनको सुनते ही आपके पैर मचल उठते हैं नाचने के लिए। आज के जमाने की महत्वपूर्ण कोरियोग्राफर्स में उनकी गिनती होती है।
2: प्रेम रतन धन पायो, प्रेम रतन धन पायो, रत मिलन की लायो, प्रेम रतन।
1: आज बॉम्बे टॉकीज कार्यक्रम में हमारे साथ हैं जानी मानी कोरियोग्राफर शबीना खान। इनसे बातचीत कर रही हैं विधि जैन। ये है इस बातचीत का पहला भाग।
3: चलते रे इश्कों में पड़ जाते हैं।
4: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। श्रोताओं, आज स्वागत कर रहे हैं हम सभी उनका जिनके इशारों पर बॉलीवुड के सबसे बड़े सितारे थिरके हैं। सलमान खान, अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, अजय देवगन, सनी देओल, महेश बाबू, आयुष्मान खुराना, अनुपम खेर और लगभग 30 से अधिक दिग्गज अभिनेताओं को अपनी कोरियोग्राफी से नया अंदाज देने वाली, वहीं माधुरी दीक्षित, ऐश्वर्या राय, करीना कपूर, कैटरीना कैफ, जूही चावला, अमीषा पटेल, अंतरा माली और अनेक प्रसिद्ध अभिनेत्रियों के यादगार गीतों को अपनी कल्पना और सृजनशीलता से जीवंत बनाने वाली बड़ी प्यारी सी कोरियोग्राफर। आज की बातचीत केवल फिल्मों तक नहीं, आज हम जानेंगे एक कलाकार के संघर्ष की कहानी, सफलता के पीछे छिपी मेहनत, शूटिंग के अनसुने किस्से और सितारों के साथ काम करने का अनुभव और उस सफर को जिसने इन्हें भारतीय फिल्म जगत के अग्रणी कोरियोग्राफरों में स्थापित किया है। चलिए बिना किसी देर के विविध भारती राष्ट्रीय सेवा में पूरे आत्मीय स्वागत और हार्दिक अभिनंदन के साथ हिंदी फिल्म जगत की सुप्रसिद्ध, सम्मानित और बेहतरीन कोरियोग्राफर शबीना खान जी, स्वागत है आपका आज के इस कार्यक्रम में।
5: थैंक यू। मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि आपने मुझे याद किया, बुलाया।

0: ये सबके दिलों की धड़कन है, तो मेरे दिल की बहुत बड़ी धड़कन है।
1: जी, विविध भारती
0: या
1: देश की सुरीली
0: सुरीली
1: धड़कन।
0: धड़कन, विविध
1: जी
0: भारती देश की सुरीली धड़कन।
1: जी तो ये जो सुरीली धड़कन है, आज एक बहुत सुरीली देश की बेटी से बात करने वाली है, जिस बेटी ने अपने जीवन में बहुत सारे संघर्ष किए, बहुत सारा काम किया और बहुत सुंदर तरीके से पर्दे पर खुद नहीं उतरी, दूसरों से उतरवाया। तो हमारे बीच में शबीना जी आप हैं, और आप एक बहुत बढ़िया डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, और उसके साथ एक बेहतरीन कोरियोग्राफर हैं। तो ये जो कोरियोग्राफी है, या डांस का चस्का जिसे कहते हैं, ये लगा कब? ऐसा कब मन हुआ कि अब मुझे कर लेना चाहिए?
0: सो बेसिकली चस्का तो नहीं कहूंगी मैं, क्योंकि जिस उम्र में मैंने काम शुरू किया
1: जी
0: उसमें हमें चस्के नहीं पता चलते हैं। बहुत
1: अच्छा,
0: छोटी थी मैं एक्टिंग इंस्टीट्यूट में एक्टिंग सीख रही थी।
1: ओके।
0: तो हुआ यूं कि घर की जरूरतें होती है ना, तो उस उम्र से ही मुझे एहसास बहुत जल्दी हो गया, क्योंकि हम उस फैमिली से आते हैं जहाँ पे एहसास, मोहब्बत, प्यार, तरबियत, इसकी बहुत वैल्यू है। तो वो वैल्यू में एहसास हुआ कि घर में जरूरत है। तो एक्टिंग इंस्टीट्यूट होती थी एक मधुमति एकेडमी।
1: जी
0: मधुमति जी वो है जो हेलन जैसी लगती थी, सोलो डांस करती
1: जी
0: थी,
1: जी जी बिल्कुल।
0: उनके हस्बैंड और वो सिखाते थे। वहाँ पे एक छोटा सा काम कर रही थी मैं उस उम्र में,
1: क्या उम्र होगी वो लगभग?
0: सेवेंथ
1: ओके
0: स्टैंडर्ड में होंगी।
1: ओके,
0: तो मेरी
1: 12-13
0: बहन और
1: साल।
0: मैं, हम दोनों घर में बहुत डांस करते थे।
1: जी
0: बिल्डिंग में 31st नाइट में जब प्रोग्राम्स होते थे तो हम
1: जी
0: दोनों को बुलाते थे कि
1: अच्छा,
0: आप
1: डांस
0: कंपटीशन में आ जाओ।
1: करने। जी
0: तो मेरी छोटी बहन बहुत ज़्यादा चंचल थी और वो हमेशा से चाइल्ड आर्टिस्ट स्टेज पे काम करती थी।
1: जी
0: मैं पढ़ रही थी, मैं बहुत ज़्यादा पढ़ाकू थी। तो
1: अच्छा।
0: ज़रूरत तब हुई जब लगा कि फीस भरना है, छोटे भाई बहन हैं, हम 5 भाई बहन हैं, तो लगा कि चलो कुछ काम भी किया जाए। ट्यूशन देती थी, फिर लगा कि अच्छा डांस अच्छा करते। तो मधुमति मैम ने देखा और मम्मी से कहा कि आप छोड़ो अपनी बेटियों को, मैं उनको सिखाती हूँ।
1: अच्छा,
0: और
1: एक
0: वहां
1: हाथ
0: पे
1: मिल
0: मैं,
1: गया।
0: हाँ, एक हाथ मिल गया। और वहां पे मैं उर्दू डिक्शन सिखाने लगी अंकल के साथ बैठ के। उनके जो शौहर थे वो
1: अच्छा
0: पुराने एक्टर थे बहुत बड़े, तो वो उर्दू सिखाते थे सारे बच्चों को।
1: जी
0: तो मैं उनके साथ डिक्शन, क्योंकि हमारे घर में एक चलन है कि उर्दू
1: हाँ
0: सिखाया जाता है, तो वो मैं सिखा रही थी। उनके साथ एक्टिंग भी सिखाने लगी वो हमें। अम्मी को बुला के एक दिन बोला कि तुम्हारी बेटियां बहुत टैलेंटेड है, तो
1: अच्छा,
0: मैं इनको एक्टिंग भी सिखा रही हूँ। अम्मी ने कहा कि ठीक है मैम, अपने
1: सिखा लो।
0: साथ रख के आप देखिए कैसे। तो स्कूल के बाद हम 2-3 घंटे वहां जाते थे,
1: जी
0: और पता नहीं था कि वो चीज कब जाके जिंदगी में काम आ जाएगी। अम्मी हमेशा सिखाती थी कि बेटा जिंदगी का एक फ्लो होता है, जो ऊपर वाले की मर्जी है वो फ्लो चलता है, फ्लो के साथ चलो।
1: जी
0: और एक, हमारी तरबियत को नहीं भूलना है,
1: क्या बात
0: अपनी
1: है,
0: तरबियत जो मैंने तुम्हें दी है उसको हाथ में रख के आपने काम करना है।
1: मतलब नदी जैसे बहा रही है, बहते जाओ, लेकिन अपने जो उसूल हैं उनको छोड़ना नहीं
0: बिल्कुल
1: है। जी बहुत
0: बिल्कुल,
1: बढ़िया बात।
0: बहुत ज्यादा ऊपर जाके छलकना भी नहीं है कि पानी तुम्हारा सूखी घास में मिलके वहां चला जाए,
1: जी
0: समेटते हुए आगे बढ़ना है। उनकी तरबियत है जो आज हम लोग यहाँ तक पहुंच पाए हैं। वहां से फिर एक्टिंग इंस्टीट्यूट से स्टेज शोज के ऑफर आने लगे। तो गणेश हेगड़े जी,
1: जी
0: जो बहुत
1: बहुत
0: बड़े
1: बढ़िया
0: कोरियोग्राफर है,
1: कोरियोग्राफर हैं।
0: उन्होंने मुझे और मेरी बहन को लॉलीपॉप, गणेश हेगड़े, ये उस वक्त के दिग्गज स्टेज
1: बिल्कुल
0: के कोरियोग्राफर्स हैं।
1: जी
0: तो पता चला कि एक शो किया जाएगा तो हमें इतना अमाउंट मिलेगा। तो
1: हाँ,
0: अम्मी मेरी
1: तो
0: हमेशा साथ होती थी।
1: अमाउंट के लालच में आप काम
0: अमाउंट
1: क्यों
0: ये था,
1: जाते?
0: हाँ, कि एक इतना अमाउंट आएगा तो दिमाग सोचने लगा कि अगर ये पैसा आता है तो महीना गुजर जाएगा। तो मधुमति
1: कैलकुलेशन
0: मैम ने,
1: चालू हो
0: हाँ,
1: गए
0: मधुमति
1: हैं।
0: मैम ने बोला बेटा करो,
1: हाँ
0: बुरा नहीं है।
1: हाँ
0: अम्मी को बोला कि आप साथ रहो बच्चों के।
1: जी
0: तो
1: जी
0: वो एक सिलसिला शुरू हुआ वहां से। और मैं बहुत अच्छी स्टूडेंट थी,
1: तो आप उस
0: मुझे,
1: समय बैकग्राउंड डांसर्स के फॉर्म में
0: नहीं
1: कर रही
0: बिल्कुल
1: थी
0: नहीं
1: या लीड डांसर्स थे?
0: नहीं मैं स्टेज पे डांस कर रही थी उनके ट्रुप के साथ। तो
1: अच्छा
0: उनके अपने अपने ट्रुप होते थे, तो
1: जी
0: पहले गणेश हेगड़े, लॉलीपॉप, इन्हीं का ट्रुप चलता था।
1: जी
0: उनके एक ट्रुप में 8 लड़कियां, 12 लड़कियां ऐसे होती है। उसमें मेरे परफॉर्मेंस बेसिस पे मुझे जल्दी चांस मिल गया। पोनी वर्मा उनकी मेन असिस्टेंट होती थी, जो अभी कोरियोग्राफर है।
1: जी
0: तो पोनी वर्मा ने, यू नो, शी गॉट इन्वॉल्व एंड शी गॉट मी। तो स्टेज शुरू हुआ, स्टेज से वो रास्ता मिलने लगा। गणेश आचार्य जी ने देखा मुझे डांस करते हुए कि लड़की तो एक्सप्रेशन के साथ, क्योंकि एक्टिंग बैकग्राउंड से आती थी मैं, तो ग्रेस और क्लासिकल डांस सीखो तो आपको एक ग्रेस अलग लेवल का मिलता है।
1: वो चीज हम अभी भी देख रहे हैं आपके सोशल मीडिया पे, जब आप डांसेस डालती हैं तो
0: हाँ,
1: चेहरा अलग
0: तो
1: दिखता है,
0: क्योंकि आप
1: चमकता हुआ।
0: क्लासिकल डांस सीख के आते हो, जैसे क्लासिकल सिंगिंग भी उतनी ही, जो क्लासिकल सिंगिंग सीख के आते हैं वो एक अलग लेवल के सिंगर बनते हैं,
1: जी
0: उसी तरह आप जब क्लासिकल डांस सीख कर आते हो तो आपके परफॉर्मेंस की लेवल अलग हो जाती है। और फिर मैं एक्टिंग बैकग्राउंड से आती हूँ,
1: जी
0: तो एक्टर मेरे अंदर घुसा हुआ है
1: घुसा
0: बचपन
1: हुआ है।
0: से।
1: जी
0: तो वो जो एक एबिलिटी है मेरी एक्टिंग और क्लासिकल डांस की, उसने मुझे बहुत सहारा दिया। तो जब गणेश आचार्य जी, जो

0: बड़े कोरियोग्राफर है, उन्होंने मुझे देखा परफॉर्म करते हैं। उस वक्त वो एक असिस्टेंट ढूंढ रहे थे,
1: जी
0: तो मैं कभी बैकग्राउंड डांसर फिल्मों में नहीं बनी। मैं स्टेज से डायरेक्ट गणेश आचार्य जी के यहाँ पर आई।
1: अरे
0: उन्होंने
1: वाह
0: अम्मी
1: जी,
0: से बात की, उन्होंने कहा आपकी बेटी डांस बहुत अच्छा करती, मुझे एक ऐसी ही असिस्टेंट की ज़रूरत है, क्योंकि अब उनका काम बढ़ रहा था
1: तो उन्हें
0: काफ़ी
1: एक
0: उस
1: और
0: वक्त।
1: हाथ चाहिए था जी।
0: तो फिर उस तरह से माई मदर यूज़ टू बी देयर विथ मी ऑलवेज, शी नेवर लेफ्ट मी अलोन टू टेक डिसीजंस, क्योंकि मैं थी बहुत छोटी। तब तक मैं यहाँ पहुँची 8 9 स्टैंडर्ड में आ चुकी थी,
1: बहुत छोटे थे
0: स्टिल
1: आप,
0: स्कूल में थी,
1: बहुत
0: तो वो
1: छोटे थे।
0: मम्मी ने कभी हाथ नहीं छोड़ा। फिर वहाँ से सिलसिला शुरू हुआ, असिस्टेंट बनी उनकी, उनके साथ 3 4 साल काम किया, बड़ी यहीं पर हुई हूँ, समझते समझते सीखते सीखते। फिर प्रभु देवा जी के साथ काम करने का
1: क्या
0: मौका
1: बात है,
0: मिला। फिर एक, मैं सरोजी की बहुत बड़ी फैन थी,
1: बिल्कुल
0: मैं
1: सब
0: काम बहुत बड़ी फैन, मतलब
1: है।
0: मैं
1: मास्टर जी के फैन सब
0: सब
1: है
0: है। जब
1: जी।
0: मैं असिस्टेंट थी, उनके गाने देख देख कर, उनकी जो लचक, उनका ये उनका वो कहते हैं ना कि एक आप होते हो एक लव्य, काम यहाँ किया लेकिन मैं उनकी एक लव्य बन गई।
1: क्या बात है।
0: आज भी जब कोरियोग्राफी करने खड़ी होती हूँ इंडियन डांस, और ऐसा लगता है मेरे अंदर सरोजी समा गई, अपने आप ऐसा लगता है वो मेरे अंदर समा गए।
1: जी
0: तो वो एक, उनके साथ मेरा एक इनडायरेक्ट एक लव्य वाला एक रिलेशन शुरू हो गया। उन्हें दूर से देख देख कर, निहार निहार के मैंने अपने काम को संवारा।
1: आपने अपने आप को इतना सारा संवार लिया है, तो जिसने इतना संवारा है यानी शबीना जी, तो शबीना जी को गाने तो बहुत पसंद होंगे, है ना?
0: बहुत ज्यादा
1: तो कोई एक गाना जो आपका हो या आपका नहीं भी हो लेकिन आपको बहुत पसंद हो, जो आपके दिल को सुकून देता हो, ऐसा लगे कि बस अब यही सुनना
0: मैं पुराने गानों की बहुत बड़ी फैन हूँ, बहुत बड़ी
1: है। तो
0: फैन
1: हमारे
0: हूँ।
1: विविध भारती के श्रोता आपको बहुत प्यार
0: आप
1: करेंगे।
0: जैसे देखो, मैंने कल इंस्टाग्राम पे डाला, आजा पिया तो हे प्यार दू,
1: क्या
0: गोरी
1: खूबसूरत
0: बैया तो
1: गीत
0: पे
1: है
0: वार
1: जी
0: दू।
1: जी जी जी
0: एक
1: गाइड
0: तो जो
1: फिल्म का ये गाना
0: अल्फाज,
1: जी।
0: जो लिखाई होती थी उस वक्त की लिरिक्स, लता जी जब गाती थी, तो कौन है जो एक्सप्रेशन नहीं दे पाएगा, आप मुझे बताइए।
1: जी
0: तो मैं बहुत बड़ी फैन हूँ पुराने गानों की। आज भी जब मुझे अगर गाड़ी में कोई गाने सुनने हैं, तो मैं पुराने गाने सुनती हूँ जो
1: तो
0: मुझे
1: फिर उनमें से
0: सुकून
1: कोई
0: देते
1: एक
0: हैं।
1: हीरा जो आप बता दें तो हम हमारे श्रोताओं को सुनवा दें।
0: एक तो पहले सुनाइए, आजा पिया तो हे प्यार दो, गोरी बैया तो पे वार दो।
1: चलिए
0: उसके बाद
1: जी,
0: हाँ
1: उसके
0: ये
1: बाद की
0: गाना, उसके
1: भी
0: बाद लग जा गले
1: अच्छा
0: के, फिर ये हंसी रात हो ना हो।
1: बड़ी बढ़िया सी फरमाइश है आपकी, पर
0: बहुत
1: हम
0: ज्यादा
1: आपके तरफ से हमारे श्रोताओं को सुनवा देते हैं ये प्यारा सा गाना जो है, आजा पिया तो हे प्यार दूं, काइट
0: प्लीज
1: फिल्म का गाना है,
0: प्लीज
1: सुनते हैं ये गीत।
0: प्लीज सुनाइए।

0: तो शबीना जी, आपका फिर से एक बार स्वागत है। गाना आपकी पसंद का हमने सुनवा दिया, लग जा गले ड्यू रहा, थोड़ी देर बाद हमारे श्रोताओं तक जरूर पहुंचाएंगे।
1: अब मुझे ये पूछना है कि कोरियोग्राफ तो आपने किया है, छोटी सी शबीना जो है वो बड़ी हो रही हैं, 9वीं 10वीं की उम्र में आ गई हैं। मुझे नहीं लगता कि उस समय की बेटियों में इतनी समझदारी होती थी, मतलब कई चीजें तो हम जानते ही नहीं थे, और कई सारे लोग बोले बरन बरन के लोग मिलते थे, अलग अलग तरीके के लोग आपको मिला करते होंगे, आपकी माँ आपके साथ रहती थी तो आप मैनेज कर पा रही थी। पहला गाना कौन सा था जो एज ए असिस्टेंट डायरेक्टर आपने कोरियोग्राफ किया था और आपको ऐसा लगा था हाय ये मैंने कर दिया?
2: सी, जब हम असिस्टेंट होते हैं तो हम कोरियोग्राफी नहीं करते, उस वक्त की बात है, आजकल अलग माहौल है। जब मैं असिस्टेंट थी तो मेरा काम यह है कि जो मेरे मास्टर कोरियोग्राफी मेरे ऊपर कर रहे हैं उसे मैंने 200% निखार के उनको दिखाना है।
0: जी जी।
2: तो मेरा जब एक्टर मुझसे सीखेगा
0: जी,
2: वो एक्टर को पता होना चाहिए कि मैंने इतना करना है
0: जी,
2: उस लेवल पे करना है, वहां पे असिस्टेंट कोरियोग्राफर की ड्यूटी सामने
0: शुरू
2: आती
0: हो जाती है जी।
2: शुरू हो जाती है। कई मास्टर होते हैं जो खुद डांस नहीं करते, जो खड़े रह के आपको दर्शाते हैं और आपको करके दिखाना है। मेरे जो मास्टर थे गणेश आचार्य जी, वो खुद बहुत अच्छे डांसर,
0: वेरी गुड डांसर,
2: वेरी ग्रेसफुल। उनका ग्रेस उनके मास्टर से आता है, जो कमल मास्टर जी थे
0: जी,
2: और
0: वो
2: कमल
0: भी बहुत
2: मास्टर
0: अच्छे,
2: जी बहुत कमाल। उन्होंने एक ट्रेंड, जैसे कहते हैं कि हमें ये मालूम है भगवान दादा का डांस होता था,
0: जी
2: भोली सूरत दिल के जो वो हाथ का
0: वो
2: स्टेप
0: सब
2: था,
0: कमल जी का
2: वो
0: दिया हुआ।
2: कमल
0: जी
2: जी
0: जी
2: उसमें माहिर थे। उनके असिस्टेंट थे गणेश आचार्य जी,
0: जी
2: उनके असिस्टेंट हूँ मैं। तो
0: बड़ी अच्छी परिपाटी से चली आ रही है।
2: बिल्कुल, वो अपने मास्टर की कहानियां हमें सुनाते थे
0: हाँ
2: कि कमल मास्टर जी खड़े खड़े भी अगर पूरा गाना कर ले तो आपकी नजर नहीं हटेगी, और वही मास्टर जी करते थे, गणेश मास्टर जी। वही मैंने उनसे सीखा कि ग्रेस जान जाए बट ग्रेस ना जाए।
0: क्या डायलॉग
2: हाँ,
0: है।
2: मेरे लिए वो बहुत जरूरी है कि बिना ग्रेस के तो मैं बात भी नहीं कर सकती।
0: जी
2: तो ग्रेस इज व्हाट आई लर्न फ्रॉम गणेश आचार्य जी, जो उनके अंदर कूट कूट के
0: जी
2: भरा हुआ है। तो उनकी असिस्टेंट जब आप बनती हो ना, तो आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है
0: बिल्कुल।
2: कि आपका मास्टर सेट पे एक हीरो होता है, हीरोइन होती है। तो आप किसी जेंट्स मास्टर की जब असिस्टेंट होती हो तो आपकी जिम्मेदारी दुगना हो जाती है, क्योंकि आप फीमेल, आपको ही देख रही है। जो हीरोइन है वो आपको देखकर, वो सुन तो रही है मेरा मास्टर ये बोल रहा है, बट आपको देख रही है। तो
0: हाँ, क्योंकि
2: इसलिए
0: एक्सप्रेशंस उसको आपसे मिलेंगे,
2: बिल्कुल
0: फीमेल वाले
2: अदायगी
0: एक्सप्रेशंस
2: मुझसे
0: आप ही
2: मिलेगी।
0: दोगी।
2: डुएट सॉन्ग
0: बिल्कुल
2: है, जैसे मैं बहुत फेमस गाना अगर गणेश मास्टर जी का बताऊं,
0: हाँ,
2: व्हाट इज मोबाइल नंबर, व्हाट इज, मैं
0: नोकिया
2: असिस्टेंट थी
0: जी,
2: मास्टर जी के साथ, मैं कर रही हूँ गोविंदा और करिश्मा को दिखा रहे, तो करिश्मा मुझे देख रही है। तो
0: हाँ
2: मेरे अंदर मुझे वो कला लानी है जो मेरे मास्टर के अंदर बचपन से है। बस वही दिमाग हमारा होता था उस वक्त, घोड़े का चश्मा लगा के अपने मास्टर को कॉपी करना
0: जी
2: और करके दिखाना।
0: जी
2: तो वहां पे हमारे, आप जितने फेमस गाने उठा लो 90s के,
0: जी
2: जुड़वा के गाने, सारे सलमान खान के गाने, सारे गोविंदा के गाने, सारे सनी देओल के गाने, संजय दत्त के गाने, रवीना टंडन, करिश्मा कपूर, शिल्पा शेट्टी, शिल्पा शिरोडकर, ये जितनी, करीना कपूर, रानी मुखर्जी, ये सारे गाने, उनकी सारी फिल्में उठाओ गणेश मास्टर जी ने की है।
0: और गणेश
2: और उन
0: मास्टर जी के साथ खड़ी थी शबीना खान।
2: शबीना खान। तो अब जब मैं कोरियोग्राफी करने निकली तो लोग बोलते, अरे रानी आपकी तरह डांस कर रही थी, कभी कभी तो करिश्मा आपकी तरह कर रही थी। तो ये
0: मैं ही
2: जो
0: सिखा रही थी
2: मैं
0: उस
2: ही,
0: समय।
2: हाँ उसी वक्त, क्योंकि वो लोग भी बहुत, उस वक्त के स्टार्स भी वैसे ही थे, बहुत ही डिसिप्लिन के साथ आपको सुनते थे, आपको करते। तो वो वाला एक एरा से हम आते हैं,
0: तो
2: यू नो।
0: फिर उन गानों में से कोई एक गाना जो आपको बहुत पसंद हो, हालांकि काश कि हम रेडियो पे वो डांस दिखा सकते हैं। अभी हम रेडियो पे वो डांस तो नहीं दिखा सकते आपका, पर हम चाहते हैं कि वो कोई एक गीत जो उस समय का, उस इरा का, जो आपने किया हो और आपको बहुत मजा आया हो कि यार असिस्टेंट डायरेक्टर होने के बाद भी बड़ा मजेदार कर दिया
2: मैं
0: मैंने
2: मजेदार
0: असिस्टेंट
2: बताऊं, थोड़े
0: कोरियोग्राफर।
2: से लोग जो आज भी उस गाने को बहुत पसंद करते हैं, पीपल से दैट हमें शबीना दिखती है उसमें,
0: जी
2: वो है रानी मुखर्जी का एक गाना था, कुड़ी कवारी दे दे
0: है,
2: पीछे
0: क्या
2: पीछे
0: बढ़िया
2: पीछे
0: गाना
2: पीछे।
0: है।
2: उसमें मैं असिस्टेंट थी, और जितने लोग मुझे अब देखते हैं,
0: जी
2: जिन्होंने देखा है, बोलते यार रानी लगता है शबीना तुम कर रही हो, बिकॉज वो सांझेदारी होती
0: नहीं,
2: थी
0: आपका चेहरा भी काफी मिलता है और आवाज भी बहुत मिलती है रानी जी से,
2: उस वक्त।
0: तो
2: काफी लोग रानी और मुझे कहते भी थे, और वी वर लाइक रियली गुड फ्रेंड्स, एंड दैट्स हाउ आप एक दूसरे को पसंद करके एक अच्छा गाना डिलीवर करते हो।
0: जी
2: तो वो गाना अगर आप देखोगे या आप प्ले कर पाओ,
0: बिल्कुल, ये
2: आपकी
0: गाना
2: मर्जी
0: हम
2: है।
0: जरूर हमारे श्रोताओं को सुनाना चाहेंगे। बहुत खूबसूरत सा गीत है और शायद जसपिंदर नरूला जी
2: हाँ
0: ने
2: जी,
0: गाया हुआ
2: हाँ
0: ये
2: जी,
0: गाना है, और बड़ा खूबसूरत, वो बुलंद आवाज के साथ, उस
2: बिल्कुल
0: बुलंदी के साथ जो किया गया है तो बेहतरीन है। तो ये गीत जरूर हम हमारे श्रोताओं को सुनाएंगे।
2: बिल्कुल।
0: इसमें रानी मुखर्जी दिख रही हैं, लेकिन रानी मुखर्जी को दिखाने के लिए शबीना खान पूरा डांस दिखा रही है, और जो रानी मुखर्जी है

0: योर प्रॉब्लम?
1: बाय द वे तुम्हें क्या करना है?
0: बाय द वे कुछ वादे करने हैं, उन्हें पूरा करना है, संग जीना है, संग मरना है।
1: तो कर लो ना जो करना है, डोंट बॉदर मी।
0: रियली?

0: ये गीत तो बड़ा प्यारा है। हम तो स्टूडियो में बैठे हैं कुर्सी पे, तो हम नाच नहीं सकते, लेकिन जरूर से इस गीत पे मुझे विश्वास है कि हमारे सारे श्रोता जो हैं वो डांस कर रहे होंगे और याद कर रहे होंगे। रानी मुखर्जी की बात आई तो आपका चेहरा बहुत ज्यादा रानी मुखर्जी से मिलता है, और आपसे बात होते होते आपने मुझे ये बात कही भी थी कि एक गाने में बहुत सारी जगह रानी को पैर में चोट लगी थी, वो किस्सा अगर आप खुद बता दें तो बड़ा अच्छा लगेगा।
1: सो ऐसे इंसिडेंट तो 2-3 बार हुए हैं।
0: जी
1: जैसे एक गाना मैं बताऊं अगर आपको, जिसमें टाइटल सॉन्ग है, जिसमें ऐसे दिखाना है कि मैं डांस कर रही हूं
0: हाँ
1: और अरबाज खान को
0: हाँ
1: रानी मुखर्जी का कैरेक्टर जो उसकी गर्लफ्रेंड होती है वो दिखाई देती है,
0: अच्छा
1: तो सलमान भाई ने कहा कि हु बेटर देन शबीना।
0: हाँ
1: सो बहुत कम लोगों को मालूम है, अभी आपके माध्यम से जितने लोग सुन रहे वो वापस जाके YouTube पे देखेंगे तब समझ आएगा, लेकिन लोगों को देखकर भी समझ नहीं आया था। आज भी बहुत कम लोग हैं जिन्हें पता है कि दो लड़कियां थी वहां
0: ऐसा
1: पे।
0: मुझे भी समझ नहीं आया था उस
1: हाँ आप
0: गाने में।
1: देखिए,
0: जी
1: गाना शुरू मुझसे होता है, सेम कपड़े सेम हेयर स्टाइल एवरीथिंग सेम, मैं डांस करना शुरू करती हूँ, हेलो ब्रदर, दैट सॉन्ग ब्रदर, हेलो ब्रदर,
0: उसमें दोनों जगह पे आप हैं बट
1: मैं हूँ, और फिर वो चेंज होता है अरबाज खान के पॉइंट ऑफ व्यू से, रानी आती है,
0: ओ
1: तो वो जब हम कहते हैं तब पता चलता है कि अच्छा वो लड़की दूसरी थी क्या। बहुत लोगों को लगता था, इवन ऑन द सेट रानी मुखर्जी का जो मेकअप आर्टिस्ट है वो घूम के मेरे पास आके मेरा मेकअप कर रहे हैं, तो दादा मैं हूँ शबीना रानी। तो हमारी हाइट,
0: जी जी
1: पर्सनालिटी,
0: जी
1: बाल, काफी कुछ मिलता था उस वक्त।
0: जी
1: और फिर एक गाना था, काली नागिन की जैसी जुल्फें
0: ब्यूटीफुल
1: तेरी काली
0: सॉन्ग।
1: काली, मैं
0: यस
1: असिस्टेंट थी और उसमें काफी वाइड शॉर्ट्स और मिड वाइड में हमें गाना जल्दी खत्म करना था, शायद पता नहीं रानी को भी ये बात पता है कि नहीं, तो वो आने से पहले काफी शॉर्ट्स मेरे साथ और आमिर जी
0: हो
1: के
0: गए
1: साथ
0: थे।
1: हो जाते थे,
0: अच्छा
1: तो वो एक गाना था। उसके बाद में चांदी की डाल पर सोने
0: वो
1: का
0: मटकी
1: मोल,
0: फोड़ने वाला
1: मटकी
0: गाना।
1: फोड़ने वाला गाना,
0: जी
1: वहां पे भी मैं असिस्टेंट थी और काफी वक्त ऐसे वाइड शॉट, तो काफी ऐसी फिल्में थी जहां पे लगे अच्छा जल्दी करना है, सनलाइट को संभालना है, तो आजा शबीना तू कर ले,
0: जी
1: तो आई यूज टू डू इट।
0: मतलब मजे मजे में जिंदगी में बड़े सारे काम कर लिए, मतलब जरूरत पड़ी तो हम खुद ही मेकअप करके उतर गए और डांस करके आ
1: बिल्कुल
0: गए।
1: बिल्कुल, यही अदायगी होती है।
0: जी। अभी आप असिस्टेंट कोरियोग्राफर, असिस्टेंट डायरेक्टर आप काम करते जा रही हैं, तो इसमें आपने बहुत सारी फिल्मों में और भी काम किया होगा उस समय।
1: बहुत सारे
0: जी, उसके बाद आपने अपना खुद का जो पड़ाव है या बोलना चाहिए मेरा कदम, वो कब लिया और कैसे लिया?
1: सो असिस्टेंट पीरियड की एक बात जो मैं जरूर मेंशन करना
0: जी
1: चाहूंगी ताकि जो आपके सुनने वाले हैं लड़कियां
0: जी
1: है वो समझे इस बात को, कि मेरी अम्मी ने एक शर्त रखी थी कि पढ़ाई नहीं छोड़नी तुमने,
0: पढ़ाई नहीं छोड़नी है। जी बहुत
1: तो
0: बढ़िया
1: मेरे
0: बात है।
1: असिस्टेंट पीरियड में मैं पढ़ाई भी कर रही थी, 10th कंप्लीट की,

0: कॉलेज जाना शुरू किया।
1: ओके
0: काम भी कर रही हूँ, कॉलेज भी जा रही हूँ और घर भी संभाल रही हूँ, अपने बहन भाइयों की पढ़ाई।
1: कॉलेज में क्या विषय पढ़ रहे थे उस समय?
0: मैंने 2 साल साइंस लिया था, मैं डॉक्टर बनना चाहती थी।
1: आप कोरियोग्राफी के साथ?
0: हाँ, तो क्योंकि मैं कोरियोग्राफर कभी बनना नहीं चाह रही थी। मैंने काम शुरू ही एक सोच के किया था, अम्मी और मेरी ये सोच थी कि हमने अपनी पढ़ाई को सपोर्ट करना है और मैंने डॉक्टर बनना है
1: जी।
0: क्योंकि मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, 100% मार्क्स स्कोर करती थी स्कूल में। मैंने 1 साल पहला साइंस लिया, बहुत डिफिकल्टी से पढ़ाई भी की, काम भी किया। सेकेंड ईयर फिर मुझे इसको स्किप करना पड़ा क्योंकि उस वक्त तक भाई बहन बड़े हो रहे थे,
1: पैसों की भी
0: जरूरत थी और पढ़ाई अगर करके मार्क्स कम आए तो मुझे वो गवारा नहीं था क्योंकि जिंदगी भर मैंने 100% स्कोर किया था,
1: हारे तो कभी नहीं थे।
0: कभी हारे नहीं। तो मैंने सोचा ठीक है, फिर मैंने वहां से छोड़कर कॉमर्स में आ गई मैं।
1: अच्छा।
0: कि कोई बात नहीं, ग्रेजुएशन कंप्लीट करते फिर देखते क्या होता है। तो पढ़ाई साथ साथ चलती रही मेरी।
1: मतलब आपने जो भी पढ़ा अच्छा कठिन ही पढ़ा।
0: हाँ,
1: 11th 12th भी अगर आप साइंस से पढ़ रहे हैं तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, या फिर आप बायो की लाइन में पढ़ रहे हैं तो इतने सारे बायोटेक्निकल नेम्स और बहुत सारी चीजें होती हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री सबसे
0: तो
1: डर
0: ऐसा
1: तो
0: होता
1: उनसे
0: था कि
1: लगता है आपने
0: असिस्टेंट
1: पढ़ा।
0: डेज में मेरी किताबें मेरे साथ होती थी, अम्मी साथ होते थे, किताबें साथ होती थी, पढ़ाई भी कर रही होती थी।
1: ये
0: और
1: बहुत बड़ी बात है और शायद ये प्रेरणा वाली बात है हमारे उन लोगों के लिए जो ये सोचते हैं कि हम एक साथ पढ़ाई के साथ कुछ और नहीं कर
0: बिल्कुल यही
1: सकते
0: मैं चाहती थी कि आपके
1: जी।
0: जरिए पता
1: तो
0: चले
1: हमारे
0: लोगों को।
1: कितने सारे श्रोताओं में जो कितने बच्चे हमें सुन रहे होंगे उनको कितनी अच्छी बात पता पड़ रही है कि आप काम भी कर रही हैं, कमाई भी कर रही हैं, दोनों चीजें हो रही हैं,
0: बिल्कुल
1: प्लस पढ़ाई भी हो रही है, वो भी साइंस की,
0: जी,
1: बायो केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, ये
0: बिल्कुल
1: तीनों बहुत हैवी सब्जेक्ट हैं, तीनों में बहुत पढ़ना, याद करना, फिजिक्स
0: बिल्कुल
1: की मैथ्स भी होती है।
0: बिल्कुल।
1: और
0: इसलिए जब सेकेंड ईयर पे आई तो मैंने खुद डिसीजन लिया कि मैं नहीं कर पाऊंगी।
1: बट कॉमर्स भी इजी नहीं
0: हाँ,
1: है।
0: बीके में मास्टर थी मैं अपनी क्लास
1: जी
0: की, मतलब मैं
1: क्या
0: खुद,
1: बात है,
0: हाँ,
1: बुककीपिंग
0: पढ़ाई में
1: सही
0: अच्छे। हाँ, तो बुककीपिंग वाज वेरी गुड, व्हिच इज हेल्पिंग मी नाउ आल्सो। तो जो
1: हाँ
0: पढ़ाई है वो मेरी जिंदगी में आज भी मेरे बहुत सपोर्ट में है। जो मैं सिस्टमेटिकली अपने करियर को संभाल पाई हूँ वो सिर्फ
1: जी
0: एक नॉलेज था पढ़ाई का, डिसिप्लिन का।
1: जी
0: और आप एक स्टूडेंट होते हो तो आप एक डिसिप्लिन लाइफ जीते हो कि आपको जल्दी सोना है, जल्दी उठना है,
1: जी
0: वो आज
1: बिल्कुल
0: भी मेरी लाइफ में है। इसलिए मैंने कहा कि ये टॉपिक मैं करना चाहती हूँ आपके साथ, कि आप कर सकते हो जब आपके दिल दिमाग में ये टारगेट बैठ जाता है कि आपको ये करना है।
1: यानी उस समय नींद कम होगी, पढ़ाई और मेहनत ज्यादा होगी और वो
0: बिल्कुल
1: सब करके आप हर फील्ड में आप जीती।
0: बिल्कुल। और आज इंसान को, अच्छे खासे दिमाग वाले इंसान को, 4 घंटे की नींद बहुत है, बहुत है।
1: जी
0: ये जो 6 घंटा 8 घंटा है वो एक्टरों के लिए ठीक है, जिन्हें
1: जी
0: अच्छे दिखना है, सुंदर दिखना है, लेकिन अगर आपको आपका करियर बनाना है तो
1: जी
0: आपके अंदर बेचैनी होनी चाहिए, आपको भूख नहीं लगनी चाहिए। शाहरुख खान साहब बहुत अच्छा कहते हैं कि अगर आपको नींद नहीं आती और आपको भूख नहीं लगती और आप बेचैन हो तो
1: हाँ
0: मतलब आप बहुत बड़े बनोगे आगे जाके।
1: क्या बात है,
0: आप सुकून की नींद सो गए तो खत्म।
1: सुकून की नींद नहीं, पेट भर
0: बिल्कुल
1: के भूख नहीं
0: बिल्कुल,
1: और एक अलग
0: ये
1: बेचैनी,
0: बिल्कुल मैं अपने आप
1: इसके
0: को
1: लिए
0: आज
1: डॉक्टर के पास नहीं जाना है, काम
0: नहीं जा।
1: करने के लिए लग जाना
0: चार
1: है।
0: घंटे की नींद काफी होती है दिमाग को और तंदुरुस्ती को
1: जी
0: कायम रखने के लिए।
1: कई बार लोग इसे कह देते हैं कि हम डिप्रेस हो रहे हैं या हमें कोई और समस्या हो रही है, ये सब नहीं हो रहा है, थोड़ा सा ध्यान दे लो, आपके अंदर कुछ पनप रहा है,
0: बिल्कुल,
1: कुछ जाग
0: ये
1: रहा है।
0: बेचैनी जो है एक नए कल की शुरुआत है।
1: जी
0: हमेशा
1: जी
0: हिमेश रेशमिया ने एक बार बहुत अच्छी बात कही, हम जब प्रेम रतन धन पायो कर रहे थे, कहते हैं, मैंने कहा सर कितना खूबसूरत गाना बनाया आपने, तो ही सेड रोटी की भूख मुझे आज भी है,
1: इतना होने के बाद
0: ये भूख ही मुझसे करवाती है। तो मैं सर
1: और उसके बाद वो लोग रोटी नहीं खाते मेंटेन
0: बिल्कुल
1: करने के लिए।
0: बिल्कुल। तो अब आपके सवाल के जवाब की तरफ आती हूँ कि
1: जी
0: ये कब हुआ जब कोरियोग्राफी शुरू की।
1: जी
0: मैं कोरियोग्राफर बनना नहीं चाहती थी, मैं पढ़ाई करके कुछ बनना चाहती थी, कुछ अलग बनना चाहती, लेकिन जिंदगी का मकसद कुछ और होता है, ऊपर वाले का स्क्रीन प्ले कुछ और होता है। और मेरी अम्मी हमेशा कहती है ना, फ्लो के साथ चलो। एक फ्लो आया जब मैं प्रभु देवा जी को असिस्ट कर रही थी, चेन्नई में थी मैं, गणेश मास्टर जी के साथ अब काम छोड़ दिया 4-5 साल के बाद, और अब लगा कि ठीक है दिशा बदलनी चाहिए, तो मैंने प्रभु देवा जी को ज्वाइन किया।
1: जी
0: अब मैं चेन्नई में शूट कर रही थी और मुझे बॉम्बे में राम गोपाल वर्मा जी ढूंढ रहे थे।
1: अच्छा
0: हाँ
1: क्या
0: जी,
1: बात है।
0: तो असिस्टेंट डेज में जिनको भी साथ मैंने काम किया उनको एक चीज वो नहीं भूल पाए कि एक लड़की है जो ऐसा परफॉर्म करती है लगता है माधुरी दीक्षित नाच रही है। तो वो जो मेरा परफॉर्मेंस था लोग भूल नहीं पाए। हर इंसान, मतलब असिस्टेंट डेज में भी ऐसा होता था कि ऐश्वर्या राय गाना कर रही है हमारा दिल आपके पास, और वो पूछ रही है कि गणेश मास्टर जी की असिस्टेंट शबीना है ना अभी भी।
1: अच्छा प्रश्न ही होता था,
0: हाँ
1: शबीना आएगी ना
0: शबीना है
1: सिखाने
0: ना,
1: के लिए? हाँ
0: तो उन्होंने पूछा शबीना है ना, हाँ हाँ शबीना है, उनका वीजा नहीं लगा अमेरिका का, तो अनिल कपूर और बोनी कपूर चले जाते हैं वीजा लगवाने मेरा।
1: मतलब आपने इतना अच्छा काम किया कि आपके लिए अनिल कपूर
0: हाँ
1: जाके वीजा लगवा रहे हैं।
0: वीजा, और मुझे कॉल आता है कि भाई

0: या तुम्हारा 10 साल का वीजा लग गया है, समझ रही हो तुम? अनिल कपूर बोल रहा हूँ, शबीना, मतलब वो लेवल का। शाहरुख भाई ने एक बार बोल दिया कि अगर असिस्टेंट्स को अवार्ड होता तो मैं शबीना को अवार्ड दिलवा
1: क्या
0: देता।
1: बात है,
0: जब मैं उनके साथ मैं तो हूँ पागल सॉन्ग कर रही थी, जब मैं परफॉर्म भी
1: हाँ
0: कर
1: क्या
0: रही
1: खूबसूरत
0: थी,
1: गाना
0: तब तो मैंने बिल्कुल ज्वाइन पूरी तरह से किया नहीं था, मैं
1: है।
0: पढ़ ही
1: जी
0: रही
1: जी
0: थी,
1: जी
0: असिस्टेंट डेज की बात है।

0: मियां सालार जमात मिसराए हुला की नकवा संजी में मसरूफ मशगूल हैं, ता वक्ते के दीगर असहाबे जमात मिसराए सानी के बकिया अरकान की अदायगी फरमा रहे हैं। आए
1: ये क्या गालिब की गजल है।

0: वो वाले माहौल में राम गोपाल वर्मा मुझे ढूंढ रहे हैं मुंबई में, और वो कहते हैं कि एक लड़की थी जो गणेश आचार्य जी के साथ परफॉर्म करके दिखाया था उसने मुझे एक गाना,
1: जी
0: वो लड़की को ढूंढो उसको ब्रेक देते हैं, वो बिल्कुल माधुरी की तरह नाचती है, और फिल्म का नाम था जिसके लिए वो मुझे ढूंढ रहे थे, मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ,
1: 2003 की ये फिल्म है।
0: बिल्कुल, और वो ढूंढ रहे हैं मुझे। फिर वहां से मुझे ढूंढा गया, चेन्नई से बुलाया गया और अपनी ऑफिस में बुलाया, अम्मी और मैं बैठे और बात कर रहे हैं उनसे, और मैं कह रही हूँ कि सर मैं कोरियोग्राफर नहीं बनना चाहती, मैं अपनी पढ़ाई कंप्लीट करना चाहती हूँ, मेरे को कुछ नहीं आता,
1: सीधे ब्रेक
0: मुझे
1: मिल रहा है बट
0: बिल्कुल
1: आप जाना चाहती हैं पढ़ने के लिए। जी
0: मुझे आता ही नहीं कुछ, मैंने सिर्फ यही सीखा है कि अपने मास्टर्स के लिए अच्छा काम करना है, मैंने कभी टेक्निकली सीखा ही नहीं कि कैमरे के पीछे क्या होता है, तो मुझे बनना ही नहीं था इसलिए मैंने सीखा ही नहीं, मुझे एक ही बात आती है कि आपको परफॉर्म कैसे करना है। ही सेड दिस इज व्हाट आई वांट फ्रॉम यू, ही सेड मैंने सरोज जी को साइन कर लिया है, मैं फिर भी चाहता हूँ कि तुम करो अंतरा के साथ ये फिल्म, अंतरा माली हीरोइन थी
1: जी
0: उसकी, चंदन अरोरा जी उनके डायरेक्टर थे जो बहुत बड़े एडिटर थे उस वक्त भी, तो
1: जी
0: सर मुझे कुछ नहीं आता, इसे चंदन है तुम्हारे साथ तुम्हें बता देगा, एक गाना करो मजा आया तो आगे करना,
1: वो
0: फिर
1: गाना कौन सा था पहला वाला?
0: तुमसे मिली नजर तो असर हुआ
1: हाँ
0: है आज
1: वो भी
0: ये
1: बहुत
0: दिल,
1: अच्छा किया था अंतरा वाली जी ने,
0: आहा, आहा,
1: बढ़िया किया था।
0: बहुत फेमस हुआ था वो गाना। ही सेड मैंने ऑडिशन किया है काफी लड़कियों को, बट तुम जाओ अंतरा से मिलो और देखो क्या होता है, मैं गई, अंतरा ने मुझे दो गाने दिए, इस पे कल आप परफॉर्म करके दिखा देना, मैंने किया, वो गाना था एक दो तीन और हमको आज कल है इंतजार,
1: हाँ, वो
0: माधुरी
1: मुझे
0: दीक्षित
1: अभी
0: का।
1: अंतरा जी दिखाई दे रही हैं, अंतरा माली की, वो उस गेटअप में खड़ी हैं स्टेज पे और वो उसको परफॉर्म कर रही हैं।
0: बिल्कुल,
1: जी
0: तब वो गाना मैंने उनको परफॉर्म करके दिखाया, एंड शी जस्ट स्टूड अप एंड शी हग्ड मी एंड शी सेड तुम ही करोगी मेरे गाने,
1: क्या बात है।
0: तो मैंने कहा कि मैम मुझे आता नहीं है, बिहाइंड द तो चंदन अरोरा साथ में कर लेंगे, मेरी भी पहली पिक्चर है, सच अ
1: सीख लेंगे
0: ग्रेसफुल डायरेक्टर, सच अ गुड एडिटर इज,
1: जी।
0: उनकी वजह से मैं बहुत कुछ सीख पाई, उन्होंने मुझे कहा कि देखो तुम शॉट मुझे ऐसे बताना, गर्दन का मूवमेंट है तो यहाँ पे हाथ रखना गर्दन के नीचे, कमर का मूवमेंट है तो कमर की तरफ हाथ रख के बताना, पूरा फुल फिगर है तो बताना कि मुझे पूरा देखना है, इतनी सादी अल्फाज में उन्होंने मुझे एक कोरियोग्राफी सिखा दी, और फिर वहां से सिलसिला शुरू हुआ, और जब पहला गाना एडिट
1: कोई
0: करके
1: टेक्निकल वर्ड्स नहीं थे
0: इसे
1: इसमें।
0: तुमने यही सीखना, और फिर जो सीखोगे अपने काम से सीखो, काम करते करते सीखो,
1: जी जी
0: तो
1: जी
0: राम गोपाल वर्मा इज माई फर्स्ट टीचर एंड चंदन अरोरा इज माई सेकेंड टीचर, आई टेक इट लाइक दैट, एंड अंतरा माली इज माई फर्स्ट स्टार हु, उस दिन उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और बोला चल साथ में करते हैं,
1: जी
0: तो वो फिल्म मैंने की और मुझे बहुत मजा आया, और फिर लगा कि ओ माई गॉड ये मेरा क्रिएशन है, जब 70 mm के पर्दे पे मैंने पहली बार अपनी रचना देखी तो मुझे लगा कि स्टेप्स भी मेरे हैं,
1: जी
0: लाइट्स भी मैंने बताई है, एंगल भी मेरे, ये मैंने क्रिएट किया है,
1: ये मेरा बच्चा है।
0: हाँ, तब मैंने मम्मी को बताया, मम्मी मुझे ये बहुत अच्छा लगा मुझे ये करना है, मम्मी बोले करो बेटा,
1: एक्चुअली में जब आप कुछ सजाते हो तो सजाने के पहले भी आप एक अकेले कमरे में बैठ के शायद उस
0: आप
1: डांस
0: उसको
1: को
0: जीते हो,
1: जी रहे होगे, उसके
0: बिल्कुल
1: साथ कुछ सपने भी बुन रहे होगे
0: बिल्कुल,
1: और उसको आपने एक जीवन दे दिया।
0: मतलब मैं अगर आपसे ये कहूं कि हम रिहर्सल हॉल के अंदर बैठ के गाना एडिट तक देख लेते हैं,
1: हाँ
0: एडिटिंग तक,
1: हाँ
0: पहला प्रोसेस होता है गाना आता है, कोरियोग्राफी होती है, डायरेक्टर को दिखाते हैं, शूट करते हैं, एडिट करते हैं,
1: जी
0: तो पहले प्रोसेस में बैठ के हम एडिटिंग रूम के अंदर गाना देख लेते हैं,
1: जी
0: ये इतनी खूबसूरत रचना है जिसको आप रचने जा रहे होते हो, तब मुझे वहां पे मजा आया और मैंने कहा कि अब यही करना है मुझे, फिर जिंदगी का मोड़ मुझे कोरियोग्राफी की तरफ ले आया और वहां से मेरी कहानी शुरू हुई।
1: आपको सुन के ना इतना मजा आ रहा है कि जिंदगी में आप एक 20 मिनट आधा घंटा किसी को सुन रहे हो और सुनते सुनते आप उसमें से बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपके जीवन में काम आ जाएंगी, ऐसी मिलते जा रही हैं।
0: बिल्कुल
1: तो आपसे बात करके शबीना जी बड़ा आनंद आ रहा है, लेकिन हमारे श्रोताओं को हमें कोई गीत तो सुनाना पड़ेगा और आपके गीतों में से कोई गीत सुनाना है या पुराना सुनाना है हम आप पे बिल्कुल छोड़ देते हैं। आज आपकी पसंद हमारे श्रोताओं तक पहुंचनी चाहिए, जितनी भी जाएगी
0: तो
1: वो।
0: मेरा एक गाना है मेरी अपनी फिल्म का जो मेरा अपना फेवरेट है,
1: जी
0: प्रेम रतन धन पायो फिल्म
1: हाय
0: से है,
1: हाय,
0: गाना है जलते दिए,
1: बहुत खूबसूरत गीत है।
0: उसमें मुझे वो आत्मा दिखती है जो पुराने गानों में दिखती थी,
1: जी जी
0: जो
1: जी
0: आप सुनेंगे या आप देखेंगे तब
1: जी
0: भी आपको लगेगा कि ये गाना रूह को टच करके जाता है
1: इसके साथ एक प्रश्न आ रहा है मन में, वो जो बीच बीच में जो दिए जल रहे हैं और
0: जी।
1: वो बीच में से जो आपकी अभिनेत्री नृत्य कर रही हैं और नृत्य करते करते यहां से वहां जा रही हैं, तो इस चीज के लिए भी विशेष सुरक्षा कुछ की जाती होगी कि
0: बिल्कुल,
1: कैसे वो कर रही हैं, तो वो थोड़ा सा उसके बारे में बता दें तो हम गाना
0: सो
1: सुना
0: अगर
1: दें।
0: आप गाना देखेंगे आपके जरिए जो इतने लोग
1: सुनेंगे और बाद में देखेंगे भी,
0: देखेंगे और सुनेंगे। तो ये जो दिए देख रहे थे आप, क्योंकि गाना था जलते दिए, तो हमारे जो सूरज बजातिया जी है उनको तो सब जानते हैं, सबके दिलों की धड़कन है वो, तो वो बहुत ही रियल लाइफ में जीते हैं अपनी।
1: बिल्कुल,
0: उनसे मैंने, वो मेरे एक मेंटोर है, मेरे टीचर है, उनसे मैं बहुत कुछ सीखती हूँ। जब ये गाना आया उन्होंने कहा कि हम दिए खुद जलाएंगे,
1: खुद जलाएंगे, यानी
0: नकली दिए भी मिलते हैं जो आप वो ऑन करके डाल दो
1: एलईडी वाले।
0: नहीं, उन्होंने अपने डीओपी को बोला, मणिकंदन हमारे डीओपी थे, हे सेड मैं चाहता हूँ कि हम दिए जलाएं, जितनी दिए दिख रहे हैं हम जलाएंगे, भले 50-100 लोग भागे शॉट के पहले दिए जलाए और बाहर आ जाए। तो ये एक बहुत बड़ी कहानी है इस
1: बढ़ जाते हैं इसका ये काम ऐसा होता है।
0: तो उसमें दिए जलाने में मैं भी होती थी, मेरे असिस्टेंट, उनके असिस्टेंट, वो भी भागते थे कि दिए जलाना है, पानी में भी दिए जल रहे हैं
1: जी,
0: आपने जो सवाल किया, साइड में
1: जल रहे हैं,
0: जहां जहां वो जा रही है वो दिए जल रहे हैं। और उन दियों को हम जलाते थे और एक डिस्टेंस मेंटेन करके, क्योंकि उन्होंने साड़ी पहनी हुई थी
1: और वो तो बहुत चलकर नेट की साड़ी है वो,
0: तो वो हमारा एंगल हम ऐसे रखते थे कि दिए लगे उनके बहुत करीब, बट वो होते थे बहुत दूर।
1: मेरा प्रश्न वही था कि हमें ऐसा लग रहा था कि वो बिल्कुल दिए के बगल से निकल रही है, और वो
0: हमारा एंगल ऐसे रखते हैं कैमरा के कैसा लगे कि है बहुत करीब, लेकिन वो है बहुत, हम जो भी फिल्म के सेट पे करते हैं वो बहुत ही सोच समझ के, हमारे जो लोग एक्सपर्टीज रखते हैं इस मामले, वो हमारे सेट पे होते हैं
1: जी।
0: और फायर के लिए बराबर से इक्विपमेंट होते हैं, ऐसे नहीं होता,
1: फिल्म सेट हैं,
0: डॉक्टर्स होते हैं, सारी चीजों को बहुत ध्यान में रख के फिल्म के सेट पे काम किया जाता है। जैसे लोग आजकल रील बना रहे हैं, उनको भी ये समझना चाहिए कि आप देख के रील बनाते हो, लेकिन आप भी इसका ध्यान रखो कि सेफ्टी बहुत जरूरी है। घर में रील बनाते हो, पीछे पर्दे लगे हैं, वो पर्दे जल जाए, घर में रहने वालों को नुकसान हो जाए, सेफ्टी

0: सेफ्टी नॉर्म्स के
1: बहुत
0: साथ में
1: जरूरी है,
0: ही
1: बहुत
0: काम करना
1: जरूरी।
0: चाहिए।
1: तो इस गाने को बहुत ही प्यार से,
0: बहुत
1: कोमलता
0: रिच
1: से
0: सॉन्ग है,
1: दर्शाया गया।
0: बहुत प्यारा, बहुत
1: बहुत
0: सॉफ्ट, बहुत गीत है और बहुत प्यारा गीत है ये।
1: बिल्कुल
0: दिल में ऐसे लगता है सुनते सुनते कि हाँ कुछ हो रहा है, तो
1: बिल्कुल
0: जब कुछ हो रहा है तो वो गाना सुन लेना चाहिए। तो हमारे श्रोताओं के लिए इस प्यारी सी सूचना के साथ, जानकारी के साथ कि कैसे शूट किया गया ये गाना, जलते दिए आप सबके लिए।

0: अभी आपने फीमेल एक्टर्स का नाम लिया, ऐश्वर्या का नाम लिया आपने, आपने बहुत सारे लोगों का नाम लिया
1: जी।
0: बहुत सारी एक्ट्रेस हैं। जब मैं आपके बारे में पढ़ रही थी, इंटरनेट पे सर्च किया, ढूंढा आपको, और वो ढूंढते ढूंढते तो कभी कभी ऐसी चीजें जो होती हैं सोशल मीडिया वाली, वो भी बड़ी काम आ जाती हैं। तो वहां से ये भी जानकारी मिली कि लगभग जब हम पढ़ रहे थे तो 34-35 महिलाएं जो हैं, एक्ट्रेस जो हैं, अभिनेत्री जो हैं, उनको आपने बढ़िया डांस करवाया है, बढ़िया कोरियोग्राफ किया है। तो पूजा जी हैं, सोनाक्षी सिन्हा हैं, विपाशा है, परिणीति हैं, माधुरी हैं, रेखा हैं, रेखा जी को भी आपने सिखाया है। तो मैं जानना चाहती हूँ, या हमारे श्रोता भी जानना चाहते हैं बात, तो ये बड़ा वैसा प्रश्न है, कौन है जो बड़ी सरल सी है और बड़ी आसानी से सीख जाती है और बड़े प्यार से कर लेती है?
1: आपने अभी और पुराने सबका नाम एक साथ ले लिया।
0: नहीं, आप अलग से बता सकती हैं।
1: हर एक के बारे में बता
0: दी।
1: रेखा जी हमारी उमड़ा जान
0: जी,
1: उनसे बेहतर कौन हो सकता है। उनके साथ मैंने सुपर नानी एक फिल्म की थी इंद्र कुमार जी की
0: जी।
1: मैं नई कोरियोग्राफर थी
0: जी।
1: और जब उनको पहली बार देखा मेरे पैर ठंडे हो गए, हाथ ठंडे हो गए, बिकॉज उनकी अदायगी
0: आज भी उतनी ही खूबसूरत,
1: भी उतनी ग्रेसफुल,
0: 73-74 बरस की उम्र में भी वही अदायगी,
1: आज भी वो स्टेज पे खड़ी हो जाए बस यूं देख ले
0: हाँ।
1: तो दिल के अंदर तीर घुस जाते हैं, वैसी है वो। और उन्होंने मुझे बहुत कंफर्टेबल किया और उनके साथ मैंने वो फिल्म की
0: जी,
1: उसमें डांसिंग नंबर भी था एक, और बहुत प्यार से किया। मेरी उस साल नई शादी हुई थी, उन्होंने अपने हाथ से बना के एक मंगलसूत्र मुझे पहनाया।
0: क्या बात है।
1: और अपने हाथ से एक लेटर दिया लिखकर, इसे मैं कहती हूँ अचीवमेंट है। ठीक है, उसके बाद सोनाक्षी सिन्हा बहुत ग्रेसफुल है।
0: अच्छा,
1: बहुत ग्रेसफुल है, उसमें वो बात है।
0: अच्छा,
1: जो हम कहते हैं ना अदायगी, नजाकत, यू नो, वो है। परिणीति इज ऑल्सो वेरी ग्रेसफुल।
0: यस,
1: ग्रेसफुल मैं तब कहती हूँ ना, परिणीति के साथ अक्षय कुमार, परिणीति का एक गाना किया था कीमती, एक सॉन्ग था मेरा, बहुत ग्रेसफुल। जहां आपके पास डांस नहीं करना है, खड़े रह के कुछ बोलना है, कुछ गाना है, वहां पे आपकी नजाकत और आपका ग्रेस पता चलता है।
0: इसे अंग्रेजी में मिनिमल कहते हैं, मतलब कमतर में बेहतरीन करके निकल जाना।
1: बिल्कुल
0: जी।
1: आपको ज्यादा शोर शराबा, जंप वंप करने की जरूरत नहीं है। आप बस, आपका क्लोजअप लगा और आपने सिर्फ कैमरा को देखा और एक लाइन गा दी, इसे कहते हैं अदायगी, जो परिणीति में है, सोनाक्षी में है। सोनम इज रियली गुड, सोनम प्रूव्ड इन प्रेम रतन धन पायो, शी वर्क्ड रियली हार्ड विथ मी। अगर मेरा नाम परिचय इस दुनिया को और इस इंडस्ट्री को पता चला तो प्रेम रतन धन पायो फिल्म थी,
0: बिल्कुल,
1: और उसमें मेरी हीरोइन थी सोनम कपूर,
0: शी
1: वर्क रियली हार्ड। रात को 2-2 बजे तक रिहर्सल किया, और शी, क्योंकि मैं अपनी अदायगी को कैमरा के सामने तो दिखा सकती नहीं हूँ, बट मैं अपनी एक्ट्रेसेस के साथ, अगर वो मेरे साथ मेहनत करने तैयार है तो उनके साथ मेहनत करके अपने आप को उनके जरिए कैमरा पे दिखा सकती हूँ। जो जलते दिए में आप देखिए,
0: के साथ में
1: बिल्कुल
0: डांस किया जी।
1: शकुंतला बन गई थी वो, बिल्कुल उसका
0: ऐसा ही,
1: यही
0: दुष्यंत का ही इंतजार रह गया था। शी वाज वेरी गुड,
1: वेरी ग्रेसफुल,
0: बहुत बहुत बहुत प्यारा किरदार।
1: जितनी भी मेरे साथ, अभी मैं एक नई फिल्म कर रही हूँ शर्वरी,
0: अच्छा,
1: नई लड़की, आज की लड़की है, बहुत ग्रेसफुल है वो भी। तो होता क्या है, जब आपका प्रोफाइल बनता चला जाता है तो लोग आपको सर्च करते और फिर कहते हैं, ओह आपने इतनी ग्रेसफुल गाने की है, मुझे भी करवा दीजिए।
0: सही बात है, कहेंगे लोग।
1: बस उसी की वजह से मेरा एक जो प्रोफाइल बना है कि कंसिस्टेंसी ऑफ डिलीवरिंग क्लासिक एंड गुड वर्क, जो बहुत जरूरी होता है वही है। तो ये जितनी भी लड़कियों का आपने नाम लिया जिनके साथ मैंने काम किया, दे वर्क हार्ड विथ मी एंड दैट्स हाउ दे हैव।
0: क्योंकि कोई नखरे नहीं होते थे कि तुम मुझे ये मत कराओ, वो मत कराओ, मैं ऐसा नहीं करूंगी, वैसा नहीं करूंगी। जैसे माधुरी दीक्षित हैं, वो अपने आप में परिपक्व हैं नृत्य के लिए, ऐश्वर्या राय हैं, उन्होंने भी बहुत सारा कुछ सीखा हुआ है नृत्य में, तो इन लोगों का कुछ ऐसा अपनी फरमाइश नहीं होती है।
1: सी, जैसे माधुरी दीक्षित की बात की आपने, मैं उनकी डाई हार्ट फैन हूँ
0: जी।
1: उनके साथ जब असिस्टेंट डेज में मैं एक पुकार फिल्म का गाना कर रही थी,
0: एक ही जरा जरा
1: वो भी किया, और एक गाना था जो फिल्म में नहीं डाला, गणेश मास्टर जी कर रहे थे
0: जी।
1: जब वो मेरे सामने आए और मुझे उनको करके दिखाना था, और पहली बार मैंने अपनी प्रेरणा को अपने सामने देखा तो मैं रो पड़ी। शी केम, शी हग्ड मी एंड शी गॉट टू नो दैट आई एम अ बिग फैन। शी सेड, अगर मेरी अच्छी फैन है तो मुझे करके दिखा ये गाना पूरा। और मैंने उनको पूरा गाना डांस करके दिखाया। शी सेड, मिरर लाओ, मुझे शबीना को कॉपी करना है।
0: क्या बात है।
1: हाँ, ये होता है अचीवमेंट। और मैं बिल्कुल

0: शून्य थी, क्योंकि माधुरी दीक्षित ने कभी लोगों को बदल के अपने परफॉर्मेंस नहीं किया। उन्होंने जितने कोरियोग्राफर के साथ काम किया, ये है लेजेंड होने की एक बहुत बड़ी निशानी। आप कब लेजेंड बनते हो, आपके अंदर ये क्वालिटीज होती है।
1: उन्होंने हर कोरियोग्राफी

0: जी, और वही चीज लेकर चल रही हूँ अपने कोरियोग्राफी के पीरियड में मैं। टचवुड, अभी तक कोई ऐसी हीरोइन नहीं आई जिन्होंने ये कहा कि ऐसे नहीं करना है, वैसे करना है, क्योंकि मैं परफॉर्म करके दिखाती हूँ उनको। और मेरे डायरेक्टर जैसे सूरज बजातिया, जलते दिए, साड़ी पकड़ के एक मोमेंट है, चलना है। सूरज जी ने कहा, सोनम मुझे यही चाहिए। जब आपका डायरेक्टर आप पे भरोसा करता है
1: जी
0: तो
1: बिल्कुल,
0: एक्टर फिर खामोश हो जाता है।
1: हाँ
0: और सलमान खान, उन्होंने
1: हाँ
0: जब वो गाना देखा, मैं और मेरा असिस्टेंट जो मेरा एसोसिएट कोरियोग्राफर है, मेरा छोटा भाई है, वो सगा भाई है,
1: जी,
0: वो भी मेरे साथ रह रहे कि वो भी एक एक्टरों की तरह परफॉर्म करता है।
1: अरे वाह,
0: हम दोनों ने जब करके दिखाया तो सलमान खान जी ने एक बात बोली कि मुझे पता चल गया मुझे कैसा करना है, मुझे इसकी तरह करना है, सोनम तू देख ले तुझे क्या करना है। सूरज जी ने बोला कि शबीना।
1: जी
0: तो वहां पे कभी कभी जब एक्टर कुछ बोलने जाता है तो आपका हीरो स्टार मेगा स्टार या आपका डायरेक्टर आपके साथ होता है तो फिर सब कुछ बैलेंस होके चलता है। और मेरे मामले में यही चीज मेरे साथ ज्यादा नहीं हुई, क्योंकि जब ग्रेसफुली मैं करके दिखाती हूँ तो एक्टर लोग को लगता है मैम हम लोग ऐसा कर सकते हैं क्या, आपका 50% भी हो जाए तो बहुत होगा। उसके
1: हाँ,
0: लिए आपको करना पड़ेगा, पहले
1: और उनको वहां तक लाना पड़ता
0: लाना
1: है,
0: पड़ेगा
1: मेहनत
0: आपको
1: करनी पड़ती है।
0: उनके कैरेक्टर को। मैं करके दिखाती हूँ, इसलिए कई बार ऐसा होता है कि मैं एक फिल्म एक वक्त में करती हूँ ताकि उस
1: हाँ
0: कैरेक्टर को जी पाऊँ, उसकी तरह बन पाऊँ, उसके जैसे लचक लाऊँ, उसके जैसे। वरना कैरेक्टर कुछ और कर रहा है, कोरियोग्राफर अगर कुछ और दिखा रहा है तो वो कैरेक्टर जी नहीं पाएगा फिल्म के अंदर बराबर से।
1: मतलब एक फिल्म जब बन रही होती है तो उसके पीछे एक डायरेक्टर, एक राइटर, एक डीओपी और उसके कई सारे लोग, इनके पीछे
0: सारे
1: इनके
0: एचओडीज
1: असिस्टेंट्स, एक कोरियोग्राफर और उसके कई सारे असिस्टेंट, उन किरदारों को खुद में जी रहे होते हैं।
0: बिल्कुल,
1: और तब कहीं जाके वो अकेला अभिनेता या अभिनेत्री नहीं जी रहे होते हैं, बहुत सारे लोग उस
0: तभी
1: किरदार को
0: प्रेम
1: जी रहे
0: रतन धन
1: होते हैं।
0: पायो बनी है। मैंने वो ही फिल्म की 1.5 साल और कोई फिल्म को हाथ नहीं लगाया। ऐसा नहीं कि मैं नहीं कर सकती थी, मैं कर सकती थी, लेकिन उसके पीछे राज यही है कि पूरी फिल्म जब मैं अकेली कर रही हूँ, ये
1: जी
0: पूरी फिल्म मेरी अपनी फिल्म है,
1: जी
0: इसका कोई भी कोना कोई भी म्यूजिक मेरे हाथ से ना निकल जाए। और उस कैरेक्टर को मैं मैथिली को जीने लगी
1: जी
0: जो
1: बिल्कुल
0: सोनम का कैरेक्टर है,
1: जी,
0: फिर मुझे प्रेम को भी जीना है, फिर मुझे सूरज बड़जात्या जी को जीना है,
1: वो दो छोटी बहनों को भी जीना है
0: उनको भी
1: बीच
0: जीना
1: में
0: है, हर एक कैरेक्टर को जीना है।
1: जी।
0: तो फिर उतना टाइम तो देना पड़ेगा ना आपको, तभी तो ये ऐसी फिल्में बनती है। अगर आप मेरा करियर स्पैन देखो, जितने साल मैंने काम किया है, मैंने मल्टीपल फिल्में क्वांटिटी में नहीं की है, मैंने क्वालिटी में की है।
1: तो ये बढ़िया बात आपके साथ चल रही है और इसके बीच मेरा मन कर रहा है कि मैं आपको गले लगा लूं, क्योंकि इतनी अच्छी बात आपने बताई है और शायद हमारे श्रोता भी इस बात को सुनकर समझ पा रहे होंगे। वहां तक
0: बिल्कुल
1: पहुंच, मैं तो सेट तक पहुंच चुकी थी, तो हमारे श्रोता भी सेट तक पहुंच ही रहे होंगे।
0: बिल्कुल,
1: थे तो ये लग जा गले तो सुनाना बनता है।
0: उफ प्लीज।
1: तो आपका पसंदीदा गीत, और ये कहूं पूरी यूनिवर्स का पसंदीदा गीत, मदन जी ने क्या बढ़िया इसमें
0: बिल्कुल,
1: संगीत दिया है, क्या बढ़िया इस गीत को गाया गया है और क्या फिल्माया गया है।
0: मैं फिल्माने पे अगर कुछ बोल पाऊँ इस
1: हाँ
0: पर,
1: बिल्कुल
0: अगर
1: जी,
0: आप इस गाने को फिर से मेरे मेरे इस
1: आपके
0: इंटरव्यू
1: नजरिए
0: के
1: से।
0: बाद अगर आप वापस से जितने आपके श्रोता है वो भी देखें तो उन्हें समझ आएगा कि इस गाने को ब्लैक एंड व्हाइट पे शूट किया गया। कोई सोच सकता है कि हर एक शॉट मूवमेंट में है, वहां पे कैसे शूट किया होगा, हर एक शेडो के साथ कैमरा का जब एंगल चलता है, कई बार हाथ में कैमरा लेके डीओपी ने शूट किया होगा, लेकिन उसकी स्मूथनेस, उसकी अदायगी देखिए। वो एडिट पे संभाला हुआ गाना नहीं है, वो वैसे शूट किया गया है। इसको पिक्चराइज इतना बढ़िया किया गया है कि मैं हर गाना आज भी शूट करने से पहले लग जा गले देखती जरूर हूँ,
1: अच्छा,
0: क्योंकि ब्लैक एंड व्हाइट में आप शेडो क्रिएट कर रहे हो चेहरे के ऊपर,
1: हाँ
0: जंगल में वो गाना शूट हो रहा
1: हाँ
0: है और दो लोग
1: लाइट
0: हैं,
1: इफेक्ट्स इतना खूबसूरत आ रहा
0: बिल्कुल
1: है जी,
0: दो ही लोग हैं और कुछ नहीं है,
1: कुछ नहीं है
0: और दोनों हर फ्रेम में है,
1: और बहुत ज्यादा लाइट्स भी नहीं दिखाई
0: लाइट्स
1: गई
0: भी
1: हैं
0: नहीं है।
1: बैकग्राउंड में, क्योंकि वो
0: तो
1: जंगल का है।
0: उसको वो जो सूदिंग, वो गाना अगर सुनने में प्यारा है तो देखने के बाद भी लोगों ने उसको उतना ही पसंद
1: जी
0: किया है।
1: बिल्कुल,
0: यहाँ पे कोरियोग्राफर आता है बीच में, कि
1: तो ऐसे
0: कोरियोग्राफर एक
1: गानों में भी
0: म्यूज,
1: कोरियोग्राफर का काम
0: बिल्कुल
1: होता है,
0: बिल्कुल
1: सिर्फ
0: होता है,
1: नाचने के लिए नहीं बाकी।
0: बिल्कुल होता है। आपने अगर अभी मेरा एक गाना सुनाया है जलते दिए,
1: जी
0: और आप ये गाना देखिए, आई
1: जी
0: वॉज इंस्पायर्ड बाय लग जा गले
1: जी
0: फॉर शूटिंग माई सॉन्ग जलते दिए।
1: जी
0: तो बीइंग अ सेंसिबल कोरियोग्राफर इज वेरी इंपॉर्टेंट टू शूट सच सॉन्ग्स विथ योर डायरेक्टर।
1: जी
0: डायरेक्टर नॉर्मली मूवमेंट वाले शॉट नहीं लेते, लेकिन म्यूजिक की डिमांड होती है,
1: की मोमेंट हो।
0: मोमेंट हो, कैमरा कॉम्प्लीमेंट करे जो लग जा गले में हुआ है।
1: जी,
0: कैमरा इज कॉम्प्लीमेंटिंग एवरी इमोशन ऑफ साधना जी और मनोज कुमार जी।
1: बहुत खूबसूरत गीत है।
0: और कैरेक्टर्स देखो उसके, जो जी रहा है कोरियोग्राफर उस गाने में, इसी

जानी मनी कोरियोग्राफर शबीना खान से विधि जैन की बातचीत का पहला भाग अभी आपने सुना। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम के रिकॉर्डिंग इंजीनियर एचआर पाटले, संपादन सहयोग रीमा जोशी, प्रस्तुति जुबैर खान।

0: सुपर है डुपर है अपना बॉम्बे टॉकी।
1: हार्मोन हमारे शरीर का एक जरूरी हिस्सा है और जब इनका संतुलन बिगड़ता है तो मुश्किलें बढ़ जाती हैं।
2: परेशान हूं मैं।
1: विविध भारती पर हार्मोन विशेषज्ञ डॉक्टर संजय भदादा आपको बताएंगे हार्मोन्स के असंतुलन के बारे में और इसके बाद हुई हड्डियों से जुड़ी समस्याओं के बारे में।
3: हमारी जो डिसऑर्डर्स है एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स है वो महिलाओं में अगर मैं बोलूंगा तो 70% महिलाएं और 30% मेल इसमें अफेक्ट होते हैं। विविध भारती के पूरे हिंदुस्तान के सुनने वाले श्रोताओं को ये बताना चाहता हूँ कि बोन डिसऑर्डर्स हॉर्मोन्स के साथ बहुत क्लोजली एसोसिएटेड होते हैं।
1: 10 अगस्त शाम 4 बजे और 11 अगस्त सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: सेहतनामा।
1: अभिनेत्री और उसके बनने की दास्तान।
5: चार औरतों की कहानी थी वो और उन्होंने वहाँ से मुझे कास्ट किया। हमें बहुत मजा आया और हम लोग शाम को बैठ के म्यूजिक क्योंकि हम लोग गाँव में शूट कर रहे थे जहाँ बिजली नहीं
1: और बातें जिंदगी की जद्दोजहद की।
5: और आप इतने बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार्स और इंटरनेशनल स्टार्स से बिल्कुल सेम प्लेटफॉर्म पे मिलते हो। तभी भी स्ट्रगल पीरियड था -10। मेरे पास एक ही कोट था, साड़ी पहन के गई थी मेरी मम्मी की बहुत अच्छी, लेकिन -10।
1: तनिष्ठा चटर्जी सेल्यूलॉइड के सितारे 11 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से अनुप्रसारित विविध भारती के कार्यक्रम। यह आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र है एफएम बैंड 102.5 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय शाम के 5 बजे हैं, हमारी सांध्यकालीन सभा अब आरंभ होती है। सांध्यकालीन सभा के कार्यक्रमों का प्रारंभ हम कर रहे हैं युवा श्रोताओं की युववाणी कार्यक्रम के साथ।

0: खुशियों का कोई एक पता नहीं होता, कभी अपनों की मुस्कान में मिलती है, कभी अपनों की मिट्टी की पहचान में मिलती है, और कभी सही राह चुनने के संकल्प में। नमस्कार युवा साथियों, आकाशवाणी उज्जैन के लोकप्रिय युवा कार्यक्रम युवाणी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यह है दिल की बात, युवाओं की आवाज। मैं हूं आपकी दोस्त प्रतिभा।
1: और मैं हूं मान्या। उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ, प्रसन्न और अपने सपनों को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ रहे होंगे।
0: मान्या, आज की तेज जिंदगी में हम काम, पढ़ाई और जिम्मेदारियों में इतने ज्यादा व्यस्त रहते हैं कि कई बार छोटी छोटी खुशियों को महसूस करना भूल जाते हैं।
1: सही कहा प्रतिभा आपने। इसलिए आज 8 अगस्त को मनाए जा रहे नेशनल हैप्पीनेस हैपेंस डे का संदेश बहुत खास है। खुशी को किसी बड़े अवसर के लिए मत डालिए।
0: कभी अपनों के साथ बिताया समय, कभी किसी की मदद करना, मनपसंद गीत सुनना या अपनी छोटी उपलब्धि पर गर्व महसूस करना, ये खुशी के अलग अलग कारण हो सकते हैं।
1: और जब हम अपनी जड़ों, अपनी कला और अपनी स्थानीय पहचान पर गर्व करते हैं तो खुशी और भी गहरी हो जाती है।
0: इसी से जुड़ा है आज का हमारा दूसरा विषय, GI टैग्स की ताकत। GI टैग्स किसी खास क्षेत्र से जुड़े उत्पाद की असली पहचान और उसकी विशेषता को मान्यता देता है।
1: यह स्थानीय कारीगरों, किसानों और उत्पादकों की मेहनत को सम्मान देता है तथा उनकी कला और उत्पादों को बड़े बाजारों तक पहुंचाने में मदद करता है।
0: हम बात करेंगे अपने उज्जैन के प्रसिद्ध बटिक प्रिंट की भी, जिसे GI टैग मिल चुका है और जो हमारे शहर की कला व रचनात्मकता की पहचान है।
1: और श्रोताओं, आज का तीसरा और बेहद जरूरी विषय यह भी है कि हम बात करने वाले हैं नशा मुक्त भारत अभियान की। नशा केवल व्यक्ति के स्वास्थ्य को ही नहीं बल्कि उसके परिवार, पढ़ाई, करियर और भविष्य को भी प्रभावित करता है।
0: युवाओं को यह समझना होगा कि नशा तनाव या दबाव से बचने का रास्ता नहीं है। असली हिम्मत गलत संगत के सामने ना कहने और सही मदद लेने में है।
1: और श्रोताओं, इसी के साथ कल यानी कि 9 अगस्त को विश्व जनजातीय दिवस मनाया जाता है। इस अवसर पर हम जनजातीय समाज की संस्कृति, प्रकृति संरक्षण में उनके योगदान और उनकी पहचान के सम्मान पर भी बात करेंगे।
0: तो आज युवाणी में होगी खुशियों की बात, अपनी मिट्टी और स्थानीय कला पर गर्व की बात, नशे से दूर रहने के संकल्प की बात और हमारी विविध सांस्कृतिक विरासत की बात।
1: इसी सकारात्मक सफर की शुरुआत करते हैं श्रोताओं, हमारे आज के पहले गीत के साथ।

0: आपने अभी सुना ये जवानी है दीवानी का यह गीत, जिसके गायक हैं अरिजीत सिंह, संगीतकार प्रीतम और गीतकार अमिताभ भट्टाचार्य। बिल्कुल प्रतिभा, कभी कोई पुराना गीत, कभी किसी अपने की हंसी और कभी अचानक मिली खबर, छोटी छोटी बातें पूरे दिन को खूबसूरत बना देती हैं, क्यों?
1: हाँ मान्या, बहुत अच्छी बात आपने बताई, और इन्हीं छोटे लेकिन खास पलों को पहचानने की याद दिलाता है आज का दिन, नेशनल हैप्पीनेस हैपेंस डे। हर वर्ष 8 अगस्त को यह दिन मनाया जाता है।
0: और इसका नाम भी कितना प्यारा है ना, हैप्पीनेस हैपेंस। कई बार हम खुश तो होते हैं लेकिन उसे खुलकर महसूस नहीं कर पाते।
1: बिल्कुल सही कहा। हम सोचते हैं कि जब बहुत बड़ी नौकरी मिलेगी या कोई बड़ी उपलब्धि होगी या हमारी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी तब हम खुश होंगे, लेकिन क्या खुशी के लिए किसी बहुत बड़े कारण का इंतजार जरूरी है?
0: बिल्कुल नहीं श्रोताओं, खुशी तो रोजमर्रा की जिंदगी में छुपी होती है। घर पर पसंद का खाना मिल जाना, किसी पुरानी दोस्त का संदेश आ जाना, किसी से लड़ाई हो जाए और वो खुल के बात खत्म हो जाए, बारिश की खुशबू हो या फिर किसी का बिना वजह मुस्कुरा देना।
1: और हमारे उज्जैन जैसे शहर में तो सुबह की शिप्रा आरती हो, महाकाल की नगरी की ऊर्जा, गलियों की रौनक और अपनों के साथ बिताया समय भी अपने आप में खुशी का कारण बन सकता है।
0: लेकिन एक बात और है प्रतिभा, आजकल सोशल मीडिया देखकर हम कई बार अपनी जिंदगी का जो कंपैरिजन है, तुलना होती है ना
1: जी,
0: वो दूसरों के साथ करने लग जाते हैं। लगता है कि बाकी सब लोग बहुत खुश हैं और जितना भी कुछ बुरा हो रहा है वो सब सिर्फ अपने साथ ही हो रहा है।
1: हाँ, जबकि हर व्यक्ति की जिंदगी में चुनौतियां तो होती हैं मान्या, इसलिए किसी और की चमकती हुई तस्वीर को देखकर खुद को कम नहीं समझना चाहिए। कंपैरिजन अच्छा नहीं है, असली खुशी कंपैरिजन में तो बिल्कुल भी नहीं है, अपने जीवन की बहुत अच्छी अच्छी बातों को पहचानने में भी है।
0: एग्जैक्टली, कई लोग यह भी मानते हैं कि खुश रहने का मतलब है हमेशा मुस्कुराते रहना। लाइक आई कांट इवन थिंक ऑफ स्माइलिंग, इतना ज्यादा खुश हम अंदर से भी रह सकते हैं। और उदास रहने का मतलब ये नहीं होता कि हम सिर्फ बैठे रहें, सल्क करते रहें, क्यों?
1: जी जी बिल्कुल ऐसा। और उदास होना, तनाव महसूस करना या किसी बात से परेशान होना भी पूरी तरह आजकल नॉर्मल है। खुशी का अर्थ अपनी भावनाओं को दबाना तो बिल्कुल नहीं है, बल्कि उन्हें समझना और संभालना है।
0: यानी अगर किसी दिन मन अच्छा नहीं भी हो तो खुद को दोष देने के बजाय थोड़ा सा रेस्ट करना चाहिए, ठहरना चाहिए, किसी अपने से बात करनी चाहिए, अपनी पसंद का कोई काम करना चाहिए या ज़रूरत हो तो मदद भी लेना चाहिए।
1: बिल्कुल, कई बार हम अपने मन की बात कहने से बचते हैं, लेकिन बातचीत भी खुशी और राहत की दिशा में पहला कदम हो सकती है।
0: और देखिए, खुशी का संबंध केवल पैसे या फिर बड़ी उपलब्धि से तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक है, सुविधाएँ ज़रूरी हैं, हम सबको लगती हैं, लेकिन मन का संतोष, रिश्ते, स्वास्थ्य, आत्मसम्मान और उद्देश्य, ये भी खुशी का एक बहुत बड़ा सोर्स होता है।
1: बिल्कुल सही कहा मान्या। अगर हम दिन भर बहुत व्यस्त रहते हैं लेकिन अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए या अपने शौक के लिए कुछ समय निकालते हैं तो धीरे धीरे मन थकने लगता है और हमें खुशी भी मिलती है उन सारी चीज़ों से।
0: एग्जैक्टली, इसलिए युवाओं के लिए बहुत ज़रूरी है कि वे पढ़ाई और करियर के साथ साथ अपने मन की देखभाल को भी प्राथमिकता दें।
1: जैसे दिन की शुरुआत कुछ सकारात्मक सोच के साथ करना, थोड़ी देर टहलना, पसंदीदा संगीत सुनना, डायरी लिखना, किताब पढ़ना या किसी भी क्रिएटिव काम के साथ जुड़े रहना।
0: और एक बहुत सरल आदत, हर रात सोने से पहले आपके दिन में हुई 3 अच्छी बातें याद रखना। यह आदत हमें यह देखने में मदद करती है कि हमारे दिन में कितनी अच्छी बातें हुई और हम ग्रेटफुल रहना सीखते हैं।
1: बिल्कुल, हो सकता है कि वह अच्छी बात किसी का सहयोग हो, समय पर पूरा किया हो कोई काम हो, परिवार के साथ हंसी मजाक बिताए हुए कोई पल हो, या बस अपनी किसी छोटी सी कोशिश पर प्राउड महसूस करना भी हो,
0: या फिर अपने किसी पसंदीदा व्यक्ति के साथ बात ही करना क्यों ना हो। इस दिन का संदेश श्रोताओं यही है कि खुशी के छोटे छोटे पलों को अनदेखा मत करिए। अगर चाय अच्छी बनी है, काम समय पर पूरा हुआ है, किसी ने आपकी मदद करी है या फिर आपने किसी का दिन बेहतर बनाया है
1: तो उसे महसूस कीजिए।
0: और exactly.
1: मान्या, खुशी बांटने से भी बढ़ती है। किसी को कॉम्प्लीमेंट करना किसी की अच्छी चीज़ों पर, सच्ची तारीफ दिल से करना, घर में किसी की मदद कर देना, दोस्तों को कॉल कर लीजिए या किसी परेशान व्यक्ति को बस ध्यान से सुनना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता
0: है। सही कहा प्रतिभा आपने। कई बार हम सोचते हैं ना कि सामने वाले को खुश करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी करना पड़ता है, जबकि एक मुस्कान, एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाना या फिर किसी से किसी का आपसे ये पूछना है, फिर आपका किसी से ये पूछना कि आप कैसे हैं, इतना छोटा सा सवाल भी जिंदगी में खुशियों के लिए बहुत मायने रखता है।
1: बिल्कुल, और साथ ही हमें किसी दूसरे की खुशी को कम नहीं आंकना चाहिए।
0: नहीं,
1: हो सकता है कि जो बात हमें बहुत छोटी लगे वह किसी के लिए
0: बहुत बड़ी उपलब्धि हो सकती है। जैसे किसी विद्यार्थी के अच्छे अंक आना, किसी युवा की पहली नौकरी,
1: किसी का छोटा सा व्यवसाय शुरू हो जाना, या फिर लंबे समय के बाद किसी परिवार का साथ बैठकर खाना खाना।
0: श्रोता, हर खुशी सम्मान के योग्य है।
1: और बहुत सही, खुशी का मतलब हर समय परफेक्ट रहना भी नहीं है मान्या। दुख हो, स्ट्रेस हो, परेशानियां जीवन का हिस्सा है, लेकिन उनके बीच भी उम्मीद की छोटी सी रोशनी ढूंढ लेना ही जीवन को खूबसूरत बनाता है।
0: प्रतिभा खुशी का एक और दुश्मन है, हर बात पर शिकायत करना। कभी मौसम की शिकायत, कभी काम की शिकायत, कभी लोगों की शिकायत।
1: हाँ मान्या, समस्याओं को नजरअंदाज करना ठीक तो नहीं है, लेकिन हर पल शिकायत में बिताना भी हमें उन अच्छी चीजों से दूर कर देता है जो हमारे पास पहले से है।
0: किसी ने बहुत सुंदर बात कही है कि गुस्से में बिताया हुआ हर मिनट आपकी खुशी के 60 सेकंड आपसे छीन लेता है।
1: इसका मतलब यह नहीं कि गुस्सा आए ही नहीं, बल्कि यह कि हमें अपनी प्रतिक्रिया को समझदारी से चुनना चाहिए। हर बात पर तुरंत रिएक्शन देने के बजाय कभी कभी शांत होकर सोचना भी बेहतर ऑप्शन हो सकता है।
0: बिल्कुल, और जब हम खुद खुश रहने की कोशिश करते हैं ना, तो अनजाने में दूसरों को भी सकारात्मक ऊर्जा देते हैं, पॉजिटिव एनर्जी देते हैं। घर का माहौल देख लीजिए, या फिर दोस्तों के साथ बैठना, आप कुछ भी देख लीजिए, ये जो एनर्जी एक्सचेंज होता है ना, इट इज अ वेरी रियल थिंग। अगर आपके सामने वाले का मूड खराब है तो वो दूसरों का मूड भी डेफिनेटली खराब करेगा।
1: तो आज इस नेशनल हैप्पीनेस हैपेंस डे पर हम सब एक छोटा सा संकल्प लेते हैं, अपनी खुशियों को पहचानेंगे, दूसरों की खुशी में शामिल होंगे, और बिना वजह नेगेटिविटी से थोड़ा सा बचेंगे।
0: बिल्कुल, और हमारा आज का एक छोटा सा हैप्पीनेस हैपेंस चैलेंज है, आज कम से कम 3 लोगों को दिल से मुस्कुराकर मिलिए, उन्हें कॉम्प्लीमेंट करिए, एक व्यक्ति की सच्ची तारीफ कीजिए, और दिन की एक ऐसी बात सोचिए जिसके लिए आप ग्रेटफुल हैं, आभारी हैं।
1: छोटी छोटी खुशियों को महसूस कीजिए, उन्हें खुलकर जिए, और दूसरों के जीवन में भी मुस्कान की वजह बनिए।
0: तो श्रोताओं, चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे आज के अगले गीत की ओर।

अभी अभी आपने सुना फिल्म दिल धड़कने दो का गीत, जिसे आवाज़ दी थी अपनी सूरज और जॉय बरुआ ने। गीतकार हैं जावेद अख्तर और संगीत दिया था शंकर एहसान लॉय ने। मान्या, हमारे देश में केवल अपनी विविधता के लिए ही हमारा देश नहीं जाना जाता है, बल्कि अपने हर क्षेत्र

0: की उसकी अलग अलग पहचान, कला, स्वाद और परंपराओं के लिए भी जाना जाता है।
1: बिल्कुल सही बात करी प्रतिभा आपने। कहीं की खास साड़ी, कहीं की कढ़ाई, कहीं की पेंटिंग, कहीं की चाय, मसाले, फल या मिठाई, भारत का लगभग हर क्षेत्र अपने भीतर ही कला की कहानी समेटे हुए है।
0: बिल्कुल बिल्कुल। और जब किसी खास प्रोडक्ट की पहचान उसके क्षेत्र, वहाँ की मिट्टी, मौसम, पारंपरिक कौशल या पीढ़ियों से चली आ रही कला से जुड़ी होती है, तो उसे बचाने और पहचान देने में बहुत अहम भूमिका निभाता है।
1: जीआई टैग, जीआई यानी कि ज्योग्राफिकल इंडेक्स, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन अर्थात भौगोलिक संकेतक, यह एक कानूनी पहचान है जो बताती है कि कोई भी उत्पाद एक खास भौगोलिक ज्योग्राफिकल एरिया से आता है और उसकी अपनी विशिष्टता है।
0: सरल शब्दों में कहें तो अगर किसी वस्तु का नाम सुनते ही हमें उसके क्षेत्र की याद आ जाए तो वह उस स्थान की खास पहचान होती है। जैसे दार्जिलिंग की चाय हो,
1: बनारस की साड़ी हो
0: या कश्मीर का पश्मीना शॉल।
1: सही कहा प्रतिभा आपने। इन उत्पादों की पहचान केवल उनके नाम से नहीं बनती बल्कि उनके पीछे की स्थानीय जलवायु,
0: कच्चा माल हो, तकनीक हो और कारीगरों की मेहनत
1: और वर्षों पुरानी परंपरा भी होती है।
0: जी जी। और जीआई टैग यह सुनिश्चित करने में हमारी मदद करता है कि कोई दूसरा व्यक्ति या कोई संस्था उस खास क्षेत्र का नाम गलत इस्तेमाल करके कोई फेक प्रोडक्ट्स ना बेच सके।
1: यानी अगर किसी उत्पाद को जीआई टैग मिला हो तो ग्राहक को ये भरोसा होता है कि वह उत्पाद वास्तविक है और उस परंपरा या क्षेत्र से सच में जुड़ा हुआ है।
0: और यह केवल एक खरीदार के लिए ही नहीं बल्कि कारीगरों, किसानों, बुनकरों और जो छोटे छोटे उत्पादकों के लिए भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है।
1: बिल्कुल। जब किसी स्थानीय उत्पाद को जीआई टैग मिलता है तो उसकी पहचान बढ़ती है, देश और विदेश के बाजारों में उसकी मांग बढ़ सकती है और उत्पादकों को बेहतर मूल्य मिलने की संभावना बनती है।
0: इससे छोटे कारीगरों की मेहनत को सम्मान मिलता है जो कला वर्षों से उनके परिवारों में पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही होती है। वह केवल घरेलू काम नहीं रह जाती है बल्कि एक मजबूत आर्थिक पहचान भी बन जाती है।
1: और श्रोताओं, यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। जीआई टैग स्थानीय विरासत को एक वैश्विक ब्रांड वैल्यू देता है, एक वर्ल्ड ब्रांड वैल्यू देता है, इंटरनेशनल ब्रांड वैल्यू देता है।
0: माने आज के समय में बाजार में एक जैसी दिखने वाली चीजें तो बहुत ज्यादा मिल जाती है, ऐसे में असली और नकली के बीच में फर्क करना कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है।
1: ऑल थैंक्स टू मास प्रोडक्शन। और जब किसी प्रसिद्ध उत्पाद की सस्ती नकली प्रतियां बाजार में आती हैं तो असली कारीगरों की आय, इनकम और पहचान दोनों पर बहुत असर पड़ता है प्रतिभा
0: जी। और जीआई टैग इस ये जो चुनौती है इसे लड़ने में काफी मदद करता है। यह उत्पाद के नाम और उसकी क्षेत्रीय पहचान को संरक्षित देता है ताकि अनाधिकृत लोग उसका गलत लाभ न उठा सकें।
1: बिल्कुल। और इसी के साथ ये ग्राहकों के लिए भी बहुत जागरूक, उन्हें जागरूक बनाता है कि वे खरीदारी करते समय केवल डिजाइन या फिर नाम न देखें बल्कि जो उत्पाद है उसके अंदर की जो एक स्पिरिट है, उसकी अपनी एक वैल्यू है, उसका भी जो है काम समझे।
0: तो युवा साथियों, अगली बार जब आप कोई पारंपरिक उत्पाद खरीदें तो उसके पीछे की कहानी जरूर जानिए। यह देखिए कि वह कहाँ से आया है, किसने बनाया है और उसकी खासियत क्या है।
1: बिल्कुल। क्योंकि असली स्थानीय उत्पाद को खरीदना केवल खरीदारी नहीं है, यह उस कारीगर की कला, उस परिवार की आजीविका और हमारी सांस्कृतिक धरोहर को समर्थन देना भी है।
0: जीआई टैग हमें यह भी सिखाता है कि हमारी स्थानीय पहचान ही हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है।
1: तो चलिए श्रोताओं, इसी सोच के साथ अब सुनते हैं हमारे आज के कार्यक्रम का अगला गीत।
2: हर भंग का रंग जमा हो चकाचक, फिर लो पान चबा। आहा,

0: अभी अभी आपने सुना फिल्म डॉन का गीत, जिसे अपनी आवाज़ ही थी किशोर कुमार ने, गीतकार हैं अनजान और संगीत दिया था कल्याण जी आनंद जी ने।
1: प्रतिभा, जब हम GI टैग और स्थानीय पहचान की बात कर रहे हैं तो हमारी अपनी उज्जैन की एक बहुत ही खास कला का जिक्र होता है।
0: बिल्कुल मान्या, महाकाल की नगरी उज्जैन अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान के साथ साथ अपनी पारंपरिक कला के लिए भी जानी जाती है। ऐसी ही एक विशेष कला है उज्जैन का बटिक प्रिंट।
1: श्रोता, उज्जैन के बटिक प्रिंट को वर्ष 2023 में GI टैग मिला। यह हमारे शहर, यहाँ के कलाकारों और इस पुरानी कला परंपरा के लिए गर्व का विषय है। क्यों
0: जी, बटिक प्रिंट मुख्य रूप से कपड़े पर की जाने वाली एक पारंपरिक छपाई और रंगाई की कला है, जिसमें मोम और रंगों की सहायता से बेहद सुंदर डिजाइन तैयार किए जाते हैं।
1: श्रोता, उज्जैन में विशेष रूप से

0: जाती हैं। मोम जिन हिस्सों पर लगाया जाता है वहां रंग सीधे नहीं पहुंच पाता,
1: फिर कपड़ों को रंगों में रंगा जाता है। मोम और रंग की इसी प्रक्रिया को कपड़े पर अलग अलग पैटर्न डिजाइंस इन सबको मिलाकर एक बहुत ही खूबसूरत प्रभाव उभर कर आता है।
0: कुछ बारीक डिजाइंस बनाने के लिए ब्रश या विशेष पेन जैसे उपकरणों का भी उपयोग किया जाता है, जबकि बड़े पैटर्न के लिए दूसरे तरीके अपनाए जाते हैं।
1: और जब रंगाई की प्रक्रिया पूरी होती है तो कपड़े से मोम को हटाया जाता है। इसके बाद सामने आता एक बहुत ही सुंदर, आकर्षक और एक बहुत ही यूनिक विशिष्ट बटिक डिजाइन।
0: यानी यह केवल कपड़े पर प्रिंट नहीं है बल्कि धैर्य, कौशल और क्रिएटिविटी से बनी हुई एक अलग ही कला है।
1: बिल्कुल, जीआई टैग मिलने से उज्जैन का जो ये बटिक प्रिंट है ना, प्रतिभा से कानूनी और आधिकारिक पहचान मिली है। अब इस नाम का गलत इस्तेमाल करके लोग साधारण कपड़े जो होते हैं उनको उज्जैन बटिक प्रिंट बोलकर ऐसा बेचा नहीं जा सकता
0: जी। इससे असली कलाकारों और के जो निर्माता हैं उन निर्माताओं को संरक्षण भी मिलेगा, उनकी कला की पहचान सुरक्षित रहेगी मान्य, और ग्राहकों का भरोसा भी इस पे बढ़ेगा।
1: साथ ही जब किसी उत्पाद की जो असली पहचान होती है उसे उसके साथ खरीदा जाता है तो कारीगरों को अपनी मेहनत का उचित मूल्य मिलने की संभावना बढ़ती है।
0: बिल्कुल, इससे स्थानीय कलाकारों को बेहतर बाजार मिल सकता है मध्य प्रदेश के बाहर देश भर में और
1: अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी।
0: बिल्कुल,
1: यहाँ एक बात और महत्वपूर्ण है, जब परंपरागत कला को बाजार और पहचान मिलती है तो नई पीढ़ी भी उसे सीखने और आगे बढ़ाने में एक क्या कह सकते हैं रुचि लेने लगती है।
0: एग्जैक्टली, वरना कई बार ऐसा होता है कि पुरानी कलाएं केवल इसलिए पीछे छूट जाती हैं क्योंकि उनसे जुड़े लोगों को पर्याप्त पहचान या उतना फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं
1: मिल पाता। बिल्कुल, और उज्जैन का जो बटिक प्रिंट ये जो है ना, ये अकेला उदाहरण एग्जाम्पल नहीं है प्रतिभा, मध्य प्रदेश की कई अनोखी कलाओं को जैसे कि महेश्वरी साड़ी, उन्हें भी एक यूनिक जीआई टैग मिला है जिसके कारण उन्हें एक यूनिक पहचान मिली है
0: जी। जैसे खूबसूरत चंदेरी साड़ियाँ हुई, महेश्वर की आपने बोला प्रसिद्ध महेश्वरी साड़ियाँ हुई, और उसका फैब्रिक और धार जिले का बेहद लोकप्रिय भाग
1: प्रिंट। बिल्कुल, कला और हस्तशिल्प की बात करें ना श्रोताओं, तो डिंडोरी की गोंड पेंटिंग, ग्वालियर की हस्त निर्मित कालीन, जबलपुर का स्टोन क्राफ्ट और
0: पारंपरिक रॉट आयरन क्राफ्ट भी मध्य प्रदेश की समृद्ध कला परंपराओं में दर्शाता है।
1: वहीं खाने पीने और कृषि उत्पादों में झाबुआ का क्या कहते हैं वो, कड़कनाथ,
0: रतलाम का वो स्वादिष्ट रतलामी सेव, और रीवा का वो सुंदरजा आम जिसे कहते हैं हम, और बालाघाट का चिन्ना चावल,
1: और सीहोर विदिशा का शरबती गेहूं अपनी अलग पहचान रखते हैं।
0: जी जी, इसके अलावा रतलाम का एक रियावा लहसुन भी है जो बहुत फेमस अच्छा। है, और बुरहानपुर का केला, नरसिंहपुर का गुड़ बहुत ज्यादा।
1: अरे अपने मालवा का आलू और गराड़ू
0: जी, और मांडू की खुरासानी इमली जैसे उत्पाद भी हमारी मिट्टी की अलग पहचान विशेषता, दुनिया भर में फेमस है ये।
1: सोचिए प्रतिभा, एक ही प्रदेश में कितनी विविधता है, कितनी डाइवर्सिटी है। कहीं रंगों और धागों की कला है, कहीं पत्थर और लोहे का हुनर है, तो कहीं खेतों से निकलने वाले अनोखे स्वाद है।
0: और हर जीआई टैग के पीछे सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं है बल्कि उस क्षेत्र के लोगों की मेहनत, उनकी पहचान और वर्षों पुराना अनुभव भी छिपा हुआ है।
1: उज्जैन का बटिक प्रिंट हमें यह भी याद दिलाता है श्रोताओं कि हमारे आसपास मौजूद स्थानीय हुनर को पहचानना कितना जरूरी है।
0: हम अक्सर बहुत बड़ी बड़ी ब्रांड्स की बातें करते हैं, लेकिन हमारे अपने शहर के कारीगर भी वर्षों की मेहनत से ऐसी चीजें बनाते हैं जिनकी अपनी अलग पहचान और सुंदरता होती है।
1: युवा साथियों की इसमें बहुत अहम भूमिका हो सकती है, वे सोशल मीडिया, ऑनलाइन मार्केटिंग और नए डिजाइन आइडियाज के माध्यम से इस कला की नई जो एक पीढ़ी है, जनरेशन है, वो खड़ी कर सकते हैं
0: जी। और कोई युवा स्थानीय कलाकारों के काम को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर दिखा सकते हैं, कोई उनकी प्रदर्शनी या बिक्री में सहयोग कर सकते हैं, और कोई अपने स्टार्टअप के जरिए उन्हें बड़े बाजारों से जोड़ सकते हैं।
1: बिल्कुल, ऐसे प्रयासों से हमारी कला सिर्फ विरासत बनकर नहीं रह जाएगी, वो विलुप्त तो नहीं होगी बल्कि रोजगार और आत्मनिर्भरता का माध्यम भी बन सकती है।
0: तो अगली बार जब आप बटिक प्रिंट वाला कपड़ा देखें तो सिर्फ उसकी खूबसूरती की तारीफ ना करें, उसके पीछे छिपी मेहनत, तकनीक और उज्जैन के कलाकारों की विरासत को भी याद रखें।
1: जीआई टैग हमारे स्थानीय उत्पादकों को यह कहने का अधिकार देता है कि हाँ, यह हमारी मिट्टी की पहचान है, हमारी कला है, हमारी शान है।
0: इसी गर्व और अपनी मिट्टी से जुड़ाव के साथ अब वक्त है एक प्यारे से गीत का।

0: अभी
1: श्रोताओं,
0: अभी
1: अभी
0: आप
1: आप सुन रहे थे एक बहुत ही मधुर गीत, फिल्म अंदाज से किशोर कुमार की आवाज़ में, गीतकार हसरत जयपुरी और संगीतकार शंकर जयकिशन।
0: युवा साथियों, जीवन में सपने बहुत ज़रूरी होते हैं। एक अच्छा करियर, परिवार का भरोसा, अपनी अलग पहचान और एक बेहतर भविष्य। लेकिन कभी-कभी एक गलत संगत, क्षणिक जिज्ञासा या तनाव से बचने का गलत तरीका इन सपनों को नुकसान पहुंचा सकता है।
1: बिल्कुल सही कहा प्रतिभा आपने। हम बात कर रहे हैं नशे की। यह केवल व्यक्ति के स्वास्थ्य को नहीं, बल्कि उसकी पढ़ाई, काम, रिश्तों और पूरे परिवार को प्रभावित कर सकता है।
0: इसी चुनौती से निपटने के लिए भारत सरकार द्वारा नशा मुक्त भारत अभियान

0: अभियान यानी नशा NMBA अभियान चलाया जा रहा है।
1: इस अभियान की शुरुआत 15 अगस्त 2020 को 272 यानी कि 272 चिन्हित संवेदनशील जिलों में की गई थी। अगस्त 2023 को इसका विस्तार देश के सभी जिलों तक कर दिया गया था।
0: इसका उद्देश्य केवल नशे से बचने की अपील करना नहीं है, बल्कि जागरूकता फैलाना, समुदाय को साथ जोड़ना और जरूरतमंद लोगों तक उपचार एवं पुनर्वास की सुविधाएं पहुँचाना भी है।
1: इसमें स्कूलों, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, विश्वविद्यालय और अन्य शिक्षण संस्थाओं के युवाओं तक संदेश पहुंचाने पर विशेष जोर दिया जा रहा है।
0: कई बार युवा दोस्तों के दबाव, तनाव या जिज्ञासा के कारण नशे की ओर पहला कदम उठा देते हैं, लेकिन नशा किसी समस्या का समाधान तो बिल्कुल भी नहीं है, वह समस्या को और गहरा बना देता है।
1: एग्जैक्टली, किसी को यह सोचना नहीं चाहिए कि बस एक बार कोशिश कर रहा हूँ, मैं कभी भी छोड़ दूंगा। श्रोताओं, नशा धीरे धीरे व्यक्ति के समय, पैसे, स्वास्थ्य और आत्मविश्वास पर असर डालता है,
0: इसलिए नशे के बारे में बातचीत करना बहुत जरूरी है। इसे छिपाने, शर्म का विषय बनाने या केवल दोष देने से समाधान तो बिल्कुल भी नहीं निकलता।
1: बिल्कुल सही कहा प्रतिभा आपने। अगर कोई व्यक्ति नशे की समस्या से जूझ रहा है या फिर, तो उसे ताने की नहीं बल्कि समझ, सहयोग और सही उपचार की जरूरत होती है।
0: जी, और नशा मुक्त भारत अभियान के माध्यम से अब तक 29,05,00,000 से अधिक लोगों तक जागरूकता का संदेश पहुंचाया जा चुका है।
1: इसमें से 11,05,00,000 से अधिक युवा और 7 करोड़ और 81 लाख इनसे भी ज्यादा अधिक महिलाएं शामिल हैं।
0: यह अभियान अब तक व्यापक सामाजिक जनभागीदारी का रूप तो ले ही चुका है। स्कूलों, कॉलेजों में शपथ अभियान,
1: प्रतियोगिताएं, सेमिनार, कार्यशालाएं, रैलियां और नुक्कड़ नाटकों जैसी गतिविधियों के जरिए युवाओं को नशे के नुकसानों के बारे में बताया जा रहा है। श्रोताओं,
0: और इन गतिविधियों का उद्देश्य युवाओं को बिल्कुल भी डराना तो बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि सही जानकारी देकर उन्हें बेहतर निर्णय लेने के लिए तैयार करना है।
1: एकदम शत प्रतिशत बात करी है। अगर दोस्तों के बीच कोई आपको नशे के लिए उकसाए तो साफ शब्दों में हमें ना कर देना चाहिए। असली हिम्मत दबाव में आकर गलत काम करने में नहीं है श्रोताओं, सही निर्णय
0: जी बिल्कुल मान्य, सही निर्णय लेने में तो है ही। और यदि आपका कोई दोस्त अचानक अलग अलग तलग रहने लगे या पढ़ाई या काम से दूरी बनाने लगे अथवा उसके व्यवहार में कुछ नॉर्मल चीजें बदलाव दिखाई दें, तो उसे तुरंत जज मत कीजिए,
1: उसे शांति से बात करिए और जरूरत हो तो उसे किसी भरोसेमंद बड़े व्यक्ति, शिक्षक या परिवारजन से मदद लेने के लिए प्रेरित कीजिए।
0: और नशे से प्रभावित व्यक्तियों और उनके परिवारों के लिए राष्ट्रीय टोल फ्री नशा मुक्ति हेल्पलाइन नंबर भी है,
1: 1446 भी उपलब्ध है।
0: इसे हेल्पलाइन पर जाकर आप जानकारी, परामर्श, मार्गदर्शन और नजदीकी नशा मुक्ति या पुनर्वास केंद्र तक पहुँचने में सहायता मिल सकती है।
1: इस मुहिम में समाज की भागीदारी भी श्रोताओं बहुत जरूरी है। देश भर में 1,17,000 से अधिक स्वयं सेवक नशा मुक्ति मित्र के रूप में जुड़कर जागरूकता आप फैला सकते हैं।
0: युवा भी अपने कॉलेज, मोहल्ले और दोस्तों के बीच सही जानकारी साझा करके, जागरूकता गतिविधियों में भाग लेकर और नशे से दूर रहकर भी इस अभियान का हिस्सा बन सकते हैं।
1: खेल, संगीत, पढ़ाई, योग, कला, अच्छे दोस्त और परिवार के साथ समय बिताना जीवन को सकारात्मक दिशा देता है श्रोताओं, और गलत रास्तों से दूर रहने में मदद भी करता है।
0: तो युवा साथियों, नशे को कभी कूल या फैशन ना समझें, अपने शरीर, मन और भविष्य की जिम्मेदारी खुद लें।
1: नशा मुक्त भारत केवल एक अभियान नहीं है श्रोताओं, बल्कि स्वस्थ, जागरूक और सशक्त युवा भारत का संकल्प है। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे अगले गीत की ओर।

0: बदलो बदलो आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: अभी अभी आपने संदेश के पहले गीत सुना फिल्म मेरे जीवन साथी से, जिसे अपनी आवाज थी किशोर कुमार ने। गीतकार थे मजरू सुल्तानपुरी, संगीतकार थे RD बर्मन।
3: युवा साथियों, कल यानी कि 9 अगस्त को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय जनजातीय दिवस मनाया जा रहा है, अर्थात इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड इंडिजिनियस पीपल।
2: यह केवल कैलेंडर की एक तारीख नहीं है, बल्कि जनजातीय समुदायों की पहचान, उनके अधिकारों, उनकी संस्कृति और प्रकृति से उनके गहरे रिश्ते को सम्मान देने का दिन है।
3: श्रोताओं, दुनिया भर में 90 से अधिक देशों में लगभग अराउंड 47 करोड़ 60 लाख से अधिक आदिवासी लोग रहते हैं। संख्या के लिहाज से ये विश्व में कुल आबादी का 6% 6% से भी कम हिस्सा है।
2: लेकिन संस्कृति, भाषा, पारंपरिक ज्ञान और प्रकृति की रक्षा में इनका योगदान बहुत विशाल है। जनजातीय समुदाय दुनिया की विविधता को जीवित रखने में अहम भूमिका निभाते हैं।
3: प्रतिभा, जब हम आदिवासी या फिर जनजातीय समाज की जो बात करते हैं तो केवल उनके अलग पहनावे, लोक नृत्य या लोक गीतों तक बात सीमित नहीं रह जाती है।

0: उनके पास जंगल, जल, जमीन, मौसम, औषधीय पौधों, बीजों और खेती के ऐसे पारंपरिक ज्ञान का खजाना है मान्या, जो पीढ़ियों के अनुभव से तैयार हुआ है।
1: कई जनजातीय समुदाय प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर जीवन जीने का संदेश देते हैं। जरूरत भर लेना और संसाधनों को आने वाली पीढ़ियों के लिए बचाकर रखना उनके जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण मूल्य रहा है, और अभी से नहीं, काफी लंबे अरसे से।
0: और आज जब दुनिया जलवायु परिवर्तन, जंगलों की कटाई, जल संकट और प्रदूषण जैसी चुनौतियों से जूझ रही है, तब जनजातीय जीवन दृष्टि हमें प्रकृति के साथ सम्मान पूर्वक जीना सिखाती है।
1: यह समाज हमें बताता है कि विकास का मतलब केवल बड़ी इमारतें, सड़कें और मशीन नहीं है। विकास वह भी है जिसमें
0: प्रकृति, संस्कृति और इंसान तीनों सुरक्षित रहे माने।
1: बिल्कुल। आदिवासी समुदायों की भाषाई विविधता भी बेहद समृद्ध है।
0: भाषा के साथ किसी समाज का इतिहास, गीत, कहानियां, लोक कथाएं और जीवन को देखने का नजरिया भी जुड़ा होता है।

0: पारंपरिक ज्ञान, इन सब में हमारी सांस्कृतिक धरोहर की अनमोल झलक दिखाई देती है प्रतिभा
1: जी। और विश्व जनजातीय दिवस हमें सिखाता है कि विविधता कोई दूरी नहीं बनाती है, बल्कि समाज को और अधिक सुंदर, समृद्ध और मजबूत बनाती है।
0: तो श्रोताओं, कल 9 अगस्त को हम केवल शुभकामनाएं देकर ही नहीं, बल्कि आदिवासी समाज की संस्कृति, अधिकारों और प्रकृति संरक्षण में उनके योगदान को समझकर इस दिन को सार्थक बनाएंगे।
1: इसी संदेश के साथ अब वक्त है एक प्यारे से गीत का।

0: अभी अभी आपने सुना फिल्म कश्मीर की कली से गीत, जिसे अपनी आवाज दी थी मोहम्मद रफी ने, गीतकार थे SH बिहारी, संगीत दिया था OP नैयर ने।
1: युवा साथियों, अब समय है रोजगार समाचार का।
0: आज हम मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल द्वारा आयोजित समूह 2 उपसमूह 4 संयुक्त भर्ती परीक्षा 2026 की जानकारी दे रहे हैं।
1: इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन 4 अगस्त 2026 से शुरू हो चुके हैं।
0: आवेदन करने की अंतिम तिथि 18 अगस्त 2026 है,
1: जबकि आवेदन पत्र में संशोधन 23 अगस्त 2026 तक किया जा सकेगा।
0: परीक्षा का आयोजन 22 सितंबर 2026 से प्रस्तावित है।
1: इसी भर्ती में अलग अलग विभागों के अनेक पद शामिल किए गए हैं।
0: सबसे पहले बात पटवारी पद की। भू संसाधन प्रबंधन विभाग में दिव्यांग श्रेणी के लिए कुल 200 पटवारी पद उपलब्ध हैं।
1: इनमें EH 94, LD के 45, MD श्रेणी के 61 पद शामिल हैं।
0: उज्जैन जिले के लिए भी पटवारी के 3 पद सूचीबद्ध हैं,
1: जो MD श्रेणी के लिए हैं। पटवारी पद के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक और CPCT संबंधी शर्तें लागू हैं।
0: पंचायत राज संचालनालय भोपाल में पंचायत समन्वय अधिकारी के लिए 311 सीधी भर्ती और 54 बैकलॉग पद, यानी कुल 365 पद उपलब्ध हैं।
1: बिल्कुल, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांग जन सशक्तिकरण संचालनालय में कंप्यूटर ऑपरेटर सह सहायक वर्ग के 3 124 संविदा पद हैं।
0: आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय में अन्वेषक अथवा खंड स्तरीय अन्वेषक के 82 पद उपलब्ध हैं। यह अवसर आंकड़ों, सर्वेक्षण और फील्ड वर्क में रुचि रखने वाले युवाओं के लिए उपयोगी हो सकता है।
1: बिल्कुल, स्थानीय निधि संपरीक्षक संचालनालय में सहायक संपरीक्षक 20 सीधी भर्ती पर 24 बैकलॉग पद हैं, यानी इस श्रेणी में कुल 44 अवसर उपलब्ध हैं।
0: जल संसाधन विभाग में अमीन के 34 पद निकाले गए हैं। वहीं जनजातीय कार्य विभाग में मंडल संयोजक के 72 पद उपलब्ध हैं।
1: हाथकरघा एवं हस्तशिल्प संचालनालय में सहायक ग्राम उद्योग विस्तार अधिकारी हाथकरघा के 12 पद और कनिष्ठ सहायक ग्रामोद्योग के विस्तार अधिकारी के पद भी शामिल किए गए हैं।
0: मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम में प्रबंधक के 12 पद उपलब्ध हैं। इसके अलावा उद्योग संचालनालय में सहायक प्रबंधक के 45 पद भी निकाले गए हैं। मध्य प्रदेश कृषि विपणन बोर्ड में सहायक उपनिरीक्षक के 530 पद उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त सहायक आयुक्त, सहायक नगर निवेशक, राजस्व निरीक्षक, सहायक लेखाधिकारी, लेखापाल, डेटा एंट्री ऑपरेटर, स्टेनोटाइपिस्ट, सहायक ग्रेड और लाइब्रेरी से जुड़े पद भी कई अलग अलग विभागों में शामिल किए गए हैं।
1: युवा साथियों, हर पद के लिए शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा, अनुभव, आरक्षण और अन्य शर्तें अलग अलग हैं, इसलिए आवेदन करने से पहले नियम पुस्तिका में अपने पसंदीदा पद की पूरी जानकारी जरूर पढ़ लें। अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना समय पर आवेदन करें और अपने ऐसे मित्र, भाई बहनों तथा परिचितों के साथ यह जानकारी जरूर साझा करें।
0: युवा साथियों, आज के युववाणी में हमने जाना कि खुशी किसी बड़े अवसर का इंतजार नहीं करती है।
1: छोटी छोटी बातों में खुशी ढूंढना, दूसरों की खुशी में शामिल होना, अपने मन का ख्याल रखना बहुत जरूरी है।
0: हमने GI टैग्स की ताकत को भी समझा, नशा मुक्त भारत अभियान के माध्यम से हमने अलग अलग संदेश भी समझे।
1: कल 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाएगा, हमने उसके बारे में पढ़ा। श्रोताओं, नमस्कार।

युवा श्रोता अभी अपना युववाणी कार्यक्रम सुन रहे थे। यह आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र है एफएम बैंड 102.5 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय शाम के 6 बजे हैं। हमारे केंद्र से अब प्रस्तुत है कार्यक्रम भजन संध्या।

श्रोताओं, भजन संध्या कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति माँ जगदम्बा के चरणों में समर्पित थी। कभी माँ तो कभी सखा, ऐसे ही कुछ संबंध भक्त अपने आराध्य के साथ स्थापित कर लेते हैं। मूल उद्देश्य, मूल भाव तो यही होता है कि कैसे भी करके अपने आराध्य का स्मरण हमेशा करते रहें, हमेशा प्रभु का नाम जपते ही रहें।

0: का नाम।
1: जप ले हरि का नाम सांझ सकारे, अंतर्यामी दाता हरि दुख सारे। ये तो सत्य है, पर ये भी सत्य है, दुख में सब सुमिरन करें, सुख में करे न कोई। सुख में जो सुमिरन करे, दुख काहे को होए। तो श्रेष्ठ यही है कि उस परमात्मा का नाम सदैव हमारे हृदय में रहे, मन में उसका जप हम हमेशा करते रहें।

श्रोताओं, ईश्वर का नाम केवल दुख का हरण ही नहीं करता है, बल्कि हमारे चित्त को शांत भी रखता है। आप स्वयं ही सोचिए, मन मस्तिष्क में कितने ही व्यर्थ के विचार प्रतिपल आते और जाते रहते हैं। ऐसे में किसी शुभ विचार से उन्हें प्रतिस्थापित करना हमें निश्चित ही शांति तो देगा ही और मन को स्थिर भी करेगा। तो ऐसे हमारे मन को स्थिर करने वाले, हमें सुख देने वाले ईश्वर का नाम हम क्यों ना जपें। रिमन भजमन रामचरण सुखदाई।

श्रोताओं, सही दिशा में पूरी मेहनत और लगन के साथ अगर कोई कार्य किया जाए तो उसका परिणाम अच्छा ही मिलता है। ऐसे ही सच्चे हृदय से की गई भक्ति का परिणाम भी ईश्वर की कृपा के रूप में हमें प्राप्त होता है।

0: श्रोताओ, इसी के साथ आज का ये भजन संध्या कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। यह आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र है FM 102.5 MHz पर। इस समय शाम के 6:30 हुए हैं। हमारे केंद्र से सुनवा रहे हैं आप आपको प्रायोजित कार्यक्रम किसानवाणी।
1: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम किसानवाणी।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जनसेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना।
2: किसान वाणी सुनने वाले सभी किसान भैयाहरों को और बिन्नाहरों को खूब स्वागत आपके अपने लोकप्रिय कार्यक्रम में। तो सबसे पहले स्वीकार करें रानी बहन की दो हाथ जोड़ के राम राम, जय सीताराम। भैयाहरों कैसे का हाल चाल है और हमारी बिन्नाहरे कैसी हैं? घर में सब अच्छे हैं? जेठे स्याने बाल गोपाल सब नौने हुई हैं भैयाहरों? जैया कुशल मंगल कामना स्वीकारत है। और भैयाहरों देखो सावन की रिमझिम फुहार बढ़ गई है और हमारी सोंधी सोंधी खुशबू की मिट्टी जो है वह महकन लगी है और हमारे किसान भैयाहरे खूब मेहनत कर रहे हैं, अच्छी फसल की तैयारी कर रहे हैं ताकि उत्पादन खूब अच्छे हुए। और किसान कल्याण वर्ष 2026 भी मध्य प्रदेश सरकार को एक बड़ो अभियान है जैमे समृद्ध किसान और समृद्ध प्रदेश को आगे बढ़ाओ जा रहा है। किसान पूरे समाज को पेट भरत है और उनको जीवन बेहतर बने जैया सरकार को कर्तव्य है। यही पे सोच पे 2026 को कृषि कल्याण वर्ष मनाए जावे को लक्ष्य रखो गयो है। किसान भैयाहरो, मृदा हमारी माता है, जब धरती ही अपनी गोद में अन्न उपजात है और सबको पेट भरत है। मनो मृदा को स्वास्थ्य अच्छो होए एके लाने अपन उन्नत कृषि तकनीकी यंत्रों को उपयोग कर सकत हैं। कैसे का करने हैं इन यंत्रों को उपयोग और कौन कौन से हैं, जैया विषय के लाने आज हम आपको सुनाते हैं भेंट वार्ता। विषय है मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन हेतु उपयोगी उन्नत कृषि तकनीक। विशेषज्ञ हैं डॉक्टर जेड सिद्ध की और इनसे भेंट करी है मनोज सक्सेना भैया ने। तो सुनाते हैं जा भेंट वार्ता।
3: किसान भाइयों, खेती बिना मिट्टी के हो नहीं सकती और मिट्टी जितनी स्वस्थ होगी, जितनी तंदुरुस्त होगी, फसल उतनी ही अच्छी होगी, ये हम सभी जानते हैं। पर हाँ, मिट्टी के कितने प्रकार होते हैं, कितने पोषक तत्व होते हैं, कौन कौन सी मिट्टी में कौन कौन सी फसलें लगाई जा सकती हैं और उन्नत तरीके से कैसे खेती की जा सकती है, अगर ये बात हम किसी विशेषज्ञ से करें और उसके ज़ुबान से सुने तो वाकई हमें आत्मविश्वास हो जाता है कि हम जो कर रहे हैं वह सही है या गलत है या हमें क्या करना चाहिए। कुछ ऐसी ही बातचीत आज हम आपके लिए लेकर आए। हमारे साथ हैं श्री शेख जिया उद्दीन सिद्दीकी, जो कि रिटायर्ड यानी कि सेवानिवृत्त तकनीकी अधिकारी हैं केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान नवीबाग भोपाल से। आपका बहुत बहुत स्वागत।
4: नमस्कार किसान भाइयों।
3: और जैसा कि हमारा आज का विषय है मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन एवं संरक्षण हेतु उपयोग होने वाली उन्नत कृषि तकनीकें, इस पर सबसे पहले तो आपका क्या उद्बोधन है, क्या कहना चाहेंगे?

0: किसान भाइयों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अगर हमारा स्वास्थ्य अच्छा होता है, हमारी काया निरोगी रहती है, तो हम अपने सभी कार्य बहुत अच्छी तरह कर सकते हैं। और जब हमारे कार्य सभी समय पर पूर्ण होते हैं तो हम मतलब बीमारियों से भी दूर रहते हैं और हमारे परिवार में भी खुशी बनी रहती है। तो इसी तरह फसलों के उत्पादन के लिए ये ज़रूरी है कि आपकी जो मिट्टी है वो स्वस्थ हो। मिट्टी स्वस्थ होने का मतलब मिट्टी में भरपूर उसमें मतलब जो भी पोषक तत्व वगैरह मतलब होना चाहिए मौजूद, और मिट्टी उस काबिल हो के वो मतलब फसल का उत्पादन दे सके।
1: सर, स्वस्थ मिट्टी से आपका क्या तात्पर्य है?
0: मिट्टी स्वस्थ से मतलब है मेरा कि मिट्टी में सबसे पहले मिट्टी भुरभुरी होनी चाहिए, नरम होना चाहिए। अगर मिट्टी ठोस होगी तो मिट्टी के पौधों की जो जड़ें होती है वो जड़ें मतलब मिट्टी में फैल नहीं पाती और वो अपने पोषक तत्व तो ग्रहण नहीं कर पाते। दूसरी चीज, मिट्टी में पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व तो होना चाहिए। मतलब उसमें अब आप कहेंगे कि हमने तो बहुत सारा खाद दिया था, कोई फायदा नहीं होगा। बेहतर यह है कि आप सबसे पहले अपनी मिट्टी का परीक्षण करवाएं, मिट्टी में किस किस चीज की कमी है ये आप मतलब अपने जो कृषि अधिकारी हैं या कृषि जो कार्यकर्ता हैं आप उनके साथ बैठ के आप उनसे ये मालूम करिए कि आपकी मिट्टी में कमी किस चीज़ की है। तो आप अगर उसके अनुसार रासायनिक खाद डालें तो बेहतर होगा। यदि आपने मतलब कुछ भी मतलब खाद डाल दिया, आपने बहुत सारा यूरिया डाल दिया या बहुत सारा फास्फेट डाल दिया या बहुत सारी, तो उससे कोई मतलब नहीं होता। वो खाद जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप डालेंगे वो जाके और एसिड बनाएगा मिट्टी में, एसिड बनाएगा। और ये मिट्टी के में जो एसिड बन रहा है ये फसल को फायदा देने के बजाय और नुकसान कर जाएगा। मिट्टी की जो पीएच वैल्यू है। दूसरी बात मैं जो बता रहा था आपको कि देखिए आजकल हम लोगों ने जैविक खाद का उपयोग तो बिल्कुल करना बंद ही कर दिया लगभग। अगर हम जैविक खाद का उपयोग नहीं करेंगे तो मिट्टी में जो मतलब पोषक तत्व तो हम रासायनिक खादों से दे दिए, लेकिन इसके अलावा भी जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जिसे कहते हैं सूक्ष्म तत्व, वो कहाँ से आएंगे? वो केवल जो जैविक खाद होती है उसी से ही प्राप्त होती है। दूसरी तीसरी चीज ये कि मिट्टी की जो पीएच वैल्यू है वो 6 से 7.5 के बीच में होना चाहिए। यदि मिट्टी की पीएच वैल्यू मतलब सही नहीं होगी तो उसमें जो फसल को फायदा पहुंचाने वाले सूक्ष्म जीवी हैं, यानी जो मतलब वो सूक्ष्म जीवी कार्यशील नहीं बने रहेंगे, वो मर जाएंगे। और वो मर जाएंगे तो उससे पौधों को काफी नुकसान होगा।
1: जैसे आपने अभी कहा कि मिट्टी भुरभुरी होना चाहिए
0: जी,
1: मिट्टी नर्म है और भुरभुरी है
0: जी,
1: तो उसका लाभ क्या हो जाएगा?
0: देखिए अगर मिट्टी मतलब भुरभुरी होती है तो क्या होता है कि जो पौधों की जड़ें होती है चार बार बखर चलाते हैं जमीन तैयार करने की, और एक बार अपन बोनी मशीन चलाते फिर ट्रैक्टर चल गया, कितने बार हो गया
1: जी?
0: 5 बार। फिर दूसरी फसल लेने के लिए हमने कई काम किया, फिर 5 बार मतलब ट्रैक्टर चलाया। एक ट्रैक्टर का औसत वजन बताइए कितना होता? 2000 किलो। 5 बार आपने ट्रैक्टर निकाला खेत में से, यानी मतलब 10 टन वजन निकाल दिया एक बार, दूसरी बार फिर चलाया फिर 10 टन वजन निकाल दिया, यानी आपने अपने खेत में साल भर में 2 बार रोड रोलर चलवा लिया।
1: वाह, सही बात है।
0: नहीं चलवाया?
1: बिल्कुल सच।
0: अगर आपने 2 बार रोड रोलर, मैं आपसे कहूंगा आप अपने खेत में रोड रोलर चलवाओ, तो क्या आप चलवाएंगे? नहीं चलवाएंगे। तो इसलिए जरूरी, अब होता क्या, जब हमने जमीन तैयार करना, हमने बखर से अपने 4 इंच ऊपर जमीन छीला और बो दिया, जो पौधे बन रहे हैं उनकी जड़ें कहाँ जा रही? जो जमीन की 4 इंच नीचे वाली जो परत है वो जड़ें तो उसमें जा रही हैं।
1: बिल्कुल सच बात।
0: तो ये जड़ें जब मतलब वो नीचे की परत को तो आपने ठोस बना दिया ट्रैक्टर चला चला के, अब वो नीचे की परत जब ठोस बन गई तो उसमें जड़ें कैसे फैलेंगी? जब जड़ें नहीं फैलेंगी तो आपने कितना भी खाद डाला, वो खाद या जो भी केमिकल्स वगैरह डाले वो सब ऊपर ही ऊपर रह गए, वो खेत मतलब पौधों की जड़ों तक तो वो न्यूट्रिएंट्स उसको मिले ही नहीं। जो भी गोबर का खाद डाला वो भी सब ऊपर ही ऊपर रह गया, पौधों की जड़ों को तो मिला ही नहीं। क्या होता है, पौधे अपनी जितने भी न्यूट्रिएंट्स है वो पानी में मिलके तो न्यूट्रिएंट्स वो पूरे खींच के पौधे को वो बनाते हैं।

0: अब क्या होता है कि जब ऐसी ये सिचुएशन आ गई है आपकी, क्या आपने अपनी मतलब नीचे की मिट्टी को बिल्कुल कॉम्पैक्ट कर दिया, तो उसमें क्या होता है कि जो पानी बैठने की जो क्षमता होती है ना वो भी कम हो जाती है।
1: बिल्कुल सच।
0: पानी जब बैठता ही नहीं है तो पानी रुकता भी नहीं है उसके अंदर। अब आप लोग आजकल महसूस कर रहे होंगे हर एक के खेत में आप देखिए वाटर लेवल नीचे चला जा रहा। उसकी वजह यह है कि हम बहुत ज़्यादा जो इम्प्लीमेंट चला रहे हैं, जितना भी बरसात का पानी आ रहा है वो ज़मीन में ऊपर रुक नहीं रहा है, वो बहके निकल जा रहा है। अगर मतलब मिट्टी भुरभुरी हो, नरम हो, तो वो पानी उसके अंदर होल्ड करेगा। तो जहाँ आप देखिए पहले 21 दिन में आप पानी देते थे गेहूँ की फसल में, अब आप क्या हो रहा कि 15 दिन या 10 दिन बाद ही आपको मतलब पौधे पीले होते दिखने लगते हैं, सिर्फ इसलिए कि ज़मीन के अंदर पानी रुक नहीं पा रहा, और इसलिए कि ये सब इसलिए हो रहा है कि आपकी मिट्टी भुरभुरी नहीं है। अगर मिट्टी भुरभुरी होगी तो
1: मिट्टी में नमी ज़्यादा रहेगी और उर्वरता बढ़ेगी। बाकी सर, जैसा हम बात कर रहे हैं कि मिट्टी को भुरभुरा होना चाहिए, जो आपका जो काम रहा है पिछला, वो सब तकनीक से जुड़ा हुआ काम रहा है
0: जी,
1: मिट्टी को भुरभुरा बनाने की तकनीक क्या है, सही तकनीक क्या है?
0: देखिए, मिट्टी को भुरभुरा बनाने के लिए आपको दो तरह की तकनीक इस्तेमाल करना पड़ेगी। सबसे पहला ये कि आपको हर 3 साल में एक बार कंपलसरी, बिल्कुल आपको 3 साल में एक बार गहरी जुताई मोल्ड हल से करवाना पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आपने अपनी, मैं बता रहा हूँ ना, आपने ट्रैक्टर चला चला के आपने मतलब नीचे की परत को जहाँ पे पौधों की जड़ें जाती है उनको, उसको तो कॉम्पैक्ट कर दिया। अगर आप गहरी जुताई करा लेंगे तो मतलब मिट्टी थोड़ा नरम होगी। इसके अलावा दूसरी चीज़ कि आप उसमें ऑर्गेनिक खाद, चाहे वो ग्रीन खाद हो या कंपोस्ट खाद हो या केचुआ खाद हो, इन खादों को आपको मिट्टी में मिलाना ही पड़ेगा यदि आप चाहते हैं कि अपनी फसल की ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन ले। तो ये मिट्टी को भुरभुरा बना, ये बात नहीं है कि खाली मतलब गोबर की खाद से या ये अपने हरी खाद से आपको पोषक तत्व मिलते, नहीं, ये मिट्टी को भुरभुरा भी बनाते हैं। आप देखिए, मेरी एक बात मान के देखिए, आप एक काम करिए कि आप थोड़ी सी मिट्टी लीजिए, थोड़ी सी काली में अपने खेत की काली मिट्टी निकाल के लाइए और उसका एक लड्डू बना लीजिए जब वो मिट्टी गीली हो, और आप उस लड्डू को रख दीजिए, जब वो सूख जाए तो आप उसको ज़ोर से दीवार पर फेंक के मारना, तो आप देखेंगे कि उसके मुश्किल से 4 टुकड़े होंगे। लेकिन इसी जो मैंने आपको लड्डू बनवाया, इसी लड्डू की मिट्टी में आप 1 चम्मच या 2 चम्मच गोबर का खाद मिला दीजिए और फिर उसका लड्डू बनाइए, फिर उसको सूखने दीजिए, आप देखेंगे जब आप उसको दीवार पर मारेंगे तो पूरा लड्डू बिखर जाएगा।
1: क्या बात,
0: मतलब यह है, मतलब उसकी जरूरत
1: पहचान,
0: हाँ,
1: यही
0: जी,
1: है और
0: हाँ,
1: महसूस की जा सकती
0: हाँ,
1: है।
0: तो यदि आप मतलब गोबर के खाद का या ऑर्गेनिक खाद का एक किसी मतलब उसका इस्तेमाल करेंगे तो ही आपकी मिट्टी भुरभुरी होगी, और मिट्टी भुरभुरी होगी तो नेचुरली आपकी मतलब फसल स्वस्थ होगी।
1: सिद्दीकी साहब, अपन आते हैं मिट्टी के पोषक तत्वों की तरफ
0: जी।
1: मिट्टी के संतुलित पोषक प्रबंधन करना है उसमें, तो उसके लिए क्या किया जाए?
0: देखिए, मिट्टी का जो मतलब आपको पोषक जो करना है, तो सबसे पहले तो आप ये खेतों में से सैंपल लीजिए और आप देखिए कि इस वक्त कृषि विभाग है, कृषि विज्ञान केंद्र है, और भी कई डिपार्टमेंट हैं जो कि मिट्टी का परीक्षण मुफ्त कर रहे हैं। तो आप जाके सबसे पहले तो आप अपने मतलब मिट्टी का परीक्षण करवाइए। मिट्टी का परीक्षण करवाने के उपरांत आप देखिए कि आपकी मिट्टी में किन किन चीज़ों की कमी है। अब ठीक है, लोग मिट्टी का परीक्षण करवा लिया, उसके बाद वो अपने कार्ड लेके आए जेब में रखे, वो घूमते फिर रहे, उनके बाद वो जो करना है वो ही करना है।
1: सच में
0: कभी आज तक आप मतलब इन किसानों ने जाके किसी भी कृषि विभाग के किसी अधिकारी से, ग्राम सेवक से या किसी से भी जाके ये नहीं पूछा कि भैया मैं सोयाबीन की फसल उगाने जा रहा हूँ, ये मेरी मिट्टी का कार्ड है, इसमें मेरे को कौन सी खाद डालना या कितनी खाद डालना। तो जब ये पूछेंगे आप उससे, तब आपकी मतलब पोषण सही होगा।
1: बिल्कुल सही बात है
0: जी,
1: आपका कहना वाजिब है बिल्कुल, कि हमारे किसान भाई कार्ड तो बनवा लेते हैं, मृदा स्वास्थ्य कार्ड लेके, लेकिन उस पर अमल नहीं करते।
0: यही सबसे बड़ी ड्रॉबैक है। आप फिर चाहे गोबर का खाद डालो या कोई भी खाद डालो,

0: कोई फायदा नहीं हो रहा।
1: अच्छा, अन्य कोई ऐसी तकनीक है जो मिट्टी को स्वस्थ बनाने के लिए?
0: हाँ, मिट्टी को मतलब स्वस्थ बनाने के लिए देखिए, अब क्या होता है कि आप मतलब अलग अलग फसल चक्र अपनाइए। जैसे कि आपने जहाँ पे अभी गेहूँ मतलब जहाँ गेहूँ लगाया, अगले साल वहाँ पे आप चना लगाए, जहाँ चना लगाया है वहाँ पे आप कोई और मक्का फसल लगाए, या इस तरह मतलब जो फसल बदल बदल के आप लगाएंगे तो होता क्या है मैं आपको बताऊं। जैसे दलहन फसल है, ये अपने मतलब अपनी जड़ों से राइजोबियम छोड़ती हैं जिससे नाइट्रोजन बैलेंस होती है, मिट्टी में नाइट्रोजन बैलेंस होकर चलती है। और इसी तरह जो मतलब गेहूं वगैरह की फसल है तो ये इसमें एजेक्टोबैक्टर यानी जो अपने समझ लीजिए कि पोटाश और ये फास्फोरस वाले खाद ये छोड़ते हैं। इसी तरह मक्का और ये ज्वार वगैरह ये एक डेफिनेट एसिड छोड़ते हैं जो कि मतलब जो नुकसान देने वाले कीड़े हैं उनको मतलब मारते हैं। तो ऐसे अलग अलग आप मतलब फसल चक्र अपनाएंगे तो नेचुरली मतलब आपको सभी फसलों का उत्पादन अच्छा मिलेगा।
1: वाकई सिद्दीकी साहब, आपने अपने अनुभव जो बताए हैं इससे हमारे किसानों को बहुत लाभ होगा और किसान भाइयों वाकई आपको भी ध्यान रखना होगा कि हमारे जो खेत की मिट्टी है अगर वह बेजान है, स्वस्थ नहीं है, तो उससे हम बहुत अच्छी फसल की उम्मीद कर भी नहीं सकते। हम आशा करते हैं कि सिद्दीकी साहब ने जो हमें तकनीक बताई है हम उस पर ध्यान देंगे, उस पर अमल करेंगे और आप उससे अधिक से अधिक लाभ कमाएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए।
0: धन्यवाद किसान भाइयों।
2: किसान भैया हरो, आपके अपने कार्यक्रम किसान वाणी में सुनत हैं जो लोकगीत मोहन कुशवाहा और उनके साथियों की आवाज में।

0: किसान भैया हरो, जो किसान होत है वो अपने आप में एक बहुत बड़ो वैज्ञानिक होत है। ओके अपने अनुभव खेती बाड़ी में ओके लाने भी काम आते हैं और सबके लाने भी काम आते हैं। तो चलो सुनत है एक प्रगतिशील किसान के विचार जैविक खेती के लाभ के बारे में। सुनत है डॉक्टर राधेश्याम कुंभकार, जो कि प्रगतिशील किसान है, उनकी बात जैविक खेती के लाभ का है।
1: किसान भाइयों, आज हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं एक ऐसे किसान से जो जैविक खेती करते हैं और पूरी कोशिश करते हैं कि उनका उत्पादन बहुत अच्छा हो और साथ में पर्यावरण का भी संरक्षण हो। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए एक सफल किसान है जो जैविक खेती करते हैं, डॉक्टर राधेश्याम कुंभकार भोपाल से हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे। आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार।
2: नमस्कार जी। कहेंगे तो मेरे पास तो अलग अलग जगह पे करीबन 40 से 50 एकड़ खेती है, लेकिन जहाँ मैं रहता हूँ जहाँ तक पहुँच सकता हूँ वहाँ पर 11 एकड़ खेती का कार्य करते हैं। जैविक खेती का मतलब होता है बिना जहर वाली खेती। आज के वर्तमान में अलग अलग प्रकार के लोग कीटनाशक और अलग अलग चीज़ों में फ़ायदा दिलाने के लिए या उनको गुमराह करने के लिए कई प्रकार की कीटनाशक ऐसी दवाएं आ चुकी हैं जो खेती को तो नुकसान पहुंचाती है, साथ में ज़मीन को भी नुकसान पहुंचाती है।
1: तो किस तरह से जैविक खेती आप करते हैं, थोड़ा सा बताएं।
2: सिर्फ गोबर, गौमूत्र, जीवाणु और प्राकृतिक के इस्तेमाल से जैविक खेती की जा सकती है। जैसा कि खासकर सोयाबीन, दलहन व जैविक का बहुत स्कोप होता है। इसमें आप जब भी फसल बोएं तो आपको सबसे पहले गोबर का सड़ा कर उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। हमारे जो भी जैविक खेती से भूसा निकलता है या अलग अलग प्रकार की चीज़ें होती है उसको हम ज़मीन में गड्ढा खोद कर उसको सड़ाया जा सकता है और सड़ाया जा सकने के बाद में उसको निकाला जाता है और फिर उस खेती के ऊपर छिड़काव किया जाता है और उस पर डाला जाता है। जैविक खेती में हमें खेती को कैसे तैयार करना चाहिए? पिछले 3 साल से उस खेती में कोई भी रासायनिक खाद दवा नहीं पड़ी हो। दूसरा पॉइंट, मिट्टी की जांच कराएं, जैविक खाद डालकर मिट्टी में केचुए और जीवाणु बढ़ाएं।
1: तो अगर उर्वरक बनाना हो तो वो किस तरह से बनाए जा सकते हैं?
2: उसके अलग अलग मापदंड हैं। जैसे जब भी आप बाहर से कुछ भी चीज़ें खरीदना है तो जीवामृत कैसे बनाएं, तो मैं आपको उसकी विधि बताता हूँ। 200 लीटर पानी प्लस 10 केजी गोबर, 10 लीटर गौमूत्र और 2 किलो गुड़ और 2 किलो बेसन और मिट्टी 7 दिन सड़ाएं, मतलब उसको एक मिक्स करके उसको सड़ाना पड़ता है। उसके बाद कब डालें, बुआई के समय और हर 15 दिन में फसल पर छिड़काव। इसके बाद ये इसमें भी आपको कैसे बनाना है मैं विस्तार से बता देता हूँ। एक बार 100 केजी गोबर, 100 किलो मतलब 100 किलो गोबर, 10 किलो गुड़, 2 किलो बेसन, 1 किलो मिट्टी 5 दिन में खाद बन जाएगा। मतलब इस चीज़ों को अगर आप डालते हैं एक साथ मिक्स करते हैं तो 5 दिन में तैयार हो जाएगा। बुआई से पहले खेती में बिखेरें, मतलब जब आप

0: बुआई करते हैं तो उसके पहले 10 दिन पहले आपको उसको उसमें डालना है। इसके बाद बीजामृत 20 लीटर पानी, 5 किलो गोबर, 5 लीटर गोमूत्र और 5 किलो चूना मुट्ठी मिट्टी, मतलब मुट्ठी में लेना है तो 5 मुट्ठी चूना हो जाता है। बीज को इसमें 15 मिनट डुबाए, इसके बाद वो चीज़ें आपकी तैयार हो जाती है। नेमास्त्र और ब्रह्मास्त्र, मतलब इसका एक जो हमारे प्राकृतिक के ऊपर जो भी चीज़ें होती है उससे संबंधित ये है, नीम पत्ती, गोमूत्र, लहसुन, मिर्च उबाल कर, ये चीज़ें जब आएगी ये चीज़ें उबाल कर कीड़े लगने पर 15 दिन से एक बार छिड़काव करें, मतलब उसमें कीड़े लगने से पहले हर 15 दिन में एक बार इसका छिड़काव करें। कीट नियंत्रण में फेरोमोन ट्रिप, कीड़ों को पकड़ने के लिए खेत में लाएं। दर्शनपण अर्क, 10 तरह की पत्तियां पीसकर स्प्रे करें। पक्षी बसेरा बनता है, तो इसी प्रकार से पक्षी बसेरा खेत में जब हम किसी प्रकार की टी टाइप का मतलब होता है एक लकड़ी गाड़ेंगे तो वो पक्षी उस लकड़ी पे आके बैठेगा, आकर चिड़िया कीड़े खाती है तो उससे भी कीट नियंत्रण होता है। फसल चक्र और सह फसल, हम जब भी किसी भी प्रकार की फसल खेती में उगाते हैं तो हमेशा इसका ध्यान रखें कि हर बार फसल को हम दूसरे रूप में बोएं, जैसे एक बार गेहूं बोया तो दूसरी बार चना बोएं, तीसरी बार मूंग बोएं, चौथी बार हम सोयाबीन बोएं, ऐसे हमेशा जब जब भी हम फसल को बदल कर बोते हैं तो उससे खेती में ताकत बनती है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमसे चर्चा की।
2: और अब किसान भैया हरो, टाइम हो रहा है आप सबसे विदा लेवे को, तो अपनी रानी बहन के देव अनुमति स्वीकार करे दो हाथ जोड़ के, राम राम जय सीताराम।
3: अरे अरे अरे, क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
4: पुतला बोल रहे,
3: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
4: मतलब
3: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलाती थी, शुद्धता झलकती थी, माटी भी तंदुरुस्त और लोग। अरे अब पहली वाली बात कहाँ,
4: पर हम तो सभी डाले हैं।
3: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, पर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
4: सच है?
3: रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
4: ठीक है भाई, मैं भी आज तो जैविक खेती शुरू करूंगा।
5: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
6: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम किसान वाणी।

0: खेती किसानी की समसामयिक जानकारियों से भरा कार्यक्रम किसान वाणी।
1: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी। ये आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र है एफएम बैंड 102.5 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 7 बजने को है, थोड़ी देर में हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार अनुप्रसारित करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी दिल्ली के विद्यार्थियों से अपने निर्णयों में राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखने का आग्रह किया है। श्री मोदी ने आईआईटी दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह में कहा कि प्रत्येक पीढ़ी अपने समय की विशिष्ट चुनौतियों का सामना करती है और अपनी राष्ट्रीय जिम्मेदारी निभाती है।
1: आज के इस दौर में हमारे सामने चुनौतियां भी अलग है और इसलिए हमारे दायित्व भी अलग है। अपने जीवन के अगले 30-35 साल में आप जो कुछ भी करेंगे वो विकसित भारत की हमारी यात्रा को प्रभावित करेगा।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में उभर रहे नए क्षेत्र युवाओं को नए अवसर प्रदान कर रहे हैं। उन्होंने सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष और ड्रोन जैसे क्षेत्रों का उदाहरण देते हुए कहा कि भारत सभी क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में कार्य कर रहा है। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शहरी सहकारी बैंकों के लिए मजबूत साइबर सुरक्षा और डिजिटल सुरक्षा उपायों की आवश्यकता पर बल दिया है। मुंबई में आज सहकार नवक्रांति कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि डिजिटल लेनदेन में धोखाधड़ी बढ़ रही है और बैंकिंग सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मजबूत फॉरेंसिक सहायता की आवश्यकता है। गृह मंत्री ने एक सुरक्षा संचालन केंद्र का भी शुभारंभ किया। ये सहकारी बैंकों को 24 घंटे साइबर निगरानी और सुरक्षा सहायता प्रदान करेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने देश में महिला आरक्षण विधेयक को तत्काल लागू करने की शिरोमणि अकाली दल की मांग का स्वागत किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि सभी को मिलकर महिलाओं को सशक्त बनाना होगा और निष्पक्ष तथा समान परिसीमन सुनिश्चित करना होगा। इससे सभी राज्यों को समान प्रतिनिधित्व मिलेगा। शिरोमणि अकाली दल ने चंडीगढ़ में अपने वरिष्ठ नेताओं की बैठक में ये मांग रखी थी। भारत ने स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। देश ने गैर जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली उत्पादन क्षमता में 300 गीगावाट का आंकड़ा पार कर लिया है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि पिछले 12 वर्ष में भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में 400% की वृद्धि हुई है। श्री जोशी ने कहा कि आंकड़ा भारत की स्वच्छ ऊर्जा उपयोग की दिशा में वैश्विक प्रगति दर्शाता है। सरकार ने प्रमुख उद्योगपतियों और स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने वाली कैश फ्री पेमेंट्स, डार्विन डायनेमिक्स, वर्ल्ड इंडिया, कार्स 24 और काउंसिल फॉर स्टार्टअप्स के साथ कई महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों की घोषणा की है। इन समझौता ज्ञापनों पर वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के उद्योग तथा आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने हस्ताक्षर किए। मंत्रालय ने बताया कि हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन का उद्देश्य स्टार्टअप्स के लिए डिजिटल बुनियादी ढांचे के सहयोग को मजबूत करना है। झारखंड में आज जेपीएससी और जेएसएससी पर भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर जारी गतिरोध समाधान की ओर बढ़ता दिखाई दे रहा है। राज्य सरकार और प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों के विभिन्न समूहों के बीच आज दूसरे दौर की उच्च स्तरीय वार्ता हुई।
2: सरकार की ओर से मंत्रियों ने स्पष्ट किया कि वे व्यापक परीक्षा सुधारों के लिए प्रतिबद्ध हैं। पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने एक आधिकारिक फीडबैक ईमेल आईडी भी जारी की है, जिस पर छात्र और सभी हितधारक अपने सुझाव भेज सकते हैं। सरकार इन सभी सुझावों के आधार पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में अंतिम निर्णय लेगी। हालांकि छात्र प्रतिनिधियों ने वार्ता पर संतोष जताया है, लेकिन कहा है कि मांगों पर ठोस और लिखित आदेश आने तक उनका शांतिपूर्ण आंदोलन जारी रहेगा। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि समुद्री क्षेत्र में भारत की प्रगति में नाविकों की भूमिका सबसे प्रमुख है। मुंबई में नाविकों की सुरक्षा और कल्याण पर एक कार्यक्रम में श्री सोनोवाल ने कहा कि भारत दुनिया के प्रमुख समुद्री देशों में से एक बनकर उभरा है। इस अवसर पर व्यापक डिजिटल समुद्री गवर्नेंस प्लेटफॉर्म ई समुद्र का भी शुभारंभ किया गया। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में इंडिया मेडिकल डिवाइस कॉन्फ्रेंस में सीईओ गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता की। श्री नड्डा ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि सम्मेलन में नवाचार, नियामक उत्कृष्टता, घरेलू विनिर्माण, मूल्य श्रृंखला, बाजार पहुंच और निर्यात को मजबूत करने के दृष्टिकोण पर चर्चा की गई। यमन में हौसी विद्रोहियों के खिलाफ सशस्त्र बलों ने सैन्य अभियान शुरू कर दिए हैं। यमन सशस्त्र बलों के प्रवक्ता कर्नल माजिद अल नुजैली ने कहा कि हौसी विद्रोहियों के बार बार हमलों के बाद सरकारी बलों और नागरिकों की सुरक्षा के लिए विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं। अश्मिता चलेहा कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स फाइनल में पहुंच गई है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: आकाशवाणी का ये उज्जैन केंद्र है एफएम 102.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, सुनवा रहे हैं आपको हमारे केंद्र से कार्यक्रम विवरण।

कार्यक्रम विवरण में सबसे पहले हमारी इसी सभा के शीर्ष कार्यक्रमों की जानकारी। हमारी सभा में शाम 7:21 पर सुनिएगा कार्यक्रम मालवी गीतारी गूंज। रात्रि 8 बजे आकाशवाणी दिल्ली से सुनिएगा इस सप्ताह संसद में। आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से कार्यक्रम सुर्खियों में हम रात्रि 8:15 पर अनुप्रसारित करेंगे और हमारे केंद्र से फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा रात्रि 8:30 पर। रात 9:30 पर आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से कार्यक्रम चित्र भारती रिले किया जाएगा और रात्रि 10 बजे सुनवाएंगे संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। श्रोताओं, अब जानकारी हमारे कल के मुख्य आकर्षणों के विषय में। हमारी कल की प्रातःकालीन सभा में सुबह 7:20 पर आप सुनेंगे प्रातःकालीन सूचना परक कार्यक्रम सुप्रभात उज्जैन। गीत संगीत और सूचनाओं से भरा होता है ये कार्यक्रम। उज्जैनी आरजे, ये नाम है उस कार्यक्रम का जिसमें होती हैं हल्की फुल्की बातें और गीत संगीत। समय सुबह 8:30।

नए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम बॉलीवुड बीट्स आप सुनते हैं सुबह 9:30 पर और सुबह 10 होगा कल फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी फरमाइश। आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से अनुप्रसारित विविध भारती के कार्यक्रमों में सुनेगा कल रंग तरंग सुबह 11 यादों की महफिल दोपहर 12:05 पर, सुरीला सफर दिन में 1 दिन में 2:30 पर विविधा, नाट्य तरंग 3:30 पर और शाम 4 कल पिटारा में सुनवाएंगे उजाले उनकी यादों की। शाम 5 आरंभ होती है हमारी सांध्यकालीन सभा युवा श्रोताओं के कार्यक्रम युववाणी के साथ। शाम 6 का समय होता है भक्ति संगीत के कार्यक्रम भजन संध्या का। श्रोताओं, सांध्यकालीन सभा में कल हमारे केंद्र से फिल्म संगीत का आनंद आप लेंगे कल शाम 6:30 पर और रात्रि 8:30 पर। कल शाम 7:21 पर सुनिएगा मालवी गीता रे गूंज। रात्रि 8 का समय आकाशवाणी भोपाल से कार्यक्रम सुर्खियों में के लिए। आकाशवाणी भोपाल से ही कल रात्रि 8:15 पर अनुप्रसारित करेंगे कार्यक्रम डगर विकास की।

कल रात्रि 9:30 पर आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे रूपकों का अखिल भारतीय कार्यक्रम और रात्रि 10 कल आकाशवाणी दिल्ली से ही संगीत का भारतीय रविवासरीय संगीत सभा कार्यक्रम सुनवाया जाएगा। श्रोताओं, कार्यक्रम संबंधी इन जानकारियों के साथ ही संपन्न हुआ कार्यक्रम विवरण।

श्रोता अभी कार्यक्रम संबंधी जानकारियां ले रहे थे। यह आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र है, एफएम बैंड 102.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 7:10 को होने को है, थोड़ी देर में आप समाचार सुनेंगे।

0: मध्य प्रदेश है। थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार होंगे।
1: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर

0: पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं नवनीत चौबे। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आईआईटी के विद्यार्थियों से अपने निर्णयों में राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखने का आग्रह किया। ब्रिक्स देशों के संस्कृति मंत्रियों की बैठक में सांस्कृतिक संपदा को वापस लाने पर मंथन, अंतिम दिन भोपाल घोषणा पत्र जारी। इंदौर में आज से 2 दिवसीय वेस्ट जोन रीजनल कॉन्फ्रेंस शुरू। सीजेआई न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा, न्याय तभी संभव जब हम पीड़ित के दुख दर्द को उसकी भाषा में समझें। और कल से प्रदेश में शुरू होगा हर घर तिरंगा अभियान, सभी जिला कलेक्टरों को संबंधित निर्देश जारी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी दिल्ली के विद्यार्थियों से आग्रह किया कि वे अपने निर्णयों में राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखें और स्वयं से यह प्रश्न करें कि उनके कार्यों से देश को किस प्रकार लाभ हो सकता है और उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकती है। श्री मोदी ने ये बातें आईआईटी दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रत्येक पीढ़ी अपने समय की विशिष्ट चुनौतियों का सामना करती है और अपनी राष्ट्रीय जिम्मेदारी निभाती है। उन्होंने कहा कि स्नातक विद्यार्थियों द्वारा अगले 30 से 35 वर्षों में किए जाने वाले कार्य का देश के विकसित भारत के मार्ग पर महत्वपूर्ण असर पड़ेगा।
3: आज के इस दौर में हमारे सामने चुनौतियां भी अलग है और इसलिए हमारे दायित्व भी अलग है। अपने जीवन के अगले 30-35 साल में आप जो कुछ भी करेंगे वो विकसित भारत की हमारी यात्रा को प्रभावित करेगा।
2: इस कार्यक्रम में केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी उपस्थित थे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने आईआईटी दिल्ली में परम प्रज्ञा नामक एक उच्च दक्षता की कंप्यूटिंग सुविधा का उद्घाटन भी किया। भोपाल में चल रहा 4 दिवसीय ब्रिक्स सांस्कृतिक सम्मेलन 2026 आज संपन्न हो गया। अंतिम दिन ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक हुई। इसके समापन अवसर पर भोपाल घोषणा पत्र जारी किया गया। साथ ही सभी देशों के कलाकारों को मौका देने, चोरी या गलत रास्ते से विदेशों में पहुंची सांस्कृतिक संपदाओं को वापस लाने का निर्णय लिया गया। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि घोषणा पत्र सदस्य देशों और साझेदार देशों के बीच सांस्कृतिक सहयोग को मजबूत करने के लिए व्यवहारिक और दूरदर्शी ढांचा प्रदान करता है।
4: भोपाल घोषणा पत्र का मूल उद्देश्य जो है वो सांस्कृतिक सहयोग के संस्थागत ढांचे को विकसित करना था, उसको सुदृढ़ करना था और उसके साथ साथ में संस्कृति और विरासत हमारी हेरिटेज के समकालीन और पारंपरिक क्षेत्रों के एक विस्तृत श्रृंखला के लिए साझा रोडमैप हमने इस पर बनाया। इसके साथ ही बाजार तक पहुंचने के शिल्पकारों रचनाकारों के अवसरों को कैसे बढ़ाया जा सकता है इस पर भोपाल डिक्लेरेशन में विस्तार से बातचीत की गई।
2: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सम्मेलन में सहभागिता करने वाले ब्रिक्स देशों से आए प्रतिनिधियों एवं अन्य डेलीगेट्स का स्वागत किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि भोपाल में ब्रिक्स सांस्कृतिक कार्य समूह की बैठक का आयोजन हमारे लिए गर्व का विषय है। उन्होंने कहा कि यह आयोजन देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के लिए स्वर्णिम अध्याय को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत करने का सशक्त अवसर रहा। देश के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा है कि भारत विविधताओं का देश है जहां क्षेत्र के हिसाब से समस्याएं बदलती है। इसलिए न्याय व्यवस्था से जुड़े अधिकारियों को पीड़ित की भाषा, व्यवहार और प्रकृति के अनुरूप ही संवाद करना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि संवाद सही तरीके से ना हो तो व्यक्ति अधिकारों से वंचित रह जाता है और व्यवस्था असफल मानी जाएगी। इसलिए सभी को समान अधिकार मिले यह सुनिश्चित करना बहुत आवश्यक है। मुख्य न्यायाधीश श्री सूर्यकांत आज इंदौर में आयोजित 2 दिवसीय वेस्ट जोन रीजनल कॉन्फ्रेंस के शुभारंभ अवसर पर संबोधित कर रहे थे। यह 2 दिवसीय वेस्ट जोन रीजनल कॉन्फ्रेंस न्याय तक पहुंच बढ़ाने विषय पर ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में आयोजित की गई। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य न्यायाधीश श्री सूर्यकांत और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया। कार्यक्रम में केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी शामिल हुए। उन्होंने न्यायिक सुधारों के बारे में बताया।
5: आज नालसा केवल एक वैधानिक संस्था नहीं बल्कि भारत की जस्टिस डिलीवरी सिस्टम का सबसे मानवीय चेहरा

0: बन चुकी है। इसने करोड़ों नागरिकों को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान की है। लोक अदालत, लीगल एड क्लिनिक, विक्टिम कंपनसेशन, लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम्स, मीडिएशन तथा पैरा लीगल वॉलंटियर्स के माध्यम से न्याय को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का नालसा ने सराहनीय कार्य किया है।
1: अब समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर EIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsoneair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन EIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
1: प्रदेश में कल से 17 अगस्त तक जन भागीदारी के साथ हर घर तिरंगा अभियान चलाया जाएगा। अभियान के दौरान प्रदेश भर में तिरंगा यात्रा, तिरंगा मेला, प्रदर्शनी और साइकिल रैली जैसे कार्यक्रम आयोजित होंगे। तिरंगा बाइक और ई बाइक रैली के साथ मानव श्रृंखला और तिरंगा एंथम भी आयोजित किया जाएगा। लोगों को तिरंगे के साथ सेल्फी लेकर हर घर तिरंगा पोर्टल पर अपलोड करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के अवसर पर इसे भी अभियान से जोड़ा गया है। राज्य सरकार ने लोगों से उत्साह और देशभक्ति के साथ अभियान में शामिल होने की अपील की है। इस संबंध में सभी कलेक्टरों को दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। खरगोन से हमारे संवाददाता ने बताया है कि अभियान के अंतर्गत 13 अगस्त को बड़े पैमाने पर तिरंगा बाइक रैली तथा 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित होंगे। रीवा एयरपोर्ट से भोपाल और कोलकाता के लिए 72 सीटर नियमित विमान सेवा 9 अगस्त से शुरू होगी। इसके साथ ही रीवा सीधे प्रदेश की राजधानी भोपाल के साथ साथ पूर्वी भारत के प्रमुख महानगर कोलकाता से भी हवाई मार्ग से जुड़ जाएगा। रीवा को विंध्य का प्रवेश द्वार माना जाता है। लंबे समय तक इस क्षेत्र के लोगों को हवाई यात्रा के लिए प्रयागराज, जबलपुर, खजुराहो या वाराणसी जैसे शहरों पर निर्भर रहना पड़ता था। अब रीवा में आधुनिक एयरपोर्ट की सुविधा उपलब्ध होने के बाद यहां से देश के प्रमुख शहरों के लिए हवाई संपर्क लगातार विस्तार ले रहा है। मध्य प्रदेश पुलिस की साइबर पुलिसिंग में किए जा रहे नवाचार को राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण पहचान मिली है। भोपाल साइबर क्राइम में पदस्थ उप निरीक्षक भरत लाल प्रजापति को नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में 6 एवं 7 अगस्त को आयोजित फ्यूचर क्राइम समिट के दौरान फ्यूचर क्राइम रिसर्च फाउंडेशन द्वारा FCRF एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया। श्री प्रजापति को यह सम्मान इन्वेस्टिगेशन कैंप के विकास तथा साइबर पुलिसिंग एवं डिजिटल इन्वेस्टिगेशन में तकनीक के प्रभावी उपयोग के लिए प्रदान किया गया है। अब बात मौसम की। प्रदेश में मॉनसून की बेरुखी के बीच आज पन्ना, सतना और रीवा में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने इन तीनों जिलों में अगले 24 घंटे के दौरान 4 इंच तक बारिश का अनुमान जताया है। वहीं भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर और जबलपुर समेत प्रदेश के 52 जिलों में हल्की बारिश या बूंदाबांदी होने के आसार हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। खंडवा महापौर परिषद के 4 वर्ष पूर्ण होने पर कल आयोजित अमृत मीडिया संवाद में महापौर अमृता अमर यादव ने नगर निगम की विकास उपलब्धियों का ब्यौरा प्रस्तुत किया। मुख्यमंत्री जनविश्वास अभियान के अंतर्गत झाबुआ जिले के पेटलावद में जन शिकायत निवारण शिविर आयोजित किया गया। दतिया जिले के भांडेर में जनविश्वास अभियान के तहत आयोजित शिविर में कलेक्टर स्वप्निल वानखेड़े ने लोगों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को तत्काल समाधान के निर्देश दिए। 12वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर छिंदवाड़ा जिले के सोसर में सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें उत्कृष्ट बुनकरों को सम्मानित किया गया। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2,00,000 करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले हैं।
1: मेरा 20 एकड़ जमीन है और गेहूं धान का खेती करता हूं। नुकसान भी हुआ है ना, ओला बारिश हो गया था तो एक साल भी नुकसान हुआ है। पानी असिंचित के कारण, पानी का भी अभाव के कारण भी नुकसान हुआ है। डीबीटी के माध्यम से 1,44,667 रुपया हमको मिला है। अपना बीमा का राशि जमा करते जाओ, जैसा मुझे को लाभ हुआ है वैसे आपको भी होगा।
2: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
2: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें।

एफएम बैंड 102.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आप आकाशवाणी उज्जैन का प्रसारण सुन रहे हैं। इस समय शाम के 7:21 होने को है। सुनवा रहे हैं आपको कार्यक्रम मालवीय गीता रे गूंज।

जय राम जी की। आकाशवाणी उज्जैन के खास मालवी गीतारी गुंज प्रोग्राम माय आइग्यो है तमारो अपनो प्रवीण जोशी। आज के दिन यानी 8 अगस्त को दिन भारतीय इतिहास में घणो खास दिन है। आज का दिन महात्मा गांधी ने करो या मरो की आवाज के बुलंद कियो ने साथे नारो दियो कि अंग्रेजों भारत छोड़ो। अपना उज्जैन में भी यो आंदोलन में कई खूब हुओ, इको जाननो भी जरूरी है। इके वास्ते अपना उज्जैन में 8 अगस्त 1942 के कई कई हुओ अनि खास बात पर चर्चा करांगा। उज्जैन के लगभग 100 वर्ष पुराने अपंग आश्रम और वृद्धाश्रम के अध्यक्ष अच्युत्यानंद, प्रासादिक व्यायामशाला के अध्यक्ष सम्राट विक्रमादित्य, विश्वविद्यालय के पूर्व सीनेट सदस्य एवं वयोवृद्ध वकील श्री रामचंद्र सोलपंखी साहब से, पर पहला देश परदेश ने बाबा महाकाल की नगरी के साथे सीएम डॉक्टर साहब मोहन यादव जी के शहर का हाल तो जानी ला, मालवी में समाचार सुनी ला।

नमस्कार, आज के मालवी समाचारों के साथ है प्रवीण जोशी। पहला खास समाचार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आईआईटी दिल्ली के 97वें दीक्षांत समारोह के संबोधित कियो। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत द्वारा इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर माय वेस्ट जोन रीजनल कॉन्फ्रेंस को शुभारंभ कियो। भोपाल में 5 अगस्त से चाली रियो ब्रिक्स कल्चर ट्रेक 2026 के तहत आज 11वीं ब्रिक्स संस्कृति मंत्री स्तरीय बैठक को आयोजन हुओ। अबार समाचार विस्तार से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी दिल्ली के विद्यार्थियों से आग्रह कियो कि वे अपनों निर्णयों में राष्ट्रीय हित के सर्वोपरि रखे ने साथ ही खुद से ये प्रश्न भी करे कि उनके कार्यों से देश को किस प्रकार लाभ हुई सके है और उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके है। श्री मोदी ने यह वार्ता आईआईटी दिल्ली के 97वें दीक्षांत समारोह के संबोधित करते हुए की। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रत्येक पीढ़ी अपने समय की खास चुनौतियों का सामना करती है और अपनी जिम्मेदारी भी निभाती है। उन्होंने कहा कि स्नातक विद्यार्थियों द्वारा अगले 30 से 35 वर्षों में किए जाने वाले का देश के विकसित भारत के मार्ग पर महत्वपूर्ण असर पड़ेगा। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने आईआईटी दिल्ली में परम प्रज्ञा नाम एक उच्च दक्षता की कंप्यूटिंग सुविधा को उद्घाटन भी किया। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत द्वारा मुख्यमंत्री डॉक्टर साहब मोहन यादव की उपस्थिति में इंदौर का ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में वेस्ट जोन रीजनल कॉन्फ्रेंस का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी शामिल हुआ। केंद्रीय मंत्री ने यह यो कियो कि न्याय केवल निर्णय नहीं है, न्याय समान अवसर है, न्याय समानता है, न्याय विश्वास है। उनने कियो कि न्याय प्रत्येक नागरिक के भीतर ये भावना उत्पन्न करता है कि संविधान उसके साथ खड़ियो है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण इसी संवैधानिक भावना के जन जन तक पहुंचाने को कार्य कर रियो है। श्री मेघवाल ने कियो कि मध्य प्रदेश की धरती हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, जनजातीय परंपराओं और सामाजिक विविधताओं को अद्भुत संगम है। राजा भोज की सुशासन परंपरा और देवी अहिल्याबाई होलकर की न्यायप्रिय शासन व्यवस्था हमें प्रेरणा देवे है कि सुशासन का वास्तविक आधार न्याय ही है। भोपाल में 5 अगस्त से चाली रियो ब्रिक्स कल्चर ट्रेक 2026 के तहत आज

ब्रिक्स संस्कृति मंत्री स्तरीय बैठक को आयोजन हो। बैठक की शुरुआत में केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के संबोधन से हुई। इसके बाद ब्रिक्स सदस्य देशों के मंत्रियों और प्रतिनिधियों ने अपना विचार रखिया। बैठक के आखिर में भोपाल डिक्लेरेशन को अपनाया गया, जिनमें ब्रिक्स देशों के बीच सांस्कृतिक सहयोग के आगे बढ़ाने और कलाकारों के लिए नए अवसर पैदा करने पर जोर दिया गया। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और मुख्यमंत्री डॉक्टर साहब मोहन यादव ने संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बैठक और भोपाल डिक्लेरेशन के खास बिंदुओं की जानकारी दी। एका साथ ही भोपाल में आयोजित ब्रिक्स कल्चर ट्रेक्स के प्रमुख कार्यक्रम की संपन्न हुई गया। अब ब्रिक्स देशों के प्रतिनिधि सांची के लिए चली गया है। वी वहीं जाई के विश्व धरोहर और बौद्ध सांस्कृतिक विरासत से परिचित होंगे। काले 9 अगस्त के प्रतिनिधिमंडल भीमबेटका का दौरा करेगा। यहां वे भारत की प्रागैतिहासिक और प्राचीन सांस्कृतिक विरासत के करीब से देखेगा। प्रदेश में मानसून की बेरुखी के बीच पन्ना, सतना और रीवा में भारी बारिश को अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने इन्हीं 3 जिला में अगला 24 घंटा के दौरान 4 इंच तक बारिश को अनुमान बताया है। वहीं भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर और जबलपुर समेत प्रदेश के 52 जिला में हल्की बारिश या बूंदाबांदी होने का आसार है। इससे पहला कल दतिया में बारिश को असर अधिक देखने को मिलियो। भारी बारिश के कारण निचले इलाका में पानी घुसी गयो, जिसका बाद स्कूल में छुट्टी घोषित करनी पड़ी। मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के अंतर्गत झाबुआ जिला के पेटलावद में जन शिकायत निवारण शिविर को आयोजित किया गया। शिविर में कलेक्टर डॉक्टर साहब योगेश तुकाराम भड़सट, पुलिस अधीक्षक देवेंद्र पाटीदार और जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी जितेंद्र सिंह चौहान ने आम नागरिकों की समस्याएं सुनी ने साथ ही संबंधित विभागों के अधिकारियों को उनके त्वरित निराकरण को निर्देश दियो। खंडवा महापौर परिषद के 4 वर्ष पूरा होने पे कल आयोजित अमृत मीडिया संवाद में महापौर अमृता अमर यादव ने नगर निगम की विकास उपलब्धियों को ब्यौरा दियो। उनने कियो कि वर्ष 2022 में कियो गयो अधिकांश संकल्पों के पूरा करने को प्रयास कियो गयो है ने शेष कार्य चली रियो है। आप सुनी रिया था आज का मालवीय समाचार। नमस्कार।

आज को खास दिन और तुम्हारे साथ एक खास दिन की खास बात। आज 8 अगस्त 1942 के ही करो या मरो नारा के साथ शुरू हो तो भारत छोड़ो आंदोलन। बात आजादी के पहला की है। तब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भारत की आजादी के वास्ते भारत के सभी आम और खास जन से अणि आंदोलन में साथ आने को कियो। तब पूरो भारत में सगला मनक साथे आया ने अपना अपना तरीका से करो या मरो के नारा के साथ आंदोलन का हिस्सा भी बनिया। बाता और भी करांगा, पर पहला मालवी में गणेश वंदना सुनीला।

8 अगस्त 1942 को दन करो या मरो के साथ ही शुरू हो भारत छोड़ो आंदोलन। यही वो दन थो जब बम्बई का ग्वालिया टैंक मैदान, जो अब अगस्त क्रांति मैदान के नाम से जानो जाए है, यहीं से आंदोलन के साथ ही अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ आखिरी आर पार की लड़ाई शुरू हुई की। अणिदन को एक ही मंत्र गुंजियो थो, करो या मरो। मंत्र को मतलब साफ थो, अब अंग्रेजी हुकूमत से आज़ादी लेनी है, नहीं तो आज़ादी के खातिर अपने प्राण छोड़ देनो है। यो देशभक्ति को सैलाब थो, इको असर पूरा देश भर में हुओ। किसान भाई ने बेना ऊन, पड़वा वाला बच्चा, मजदूर, जवान मनका ने दुकान बंद करी के अणि आंदोलन का हिस्सा भी बनिया, ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ जोरदार ने क्रांतिकारी आवाज सगला मिले के उठे रिया था। इको असर अपना उज्जैन में भी दिखाई दियो। अब अपन तो अणिटम पे पैदा भी नहीं हुआ था, पर अपना शहर का जाना माना प्रबुद्ध ने दमदार व्यक्ति श्री रामचंद्र सोलपंखी साहब ये आंदोलन के अपना समय में देखियो है। उनसे आज का दिन की खास बाता भी की है, जिनमें 8 अगस्त 1942 का दिन उज्जैन को यो आंदोलन कैसो थो ने उका बात कई कई हुओ अणि अगली बात पर अपन और भी चर्चा करांगा, पर पहला उनकी सोलपंखी साहब की वार्ता सुनीला ने पाछे आऊं। नमस्कार सर, हमारे लिए गर्व की बात है कि हम आकाशवाणी उज्जैन में आज आपसे बात कर पा रहे हैं, और इन बातों में सबसे महत्वपूर्ण दिन आज का

0: जो 8 अगस्त है और इसमें हम आपको सुन पा रहे हैं। हम हमारे श्रोताओं को कुछ आपकी महत्वपूर्ण बातें सुनाना चाहते हैं, आपके अनुभव सुनाना चाहते हैं। तो सोलपांखी साहब, सबसे पहला मेरा प्रश्न है, जो बड़े आदर के साथ प्रस्तुत है, आपका जन्म 1932 में हुआ। 1942 में आपकी आयु लगभग 10 वर्ष थी। उस समय की आपकी सबसे पहली याद क्या है?
1: उस समय मैं महाराजवाड़ा मिडिल स्कूल में पढ़ता था, महाराजवाड़ा मिडिल स्कूल में पढ़ता था, और आज़ादी की लड़ाई जब शुरू हुई तो बड़े बड़े झंडे लेके उज्जैन के नेता लोग निकलते थे, वो अंग्रेजों भारत छोड़ो ऐसे करके नारे लगाते थे। हम छोटे थे, हम उनके पीछे पे जाते थे, और उसमें दो जो स्वतंत्रता संग्राम सैनिक थे उनका नाम मुझे आज याद है, श्री शंकर जी रावल, जो बहुत ही महत्वपूर्ण रहे अपने ज़माने के, और उनके साथ सूरज प्रसाद जी सेठ, जो एक आर्टिस्ट भी थे और दिन भर चरखा चलाते थे, वो आंदोलन मैंने देखा। उसके बाद समय बदलता गया, फिर झगड़े हुए, लोगों ने कहा कि भारत छोड़ो, हर घर हर ही मोहल्ले में यह था कि हिंदुस्तान आज़ाद हो और हम लोग स्वतंत्र रहें। आंदोलन में अंग्रेज के लोग जो होते थे वो घोड़े पे हंटर लेके निकलते थे,
0: जी
1: गोपाल मंदिर के वहाँ हंटर से पब्लिक को भगाते थे, मारते थे, लेकिन जो आज़ादी के दीवाने थे वो कभी डरते नहीं थे, भागते नहीं थे, हटते थे। धीरे धीरे ये आंदोलन सारे शहर में फैला, गली मोहल्ले में चलने लगा, अधिकांश लोग स्कूल छोड़ के दुकानें छोड़ के आंदोलन में जाने लगे।
0: बहुत सुंदर। आप ये आपको ही बहुत मधुर यादें हैं जो हमारी आज़ादी और भारत के उन स्वतंत्रता संग्राम जो हमारे हमारे बड़े सम्मानीय सैनिक रहे हैं उनकी वीर बात बताई आपने। आपको ये याद है क्या सोलपंखी साहब कि उस समय आंदोलन में, भारत छोड़ो जो आंदोलन था, उसमें चर्चा किस प्रकार की होती थी?
1: चर्चा गली मोहल्ले में जो होती थी कि अपने को आज़ादी दिल लेना है, किसी भी हालत में अंग्रेजों की गुलामी अपन बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो हमारे उज्जैन में एक ऐसी जगह थी और आज भी है, उसका नाम था राष्ट्र संघार मित्र मंडल। वहाँ पर आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले अपनी मीटिंगें करते थे, जो आज नरसिंह टाकीज या बम्बा खाना कहलाता है। उस समय एक बम्बा बा करके हुआ थे जिन्होंने बम कांड किया था, जो गोला मंडी में 84 महादेव के वहाँ रहते थे, वो उन्होंने आज़ादी में खूब लड़े। कुछ आज़ादी के लड़ा ऐसे थे जो दोनों हाथ में कुल्फियाँ बेचते थे और गले में कहते थे भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो। तो ऐसे लोगों को हमने देखा। उसके बाद में फिर शहर में चारों तरफ वातावरण फैलने लगा, आज़ादी की लड़ाई स्कूल के लड़के निकल जाए, यानी शिक्षक लोगों ने भी अपने कॉलेज स्कूल छोड़ कर हर जुलूस में आगे चलने लगे। इस तरह सारे देश में जो स्थिति बनती थी वो उज्जैन में आती थी।
0: बहुत
1: उज्जैन
0: बढ़िया,
1: अपने ज़माने का मानव स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का गढ़ रहा।
0: बहुत अच्छा।
1: एक रामचंद्र शर्मा उर्फ मल्ल्या गुरु हुआ करते थे, जो उनको संरक्षण देते थे, जिनके नाम से आज रामरतन शर्मा मार्ग है। इनके साथ में मैंने अपनी आँख से गोखले साहब को देखा, भारत के मध्य भारत के गांधी कहलाने वाले, उनको देखा जो व्यायामशाला के संस्थापक रहे, हमारे यहाँ के संपादक उनको नाना नाना बोलते थे। उसके बाद में फ्री गेंद में जो शिव शंकर जी रावल का मैंने नाम बताया, उन्होंने वहाँ काफ़ी काम किया, बच्चों को बनाया। ऐसे लोगों ने मिलके सारे भारत को उज्जैन लाए, लोग आते थे उज्जैन में कोई भी। फिर गणेश जी की स्थापना होने लगी, उस स्थापना में भी वो उन्होंने कि भाई अपने को गणेश चतुर्थी, फिर भारत माता बनाना, जंजीर होते घर घर ही मोहल्ले में।
0: ये सभी जो त्योहार भी थे गणपति जी के, ये चर्चा में शामिल थे, स्वतंत्रता संग्राम की चर्चा में शामिल थे।
1: हाँ, चर्चा में आते थे, ये गली मोहल्ले में गुपचुप मीटिंगें करते थे, क्योंकि भाई कोई पर तो उन मीटिंगों में हम तो छोटे थे, तो बाहर हम बाहर खेलते थे, बुलाते थे। इसके बाद में समय बढ़ता गया, उम्र 8 अगस्त को एक भयंकर कांड हुआ, और उसके बाद से जो है करो या मरो आंदोलन चालू हुआ। उसमें कई विद्यार्थी मारे गए जो मुझे ध्यान है, क्योंकि तो वो आंदोलन स्ट्राइक का ही था। उस आंदोलन में उज्जैन के भी कई लोग गए। उसके बाद में नया आया दौर आया आज़ादी का, उसमें अवंतिका अवंती लाल जी जैन, और बंसीधर जी मेहरवाल और फतेह बहादुर सक्सेना, इसके बाद में दूसरी पार्टी आई बाजार में कम्युनिस्ट पार्टी, कॉमरेड जुग्गन खां, कॉमरेड काशीराम, कॉमरेड जोगलेकर जो साइकिल पे लेके घूमते थे, उसमें एक खास कॉमरेड थे रामचंद्र श्रीमाल, जिनके लड़के आज उज्जैन में डॉक्टर हैं, और उनका भी वो यही था कि बस अंग्रेजों भारत छोड़ो, 1 मई होती तो वो जुलूस बना कर निकलते थे। ऐसे लोगों को मैंने अपने देखा। बाद में तीसरी पीढ़ी आई, उन्होंने उस दौर को संभाला, ऐसे स्थिति चलती रही। सबसे ज़्यादा हमको उज्जैन का महत्व लिखा कि बाहर के जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे उनको हम लोगों ने इकट्ठा कर, हमसे मतलब यहाँ के नागरिकों ने हर तरह की उनको सहायता देना, अपने घरों में छिपाना और उनकी व्यवस्था करना, ये मेरे जीवन का बड़ा काल रहा कि मैंने देखा। इसके बाद तो आज़ादी हुई, जब जिस दिन आज़ादी की घोषणा हुई, आज़ाद जब सारे शहर में लगा कि अपन आप आज़ादी मिलने वाली है, तो कोई घर ऐसा नहीं था जहाँ तिरंगे झंडे नहीं लगे थे, कोई घर ऐसा नहीं था जहाँ हर मोहल्ले में बड़े बड़े दरवाजे बनाए थे।
0: जी सर,
1: मालीपुरा एक ऐसा इलाका था जहाँ पर बाफड़े का दरवाजे बनाए अति सति न समझे, मैंने अपनी आंखों से देखा, जब तक मेरी उम्र काफ़ी बढ़ चुकी थी। पटनी बाजार में बर्तन के दरवाजे बनाए, बहादुरगंज में एक जागीरदार परिवार था जिसको मक्सी वाले जागीरदार साहब बोलते थे, गुजराती थे वो, उन्होंने गिन्नी के दरवाजे बनाए थे, उन्होंने गिन्नी सोने की गिन्नी, मैंने अपने आंखों से देखा क्योंकि मेरी दुकान भी थी बहादुरगंज में, गिन्नी दरवाजे वाला कोई छूने लाल। हर्षदी दरवाजे एक पहलवान थे, उन्हें धारिये थारिये फरसाले दरवाजे बनाए। स्कूलों में रोज मिठाई बढ़ती थी, कभी आज ये कभी वो है, तो वो हमने दिन देखा। लेकिन उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की जिनकी जानें चली गई, हम उनको याद नहीं करते, ये हमारे लिए दुख की बात है। आज राजनीतिक वातावरण बना है इतना गंदा हो गया है कि उनको भूल गए।
0: आपके परिवार में स्वतंत्रता आंदोलन को लेकर क्या माहौल था?
1: हमारे परिवार था कि भाई आज़ादी मिलना चाहिए, चाहे कुछ भी हो करो, दुकान है तो बंद कर दो दुकान, जुलूस में जगह रहे। छोटे छोटे थे हम, उस समय मेरी करीब 20-22 साल की उम्र हो गई थी, और 6 भाई रहे हैं हम, हर भाई ये चाहता कि अब आज़ाद होगा। पिताजी को भी मैंने कहा, वो कहते बेटा अपना आज़ाद होंगे, अंग्रेजों की गुलामी। हमने वो ज़माना देखा, सोनकेस के अंदर छोटा सा हमें जम जाए तो गाड़ी निकलती थी अंग्रेजों की, तो गाड़ी सुनते थे दरवाजे बंद कर देते थे, इतना मतलब भयंकर डरावना समय लगता था कि ये कब क्या करेंगे। उनको यहाँ पे एक सूबेदार से रघुवंशी करके, वो हंटर लेके सबको मारते थे। मुल्ला जी की दुकान आई, बंद करो, खोलो, बंद करो, इतना जैसा मतलब आखिर हर हिंदू मुसलमान हर आदमी से हम आज़ाद हों। उस समय ये कोई भावना नहीं थी, कोई राजनीति किसी एक एक आदेश था कि हम आज़ाद होना चाहते हैं। और वो 8 अगस्त की आज़ादी, 8 अगस्त का कांड मुझे अपने भी याद है। अब मैं आपको हट के बात करूँगा इसी मामले में कि 8 अगस्त का एक कांड कॉमरेड होमी दाजी ने छत्री चौक की मीटिंग में सुनाया। कॉमरेड होमी एफ दाजी जो माने हुए सांसद रहे कम्युनिस्ट पार्टी, जब उन्होंने वो चित्रण किया तो मीटिंग के अधिकांश लोगों की आंखों में आंसू आ गए। एक माँ अपने बच्चों को लेकर गोद रही और आंदोलन ना, तो उन्होंने फायरिंग किया तो उस बच्चे को ऊपर गोली लगी, तो उसकी आंखों में आंसू हो सारे। तो वो समय हमने देखा, उस समय कोई जाति, कोई धर्म, कोई संप्रदाय नहीं था और ना कोई राजनीतिक पार्टी थी।
0: आपकी बात से मुझे एक और बात याद, प्रश्न याद आ गया, कुछ बात याद आ गई कि आपने बताया कि वो महिला का और बच्चे का चित्रण हुआ जिसको बच्चे को गोली लगी, तो महिलाओं की भागीदारी भी 8 अगस्त के आंदोलन में थी क्या?
1: वो मुझे नॉलेज, वो ऊपर अपने बच्चे को लेके
0: गए। अच्छा, वो एक नाटक स्वांग था, वो एक नाटक चल रहा था उसमें हुआ था।
1: हाँ, उसमें
0: तो ऐसे आंदोलन में उज्जैन के अंदर जो करो या मरो वो भारत छोड़ो आंदोलन में महिलाएं भी आई थी बाहर निकलकर?
1: महिला नहीं आई थी, मेरे याद में है कि कोई महिलाएं नहीं आई थी। महिलाएं तो बाद में फिर राजनीति के बाद तो बहुत सली हो गई, पर उस समय मेरे को देखने को नहीं मिला। हाँ, एक बात जरूर है कि उषा भाटिया करके एक महिला थी जो बाद में नागदा चली गई थी, उस वो उसमें थोड़ी बहुत सक्रिय हुआ करती थी, उषा भाटिया जो बाद में नागदा शिफ्ट हो गई थी, इतना मुझे महिलाओं के बारे में मालूम है।
0: जी सोलपंखी साहब, आपने बहुत अच्छी बातें बताई हैं। हाँ? अब हम बस थोड़ा सा ये जानना चाहेंगे। हाँ, हाँ। कि 15 अगस्त 1947,
1: हाँ,
0: जब आपकी उम्र भी लगभग 14-15 साल हो गई। हाँ, थी।
1: हाँ, नहीं ज्यादा हो गई, ठीक है,
0: 20 साल हो गई होगी।
1: हाँ,
0: उस समय आपकी जो समाचार जब आपने सुना।
1: हाँ,
0: कि भारत स्वतंत्र हो गया है।
1: हाँ,
0: तो आपने एक तो वो कैसे सुना।
1: हाँ,
0: और दूसरा उस दिन उज्जैन का वातावरण कैसा था?
1: उन दिनों में क्या था कि घरों में कुछ 2-4 घरों में रेडियो हुआ करते थे, और 14 अगस्त को ये लगा कि आज समझौता होने वाला है और आज भारत को आज़ादी मिलने वाली है, बैठक होना है। तो रात को 12 बजे, ये 14 अगस्त की रात को 12 बजे समझौता हुआ और घोषणा हुई कि अंग्रेजों ने भारत छोड़ दिया। उस समय सब लोग थे, इसमें आचार्य कृपलानी, महात्मा गांधी और ये नॉन पॉलिटिशियन लोग सब उसमें से, उन्होंने सब घोषणा, तो रात से ही मिठाइयाँ बटना शुरू हो गई थी। सुबह तो जगह जगह झंडा बंधा होने लगे थे और हर घर में हर तो रात को ये सूचना मिली तो सारे उज्जैन में वातावरण बदल गया।
0: ये जी, मुझे बिल्कुल सोलपंखी साहब। हाँ। आप स्वतंत्रता संग्राम सेनानी तो नहीं रहे।
1: हाँ, हाँ।
0: लेकिन आपने उनका पर्याप्त उनका त्याग और उनका बलिदान देखा।
1: हाँ,
0: है
1: देखा।
0: उनको उनको सम्मान उतना मिल रहा है क्या आज के समय में?
1: नहीं, उस समय के जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे कई तो ऐसे थे जो बाद में आज़ादी के बाद में वो सम्मान नहीं चाहते थे। कन्हैयालाल वेद जो झाबुआ के थे, उज्जैन में उनका खास वो था, वो गाली बकते थे, मेरे को नहीं चाहिए कुछ भी। उन लोगों ने अपना सब कुछ त्याग कर दिया, झाबुआ से वो आए, आंदोलन चलाया। तो ऐसे लोगों पर उन्हें सम्मान हमारी आज की राजनीति नहीं दे रही है।
0: बिल्कुल ठीक है।
1: दूसरा ये है कि जैसे आज झाबुआ की बात करें अपन, या राजस्थान की बात करें, जिनके लोगों को ये भी नहीं मालूम पड़ा कि आज़ादी कैसे हुई, मर खप गए, परिवार वाले कहाँ गए आज़ादी में मर गए साहब। उनके यहाँ कभी कोई राजनेता, न कांग्रेस, न जनसंघ, न कोई, कि उनको सद्भाव कि आपके कारण हम आज़ाद हुए, ऐसा उन्हें सम्मान नहीं दिखता। जो आज सैनिकों को सम्मान मिल रहा है वो उन सैनिकों को नहीं मिल रहा है जिन्होंने हमें आज़ाद करा। अपन रोज अखबार पढ़ते हैं कि इनने ये करा, इनने वो करा, सब भूल गए उनको। क्या सावरकर जी, क्या कम सेनानी रहे वो, आज उनको कोई याद करता है क्या?
0: एक और प्रश्न करना चाहूंगा, चूंकि अब समय भी हो रहा है हमारा। अपनी एक समय की बाध्यता है सोलपंखी साहब। एक प्रश्न और है कि आज जब हम 8 अगस्त को याद करते हैं, और आज 8 अगस्त भी है, तो उज्जैन के लोगों और विशेषकर युवाओं के लिए जो जेंजी भी हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश है?
1: हमारा यह संदेश है कि 8 अगस्त की जो क्रांति हुई उसमें जो लोग भगवान क्या चले गए, या जिन्हें मार डाला गया, या उन्होंने देश, आज के युवाओं को चाहिए कि देश की रक्षा करने के लिए राजनीतिक बढ़पन छोड़े और समाज सुधार, देश के प्रति अपनी सद्भावना रखना चाहिए। क्योंकि मैंने 8 अगस्त का एक जुलूस भी देखा था, तांगे में जाते थे, चुपचाप पत्थर फेंका या किया और भाग जाते थे, पर जो लड़ते थे लड़ते थे।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सोलपंखी साहब, आपसे बहुत अच्छी बातें हुई। आप अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखिएगा, बाबा महाकाल की सानिध्य में आप बैठे हैं, अपंग आश्रम आप पिछले लगभग 100 सालों से चल रहा है और उसी में आप अध्यक्ष भी हैं, तो आपका से बातें करके हमें भी प्रसन्नता हुई, और हम आपके स्वास्थ्य की कुशल मंगल कामना करते हैं और जल्दी आपसे फिर किसी अच्छे विषय पर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: आप सुनी रहा था 8 अगस्त 1942 के दन और ओकाबाद को उज्जैन का हाल। मन खुशी से और भरी गयो जब पता चलियो कि उज्जैन की जनता के साथे साथे अपना बाप दादा भी करो या मरो का आंदोलन का हिस्सा बनिया था। एक बात तो पक्की है, 1942 को यो आंदोलन सगला देशवासियों में एकता, साहस ने बलिदान की भावना के मजबूत करी गयो, ने एका साथे पूर्ण आज़ादी की बात और मजबूत हुई की। आखिरकार 15 अगस्त 1947 के अपनो भारत अंग्रेजी हुकूमत से आज़ाद हुई क्यों। टेम हुई रियो है, पर साथे सावन का दिन भी चली रिया है। सावन पे या गीत सुनी लो न पाछा आऊं।

किसान भाइयों ने बेनाउन सावन की रिमझिम और फुहारी कहीं कहीं पे पड़ी भी रही है ने इका बीच पूरा महीनों कहीं ना कहीं तीज त्योहार भी चलता रहे। चालते चालते तुम्हारे सावन की ये तीज को यो पारंपरिक गीत सुनाई दूं ने फिर विदा लूं।

0: आज ही खूब सारी बाता ही बाता हुई की। 8 अगस्त को दन खूब दमदार दन है। सावन को महीनों भी है, भक्ति के साथ है देशभक्ति भी जुड़ी गई है। मौसम बदलियो है, बाहरे नमी न ठंडक भी हुई गई है। वायरल चिकनगुनिया को मच्छर भी फरी रियो है। अपनों ने अपना सगला मनक को ख्याल रख जो, जल्दी फिर मिलांगा नई नई बाता के साथ। जय राम जी की।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मालवीय गीतारी गूंज। यह आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र है, FM 102.5 MHz पर। रात्रि के 8 बजने को है। सुनिए आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से कार्यक्रम इस सप्ताह संसद में।

प्रश्न पत्र लीक के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले छात्रों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग तथा अयोध्या के राम मंदिर से चढ़ावे की कथित चोरी जैसे मुद्दों को लेकर भारी हंगामा किया। इस वजह से पूरे सप्ताह दोनों सदनों में गतिरोध बना रहा। हालांकि इस दौरान कुछ अहम विधेयकों को बिना चर्चा के या संक्षिप्त चर्चा के बाद पारित कर दिया गया। सप्ताह के पहले दिन यानी सोमवार को लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों की सफलता का उल्लेख किया और उन्हें बधाई दी। इसके बाद उन्होंने प्रश्नकाल शुरू कराया, लेकिन विपक्ष के सदस्य हंगामा करने लगे। शोर शराबा जारी रहने पर अध्यक्ष ने बैठक दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी। इसके बाद दोपहर 12 बजे और फिर अपराह्न 2 बजे भी सदन में हंगामे की स्थिति बनी रही, जिस कारण से कार्यवाही सुचारू रूप से नहीं चल सकी। सदन की बैठक दो बार के स्थगन के बाद 2 बजे शुरू हुई तो कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश संख्या संशोधन विधेयक 2026 को चर्चा और पारित करने के लिए पेश किया। सदन ने विपक्षी सदस्यों के शोर शराबे के बीच ध्वनिमत से बिना चर्चा के विधेयक को पारित कर दिया। मेघवाल ने मॉनसून सत्र के पहले दिन ही 20 जुलाई को सदन में यह विधेयक पेश किया था। इससे पहले सदन ने इस संबंध में राष्ट्रपति द्वारा मई में लागू किए गए अध्यादेश को नामंजूर करने के तृणमूल कांग्रेस के सांसद सौगत राय के संकल्प को अस्वीकृत कर दिया। सदन ने विधेयक पर कुछ विपक्षी सदस्यों के संशोधनों को भी खारिज कर दिया। विधेयक को चर्चा और पारित करने के लिए पेश करते हुए मेघवाल ने कहा कि ये विधेयक न्यायिक क्षेत्र में सुधार श्रृंखला की कड़ी है, जिसके माध्यम से उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का प्रावधान है। सरकार ने विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच ही भारतीय सांख्यिकी संस्थान विधेयक 2026 और बैंककार बही साक्ष्य विधेयक 2026 भी पेश किए। इसके बाद सदन की कार्यवाही दोपहर 2:10 पर ही दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। उधर राज्यसभा में भी इन्हीं मुद्दों को लेकर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही बार बार बाधित हुई। सदन की बैठक शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों की सफलता का उल्लेख किया और उन्हें बधाई दी। इसके बाद सभापति ने शून्यकाल शुरू कराया, लेकिन विपक्षी सदस्य हंगामा करने लगे। कुछ सदस्यों ने तख्तियां दिखाई, जिस पर सभापति ने आपत्ति जताई। हंगामे के बीच ही कुछ सदस्यों ने लोक महत्व से जुड़े मुद्दे उठाए। सदन में हंगामा जारी रहने पर सभापति ने बैठक दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी। बैठक दोपहर 2 बजे शुरू होने पर नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठाना चाहा, लेकिन अध्यक्ष ने इसकी अनुमति नहीं दी। हंगामे के बीच ही सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक पर चर्चा शुरू हुई। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री जीतनराम मांझी ने कहा कि एमएसएमई क्षेत्र को दिए जाने वाले ऋण में वर्ष 2014 से कई गुना बढ़ोतरी हुई है। मांझी ने कहा कि इस विधेयक में न केवल एमएसएमई की परिभाषा में सुधार किया गया है, बल्कि इसके कारोबार की सीमा को बढ़ाकर 500 करोड़ रुपये कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार एमएसएमई क्षेत्र के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। मंत्री के जवाब के बाद सदन ने विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया। इसी के साथ विधेयक पर लाए गए विपक्षी सदस्यों के संशोधनों को सदन ने ध्वनिमत से खारिज कर दिया। इस दौरान विपक्षी सदस्य लगातार हंगामा और नारेबाजी करते रहे। सदन में व्यवस्था बनते न देख उपसभापति हरिवंश ने करीब 3:30 बजे बैठक को पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया। मंगलवार को लोकसभा की बैठक शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू कराना चाहा, लेकिन विपक्ष के सदस्य हंगामा करने लगे। वे अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठा रहे थे और प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर गृहमंत्री के बयान की मांग कर रहे थे। हंगामा जारी रहने पर अध्यक्ष ने सदन की बैठक दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी। बैठक 2 बजे शुरू होने पर पीठासीन सभापति दिलीप सैकिया ने आवश्यक कागजात सदन के पटल पर रखने को कहा। इस दौरान विपक्षी सदस्य पहले की तरह ही शोर शराबा कर रहे थे। हंगामे के बीच ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने विनियोग संख्यांक 3 विधेयक को चर्चा और पारित करने के लिए पेश किया। हंगामे के बीच सदन ने इस विधेयक को बिना चर्चा के ध्वनिमत से पारित कर दिया। इसके बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। ये विधेयक मुख्य रूप से कर प्रशासन को सुव्यवस्थित करने तथा आयकर कानूनों में आवश्यक बदलाव करने के लिए लाया गया है। उधर राज्यसभा में भी राम मंदिर चढ़ावा चोरी और प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई को लेकर गृहमंत्री के बयान की मांग कर रहे विपक्षी सांसदों के हंगामे के कारण बैठक बार बार बाधित हुई।
उच्च सदन की बैठक शुरू होने पर नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राम मंदिर के निर्माण और प्रबंधन के लिए सरकार द्वारा गठित ट्रस्ट के कुछ सदस्यों पर चढ़ावे की चोरी का आरोप लगाते हुए सवाल किया कि प्रवर्तन निदेशालय, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो और अन्य जांच एजेंसियां आरोपों की जांच क्यों नहीं कर रही हैं। इसके बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने हमेशा भगवान राम का अपमान किया और राम मंदिर निर्माण का विरोध किया। इस बीच सदन में हंगामा जारी रहने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी। सदन की बैठक 12 बजे शुरू होने पर भी सदन में विपक्षी सदस्यों का हंगामा जारी रहा और सभापति ने सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। दोपहर 2 बजे बैठक शुरू होने पर गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने से जन्म और मृत्यु का पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 को चर्चा और पारित करने के लिए पेश किया, किंतु सदन में विपक्षी सदस्यों का हंगामा और नारेबाजी जारी रही। हंगामे के बीच विधेयक पर

संक्षिप्त चर्चा का जवाब देते हुए गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकारों पर जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण संबंधी कानून को ठीक से लागू नहीं कर देश और लोकतंत्र के साथ धोखा करने का आरोप लगाया और दावा किया कि वर्तमान सरकार इन दोनों के सार्वभौमिक पंजीकरण के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रही है। मंत्री के जवाब के बाद सदन ने विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। इस विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 को और संशोधित कर विलंब से होने वाले पंजीकरण के प्रावधानों को कड़ा बनाना है। इसके बाद भी विपक्षी सदस्यों की नारेबाजी जारी रही और उपसभापति हरिवंश ने बैठक को पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया। बुधवार को भी पहले जैसी स्थिति ही रही। लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू कराया, लेकिन विपक्ष के सदस्य हंगामा करने लगे। वे अयोध्या में राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठा रहे थे और दिल्ली में प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के बारे में गृहमंत्री के बयान की मांग दोहरा रहे थे। हंगामा देखते हुए अध्यक्ष ने बैठक दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी। कार्यवाही फिर शुरू होने पर स्थिति ज्यों की त्यों बनी रही। विपक्षी सदस्यों की नारेबाजी के बीच ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने चर्चा और पारित करने के लिए बैंककार बही साक्ष्य विधेयक 2026 पेश किया। ये विधेयक औपनिवेशिक काल के 125 वर्ष पुराने बैंककार बही साक्ष्य अधिनियम 1891 का स्थान लेगा। सदन ने हंगामे के बीच ही इस विधेयक को बिना चर्चा के ध्वनिमत से पारित कर दिया। इसके बाद कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। उधर राज्यसभा की बैठक होते ही विपक्षी सदस्यों ने राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मुद्दे को लेकर विरोध जताते हुए नारेबाजी की और छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के मामले में गृहमंत्री की सदन में मौजूदगी की मांग की। हंगामे के बीच ही कुछ सदस्यों ने लोक महत्व से जुड़े अपने मुद्दे उठाए। हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। दोपहर 12 बजे बैठक फिर शुरू होने पर सभापति ने प्रश्नकाल चलाने का प्रयास किया, किंतु सदन में हंगामा थमते न देख उन्होंने बैठक को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। दोपहर 2 बजे बैठक फिर शुरू होने पर विपक्षी सदस्यों का हंगामा जारी रहा। हंगामे के बीच कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश संख्या संशोधन विधेयक 2026 को चर्चा और पारित करने के लिए पेश किया। विधेयक में उच्चतम न्यायालय में प्रधान न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 34 से बढ़ाकर 38 करने का प्रावधान है। विधेयक पर चर्चा के दौरान विभिन्न मुद्दों पर विरोध जताते हुए कांग्रेस और कुछ अन्य विपक्षी दलों के सदस्य सदन से बहिर्गमन कर गए। विधेयक पर करीब 2.5 घंटे तक चली चर्चा का जवाब देते हुए मेघवाल ने कहा कि ये विधेयक न्यायिक क्षेत्र में सुधार श्रृंखला की कड़ी है, जिसके माध्यम से उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का प्रावधान किया गया है। कानून मंत्री के जवाब के बाद सदन ने विधेयक को ध्वनिमत से लोकसभा को लौटा दिया। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। इसके बाद सदन में विपक्षी सदस्यों ने आसन की अनुमति से विशेष उल्लेख के जरिए लोक महत्व के मुद्दे उठाए। इसके बाद सदन की बैठक पूरे दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। बृहस्पतिवार को लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए जाने की वर्षगांठ का उल्लेख किया और सदस्यों ने कुछ देर मौन रखकर पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद विपक्षी सदस्य सदन में हंगामा करने लगे और अध्यक्ष ने 11:03 पर बैठक अपराह्न 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। बैठक 2 बजे पुनः शुरू हुई तो विपक्ष के सदस्य आसन के सामने आकर नारेबाजी करने लगे। हंगामे के बीच ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कराधान एवं अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 को चर्चा तथा पारित कराने के लिए सदन के पटल पर रखा। विपक्ष के हंगामे के कारण विधेयक पर चर्चा नहीं हो सकी। सदन ने इस संबंध में जून में लागू अध्यादेश को अस्वीकृत करने के आरएसपी सदस्य एन के प्रेमचंद्रन के सांविधिक संकल्प को खारिज कर दिया। सदन ने कुछ विपक्षी सदस्यों के संशोधनों को भी खारिज कर दिया। इसके बाद ध्वनिमत से विधेयक को पारित कर दिया गया। ये विधेयक सरकार को बैंकों और अन्य सेवा प्रदाताओं को यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई और अन्य अधिसूचित इलेक्ट्रॉनिक तरीकों से होने वाले भुगतान पर शुल्क लगाने की अनुमति प्रदान करने का अधिकार देता है। इसके बाद बैठक दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में भी विपक्षी सदस्यों का हंगामा जारी रहा। हंगामे के बीच ही सदन ने विनियोग विधेयक को संक्षिप्त चर्चा के बाद लोकसभा को लौटा दिया, जिसके तहत सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23 में खर्च हुए अतिरिक्त राशि के लिए संसद से मंजूरी मांगी है। इस दौरान कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन भी

0: दिया। सुबह 11 बजे सभापति सीपी राधाकृष्णन ने बैठक शुरू होने पर शून्यकाल शुरू कराना चाहा, लेकिन कांग्रेस तथा कुछ अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों ने राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी और प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई के बारे में गृहमंत्री के बयान की मांग को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामे के बीच ही कुछ सदस्यों ने लोक महत्व से जुड़े अपने मुद्दे उठाए। सदन में हंगामा थमते न देख सभापति ने कार्रवाई दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी। दोपहर 12 बजे दोबारा बैठक शुरू होने पर सभापति राधाकृष्णन ने प्रश्नकाल चलाने का प्रयास किया, लेकिन शोरगुल के कारण उन्होंने सदन की कार्रवाई दोपहर 2:15 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। दोपहर 2:15 पर बैठक पुनः शुरू होने पर भी सदन में विपक्षी सदस्यों का हंगामा जारी रहा और उपसभापति हरिवंश ने 1 मिनट के भीतर ही बैठक को दोपहर 2:45 तक स्थगित कर दिया। 3 बार के स्थगन के बाद अपराह्न 2:45 पर बैठक दोबारा शुरू होने के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने विनियोग संख्यांक 3 विधेयक को चर्चा के लिए सदन में पेश किया। विधेयक पर हुई संक्षिप्त चर्चा के दौरान कांग्रेस और कुछ अन्य विपक्षी दल के सदस्यों ने प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई पर गृहमंत्री के बयान की मांग करते हुए सदन से बहिर्गमन किया। विधेयक पर संक्षिप्त चर्चा के दौरान सदस्यों ने अर्थव्यवस्था से जुड़े विभिन्न पहलू उठाए। चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री सीतारामन ने कहा कि सरकार ये अनुदान की अनुपूरक मांगें 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वर्ष में अतिरिक्त खर्च के लिए लाई है। उन्होंने कहा कि सरकार इस अतिरिक्त बजट को लोक लेखा समिति पीएसी की सिफारिश पर लाई है और पीएसी की अध्यक्षता विपक्ष के नेता के पास है। वित्त मंत्री के जवाब के बाद सदन ने विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर इसे लोकसभा को लौटा दिया। लोकसभा विधेयक को पहले ही पारित कर चुकी है। इसके बाद सदस्यों ने आसन की अनुमति से विशेष उल्लेख के जरिए लोकहित के विभिन्न मुद्दे उठाए। सप्ताह के अंतिम दिन शुक्रवार को लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने आगामी 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन की 84वीं वर्षगांठ का उल्लेख किया। फिर सदन ने कुछ क्षण मौन रखकर देश के स्वतंत्रता आंदोलन में बलिदान देने वाले शहीदों को श्रद्धांजलि दी। अध्यक्ष ओम बिरला ने भारत छोड़ो आंदोलन में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के योगदान का उल्लेख करते हुए विपक्षी सांसदों से उनसे प्रेरणा लेने को कहा। अध्यक्ष ने कहा कि बाबा साहेब आम्बेडकर का मानना था कि देश के अंदर लोकतंत्र को सशक्त और मजबूत करना है तो चर्चा और संवाद ही इसका रास्ता है। इसके बाद अध्यक्ष ने प्रश्नकाल शुरू कराना चाहा, लेकिन विपक्षी सदस्य अपनी मांग दोहराते हुए नारे लगाने लगे। हंगामा नहीं थमने पर उन्होंने कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 1 बार के स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे सदन की बैठक शुरू हुई तो मंत्री जीतनराम मांझी ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 को चर्चा और पारित कराने के लिए सदन के पटल पर रखा। इस दौरान विपक्ष के सदस्य लगातार नारेबाजी करते रहे। हंगामे के बीच ही सदन ने विधेयक को चर्चा के बिना पारित कर दिया। राज्यसभा में यह विधेयक सोमवार को ही पारित हो चुका है। संसद के मानसून सत्र की शुरुआत 20 जुलाई को हुई थी और तब से सदन में विभिन्न मुद्दों पर हंगामे के कारण लगातार 15वें दिन भी प्रश्नकाल और शून्यकाल शुरू नहीं हो सके। राज्यसभा की बैठक सुबह 11 बजे शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने आगामी 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन की 84वीं वर्षगांठ का जिक्र करते हुए कहा कि करो या मरो के नारे के साथ हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने आजादी के लिए जो संघर्ष किया उसकी वजह से ही आज हम आजाद हवा में सांस ले रहे हैं। बाद में सदस्यों ने स्वतंत्रता संग्राम के वीरों के सम्मान में कुछ क्षण के लिए मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। सभापति ने इसके बाद शून्यकाल शुरू कराना चाहा। विपक्षी सदस्यों के ने हंगामा और नारेबाजी शुरू कर दी और इसके बाद सदन में हंगामा जारी रहने पर करीब 5 मिनट के भीतर ही बैठक दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। अभी आप संसद में इस सप्ताह हुई कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।
1: संसद में ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से, ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में।
2: सुर्खियों में ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए आईआईटी दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह में प्रधानमंत्री के संबोधन पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक केजी सुरेश, कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं निशित कुमार।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित किया और जिसमें लगभग 3000 से अधिक विद्यार्थियों को उनकी डिग्रियां प्रदान की गई। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने युवाओं का देश के लिए, खास करके विकसित भारत 2047 के लिए योगदान करने का आह्वान किया।

0: और इसी विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ आमंत्रित हैं राजनीतिक विश्लेषक केजी सुरेश। कार्यक्रम में बहुत स्वागत है सुरेश जी आपका।
1: जी धन्यवाद
0: सुरेश जी। जैसा कि हमने सुना, प्रधानमंत्री ने युवाओं का जैसा आह्वान किया है आज, खास करके क्यूरियोसिटी और कंटिन्यूअस लर्निंग की बात की उन्होंने, और साइंस और टेक्नोलॉजी पर काफी बल दिया। हालांकि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान साइंस और टेक्नोलॉजी के लिए ज्यादा जाना जाता है, और उन्होंने बहुत ही एक, जिसे कहते हैं, एक सार्वभौमिक रूप से युवाओं का आह्वान किया है 2047 के विकसित भारत में अपना योगदान करने के लिए। आप कैसे देखते हैं इसे?
1: जी बिल्कुल, देखिए मुझे तो याद आ गया, हम लोगों ने सुना है कि किसी जमाने में अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी, उनका एक अभिभाषण था जिसमें उन्होंने कहा था कि आस्क नॉट व्हाट योर कंट्री कैन डू फॉर यू, आस्क व्हाट यू कैन डू फॉर योर कंट्री। ये एक ऐसा अभिभाषण था जहां प्रधानमंत्री ने यह भी बताया कि देश आपके लिए क्या कर रहा है, और साथ में जो है यह भी बताया कि आपको भी अपने देश को जो है केंद्र में रखना चाहिए। और प्रधानमंत्री पहली बार नहीं है, चाहे वो एग्जाम की बात हो, चाहे वो पूरे देश भर में कहीं भी जाते हैं, युवाओं को और महिलाओं को उन्होंने हमेशा केंद्र में रखकर ही काम किया है। और चाहे वो उनकी योजनाएं हो, प्रधानमंत्री कौशल विकास से लेकर, स्टार्टअप से लेकर, स्टैंडअप इंडिया से लेकर, इतनी योजनाएं मुद्रा योजना से लेकर, किस तरीके से देश के युवा पीढ़ी के लिए व्यवस्थाएं की जा सकती है, उच्च शिक्षा में जितने IITs खोले गए, नए IIMs खोले गए, नए नए संस्थाएं खोली गई, तो मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री जी के हमेशा जो है युवा पीढ़ी उनके जो है सबसे केंद्र बिंदु रहा है उनके सभी नीति निर्धारण में। और आज भी जब IIT में 3000 से ऊपर जब विद्यार्थियों को उन्होंने संबोधित किया, और उनको जो IIT से जो निकले, यानी कि जो देश के बहुत ही हमारे एक तरह से बुद्धिजीवी वर्ग है, जो जिसमें देश के बेहतरीन इंजीनियर्स हैं, बेहतरीन जो हमारे विद्यार्थी हैं, उनको उन्होंने संबोधित किया, उनको प्रेरित करने का प्रयास किया, तो मैं समझता हूं कि ये उन्होंने आज अपनी मन की बात जो है उन विद्यार्थियों के साथ साझा किया जो देश के भविष्य हैं, जिनसे बहुत उम्मीद भी है, और जिनको जो है प्रधानमंत्री जी ने उनकी जिम्मेदारियों के बारे में भी एहसास दिलाया, और सरकार उनके लिए क्या कर रही है अलग अलग योजनाओं के तहत, अलग अलग पहल के तहत, इसके बारे में भी उनको सूचित कराया। तो एक तरह से इस IIT ग्रेजुएशन के बहाने मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी ने देश के हर युवक को स्पर्श करने का प्रयास किया, और बहुत ही प्रेरणादायी उद्बोधन था उनका, जहां उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बातें कही जो निश्चित ही हमारे युवा पीढ़ी को प्रेरित करेगी।
0: सुरेश जी, तो उभरते हुए शोध के अवसर जो हैं, वो जो IIT जैसे संस्थान और भी जो अन्य ऐसे संस्थान हैं देश में, वो काफी अवसर ऐसा प्रदान करते हैं, और इस दीक्षांत समारोह में प्रधानमंत्री ने इसका जिक्र भी किया। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
2: प्राइम मिनिस्टर्स रिसर्च फेलोशिप हमारे प्रतिभाशाली युवाओं को रिसर्च करने का अवसर दे रही है। अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना भी हुई है। रिसर्च सेक्टर में 1,00,000 करोड़ रुपए तक की फंडिंग की व्यवस्था की जा रही है। एकेडमिक रिसोर्सेज के एक्सेस को भी आसान बनाया गया है। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन के माध्यम से आज दुनिया की प्रतिष्ठित रिसर्च जर्नल्स देश के छोटे से छोटे शहर में बिना किसी अतिरिक्त लागत के पहुंच रही है।
0: सुरेश जी, आपने सुना, प्रधानमंत्री ने उभरते हुए जो शोध के अवसर हैं उस पर उन्होंने काफी बल दिया है, और खास करके भारतीय प्रौद्योगिकी के संस्थान जैसे संस्थाओं के विद्यार्थियों का उन्होंने जो आह्वान किया कि अगले आने वाले 2 से 3 दशक हैं, ये देश की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है उनके कंधों पर, और किस तरह से वो इसे एक दिशा और दशा देते हैं उससे बहुत कुछ निर्भर करेगा कि हमारा देश कैसे विकसित बनेगा 2047 में। कैसे देखते हैं इसे आप?
1: बिल्कुल, बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही। देखिए प्रधानमंत्री जी ने हमेशा, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में भी, उन्होंने शोध को जो है बहुत महत्व दिया, और उन्होंने कहा कि अगर अन्य मुल्कों के विश्वविद्यालय अगर आगे हैं, तो उसका एक बड़ा कारण उसका है कि उनका शोध पर जो जोर देना है। इसलिए जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी बनी, तब उसमें जो है उन्होंने नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की जो है कल्पना की थी, और आज भी उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा कि ये जो युवा, जो भारतीय युवा है, उनके लिए एक बहुत बड़ा अवसर है शोध अनुसंधान। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री रिसर्च फेलोशिप की बात कही। उन्होंने कहा कि जो रिसर्च डेवलपमेंट और इनोवेशन स्कीम जो भारत सरकार का है, उसके बारे में उन्होंने बात की। उन्होंने अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की बात कही, और उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि भारत का जो शोध का जो इकोसिस्टम है, जो उस माहौल को जो है और उसमें जो है

0: ज्यादा प्रतिबद्धता के साथ हमारे युवा जुड़ें, उसको आगे बढ़ाएं, तो मैं समझता हूं कि इसमें कहीं कोई दो राय नहीं कि विश्व में अगर हमें अपना स्थान बनाना है, हमें अपने पेटेंट्स लाने हैं, हमारे अपने शोध के क्षेत्र में जो है विश्व स्तरीय हमारा जो है उपलब्धियां अगर हमको हासिल करना है, आईपीस लेने हैं, तो मैं समझता हूं कि बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हमारे युवा जो है शोध पर जो है जोर दें। और आज का उनका आह्वान बिल्कुल मैं समझता हूं कि समय के अनुकूल है और हमारे युवाओं के लिए एक प्रोत्साहन प्रदान करेगी।
1: जी सुरेश जी, ऐसे कई विकासशील ऐसे क्षेत्र हैं जिनका जिक्र प्रधानमंत्री जी ने अपने उद्बोधन में किया, खास करके ड्रोन टेक्नोलॉजी, स्पेस, ऐसे जो उभरते हुए जो क्षेत्र हैं उस पर उन्होंने युवाओं का खास आह्वान किया है। ड्रोन टेक्नोलॉजी के बारे में खास क्या कहा उन्होंने, आइए सुनते हैं।
2: आज आप हमारे ड्रोन सेक्टर को भी देखिए, आज इस सेक्टर में युवा नई नई संभावनाएं तैयार कर रहे हैं। कहीं ड्रोन से खेतों में काम दिया जा रहा है, ड्रोन दवाइयां पहुंचा रहा है, ड्रोन देश की रक्षा सुरक्षा में मदद कर रहा है। और आज कहीं कोई युवा कह रहा है फर्स्ट इन माय ब्लड लाइन टू मेक अ ड्रोन। साथियों, भारत के स्टार्टअप रिवॉल्यूशन को इसी पीढ़ी के आप जैसे युवाओं ने ही तराशा भी है, ताकत भी दी है।
1: जी सुरेश जी, प्रधानमंत्री जी ने एक आत्मनिर्भरता की भी बात की, सेल्फ रिलायंस इन न्यू सेक्टर्स, जिसमें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात थी, ड्रोन की बात है, स्पेस की बात है, और भी कई सारे ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें कि हमारे युवा जो हैं काफी उनकी भागीदारी हो सकती है। कैसे देखते हैं इसे?
0: देखिए, जो प्रौद्योगिकी का जो क्रांतिकारी प्रगति आज हो रहा है और उसमें युवा भारतीयों के लिए बहुत सारे अवसर के दरवाजे खुल रहे हैं, चाहे आपने जैसे जिक्र किया स्पेस टेक्नोलॉजी की बात कही, ड्रोन्स की बात कही, सेमीकंडक्टर्स की बात कही, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कही, डेटा सेंटर्स की बात कही, क्रिटिकल मिनरल्स की बात कही, क्वांटम कंप्यूटिंग की बात कही, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, जो आज ईवी व्हीकल्स को हम इतना प्रोत्साहन दे रहे हैं उसकी बात कही, एनर्जी स्टोरेज की बात कही। और उन्होंने कहा कि आज हमारे पुराने, हम देखते हैं कि कई जगह जो है पुरानी नौकरियां, पुराने जो शैली की थी वो आज समाप्त हो रही है और नई नई चीजें उभर रही है। यहां तक कि उन्होंने कहा कि पहले पहले सवाल खड़े करते थे कि क्या भारत कभी सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में आ सकते हैं क्या, और उन्होंने ये सूचना भी दी कि हमारे पहला सेमीकंडक्टर यूनिट में जो है हमने उत्पादन का कार्य शुरू कर लिया है। और उन्होंने बहुत खूबसूरत बात कही कि आपके हाथों से सब कुछ बनेगा, चिप से लेकर शिप्स तक। तो मैं समझता हूं कि उन्होंने हर तरह के विधाओं में युवाओं की जो हमारी प्रतिभा है उसको उजागर करने की बात कही और उनको नए चुनौतियों के बारे में बोला, नए अवसर के बारे में बताया और कहा कि आपको इन क्षेत्रों में जो है सक्रिय रूप से आपको प्रतिभागिता आपको करनी है, उसमें भाग लेना है।
1: जी सुरेश जी, और खास करके प्रधानमंत्री जी ने आज इन क्षेत्रों के अलावा सेमीकंडक्टर की बात आपने भी की। अभी सेमीकंडक्टर एक ऐसा एक सेक्टर है जहां पर कि अभी तक कुछ वक्त पहले तक हम विदेशों पे निर्भर करते थे, विदेश के कुछ ऐसे देश हैं जहां से वो हम इंपोर्ट करते थे सेमीकंडक्टर, और आज के वक्त में अगर हम देखें तो भारत में भी इसका उत्पादन एक बड़े पैमाने पर हो रहा है। प्रधानमंत्री जी ने जिक्र भी किया, आइए सुनते हैं क्या कहा उन्होंने।
2: सेमीकंडक्टर सेक्टर का उदाहरण भी हमारे सामने है। जब हमने इस दिशा में कदम बढ़ाया तो कुछ लोगों ने सवाल उठाए, कहा गया भारत ये नहीं कर पाएगा, लेकिन आज पहली सेमीकंडक्टर यूनिट्स में प्रोडक्शन शुरू हो चुका है। और मैं साफ मानता हूं चिप से लेकर के शिप तक सब कुछ यहीं पर आप ही के हाथों से बनेगा।
1: सुरेश जी, प्रधानमंत्री जी ने इस अवसर पर परम प्रज्ञा का भी उद्घाटन किया, जो कि एआई पावर्ड हाई परफॉर्मेंस सुपर कंप्यूटिंग फैसिलिटी के लिए एक एडवांस्ड, जिसे कह सकते हैं एक प्रोसीजर है, और आईआईटी दिल्ली जैसे संस्थाओं के साथ मिलकर इस चीज को आगे बढ़ाना, और खास करके आईआईटी दिल्ली के सोनीपत कैंपस जो है वहां पर एआई और डेटा साइंस को बूस्ट देने के लिए, उसके रिसर्च को, शोध को बूस्ट देने के लिए एक बहुत ही सराहनीय कदम है। आप कैसे देखते हैं इसे?
0: बिल्कुल, देखिए आपको याद होगा बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम था जब हमने पहली बार जब परम बनाया।
1: जी,
0: परम जो सुपर कंप्यूटर था वो भारत ने बनाया और पूरे विश्व को दिखा दिया था कि कंप्यूटिंग के क्षेत्र में, कंप्यूटर के क्षेत्र में हमारे कोई सानी नहीं है। और आज एक और कदम आगे बढ़ा के उसके बाद बहुत प्रौद्योगिकी में बदलाव आया और एआई बड़े पैमाने पर आया। और आपको याद होगा कि हमने कुछ ही समय पहले जो है भारत मंडपम में दिल्ली में जो है हमने एआई का समिट का भी आयोजन किया था, जहां विश्व के जो एआई के नेतृत्व है वो वहां जो है उनकी उपस्थिति हमने देखा। और उसी एआई को आज कटिंग एज टेक्नोलॉजी, हम इसको किस तरीके से एआई के क्षेत्र में हम वर्ल्ड लीडर्स

0: सॉफ्टवेयर में तो भारत ही है। आज चाहे वो सिलिकॉन वैली हो या बैंगलोर हो या साइबराबाद हो, आप देखेंगे कि हमारा विश्व में एक तरह से बड़ी बड़ी कंपनियां हमारे भारतीयों ने खड़े किए हैं और भारतीयों का नेतृत्व है, भारतीय वहां कार्यरत है। और वही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी हम किस तरीके से जो है न सिर्फ भारत की तरक्की के लिए, पूरे मानवता के लिए हम उसका कैसे सदुपयोग कर सकते हैं, और उसमें मात्र मुनाफे को देखकर नहीं, विश्व कल्याण को केंद्र में रखकर हम एआई का किस तरीके से सदुपयोग कर सकते हैं, उसको ध्यान में रखते हुए ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड जो है, इससे एआई को इस्तेमाल करते हुए ये सुपर कंप्यूटिंग फैसिलिटी हमने जो है सोनीपत कैंपस में आईआईटी दिल्ली के, इसका उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। मैं निश्चित ही समझता हूं कि ये एक बहुत बड़ा कदम है एआई के क्षेत्र में भी और सुपर कंप्यूटिंग के क्षेत्र में भी।
1: जी जी जी, सुपर कंप्यूटिंग की बात की आपने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आगे बढ़ करके भी अब हम क्वांटम कंप्यूटिंग की ओर भी हम जा रहे हैं। और विश्व कल्याण के साथ साथ प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत ही एक महत्वपूर्ण बिंदु पर बल दिया, जिसमें कि नेशनल इंटरेस्ट की बात की कि युवाओं को, खास करके जो ऐसे युवा जो आईआईटी जैसे संस्थाओं से बाहर निकल रहे हैं, वहां से पढ़ाई करके निकल रहे हैं, उन्हें नेशनल इंटरेस्ट केंद्र बिंदु में रखना चाहिए, ताकि आने वाले 30 से 35 से 40 वर्षों में भारत एक सुपर पावर के रूप में एक उभर करके ऊपर आए। आपका क्या कहना है इस बारे में?
0: बिल्कुल, देखिए मैंने जैसे कहा कि देखिए प्रधानमंत्री जी ने जो है उन्होंने याद दिलाया, क्योंकि अब हम 15 अगस्त भी जल्दी ही मनाने जा रहे हैं, तो उन्होंने युवाओं को याद दिलाया कि देखिए हमने गुलामी का दौर भी हमने देखा है, और हमारा एक ही लक्ष्य उस वक्त होता था कि हमारा देश स्वाधीन हो, और उन्होंने बहुत संघर्ष किया उस वक्त के युवाओं ने, और उन्हीं के कुर्बानियों के वजह से, बलिदानों के वजह से हम जो है आज एक स्वतंत्र देश में हम लोग रह रहे हैं। लेकिन अब हमारी चुनौतियां अलग हैं, हमारी जिम्मेदारियां भी। तो उन्होंने कहा कि जो है आप अगले 25-30 वर्ष में जो भी करेंगे वो विकसित भारत, देखिए याद रखिए कि हमारा 2047 का जो है विकसित भारत का लक्ष्य है जो प्रधानमंत्री ने हम सबके सामने रखा है। तो उन्होंने युवाओं को कहा कि आप अपने आप से पूछिए कि मैं देश के लिए इस विकसित भारत बनने की दिशा में मैं क्या योगदान कर सकता हूं। उन्होंने कहा कि भारत आत्मनिर्भर बनने की कोशिश कर रहा है, ये विकसित भारत के जो मजबूत जो बुनियाद है उससे पता चलता है, और ये जो मजबूत बुनियाद विकसित भारत का है ये आपको बनाना है। तो ये मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी युवा पीढ़ी के कंधों में आपने रखा है कि ये जो विकसित भारत बनेगा उसका बुनियाद जो है हमारे आज के युवा तैयार करेंगे। ये जिम्मेदारी, ये दायित्व बोध प्रधानमंत्री जी ने जो है उनको दिया है।
1: जी जी जी, सुरेश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े और इस विषय पर आपने चर्चा की, धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे आईआईटी दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह में प्रधानमंत्री के संबोधन पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक केजी सुरेश, कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे निशित कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
3: सुर्खियों में
4: अभी आप आकाशवाणी के भोपाल केंद्र का प्रसारण सुन रहे थे। यह आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र है FM बैंड 102.5 MHz पर। इस समय रात्रि के 8:30 हुए हैं। हमारे केंद्र से प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत।

आवाज सुनी आपने अरिजीत सिंह की। गीत में साथ दे रही हैं इनका शिल्पा राव। फिल्म का नाम है लाल सिंह चड्ढा। गीतकार अमिताभ भट्टाचार्य, संगीत प्रीतम का।

जो भी है सब मेरा तेरे हवाले कर दिया। भाई ये बात तो तब होती है जब इश्क परवान चढ़ जाता है, इश्क का पंछी परवाज ले रहा होता है खुले आसमान में। पर शुरुआत तो इस दास्तां की होती है आंखों की गुस्ताखियों से। सुनवा रहे हैं आपको गीत हम दिल दे चुके सनम, फिल्म का नाम है, गायक कलाकार कुमार सानू और कविता कृष्णमूर्ति, संगीत इस्माइल दरबार का, गीत को लिखा महबूब ने।

आँखों की ये गुस्ताखियाँ अगर दोनों तरफ से माफ़ हो जाएं तो कहानी शुरू हो जाती है, और अगर ये वक्ती जज्बात है तो भी और सालों साल रिश्ता निभने वाला है, यानी सालों साल रिश्ता निभाने वाले जज्बात हैं तो भी शुरुआत में दोनों ही सूरतों में दिल का हाल तो कुछ अलग ही होता है। सुनवा रहे हैं आपको अगला गीत, इस कार्यक्रम का आखिरी गाना, समीर का लिखा हुआ, संगीत तैयार किया जितने ललित ने, अपनी आवाजें दी कुमार सानू और अलका याग्निक ने, फिल्म का नाम सरफरोश।

श्रोताओं, फिल्म सरफरोश के इस गाने के साथ ही आज का ये फिल्म संगीत यहीं संपन्न होता है। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम फिल्म संगीत एफएम बैंड पर। ये आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र है, फ्रिक्वेंसी 102.5 मेगाहर्ट्ज। रात्रि के 8:45 होने को है। थोड़ी देर में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे समाचार संध्या।

0: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के विकास के लिए नवाचार, अनुसंधान और उभरती प्रौद्योगिकियों के महत्व पर जोर दिया। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शहरी सहकारी बैंकों के लिए मजबूत साइबर सुरक्षा और डिजिटल सुरक्षा उपायों की आवश्यकता पर बल दिया। सरकार ने स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख उद्योगपतियों के साथ महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने कहा

0: उनका देश कूटनीति के लिए प्रतिबद्ध लेकिन दबाव में आत्मसमर्पण नहीं करेगा। मौसम विभाग ने उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में कल मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। नदियों का जलस्तर बढ़ने से ओडिशा में एक बार फिर बाढ़ का खतरा। और कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स फाइनल में कल अश्मिता चालिहा का सामना चीन की क्यू हान से होगा। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के विकास के लिए नवाचार, अनुसंधान और उभरती प्रौद्योगिकियों के महत्व पर जोर दिया है। श्री मोदी ने आज भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली के विद्यार्थियों से आग्रह किया कि वे अपने निर्णयों में राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखें। श्री मोदी ने IIT दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि प्रत्येक पीढ़ी अपने समय की विशिष्ट चुनौतियों का सामना करती है और अपनी राष्ट्रीय जिम्मेदारी भी निभाती है।
1: आज के इस दौर में हमारे सामने चुनौतियां भी अलग है और इसलिए हमारे दायित्व भी अलग है। अपने जीवन के अगले 30-35 साल में आप जो कुछ भी करेंगे वो विकसित भारत की हमारी यात्रा को प्रभावित करेगा।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में नए क्षेत्र उभर रहे हैं जो युवाओं को नए अवसर प्रदान कर रहे हैं। श्री मोदी ने सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष और ड्रोन जैसे क्षेत्रों का उदाहरण देते हुए कहा कि भारत सभी क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में कार्य कर रहा है।
1: सेमीकंडक्टर सेक्टर का उदाहरण भी हमारे सामने है। जब हमने इस दिशा में कदम बढ़ाया तो कुछ लोगों ने सवाल उठाए, कहा गया भारत ये नहीं कर पाएगा, लेकिन आज पहली सेमीकंडक्टर यूनिट्स में प्रोडक्शन शुरू हो चुका है और मैं साफ मानता हूं चिप से लेकर के शिप तक सब कुछ यहीं पर आप ही के हाथों से बनेगा। और कहीं कोई युवा पूरे आत्मविश्वास से कह रहा है फर्स्ट इन माय ब्लड लाइन टू मेक अ चिप इन इंडिया।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भरता की ये पहल विकसित भारत के निर्माण के लिए एक मजबूत आधार का काम करेगी।
1: आज भारत इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस, टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस, इंडस्ट्रियल सेल्फ रिलायंस, ऐसे हर सेक्टर में आत्मनिर्भर बनने के लिए काम कर रहा है। यही विकसित भारत की मजबूत नींव का सबूत है। इस मजबूत नींव पर आपको एक भव्य सुंदर विकसित भारत का निर्माण करना है।
0: इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने IIT दिल्ली में उच्च दक्षता के कंप्यूटिंग केंद्र परम प्रज्ञा का उद्घाटन भी किया। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शहरी सहकारी बैंकों के लिए मजबूत साइबर सुरक्षा और डिजिटल सुरक्षा उपायों की आवश्यकता पर बल दिया है। मुंबई में आज सहकार नव क्रांति कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि डिजिटल लेन देन में धोखाधड़ी बढ़ रही है और बैंकिंग सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मजबूत फोरेंसिक सहायता की आवश्यकता है। श्री शाह ने बताया कि राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम तथा राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।
2: आज हमारे अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन और NFSU फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के साथ जो समझौता हुआ इससे हमारी छोटी सी छोटी बैंक की हर ब्रांच में भी ये सारी सुविधाएं बहुत कम लागत में देने का काम अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन करेगा। इससे साइबर सुरक्षा, डिजिटल फोरेंसिक कर्मचारियों का इस दोनों क्षेत्र में प्रशिक्षण और अनुसंधान, ये सभी व्यवस्था एक साथ बैंक इन बॉक्स से हो जाएगी।
0: केंद्रीय सहकारिता मंत्री ने एक सुरक्षा संचालन केंद्र का भी शुभारंभ किया। ये शहरी सहकारी बैंकों को 24 घंटे साइबर निगरानी और सुरक्षा सहायता प्रदान करेगा। श्री शाह ने देश के सभी सहकारी बैंकों से राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम में शामिल होने का भी आग्रह किया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे newzoneair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख उद्योगपतियों के साथ महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने वाली कैश फ्री पेमेंट्स, डार्विन डायनेमिक्स, वर्ल्ट इंडिया, कॉर्स 24 और काउंसिल फॉर स्टार्टअप के साथ भी समझौता किया गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के उद्योग तथा आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। मंत्रालय ने बताया कि हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन का उद्देश्य स्टार्टअप्स के लिए डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि उपभोक्ताओं

0: भारत ने स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। देश ने गैर जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली उत्पादन क्षमता में 300 गीगावाट का आंकड़ा पार कर लिया है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि पिछले 12 वर्षों में भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में 400% की वृद्धि हुई है। श्री जोशी ने कहा कि ये आंकड़ा भारत की स्वच्छ ऊर्जा उपयोग की दिशा में वैश्विक प्रगति को दर्शाता है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने देश में महिला आरक्षण विधेयक को तत्काल लागू करने की शिरोमणि अकाली दल की मांग का स्वागत किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि सभी को मिलकर महिलाओं को सशक्त बनाना होगा और निष्पक्ष तथा समान परिसीमन सुनिश्चित करना होगा, जिससे सभी राज्यों को समान प्रतिनिधित्व मिले। शिरोमणि अकाली दल ने चंडीगढ़ में अपने वरिष्ठ नेताओं की बैठक में ये मांग रखी थी। झारखंड लोक सेवा आयोग JPSC, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग JSSC और राज्य में अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं का मामला अब सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंच गया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इस बीच राज्य सरकार और विभिन्न छात्र संगठनों के बीच बातचीत जारी है।
1: 14वीं JPSC प्रारंभिक परीक्षा में कथित अनियमितताओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर परीक्षा रद्द करने और नए सिरे से परीक्षा कराने की मांग की गई है। जयपाल सिंह हुड्डा स्टेडियम में पिछले कई दिनों से आंदोलनरत छात्र अपनी मांगों पर कायम हैं। आंदोलनकारियों का कहना है कि केवल मौखिक आश्वासन से संतुष्ट नहीं होंगे और जब तक ठोस परिणाम सामने नहीं आता आंदोलन जारी रहेगा। इस बीच राज्य सरकार ने विभिन्न छात्र संगठनों से बातचीत का सिलसिला तेज कर दिया है। कई संगठनों के प्रतिनिधियों से वार्ता के बाद सरकार ने उनकी मांगों और सुझावों पर आगे निर्णय लेने की बात कही है। प्रशासन ने आंदोलन के मद्देनजर जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: रेलवे ने मध्य प्रदेश में रेल कनेक्टिविटी को बेहतर करने के लिए रोजाना चलने वाली इटारसी मदन महल पैसेंजर रेलगाड़ी को मंजूरी दी है। ये रेलगाड़ी 5 घंटे से अधिक समय में 242 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। ये बगरा तवा, सुहागपुर और दूसरे स्टेशनों पर रुकेगी। ये आकाशवाणी है। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता में भोपाल में 5 अगस्त से चल रही 11वीं ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक में आज भोपाल घोषणा पत्र स्वीकार किया गया। इसका उद्देश्य ब्रिक्स सदस्य और सहयोगी देशों के बीच सांस्कृतिक सहयोग मजबूत करना है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक में 10 ब्रिक्स सदस्य और 4 सहयोगी देशों सहित कुल 14 देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए।
2: बैठक की शुरुआत केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के संबोधन से हुई। इसके बाद ब्रिक्स सदस्य देशों के मंत्रियों और प्रतिनिधियों ने अपने विचार रखे। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बैठक और भोपाल डिक्लेरेशन के प्रमुख बिंदुओं की जानकारी दी। इसके साथ ही भोपाल में आयोजित ब्रिक्स कल्चरल ट्रैक के प्रमुख कार्यक्रम भी सम्पन्न हो गए हैं। अब ब्रिक्स देशों के प्रतिनिधि सांची के लिए रवाना हो गए हैं, जहां वे विश्व धरोहर और बौद्ध सांस्कृतिक विरासत से परिचित होंगे। कल यानी 9 अगस्त को प्रतिनिधिमंडल भीमबेटका का दौरा करेगा, जहां वे भारत की प्राग ऐतिहासिक और प्राचीन सांस्कृतिक विरासत को करीब से देखेगा। आकाशवाणी समाचार के लिए भोपाल से विपिन मिश्रा।
0: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में आयोजित इंडिया मेडिकल डिवाइस कॉन्फ्रेंस 2026 में CEO गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता की। श्री नड्डा ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि सम्मेलन में नवाचार, नियामक उत्कृष्टता, घरेलू विनिर्माण, मूल्य श्रृंखला, बाजार पहुंच और निर्यात को मजबूत करने के दृष्टिकोण पर चर्चा हुई, ताकि भारत को गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा उपकरणों के वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित किया जा सके। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हुए कहा है कि ईरान कूटनीति के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन आत्मसमर्पण करने के लिए बाध्य नहीं होगा। एक रिपोर्ट।
3: राष्ट्रपति पेजेश्कियन ने युद्ध समाप्त करने के उद्देश्य से अमेरिका के साथ वार्ता करने और समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के अपनी सरकार के निर्णय का बचाव किया। उन्होंने कहा कि जब तक अमेरिका समझौते के अंतर्गत अपने दायित्वों को पूरा करता है, ईरान भी अपनी प्रतिबद्धताओं का सम्मान करेगा, लेकिन अगर अमेरिका अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में विफल रहता है तो ईरान इसे जारी रखने के लिए बाध्य नहीं होगा। इससे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विश्वास व्यक्त किया था कि ईरान के साथ संघर्ष जल्द ही समाप्त हो सकता है। श्री ट्रंप ने दोहराया कि अमेरिका ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकने के लिए प्रतिबद्ध है। ओवल ऑफिस में पत्रकारों से बातचीत में राष्ट्रपति ट्रंप ने होर्मुज जलडमरू मध्य से संबंधित चल रही वार्ताओं पर भी सकारात्मक परिणाम

0: की आशा व्यक्त की है। समाचार कक्ष से जया भारती।
1: इस बीच संयुक्त अरब अमीरात ने सरकारी कंपनी अबुधाबी नेशनल ऑयल कंपनी से जुड़ी एक जहाज पर होर्मुज जलडमरू मध्य के पास हुए ईरान के हमले की निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह घटना समुद्री आवाजाही की आजादी की गारंटी देने वाले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव का उल्लंघन है। और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में कल मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी तेज बारिश की संभावना है। जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, केरल, माहे, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, काराईकाल, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कल बिजली कड़कने और तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान आने की आशंका है। आज राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में तेज बारिश हुई। राजधानी में कल सुबह भी बारिश की संभावना है। उधर ओडिशा में बाढ़ का खतरा एक बार फिर मंडरा रहा है। बैतरनी और सालंदी नदियों का जलस्तर बढ़ने से भद्रक और अन्य निचले इलाकों में बाढ़ की आशंका व्यक्त की गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि कई जिलों में अधिकारी हाई अलर्ट पर हैं।
2: उड़ीसा में एक बार फिर भारी बारिश हो रही है। आईएमडी ने सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, बरगढ़ और संबलपुर के लिए ऑरेंज वार्निंग जारी की है, जबकि कई अन्य जिलों के लिए येलो वार्निंग लागू है। भद्रक में सालंदी और बैतरणी नदियों का जल स्तर बढ़ने से बाढ़ का खतरा फिर से पैदा हो गया है। भद्रक और तिहिड़ी ब्लॉक के कई निचले इलाकों और गाँव में पानी भरा हुआ है। कटक में सापुआ और कंटिया नदियों के उफान पर होने से पुराने कटक संबलपुर रोड के कुछ हिस्सों पर आवाजाही प्रभावित हुए है और खेतों में पानी भर गया है। भारी बारिश ने राज्य के कई हिस्सों में जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। अधिकारी स्थिति पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: और अब कुछ खेल खबरें। अश्मिता चालिहा कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स फाइनल में पहुंच गई हैं। अश्मिता ने आज सेमीफाइनल में भारत की ही रक्षिता रामराज को हराया। अश्मिता का मुकाबला कल फाइनल में चीन की क्यू हान से होगा। उधर उज्बेकिस्तान के ताशकंद में आयोजित एशियाई जूनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारतीय भारोत्तोलकों ने शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए पुरुषों के 60 किलोग्राम वर्ग में एक स्वर्ण और एक रजत पदक जीता है। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के विकास के लिए नवाचार, अनुसंधान और उभरती प्रौद्योगिकियों के महत्व पर जोर दिया। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शहरी सहकारी बैंकों के लिए मजबूत साइबर सुरक्षा और डिजिटल सुरक्षा उपायों की आवश्यकता पर बल दिया। सरकार ने स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख उद्योगपतियों के साथ महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजश्कियन ने कहा उनका देश कूटनीति के लिए प्रतिबद्ध है लेकिन दबाव में आत्मसमर्पण नहीं करेगा। मौसम विभाग ने उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में कल मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। नदियों का जलस्तर बढ़ने से ओडिशा में एक बार फिर बाढ़ का खतरा। और कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स फाइनल में कल अश्मिता चालिहा का सामना चीन की क्यू हान से होगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: Good evening. This is Akashvani and I am Valsa Williams with news at 9. The headlines.
4: Prime Minister Narendra Modi emphasizes importance of innovation, research and emerging technologies in shaping India's growth trajectory. Union Minister Amit Shah stresses need for stronger cyber security and digital safeguards for urban cooperative banks. Government signs strategic MOUs with key industry leaders to strengthen support to startups. Iranian President says his country is committed to diplomacy but will not surrender under pressure. Orange alert issued for heavy to very heavy rainfall over Uttarakhand and Chhattisgarh tomorrow. Flood threat again looms over Odisha with rising river levels. And in badminton, Ashmita Chaliha to face China's Che Han in women's singles final of Korea Masters tournament. Prime Minister Narendra Modi has emphasized the importance of innovation, research and emerging technologies in shaping India's growth trajectory, addressing the 57th convocation of the Indian Institute of Technology, IIT Delhi, today. Mr. Modi urged the students to keep national interest at the center of their decisions and ask themselves how their actions can benefit the country and address its needs. The Prime Minister said new sectors are emerging in the country, offering fresh opportunities for the youth. He cited sectors such as semiconductors, space and drones and said India is working towards becoming self-reliant across all sectors.

0: फैसलों में मुल्क के मफाद को मुकद्दम रखें और अपने आप से ये सवाल करें कि किस तरह उनके काम से मुल्क को फायदा हो सकता है और उसकी जरूरियात पर तवज्जो दी जा सकती है। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुल्क में नए शोबे उभर रहे हैं और नौजवानों के लिए नए मौके पैदा हो रहे हैं। जनाब मोदी ने सेमीकंडक्टर, खला और ड्रोन जैसे शोबों का हवाला दिया और कहा कि भारत सभी शोबों में खुद कफील बनने की सिमत काम कर रहा है। वज़ीर आज़म ने कहा कि खुद किफालत की सिमत यह मुहिम एक विकसित भारत की तामीर के लिए एक मजबूत बुनियाद फराहम करेगी।
1: आज भारत इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस, टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस, इंडस्ट्रियल सेल्फ रिलायंस, ऐसे हर सेक्टर में आत्मनिर्भर बनने के लिए काम कर रहा है। यही विकसित भारत की मजबूत नींव का सबूत है। इस मजबूत नींव पर आपको एक भव्य, सुंदर, विकसित भारत का निर्माण करना है।
0: वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने सेमीकंडक्टर शोबे में भारत की कोशिशों का तस्करा करते हुए कहा कि भारत के पहले सेमीकंडक्टर यूनिट में प्रोडक्शन का काम शुरू हो गया है।
1: सेमीकंडक्टर सेक्टर का उदाहरण भी हमारे सामने है। जब हमने इस दिशा में कदम बढ़ाया तो कुछ लोगों ने सवाल उठाए, कहा गया भारत ये नहीं कर पाएगा, लेकिन आज पहली सेमीकंडक्टर यूनिट में प्रोडक्शन शुरू हो चुका है। और मैं साफ मानता हूं, चिप से लेकर के शिप तक सब कुछ यहीं पर आप ही के हाथों से बनेगा। और कहीं कोई युवा पूरे आत्मविश्वास से कह रहा है, फर्स्ट इन माय ब्लड लाइन टू मेक अ चिप इन इंडिया।
0: उधर तालीम के मरकजी वजीर प्रहलाद जोशी आईआईटी दिल्ली के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के चेयरपर्सन हरीश सालवे और आईआईटी दिल्ली के डायरेक्टर प्रोफेसर रंगन बनर्जी भी इस तकरीब में मौजूद थे। इस मौके पर वज़ीरे आज़म ने आईआईटी दिल्ली में आला कारकर्दगी वाले कंप्यूटिंग मरकज परम प्रज्ञा का इफ्तिताह भी किया। उम्र दाखिला और इमदाद बाहमी महकमे के मरकजी वजीर अमित शाह ने शहरी इलाकों के इमदाद बाहमी बैंकों के लिए और ज्यादा मजबूत साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल तहफ़ुज़ात की जरूरत पर जोर दिया है। वह आज मुंबई में सहकार नव क्रांति प्रोग्राम से खिताब कर रहे थे। जनाब अमित शाह ने कहा कि डिजिटल लेन देन के फ्रॉड के मामलात में इजाफा हो रहा है। उन्होंने बैंककारी सेफ्टी को यकीनी बनाने की खातिर और ज्यादा मजबूत फॉरेंसिक मदद पर जोर दिया। उन्होंने साइबर जराइम और माली उमूर से मुतअल्लिक जराइम से निमटने के लिए नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के साथ इश्तराक की अहमियत को उजागर किया। वज़ीर दाखिला ने एक सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर का आगाज भी किया जो शहरी इलाकों के इमदाद बाहमी बैंकों के लिए दिन रात साइबर निगरानी और सिक्योरिटी फराहम करेगा।
2: आज हमारे अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन और NFSU फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के साथ जो समझौता हुआ, इससे हमारी छोटी सी छोटी बैंक की हर ब्रांच में भी ये सारी सुविधाएं बहुत कम लागत में देने का काम अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन करेगा। इससे साइबर सुरक्षा, डिजिटल फॉरेंसिक कर्मचारियों का इस दोनों क्षेत्र में प्रशिक्षण और अनुसंधान, ये सभी व्यवस्था एक साथ बैंक इन बॉक्स से हो जाएगी।
0: हुकूमत ने आज अहम सनअतकारों और इको निजाम तैयार करने वालों के साथ सिलसिलेवार कलीदी मुफाहमतनामों का ऐलान किया, जिनमें कैश फ्री पेमेंट्स, डार्विन डायनामिक्स, वाल्टर इंडिया, कास 24 और स्टार्टअप्स इंडिया काउंसिल शामिल हैं। इन मुफाहमतनामों पर तिजारत और सनत के सनती और दाखिली तिजारत के फरोग के महकमे ने दस्तखत किए हैं। कॉमर्स और सनत की वजारत ने मुतला किया है कि कैश फ्री पेमेंट्स के साथ दस्तखत किए गए मुफाहमतनामे का मकसद स्टार्टअप्स के लिए डिजिटल बुनियादी ढांचे को मुस्तहकम करना है। डार्विन डायनामिक्स के साथ दस्तखत किया गया मुफाहमतनामा एंटरप्रेन्योरशिप की तरक्की और स्टार्टअप्स इको निज़ाम को मजबूत करेगा। वजारत ने मजीद कहा कि इस शराकतदारी का मकसद Tier 2 और Tier 3 और देही खित्तों में छोटे कारोबारों को फरोग देकर स्टार्टअप्स इंडिया पहल को वसत देना है। सरकार ने यह वजाहत की है कि सार्फीन के लिए UPI और एक शख्स से दूसरे शख्स के दरमियान लेन देन पर कोई चार्ज नहीं लगेगा। वजारत खजाना ने एक बयान में कहा है कि सार्फीन को UPI के जरिए रकम की अदायगी करते वक्त लेन देन पर किसी तरह के चार्ज का सामना नहीं करना होगा। साथ ही बेशतर कारोबारी लेन देन पर भी कोई

0: चार्ज आयद नहीं होगा। वजारत ने कहा है कि अगर मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR चार्जेस का सिलसिला शुरू होता है तो इसका इतलाक एक मखसूस हद के ऊपर महदूद कारोबारी लेन देन पर ही होगा और ये बहुत मामूली शरह होगी। वजारत ने कहा है कि अदायगी और तस्फीये के निजाम से मुतालिक एक्ट में तरमीम एक ऐसा बंदोबस्त है जिसका मकसद UPI के तवील मुद्दत तक पायदार रहने, तकनीकी पेशरफ्त और उभरते हुए खतरात के तनाजुर में इस्तेहकाम को यकीनी बनाना है। भारत ने अपनी माहौल के लिए साजगार तवानाई के सिलसिले में एक अहम संग मील हासिल किया है। मुल्क में नस्बशुदा गैर रवायती ईंधन पर मबनी बिजली की सलाहियत 300 गीगावाट से तजावज कर गई है। सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर नई और काबिले तजदीद तवानाई के वजीर प्रहलाद जोशी ने उजागर किया कि भारत की काबिले तजदीद तवानाई की सलाहियत में गुज़िश्ता 12 बरस में 400% का इजाफा हुआ है। वजीर मौसूफ ने कहा कि गैर रवायती ईंधन पर मबनी नस्ब शुदा बिजली की सलाहियत के 300 गीगावाट के संग मील से इस बात का इजहार होता है कि भारत की माहौल के लिए साजगार तवानाई की मुंतकली मुकर्रर करदा आलमी अहदाफ के मुताबिक जारी है। जनाब जोशी ने उजागर किया कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की ज़ेर क़यादत हुकूमत एक साफ सुथरे माहौल के लिए साजगार और ज्यादा पायदार मुस्तकबिल तश्कील दे रही है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। पार्लियामानी उमूर के मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने मुल्क में खवातीन रिजर्वेशन बिल पर फौरी तौर से अमल दरामद के लिए शिरोमणि अकाली दल के मुतालबे का खैर मकदम किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब रिजिजू ने कहा कि सभी को एक मुनसिफाना और मसावियाना हदबंदी के साथ खवातीन को बाख्तियार बनाने के लिए मिलकर आगे आना चाहिए जिसमें बराबर की नुमाइंदगी को यकीनी बनाया गया हो। शिरोमणि अकाली दल ने चंडीगढ़ में अपने सरकर्दा रहनुमाओं की मीटिंग में यह मुतालबा किया था। शिरोमणि अकाली दल के सदर सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि पार्टी ने एक ऐसी मुनसिफाना और मसावियाना हदबंदी की भी मांग की है जिसमें सभी रियासतों के लिए बराबर की नुमाइंदगी हो। भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने जोर देकर कहा है कि शहरियों से ये उम्मीद रखने के बजाय कि वो निजामे इंसाफ की जानिब कदम बढ़ाएंगे, इंसाफ खुद शहरियों तक पहुंचना चाहिए। वो आज इंदौर में कानूनी खिदमात से मुतालिक कौमी अथॉरिटी की मगरबी जोन की इलाकाई कॉन्फ्रेंस के इफ्तिताही इजलास से खिताब कर रहे थे। जनाब सूर्यकांत ने कहा कि इंसाफ तक बामकसद रसाई का तकाजा है कि कानूनी इदारे उन लोगों तक पहुंचें जो उनसे रुजू करने से कासिर हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि कॉन्फ्रेंस के तीन अहम सतूनों मुजाकिरात, अजमत और शमूलियत से मसावियाना इंसाफ के आईनी वादे के लिए अमली माने मैसर होता है।
1: मैं हमेशा बोलता हूं कि न्यायपालिका को, चाहे उसमें हमारा न्यायिक अधिकारी है या कोई भी कर्मचारी है, मैंने आज कहा है कि हम जैसे हॉस्पिटल में एक मरीज जब जाता है, एक हमारी वहां पर बहन नर्स के साथ हमारा कोई जो टेक्नीशियन है, कोई डॉक्टर है, जो जैसे वो उनसे व्यवहार करके एक मरीज के साथ प्यार से बात करके उसकी आधी बीमारी को उस वक्त जैसे उसको अनुभव होता है कि मैं शायद ठीक हो जाऊंगा, ऐसी ही भावना एक हमारे यहाँ पे न्यायिक मंदिर में अगर कोई आता है तो उसको ये होना चाहिए कि मेरा जो अधिकार है जिससे मुझे वंचित किया गया है वो अधिकार मुझे मिलेगा।
0: झारखंड में JPSC, JSSC और दीगर मसाबिकती इम्तिहानात में मुबैना बेजाब्तगियों पर तलबा के एहतजाज में तेजी आ गई है। ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है जबकि रियासती हुकूमत और मुख्तलिफ तलबा तंजीमों के दरमियान बातचीत जारी है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: सुप्रीम कोर्ट में एक उजरदारी दाखिल की गई है जिसमें 14वें JPSC इब्तदाई इम्तिहान को मुबैना बेजाब्तगियों की वजह से मनसूख किए जाने और उसे दोबारा कराए जाने की दरख्वास्त की गई है। इस दौरान जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में कई दिनों से एहतजाज कर रहे तलबा मुसलसल अपनी मांगों पर जोर दे रहे हैं। मुजाहरीन का कहना है कि सिर्फ लफ्जी यकीन दहानी काफी नहीं है और ये मुजाहरा तब तक जारी रहेगा जब तक पुख्ता नतायज बरामद नहीं होते। रियासती हुकूमत ने मुख्तलिफ तलबा तंजीमों के साथ अपनी बातचीत भी तेज कर दी है। उन्होंने तलबा उम्मीदवारों, वालदेन और समाजी कारकुनों से 10 अगस्त को मुजवजा असेंबली घेराव में बड़ी तादाद में शिरकत करने की अपील की, ताहम इंतजामिया ने एहतजाज के मकाम के आसपास सिक्योरिटी सख्त कर दी है। रांची से महवेश रहमान की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए अर्जुमंद अली खान।
0: बंदरगाहों, जहाजरानी और आबी गुजरगाहों के मरकजी वजीर सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि भारत के बहरी तरक्की के सफर में मल्लाहों का अहम रोल रहा है। उन्होंने इस बात को यकीनी बनाने के सरकार के अहद को दोहराया कि हर मल्लाह महफूज रहे, उसका

ख्याल रखा जाए और मदद की जाए। जनाब सोनोवाल ने आज मुंबई में मल्लाहों की सिक्योरिटी तहफ्फुज और बहबूद के मौजू पर एक कौमी मुबाहसे में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि भारत मल्लाहों के ताल्लुक से दुनिया के एक सरकर्दा मुल्क के तौर पर उभरा है। ईरान के सदर मसूद पजिश्कियान ने मुल्क के कौमी मफादात का तहफ्फुज करने के लिए सफारतकारी के तई अपने मुल्क के अहद का एयादा किया है और जोर देकर कहा है कि ईरान को सरेंडर करने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। जनाब पजिश्कियान ने अपनी सरकारी वेबसाइट पर एक इंटरव्यू में अमरीका के साथ बातचीत और एक मुफाहमतनामे पर दस्तखत करने के सरकार के फैसले को सही ठहराया है, जिसका मकसद जंग खत्म करना है। उन्होंने कहा कि जब तक अमरीका मस्कूरा समझौते के तहत अपनी जिम्मेदारियां पूरी करता है, ईरान भी अपने वादों पर अमल करता रहेगा। ईरान के सदर ने कहा कि अगर अमरीका अपने अहद की तकमील में नाकाम रहता है तो इस अमल को जारी रखने के लिए ईरान पर कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। भारतीय मौसमियाती महकमे IMD ने कल उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में शदीद से बहुत शदीद बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश और शुमाल मशरक के हिस्सों में भी शदीद बारिश का इम्कान है। मौसमियात के महकमे ने कल जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, केरलम, माहे, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार जजायर में भी गरज चमक के साथ छींटे पड़ने और तेज हवाएं चलने की पेशगोई की है। आज दिल्ली के हिस्सों में शदीद बारिश हुई। IMD ने कल सुबह कौमी राजधानी के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश के साथ आमतौर पर मतला अब्र आलूद रहने की पेशगोई की है। असान में कल कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के खवातीन सिंगल्स के फाइनल में भारत की अश्मिता चलिहा का मुकाबला चीन की क्विहान से होगा। अश्मिता सेमीफाइनल में अपनी हमवतन रक्षिता रामराज को 21-13, 16-21 और 21-13 से हराकर फाइनल में पहुंची हैं, जबकि क्विहान ने दूसरे सेमीफाइनल में जुनूबी कोरिया की जिकिम को शिकस्त दी थी। आखिर में खास खबरें एक मरतबा फिर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भारत के तरक्की के सफर को आगे बढ़ाने में इख्तिरा, तहकीक और उभरती हुई टेक्नोलॉजियों की अहमियत पर जोर दिया है। मरकजी वजीर अमित शाह ने शहरी इलाकों में इमदाद बाहमी बैंकों के लिए और ज्यादा मजबूत साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल तहफ़ुज़ात की जरूरत उजागर की है। सरकार ने स्टार्टअप इदारों को मजीद तकवीत पहुंचाने की खातिर बड़े सनअती इदारों के साथ कलीदी मुफाहमतनामों पर दस्तखत किए हैं। ईरान के सदर ने कहा है कि उनका मुल्क सिफारतकारी के तई अहदबंद है, लेकिन वो दबाव में आकर नहीं झुकेगा। उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में कल शदीद से लेकर बहुत शदीद बारिश के इम्कान के मद्देनजर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। उड़ीसा में दरियाओं में पानी की सतह बढ़ने के तनाजुर में फिर से सैलाब का खतरा पैदा हो गया है। और बैडमिंटन में आसान में कोरिया मास्टर्स टूर्नामेंट के खवातीन सिंगल्स के फाइनल में अश्मिता चलिहा का मुकाबला चीन की क्विहान से होगा। इसी के साथ खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ।

0: संस्कृति केवल हमारी स्मृतियों में सुरक्षित अतीत का नाम नहीं, वो उन विचारों, मूल्यों, कलाओं और अनुभवों की एक निरंतर यात्रा है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचते हुए हमारे वर्तमान को अर्थ देती है और भविष्य की दिशा तय करती है। भारत की सांस्कृतिक चेतना और समृद्ध ज्ञान परंपरा में स्वतंत्रता का विचार भी कुछ ऐसा ही है। केवल राजनीतिक मुक्ति नहीं, बल्कि विचारों की स्वतंत्रता, ज्ञान की स्वतंत्रता, अपनी पहचान और अपनी परंपराओं को समझने की स्वतंत्रता। इसी विषय पर आज की पत्रिका के संपादकीय में हमारे साथ हैं दिल्ली विश्वविद्यालय की प्राध्यापक डॉक्टर विभा नाइक।
1: भारतीय ज्ञान परंपरा विश्व की प्राचीनतम वैचारिक धरोहर है, जिसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि यह किसी एक रूढ़ी, डॉग्मा या संकीर्ण विचारधारा से बंधी हुई नहीं है, बल्कि इसके मूल में स्वतंत्रता का एक ऐसा गहरा, व्यापक और बहुआयामी मूल्य निहित है जो मनुष्य को न केवल बाहरी बंधनों से मुक्त करता है, बल्कि उसे

आंतरिक और आध्यात्मिक धरातल पर भी परम स्वतंत्र बनाता है। आधुनिक युग में जब हम स्वतंत्रता की बात करते हैं तो हमारा ध्यान राजनीतिक अधिकारों, अभिव्यक्ति की आज़ादी, नागरिक स्वतंत्रताओं और व्यक्तिगत स्वायत्तता की ओर ही अधिक जाता है। लेकिन हमें यह समझना होगा कि भारतीय चिंतन में स्वतंत्रता केवल अधिकारों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह मानव अस्तित्व के चरम लक्ष्य और उसके लोक परलोक के कल्याण से भी जुड़ी हुई है। स्वतंत्रता शब्द दो पदों से मिलकर बना है, स्व और तंत्र, जिसका अर्थ है अपने तंत्र या अपने नियम के अधीन होना। यहाँ स्व का अर्थ व्यक्ति की वह अंतर्निहित चेतना है जो समूचे ब्रह्मांड से जुड़ी हुई है, जिसका लक्ष्य है वासनाओं, विकारों, अज्ञान और इंद्रियों की अधीनता से मुक्ति। इस स्वतंत्रता की सिद्धि तब होती है जब मनुष्य अपने विवेक और धर्म के अनुशासन में रहकर आचरण करता है। इसीलिए भारतीय चिंतन धारा में स्वतंत्रता का लक्ष्य मोक्ष या मुक्ति है, जिसे सभी आस्तिक दर्शनों में जीवन का अंतिम लक्ष्य स्वीकारा गया है। स्वतंत्रता का यह बोध भारतीय ज्ञान परंपरा की पहचान है। भारतीय ज्ञान परंपरा में जहां वेदों को परम प्रमाण मानने वाली आस्तिक परंपराएं जैसे न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा और वेदांत दर्शन है, तो वहीं वेदों की सत्ता को खारिज करने वाली नास्तिक परंपराएं जैसे जैन, बौद्ध और चार्वाक दर्शन भी समानांतर रूप से हैं। विचार और अभिव्यक्ति की इसी स्वतंत्रता का एक उत्कृष्ट उदाहरण हमें उपनिषदों के संवादों में भी मिलता है, जहां गुरु और शिष्य के बीच अत्यंत लोकतांत्रिक और स्वतंत्र माहौल में संवाद मिलता है। इसी प्रकार श्रीमद् भगवद गीता में भी जब अर्जुन विषाद से घिर जाते हैं और किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं, तब भगवान कृष्ण उन्हें जीवन, प्रकृति, कर्म और आत्मा का गहनतम ज्ञान देते हैं और पूरे 18 अध्यायों के बृहत उपदेश के बाद अंत में अर्जुन से कहते हैं, मैंने तुम्हें यह परम गोपनीय ज्ञान दिया है, अब तुम इस पर पूरी तरह से विचार करो, इसका विश्लेषण करो और फिर जैसी तुम्हारी इच्छा हो वैसा करो। निर्णय लेने की यह स्वायत्तता और स्वतंत्रता ही भारतीय ज्ञान परंपरा का वास्तविक गुण है, जो भारतीय सामाजिक और राजनीतिक चिंतन में भी धर्म के माध्यम से प्रतिध्वनित होता है। यहाँ यह ध्यातव्य है कि यहाँ धर्म का तात्पर्य किसी विशेष कर्मकांड या संप्रदाय से नहीं है, बल्कि उन सार्वभौमिक नैतिक मूल्यों, कर्तव्यों और नियमों से है जो समाज के विनियमन के लिए आवश्यक हैं। इसी धर्म का प्रभाव है कि भारतवर्ष में कभी भी राजा की सत्ता को निरंकुश और असीमित नहीं माना गया है। ऋग्वेद का संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांसि जानताम का उद्घोष सामाजिक स्वतंत्रता और समता का एक ऐसा ही प्रमाण है जो सभी को अपने साथ चलने, साथ बोलने और सभी के मनों को समान रूप से समझने के भाव पर केंद्रित है। यह इस बात का भी प्रमाण है कि सामूहिक चेतना के विकास के लिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता और परस्पर संवाद को कितना अनिवार्य माना गया है। इसी प्रकार भारत ही नहीं विश्व में समादृत रामचरितमानस के उत्तरकांड से एक उदाहरण द्रष्टव्य है, जहां राज्याभिषेक के बाद राम प्रजा को संबोधित करते हुए कहते हैं, सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन माने जोई, जो अनीति कछु भाखो भाई, तो मुहि बर जहु भय बिसराई, जिसका अर्थ है कि वही मेरा सच्चा सेवक है और वही मुझे सबसे अधिक प्रिय है जो मेरी आज्ञा का पालन करता है। हे भाई, यदि मैं कभी कोई अनुचित या अनीति बात कह दूं, तो तुम सारा भय भुलाकर मुझे टोक देना। अपने शुद्ध विचार को निर्भीक भाव से रखना ही भारतीय चिंतन धारा का स्वतंत्रता चिंतन या स्वातंत्र बोध है, क्योंकि भारतीय मनीषा एकम सत विप्रा बहुधा वदंती की विश्वासी है। आज जब दुनिया में अपने विचार को

0: एकमात्र सत्य मानकर दूसरों पर थोपने की हिंसक प्रवृत्ति बढ़ रही है, तब भारतीय ज्ञान परंपरा का यह मूल्य हमें सह अस्तित्व, सहिष्णुता और लोकतांत्रिक विमर्श की वास्तविक राह दिखाता है। आधुनिक परिप्रेक्ष्य में देखें तो इस स्वातंत्र्य बोध की प्रासंगिकता और भी बढ़ जाती है, क्योंकि आज का व्यक्ति राजनीतिक रूप से स्वतंत्र है, उसे मतदान का अधिकार है। बाजारवादी संस्कृति ने उसे अपनी पसंद की वस्तुएं खरीदने की असीमित आजादी भी दी है। वह समाज, प्रकृति और परिवार के प्रति अपने कर्तव्यों को भूलता जा रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप आज पर्यावरण संकट, जलवायु परिवर्तन और सामाजिक बिखराव जैसी परिस्थितियां बनी हुई हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ स्वार्थ सिद्धि प्रमुख है, स्व का बोध या स्वातंत्र्य बोध का विचार यहाँ दूर दूर तक नहीं है। भारतीय ज्ञान परंपरा इस एकांगी स्वतंत्रता के स्थान पर एक पूरक और समग्र स्वतंत्रता मॉडल प्रस्तुत करती है। यहाँ व्यक्ति की स्वतंत्रता समाज और प्रकृति की स्वतंत्रता के साथ जुड़ी हुई है। आधुनिक पर्यावरण चेतना और सतत विकास का मूल मंत्र भी यही कहता है कि हमारी उपभोग की स्वतंत्रता तब तक ही न्याय संगत है जब तक वह दूसरों के अस्तित्व और प्रकृति के संतुलन को खतरे में न डाले। इस प्रकार हम पाते हैं कि भारतीय ज्ञान परंपरा में निहित स्वतंत्रता का मूल्य अत्यंत व्यापक, गहन और शाश्वत है। यह काल और भूगोल की सीमाओं से परे जाकर संपूर्ण मानवता के कल्याण की बात करता है। विश्व को यह समझने की आवश्यकता है कि आज के आधुनिक लोकतांत्रिक समाजों को यदि अधिक मानवीय, संवेदनशील, न्यायपूर्ण और टिकाऊ बनाना है तो उन्हें स्वतंत्रता की केवल बाहरी व कानूनी अवधारणाओं तक ही सीमित रहने के बजाय भारतीय चिंतन धारा के चेतना और कर्तव्य आधारित स्वतंत्रता मूल्य को आत्मसात करना होगा।
1: भारतीय ज्ञान परंपरा में निहित स्वतंत्रता के मूल्य, इसी विषय पर आज के संपादकीय में अभी आपने सुना दिल्ली विश्वविद्यालय की प्राध्यापक डॉक्टर विभा नाइक को। भारतीय ज्ञान परंपरा की यही विशेषता है कि वो हमें केवल उत्तर नहीं देती, वो प्रश्न करने का साहस भी देती है, और शायद यही किसी भी जीवंत संस्कृति की सबसे बड़ी ताकत है। साहस अज्ञानता के विरुद्ध प्रश्न करने का हो या किसी अन्याय के विरुद्ध। हमारे देश में ऐसी प्रबुद्ध और साहसी आवाजों की कमी कभी नहीं रही।
2: बोलिए सब मिल महाशय।

0: मातरम।
1: आज जब हम भारत की आजादी की कहानी याद करते हैं तो हमारे सामने कुछ बड़े नाम, कुछ बड़े आंदोलन और कुछ ऐतिहासिक घटनाएं उभरती हैं। लेकिन आजादी की ये कहानी सिर्फ उन्हीं नामों की नहीं थी, ये उन अनगिनत स्त्री पुरुषों की भी कहानी थी जिन्होंने बिना किसी स्वार्थ के देश के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। ऐसी ही एक आवाज को समर्पित है हमारी अगली प्रस्तुति, हिमालय की बेटी, आजादी की आवाज।
2: चौदह जनवरी 1902, दक्षिण सिक्किम के संगमू गांव में एक बच्ची ने जन्म लिया। लेप्चा समुदाय के एक परिवार में जन्मी हेलेन उनके माता पिता की 7 संतानों में तीसरी थी। बाद में उनका परिवार कर्सियांग आ गया, वो पहाड़ी इलाका जहां चाय के बागान और शिक्षा के नए अवसर उनके जीवन को एक नई दिशा देने वाले थे। लेकिन हेलेन की राह आसान नहीं थी। कम उम्र में ही उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी, मगर पढ़ाई छूटने का अर्थ ये नहीं था कि सीखने और आगे बढ़ने का सिलसिला भी रुक गया। सन 1917, पहाड़ियों में चरखे और खादी का आंदोलन चल रहा था। कलकत्ता से आए एक वक्ता के भाषण ने युवा हेलेन के मन को गहराई से प्रभावित किया। उन्होंने तय कर लिया उनका जीवन अब देश की सेवा के लिए होगा। अगले ही वर्ष 1918 में वो कलकत्ता पहुंची, चरखा प्रशिक्षण केंद्र में सूत कातना सीखा।

0: उनकी प्रतिभा और लगन ने उन्हें मुजफ्फरपुर बिहार में आयोजित खादी और चरखा प्रदर्शनी में कलकत्ता का प्रतिनिधित्व करने का अवसर भी दिया। फिर आया वर्ष 1920। बिहार भयंकर बाढ़ की चपेट में था, हजारों लोग प्रभावित हुए थे। ऐसे समय में हेलेन लेप्चा राहत कार्यों में जुट गई निस्वार्थ भाव से लगातार, और इसी दौरान उनकी मुलाकात हुई महात्मा गांधी से। हेलेन की सेवा और समर्पण से प्रभावित होकर गांधी जी ने उन्हें साबरमती आश्रम में आने का निमंत्रण दिया। साबरमती आश्रम में गांधी जी ने उनके व्यक्तित्व और देशभक्ति को करीब से देखा। यहीं गांधी जी ने उन्हें नया नाम दिया, सावित्री देवी। लेकिन जिस आवाज में इतनी दृढ़ता हो, वो सत्ता को भला कैसे सुहाती? ब्रिटिश सरकार की निगाहें अब उन पर थी। उनके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ। गिरफ्तारी से बचते हुए वो इलाहाबाद पहुंची और कुछ समय आनंद भवन में रही। वहां उनका संपर्क कांग्रेस के कई नेताओं से हुआ, लेकिन पहाड़ उन्हें पुकार रहे थे। वो वापस करसियांग लौटी और दार्जिलिंग की पहाड़ियों में स्वतंत्रता आंदोलन को मजबूत करने में जुट गई। घर घर जाकर विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का अभियान, ब्रिटिश प्रशासन की पाबंदियां और उनके सामने एक दृढ़ निश्चय, वो पीछे नहीं हटी। 29 जनवरी 1922, हेलेन लेप्चा गिरफ्तार कर ली गई। दार्जिलिंग सदर जेल में 3 महीने, फिर करसियांग में नजरबंदी। समय आगे बढ़ा। सन 1939 और 40, नेताजी सुभाष चंद्र बोस करसियांग में नजरबंद थे। हेलेन लगातार उनके संपर्क में रही। कहा जाता है कि वो संदेश पत्रों के माध्यम से पहुंचाती थी।
1: मैं दिलीराम दुलाल, एक पत्रकार और इतिहास के विद्यार्थी।
2: कोलकाता में मोहम्मद अली पार्क में आयोजित सभा में हेलेन लेप्चा महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से जुड़ गई थी। उन्होंने धारिया कोयला क्षेत्र के 10,000 से अधिक मजदूरों का नेतृत्व करते हुए आदिवासी श्रमिकों को शोषण के खिलाफ ऐतिहासिक प्रदर्शन भी किया था। उनको इसी आंदोलन में शामिल होने के कारण गिरफ्तार भी किया गया था। और बाद में जब उन्होंने दार्जिलिंग में अपने साथियों के साथ सदर जेल में 3 महीना तक, बाद में 3 वर्षों तक खरसांग में जब उनको नजरबंद रखा गया था, उस समय में भी उन्होंने स्वतंत्र संग्राम में योगदान दिया था। जैसे कि 1939-40 में जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस खरसांग में नजरबंद थे, तब उन्हें उनके साहसिक पलायन में महत्वपूर्ण सहायता की थी। बताया जाता है कि पठान की भेष तैयार करने में हेलेन लेप्चा ने महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह किया था। उनके योगदान के कारण सिक्किम सरकार ने हाल ही में सरकारी मेडिकल कॉलेज को उनके नाम पर रखने के लिए हेलेन लेप्चा मेडिकल कॉलेज निर्णय किया है।
3: मैं सोमनाथ पांडे, सिक्किम से। मैं एक सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारी हूँ। हेलेन लेप्चा के खोज में हम लोग ने सक्रियता से काम किया। उनका सभी इष्टजन थे, उनका जो मित्रों था, उनका परिवारजन था, उनसे मिलके उनका जो पेपर्स वगैरह ताम्र पत्र सब हम लोग ने निकाल के अभी पूरा ऑडियो विजुअल्स पूरा इतिहास हम लोग ने समेट लिया है। सिक्किम में 1973 से पहले उस समय में भी सिक्किम के लोग भारत के आंदोलन में, स्वाधीनता आंदोलन में किस तरह से भाग लिया करते थे, इस प्रश्न में हम लोग खोज करते हैं। इसी दौरान में सावित्री देवी जो हेलेन लेप्चा है उनका संदर्भ में हम लोग ने काम किया है। वो विशेष करके मजदूरों को इकट्ठा करना, मजदूरों को स्वावलंबी कैसे बनाना, इस क्षेत्र में उन्होंने काम किया। सबसे पहले तो बीमारियों को देखा, दवाई औषधियां किया, उसके बाद में उन्होंने स्वावलंबी बनाने का काम किया। तब ये वो बड़ा स्वाभिमानी, वो एक तो निडर माता के रूप में परिचित है। उनका 3 नाम है। एक तो सबसे पहले नाम उनका हेलेन लेप्चा था। तो बाद में जाके ये नाम थोड़ा सा अंग्रेज का जैसा लगा, अंग्रेजी स्कूल से ये शिक्षित हुई थी, तो अंग्रेज का जैसा नाम होने के बाद में महात्मा गांधी ने उनको सावित्री देवी नाम दे दिया। तब उनका गाँव में जो खरसांग और सिक्किम में उनका नाम साइली दीदी करके परिचित था। साइली मतलब होता है नेपाली भाषा में थर्ड, तीसरा होता है। तब साइली करके थर्ड करके साइली दीदी करके ऐसा नाम उस प्रसिद्ध हुई। उनको

0: पत्र भी मिला उस समय में स्वाधीनता संग्राम के, लेकिन वो थोड़ा सा समाज में वो ओझल हो गई, क्योंकि हमारा ऐसा है कि जो आगे निकल गए उनका इतिहासकारों ने समेट दिया, लेकिन जो ट्राइबल उन्होंने विशेष करके दुर्गम क्षेत्र में ही काम किया तो उनका नाम थोड़ा इतिहास में थोड़ा सा पीछे रह गया था। तो अभी बहुत अच्छा से उनका नाम आगे आ रहा है, सिक्किम में तो उनका नाम से मेडिकल कॉलेज भी बन रहा है, तो और उनका कई रास्ता का नाम हेलेन लेप्चा का नाम से अभी बन रहा है।
1: वर्ष 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भी उन्होंने सक्रिय भाग लिया। स्वतंत्रता के बाद भी उन्होंने समाज सेवा का काम जारी रखा। 15 अगस्त 1972 को भारत सरकार ने उनके स्वतंत्रता संग्राम में योगदान को सम्मानित करते हुए उन्हें ताम्रपत्र प्रदान किया। 18 अगस्त 1980 को हेलेन लेप्चा ने अंतिम सांस ली, लेकिन उनका जीवन आज भी हमें प्रेरणा देता है।
2: हेलेन लेप्चा, हिमालय की बेटी, आजादी की आवाज, अभी आपने ये लघु रूपक सुना। आलेख अंकुश रोनियार का था, वाचन स्वर प्रांजल।

0: स्वतंत्रता संग्राम केवल रणभूमि में लड़ी गई लड़ाई नहीं थी, ये घरों में लड़ी गई, विद्यालयों में लड़ी गई, लेखन और पत्रकारिता में लड़ी गई, गीतों और कविताओं में लड़ी गई, और इस संघर्ष में भारतीय महिलाओं ने अपनी विशिष्ट भूमिका निभाई। किसी ने आंदोलन का नेतृत्व किया, किसी ने जेल की यातनाएं सही, किसी ने भूमिगत रहकर क्रांतिकारियों की सहायता की, तो किसी ने अपने लेखन और विचारों से राष्ट्र की चेतना को जगाया। ऐसी ही कुछ साहसी महिलाओं की स्मृति को समर्पित है हमारी अगली प्रस्तुति, राष्ट्र जागरण की दीपशिखाएं, स्वतंत्रता संग्राम की अग्रणी महिला सेनानियां। आलेख और स्वर है प्रसारण कर्मी और प्राध्यापक बिंदु पांडे का।
1: बोलिए सब मिल महाशय।

0: जब हम स्वतंत्रता संग्राम की बात करते हैं तो सबसे पहले स्मरण होती है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में जिस अदम्य साहस का परिचय दिया वह भारतीय इतिहास की अमर गाथा बन चुका है। अंग्रेजी सत्ता के सामने उनका यह संकल्प, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, आज भी राष्ट्रीय स्वाभिमान का उद्घोष प्रतीत होता है। इसी संघर्ष की एक और तेजस्वी कड़ी बेगम हजरत महल। अवध की इस वीरांगना ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किया और लखनऊ में विदेशी सत्ता को खुली चुनौती दी। स्वतंत्रता आंदोलन को जन जन तक पहुंचाने वाली एक सशक्त आवाज थी सरोजनी नायडू। अपनी वोजस्वी वाणी और राष्ट्रवादी विचारों के माध्यम से उन्होंने हजारों महिलाओं को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ा। वे मानती थी स्वतंत्र भारत का निर्माण तभी संभव है जब महिलाओं को समान अवसर और सम्मान प्राप्त हो।
1: I believe that I must disprove the age-old proverb that the woman has the last word and the longest word. I have the last word, no doubt, not because I am a woman, but because I'm acting today as the hostess of the Indian National Congress.
0: महात्मा गांधी के संघर्ष में एक मौन किंतु अत्यंत सशक्त शक्ति थी, कस्तूरबा गांधी। उन्होंने सत्य, अहिंसा और सेवा के आदर्शों को जीवन में उतारते हुए अनेक आंदोलनों में भाग लिया और जेल यात्राएं भी की। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि हर बड़े परिवर्तन के पीछे त्याग, धैर्य, समर्पण की एक शांत धारा भी बहती है। सन 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में जब अधिकांश राष्ट्रीय नेता गिरफ्तार कर लिए गए, तब अरुणा आसफ अली ने ग्वालिया टैंक मैदान में तिरंगा फहरा।

लगाकर अंग्रेजी शासन को सीधी चुनौती दी। उनका साहस उस दौर के युवाओं के लिए प्रेरणा बना। स्वतंत्रता संग्राम की चेतना को जन जन तक पहुंचाने में साहित्य की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही और

0: प्रदान की। इसी आंदोलन के दौरान एक युवा महिला ने अपनी आवाज को स्वतंत्रता का हथियार बना लिया। यह थी उषा मेहता। उन्होंने गुप्त कांग्रेस रेडियो की स्थापना कर पूरे देश में स्वतंत्रता का संदेश पहुंचाया। जब अंग्रेजी सरकार समाचारों और सूचनाओं पर नियंत्रण स्थापित कर चुकी थी, तब उनके साहसिक प्रयासों ने स्वतंत्रता आंदोलन को नई ऊर्जा प्रदान की।
1: This is the Congress radio calling on 42.34 meters. Today, we shall read to you a stupid reasoning of the CNC.
0: सुचेता किपलानी ने भी स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने संगठनात्मक क्षमता और नेतृत्व कौशल का परिचय देते हुए भूमिगत आंदोलनों को सशक्त बनाया। बाद में वे स्वतंत्र भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी और यह सिद्ध किया कि संघर्ष से निकला नेतृत्व राष्ट्र के भविष्य का निर्माण करता है। बंगाल की वीरांगना मातंगिनी हाजरा का बलिदान भी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में अंकित है। 73 वर्ष की आयु में भी वे आंदोलन का नेतृत्व कर रही थी। अंग्रेजों की गोलियां लगने के बाद भी उनके हाथों में तिरंगा नहीं छूटा और उनके मुख से वंदे मातरम का उद्घोष निरंतर निकलता रहा। जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का गठन किया, तब कैप्टन लक्ष्मी सहगल ने रानी झांसी रेजिमेंट का नेतृत्व संभाला। उन्होंने महिलाओं को सैन्य प्रशिक्षण देकर यह स्थापित किया कि राष्ट्र रक्षा और बलिदान के क्षेत्र में स्त्रियां किसी से कम नहीं हैं।
2: नेताजी हमसे 5 घंटे बात किया, हमारे देश का और दुनिया के आधा हिस्सा को कैसे नजरअंदाज करें, यानी महिलाओं को। अगर महिलाओं को भी देश का प्रेम है, उन लोगों को आजादी का जरूरत है, इसलिए आप महिलाओं को भी हम लेने के लिए तैयार है, उनका भी एक फौज बनाएंगे।

अभी आपने सुनी लघु प्रस्तुति राष्ट्र जागरण की दीपशिखाएं। आलेख और स्वर था प्रसारण कर्मी और प्राध्यापक बिंदु पांडे का। इन दीपशिखाओं ने अपने समय को तो रोशन किया ही, आज भी उनका जीवन हमें ये याद दिलाता है कि परिवर्तन की शुरुआत अक्सर एक अकेले साहस भरे कदम से होती है। संस्कृति का संसार बहुत विस्तृत है। कभी वो करघे पर आकार लेता है, कभी किसी पुस्तक के पन्नों में, और कभी उन समुदायों की स्मृतियों में जीवित रहता है जिन्होंने प्रकृति और परंपरा के साथ सह अस्तित्व की अनूठी संस्कृति रची है। हर साल 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। ये दिवस भारतीय हथकरघा परंपरा और देश के बुनकरों के योगदान को सम्मान देने के साथ साथ स्वदेशी आंदोलन की उस ऐतिहासिक भावना की स्मृति से भी जुड़ा है जब 7 अगस्त 1905 को कोलकाता में स्वदेशी आंदोलन का औपचारिक आरंभ हुआ था।

किताबें हमारी स्मृति हैं और पुस्तकालय उस स्मृति का सार्वजनिक घर। हर वर्ष 12 अगस्त को राष्ट्रीय पुस्तकालय दिवस मनाया जाता है। ये दिन भारत में पुस्तकालय विज्ञान के जनक डॉक्टर एस आर रंगनाथन की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। पुस्तकालय केवल पुस्तकों का संग्रह नहीं बल्कि ज्ञान के संरक्षण और उसके प्रसार के महत्वपूर्ण केंद्र हैं, और डिजिटल युग में भी वो पढ़ने, शोध और विश्वसनीय ज्ञान तक पहुंचने की संस्कृति को जीवित रखे हुए हैं। भारत की आदिवासी परंपराएं अपनी भाषाओं, लोक कथाओं

संगीत, नृत्य, कला और प्रकृति केंद्रित जीवन दृष्टि से बेहद समृद्ध हैं। हर वर्ष 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य विश्व के आदिवासी समुदायों के अधिकारों, उनकी सांस्कृतिक पहचान और उनके योगदान के लिए जागरूकता बढ़ाना है। करघे के धागों में बुनी हमारी हस्तशिल्प परंपरा, पुस्तकालयों में संरक्षित ज्ञान की दुनिया और आदिवासी समुदायों की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, ये तीनों मिलकर भारत की सांस्कृतिक विविधता का एक बेहद सुंदर और समृद्ध चित्र रचते हैं। और अब समय है उन विभूतियों के स्मरण का जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में भारत के सार्वजनिक और सांस्कृतिक जीवन को गहराई से प्रभावित किया। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर, पंडित विष्णु नारायण भातखंडे, उस्ताद अमीर खां, उस्ताद बिस्मिल्ला खां, राम किंकर बैज, वी एस गायतोंडे, जहांगीर सभावाला, फिरोज शाह मेहता, प्रफुल्ल चंद्र रे, पंडित रविशंकर शुक्ल और अभी हाल ही में दिवंगत हुए पंडित जगन्नाथ बेहरा। इन विभूतियों का स्मरण उन विचारों, कर्मों और सृजनात्मक ऊर्जा को याद करना है जिनसे हमारा सांस्कृतिक वर्तमान निर्मित हुआ। इन महान विभूतियों के अवदान को नमन करते हुए संपन्न होता है संस्कृति भारती का ये अंक। नवोदिता मिश्रा को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी है संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं श्री गिरिमल्लप्पा भजंत्री का शहनाई वादन। श्री गिरिमल्लप्पा भजंत्री शहनाई की प्रारंभिक शिक्षा श्री रंगाचारी काकंडिकी से प्राप्त की। उसके बाद श्री चन्वीर बन्नूर के मार्गदर्शन में लगातार 9 वर्ष तक शहनाई वादन की उच्च शिक्षा प्राप्त की। श्री चन्वीर बन्नूर डॉक्टर पंडित पुटराज गवाई के प्रमुख शिष्य थे। श्री गिरिमल्लप्पा भजंत्री कई पुरस्कारों से सम्मानित किए जा चुके हैं, जैसे कि कलाश्री पुरस्कार, कर्नाटक राज्योत्सव पुरस्कार इत्यादि। श्री गिरिमल्लप्पा भजंत्री देश विदेश के कई प्रमुख संगीत सम्मेलन में अपना शहनाई वादन प्रस्तुत कर चुके हैं। आज के इस कार्यक्रम में आपके साथ तबले पर श्री मले मलेश हुगार देसाई कल्लूर साथ दे रहे हैं।
1: दिस इज आकाशवाणी। In tonight's national program of music, we bring you a Shahnai recital by Shri Girimallappa Bhajantri. Shri Girimallappa Bhajantri started his initial training in Shahnai from Shri Rangachari Kakandaki. Later, for 9 years, he was under the able guidance of Shri Channaveera Bannur, a prominent disciple of Pandit Puttaraja Gavayi of Gadag. Shri Girimallappa Bhajantri is a recipient of many awards like Kalashri Award, Karnataka Rajyotsava Award, etc. He has performed in many important music festivals of India and abroad. In tonight's program, he is accompanied on the tabla by Shri Male Mallesh Hugar Desai Kallur.
0: Shri Girimallappa Bhajantri apne karyakram ka prarambh rag Rageshri se kar rahe hain. Isme do bandishen japtal aur drut tintal mein nibaddh hai. Suniye rag Rageshri.
1: Shri Girimallappa Bhajantri begins his Shahnai recital with Rag Rageshri, in which he is presenting two compositions set to Jhaptal and Drut Teen Tal.

0: अब तक आप सुन रहे थे राग रागेश्री। आइए अब सुनते हैं राग जोग।
1: That was राग रागेश्री। श्री गिरिमल्लप्पा भजंत्री विल नाउ प्रेजेंट राग जोग।

0: अब तक आप सुन रहे थे राग जोग। इसी के साथ आज का संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम अब संपन्न होता है, जिसमें आप सुन रहे थे श्री गिरिमल्लप्पा भजंत्री का शहनाई वादन। आपके साथ तबले पर श्री मले मलेश हुगार देसाई कल्लूर साथ दे रहे थे।
1: That was Raag Jog. With that, we come to the end of tonight's national program of music, in which you were listening to Shahnai recital by Shri Girimallappa Bhajantri, and he was accompanied on the tabla by Shri Male Malesh Hugar Desai Kallur.
0: यह कार्यक्रम आकाशवाणी के धारवाड़ केंद्र में रिकॉर्ड

0: किया गया और आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
1: दिस प्रोग्राम वॉज रिकॉर्डेड अर्लियर इन द स्टूडियोज ऑफ आकाशवाणी धारवाड़ एंड रिलेड फ्रॉम आकाशवाणी दिल्ली।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव 366।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। थोड़ी ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से समाचार रिले किए जाएंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए। नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के विकास के लिए नवाचार, अनुसंधान और उभरती प्रौद्योगिकियों के महत्व पर जोर दिया है। श्री मोदी ने आज भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली के विद्यार्थियों से आग्रह किया कि वे अपने निर्णयों में राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखें। श्री मोदी ने IIT दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि प्रत्येक पीढ़ी अपने समय की विशिष्ट चुनौतियों का सामना करती है और अपनी राष्ट्रीय जिम्मेदारी भी निभाती है।
2: आज के इस दौर में हमारे सामने चुनौतियां भी अलग है और इसलिए हमारे दायित्व भी अलग है। अपने जीवन के अगले 30-35 साल में आप जो कुछ भी करेंगे वो विकसित भारत की हमारी यात्रा को प्रभावित करेगा।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में नए क्षेत्र उभर रहे हैं जो युवाओं को नए अवसर प्रदान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भरता की पहल विकसित भारत के निर्माण के लिए एक मजबूत आधार का काम करेगी। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने IIT दिल्ली में उच्च दक्षता के कंप्यूटिंग केंद्र परम प्रज्ञा का उद्घाटन भी किया। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शहरी सहकारी बैंकों के लिए मजबूत साइबर सुरक्षा और डिजिटल सुरक्षा उपायों की आवश्यकता पर बल दिया है। मुंबई में आज सहकार नव क्रांति कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि डिजिटल लेन देन में धोखाधड़ी बढ़ रही है और बैंकिंग सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मजबूत फॉरेंसिक सहायता की आवश्यकता है। श्री शाह ने बताया कि राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम तथा राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
3: आज हमारे अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन और NFSU फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के साथ जो समझौता हुआ, इससे हमारी छोटी सी छोटी बैंक की हर ब्रांच में भी ये सारी सुविधाएं बहुत कम लागत में देने का काम अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन करेगा। इससे साइबर सुरक्षा, डिजिटल फॉरेंसिक कर्मचारियों का इस दोनों क्षेत्र में प्रशिक्षण और अनुसंधान, ये सभी व्यवस्था एक साथ बैंक इन बॉक्स से हो जाएगी।
1: सहकारिता मंत्री ने एक सुरक्षा संचालन केंद्र का भी शुभारंभ किया। सरकार ने स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख उद्योगपतियों के साथ महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने वाली कैश फ्री पेमेंट्स, डार्विन डायनेमिक्स, वॉल्ट इंडिया, कार्स 24 और काउंसिल फॉर स्टार्टअप के साथ भी समझौता किया गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के उद्योग तथा आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। मंत्रालय ने बताया कि हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन का उद्देश्य स्टार्टअप के लिए डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि उपभोक्ताओं के लिए UPI निशुल्क रहेगा और सभी व्यक्तिगत लेन देन निशुल्क बने रहेंगे। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि UPI के माध्यम

से भुगतान करते समय उपभोक्ताओं को किसी भी प्रकार का लेन देन शुल्क नहीं देना होगा, जबकि अधिकांश व्यापारी लेन देन भी निःशुल्क रहेंगे। मंत्रालय ने कहा कि यदि व्यापारी छूट दर शुल्क लागू किया जाता है तो ये केवल एक निश्चित सीमा से अधिक के सीमित व्यापारी लेन देन पर नाम मात्र दर से लागू होगा। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हुए कहा कि ईरान कूटनीति के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन आत्मसमर्पण करने के लिए बाध्य नहीं होगा। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में आयोजित एशियाई जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारतीय भारोत्तोलकों ने शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए पुरुषों के 60 किलोग्राम वर्ग में एक स्वर्ण और एक रजत पदक जीते। मौसम विभाग ने उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में कल मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी तेज बारिश की संभावना है। आज राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में तेज बारिश हुई। राजधानी में कल सुबह भी बारिश की संभावना है। इसके साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।